100 सालों की मशक्कत के बाद कैंसर से लड़ना होगा मुमकिन। अब मॉडर्ना और मर्क की आरएनए वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल सफल हुआ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

0: एक फकीर एक राजा के पास गया। फकीर बहुत पहुंचा था। राजा ने कहा कि कोई ज्ञान की बात बताओ, तो फकीर ने कहा कि अभी वर्तमान में तो हमारे पास ज्ञान की बात कुछ खास है नहीं, एक अंगूठी है जो हम तुम्हें देना चाहते। राजा ने कहा कि दे दे। फकीर ने कहा कि अंगूठी बड़ी पहुंची हुई है, ये बहुत अद्भुत है, अपने आप में बड़ी चमत्कारिक है। तो राजा ने कहा कि इसका चमत्कार बताओ। फकीर ने कहा कि वैसे इसका कुछ बड़ा चमत्कार नहीं, पर ये दो समय पे काम आ सकते, जब बहुत मुसीबत हो तब, जब बहुत खुशी हो तब, जब बहुत तब ये काम आएगी, या जब बहुत खुशी हो तुम्हें तब ये काम आएगी। राजा ने कहा कि फिर तो ये काम किए। तो पूछा कि इसका प्रयोग कैसे करना है। बोले प्रयोग कुछ नहीं करना है, इसमें एक ढक्कन है, उसे खोलना है, उसमें कुछ चिट्ठी है, जब बहुत दुख हो तभी वो चिट्ठी पढ़ना, पहले मत खोल लेना, और जब बहुत खुशी हो, सुख हो, तभी वो चिट्ठी खोलना। दो बार के काम की ही है, दो समय के काम की है, बाकी बहुत अद्भुत चमत्कारिक अंगूठी। राजा था, फकीर की बातें थोड़ा अच्छी लगी, प्रिय लगी, तो कई बार अच्छी बातें लगने वालों पर भरोसा कर लिया जा सकता है। तो राजा ने वो अंगूठी पहन ली, फकीर चला भी गया। पहुंचा हुआ फकीर, वो कहां रुके, और पानी ठहर जाए तो गंदा हो ही जाता है, और फकीर महात्मा भी ठहर जाए तो ठीक नहीं रहता। तो महात्मा तो चलते चलते हैं, तो चले गए। कुछ दिनों बाद राजा के साम्राज्य में राजा के साम्राज्य पर आक्रमण हुआ, किसी पड़ोसी देश के राजा ने चढ़ाई कर दी, युद्ध हुआ, राजा हारा गया, सेना मारी गई, साम्राज्य छिन गया, राजा के राज्य पर अधिकार और हक दूसरे राजा का हो गया। ये प्राण बचाकर भागा, भयंकर जंगलों के बीच से गुफा में जैसे तैसे करके भाग कर बच पाया। ये भी मरने ही वाला था, पीछे से शत्रुओं के सैनिकों के सिपाही लगे थे, अश्व सवार घुड़सवार लगे थे, बड़े बड़े सैनिक नुकीले तीर लिए हुए राजा के पीछे लगे थे। ये भागा भागा एक गुफा में गया, दौड़ करके प्राण बचाए, बड़ी मुश्किल से सांस ले पाया। इसे लगा कि अब मरे, अब पकड़े गए, अब मारे गए, अब पकड़े गए, अब मारे गए, पकड़े गए। ये विचार कर ही रहा था कि बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई पड़ी, कि इसको लगा कि अब मरे। ये सोच ही रहा था तब तक अंगूठी दिखाई पड़ी। इसने सोचा कि अब काम की अंगूठी, सुना महात्मा ने कहा था कि चमत्कारिक अंगूठी है, तो जरा चेक कर लेनी चाहिए है भी कि नहीं, इससे ज्यादा मुसीबत भला क्या हो सकती है। तो उसने अंगूठी को खोला, उसमें एक चिट्ठी निकली, और चिट्ठी पर दो लाइन लाल रंग के कलर में लिखी थी, जो है सुबीत जाएगा। उसने अंगूठी को वापस बंद कर दिया, और मानो उसके कानों से कोई पंछी उड़ गया, जो भय था वो भाग गया, एक सबल उसके मन में आ गया, एक भरोसा उसके मन में आ गया, जो है वो बीत जाएगा। और हुआ भी यही, जो घुड़सवार पीछे मारने लगे थे थोड़ी देर में दिखाई नहीं पड़ा राजा, तो वो भाग गए। तो ये शांति के साथ बैठा, इसने सांस में सांस ली, प्राण में प्राण आए, थोड़ी शांति आई, थोड़ा मन आया कि अब सोच तो पाए कि करना क्या है, लुट तो गई, मरने से तो बचे कम से कम, अब जो होगा तो देखा जाएगा। पर अंगूठी का चिट्ठी जो लिखी थी वो कह रही थी, जो है वो बीत जाएगा। रात के समय राजा निकला, अपने कपड़े उतारे, फटे हुए थोड़े से कपड़े कर लिए ताकि कोई पहचान ना पाए। पास के पड़ोस में इसका एक दूसरा मित्र था, वो भी राजा था, उसके यहां ये भागा भागा गया। दरवाजे पर द्वारपाल को बताया कि हमारे ये मित्र हैं, और ऐसी ऐसी हालत हुई, तेरा राजा को जगाओ, पति बड़ी इमरजेंसी है, और हमारे वो मित्र हैं। द्वारपाल ने अंदर खबर दी, मित्र भी बहुत अच्छा रहा होगा, उसने रात में आकर स्वागत किया, ये हालत तुम्हारी, उसने पहले तो कपड़े दिए, भोजन कराए, स्नान करवाया, स्वागत किया। बोले चिंता मत करो, हम हैं, कल सुबह होने दो, कुछ इंतजाम करेंगे। तो पूछा कि क्या मदद करें, इसने कहा कि और तो कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, हम साम्राज्य में तो तभी जाएंगे जब पुनः जीत लिया जाए। ये कहा तो मित्र ने कहा कि बस चिंता छोड़ो। दो चार दिन मित्र को तैयारी करने में लगे, अगल बगल से सेनाएं खोजी गई, अगल बगल से योद्धाओं को बुलाया गया, और जितनी सेना इसके राज्य में आकर के आक्रमण करके अतिक्रमण की थी उससे ठीक दोगुनी सेना इसके मित्र ने तैयार की, और राजा के राज्य पर फिर आक्रमण किया। जो शत्रु राजा था उसको भगाया गया, सेना उसकी मारी गई, ये फिर से अपना राज्य जीत गया। ये जीता, बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। स्वाभाविक है, हारा हुआ, खोया हुआ साम्राज्य पा लिया, फिर से प्राप्त कर लिया, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। सेना जैसे ही कब्जा करती है, राजा की खबर मिलती है, प्रजा भी बड़ी प्रसन्न होती, प्रजा भी लाइन से खड़ी हो गई, फूल माला लेकर, आरती की थालियां लेकर, स्वागत के लिए बाजे बजाए जा रहे, राजा रथ पर खड़ा है, हाथ हिला रहा है, गुमान में भरा है कि मैं वही हूं जो हार गया था और देखो मैं जीत के आ गया। ये सोच ही रहा था, हाथ हिला ही रहा था, तब तक अंगूठी याद आ गई। उसने फिर अंगूठी खोली और फिर चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था जो है वो बीत जाएगा। तो जो गुमान में हाथ हिला रहा था, हाथ नीचे हो गया, हाथ जुड़ गए और प्रणाम करने लगा, मुस्कुराहट थोड़ी हल्की हो गई, जो गुमान भर रहा था वो गुमान का बबूना फूट गया, वो गुब्बारा फूट गया, मुस्कुराता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ राजा अपने महल में प्रवेश करता है और अंत में यही कहता है, जो है वो बीत जाएगा। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो भी है ये भी एक दिन बीत जाएगा। भला है अथवा बुरा है, तुम्हारे जीवन में जो भी है, जैसा भी है, ये तय है, बीत जाएगा। यहां स्थाई कुछ भी नहीं, सब बीतना है। यदि तुम्हारे जीवन में दुख है तो पक्का मानो सुख आना है, यदि तुम्हारे जीवन में बहुत सुख है तो पक्का मानो कोई ना कोई दुख आना है। सारा संसार ऐसा ही चल रहा और सबके जीवन में आना है। राम जी के जीवन में आया, कृष्ण भगवान के जीवन में आया, मीरा के जीवन में आया, मीरा को पति से ही विष पीना पड़ा। तुम तो कुशल मनाओ, तुम्हारा पति विष नहीं पिलाता। मीरा को विष पीना पड़ा, सूरदास को गांव के लोगों ने धक्के दिए, तुलसीदास जी को अपने ही पंडितों को परीक्षा देनी पड़ी, माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तुम कुशल मनाओ, तुम्हारा पति तुमसे परीक्षा नहीं लेता। माता जानकी जी ने तो अग्नि परीक्षा दी थी, हो सकता तुम्हारा पति कह दे कि गैस चूल्हे पर ही हाथ रख दो, तो तुमसे तो परीक्षा भी नहीं ली जा रही। सबको सहना पड़ा, सबको दुख सहने पड़े, पर एक बात पक्की मानना मेरे पागलो, जो भी है वो बीत जाएगा। ये विचार घर लेकर जाना, जो भी है वो बीत जाएगा, पक्का है। और गुरु कुछ नहीं करता, गुरु इतना ही करता, हम परिस्थिति नहीं बदलते, मन स्थिति बदलते हैं। तो गुरु कुछ नहीं करता, मन की परिस्थिति बदलता। मन की परिस्थिति बदली कि जीवन बदला। तुम अभी यहां ऐसे बैठे हो, बहुत भीड़ भी बैठी, आप सब बैठे हो, बगल में कोई पैर पे पैर रख दे तो तुम तुरंत धक्का है, दूर हो भाई, ये मैच्योरिटी नहीं, दूर दूर। बगल में कोई कान में आके कह दे मंत्री जी है, अच्छा भाई समाज आ जाइए, अच्छे से बैठ जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मन की ही तो परिस्थिति बदली, आदमी वही था, मन को एक बात पता लगी कि ये खास है, तो कल तक जो भार लगता था वो अब भार नहीं लगा, थोड़ी देर पहले जो भजन लग रहा था वो भजन थोड़ी लगता, और प्रेम में जिससे प्रेम होता है वो बोझ थोड़ी लगता है, और जिससे प्रेम नहीं होता है उसका बैठना भी, कई लोग तुम्हारे पास बैठते हैं तुम सोचते हो कब जाइए, कहां से आ गया, अब वो एकदम मूड में बैठा बात करने के, हम तुमको अपनी फोटो दिखाए तुम कर रहे खुजली, अरे भाई बाद में दिखा, हाँ वो कह रहे नहीं देखता जो, अब वो फोटो अपनी दिखाई, अब फिर लगा रहा पर हमारी घर की और देख लो, अब तुम्हें इतनी उबन हो रही, इतनी बेचैन, और इतने में कोई प्रेमी आ जाए, अब वो कहे फोटो दिखाए, तुम्हें फोटो का पिक्चर का दिखाओ, पूरी फिल्म लगाओ, वीडियो लगाओ, अब कहां भी जा रहे, रुक जाए चाय और पी लो फिर जाओ। कोई अपना आता है तो वो जाने की जिद करता, तो अपन कहते हैं रुको रुको भैया चाय थोड़ा रुक के बनाओ ताकि थोड़ी देर और रुक सके, और कोई खुजली वाला आ जाए वो कहे जा रहे तो चाय भी बन रही होगी, ठीक है तो फिर अगली बार चाय हो जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है, मन का ही तो खेल, मन बदलता है, मन की स्थिति बदलती, परिस्थिति बदलती। मेरे पागलों, हम तुम्हें सिर्फ एक विचार देने आए, माइंड को ऐसा सेट रखो कि विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओ, बुरे समय को भी स्वागत करो। जापान से सीखो, कितने धक्के नहीं खाए जापान ने, नागासाकी हिरोशिमा, 2011 की सुनामी, न्यूक्लियर वाला, कितने झंझट नहीं सहे, लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, इन्होंने कर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि इनका माइंड सेट था तुम भी अपनी जिंदगी में दुखों को आने दो, उनका काम ही है आना। संसार में गीता में कहा दुखालयम, यह संसार, यह संसार सागर दुखालय, यहां तो दुख मिलेगा ही, किसको नहीं मिला, तो तुम्हें मिले, पर तुम अपने माइंड को सेट कर लो, दुख भी आए तब भी मुस्कुराओ, वो भी शर्मा जाए किस बेशरम के पास आ गए। मुस्कुराओ, उसको भी कंफ्यूज कर दो, उसको भी परेशान कर दो। अभी गाड़ी में सुना रहे थे, ट्रेन में बैठे थे हम और हरीश जी बगल में, हम कहा हम तो ऐसे आदमी है जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो पर चाल तो हम सम्राटों जैसी चलते। हाँ, अपनी आदत बहुत बढ़िया है, बुंदेलखंड के आदमी, साधारण परिवार के आदमी, अंग्रेजी आती नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, लेकिन ये किसी को आभास नहीं होने देते। अपन को अंग्रेजी अशुद्ध भी आती है तो इतने गंभीरता से बोलते हैं कि अंग्रेज भी फेल हो जाते हैं, उनको भी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। हम उनको गलत साबित कर देते हैं कि तुमने ये पढ़ी नहीं है जो हमें आती, बल्कि हमें ये पता है हम गलत पढ़ रहे हैं। हम ही को सी बोल देते थे, वो सी को ही बोल देते हैं, हमें पता है कि हम गलत बोल रहे हैं, पर बोलते इस कॉन्फिडेंस में है कि अंग्रेज को ये लगे कि उसे ये समझ नहीं आई, ये शब्द वो पढ़ नहीं पाया जो हम पढ़ चुके, जो हम बोल चुके। मेरे पागलो, हर परिस्थिति में मुस्कुरा, कृष्ण भगवान से यही सीखो, उन्होंने वृंदावन बाल्य काल में छोड़ा मुस्कुराए, गोवर्धन पर्वत उठाया मुस्कुराए, अपने गोप बाल मित्रों को छोड़ना पड़ा, मथुरा आना पड़ा, फिर भी मुस्कुराए, मथुरा को भी जरासंध के कारण छोड़ना पड़ा और नाम रणछोड़ दास पड़ गया, तब भी आए, आकर के द्वारका में हो गए 16108 ब्याह की, तब भी तुम्हारा एक में का हाल है, लेकिन वो तब भी 16000 रानियां, 16100 रानियां, 8 पट रानियां, इन सबके 10-10 संतानें हुई, 161080 बेटे हुए, उसके बाद भी इन बच्चों की शादी हुई तो इनके भी 10-10 बेटे हुए, तब भी इनके परिवार की जनसंख्या 55 करोड़ पहुंच गई, ऐसा लिखा, तब भी मुस्कुराए, और परिवार आपस में लड़के मरने लगा, तब भी महाभारत के समर में एक तरफ कौरव पक्ष खड़े, एक तरफ पांडव पक्ष खड़े, कौरव की सेना पांडवों को खा जाना चाहती, कौरव 100 हैं, पांडव 5 हैं, भीड़ कौरव के पास है पर भगवान पांडव के पास, और विजय पांडवों की हुई, पराजय कौरवों की हुई। इससे सिद्ध होता है भीड़ जिसके पास हो जरूरी नहीं वो जीत जाए, भगवान जिसके पास होता है वो जीत जाता है। लेकिन उस महाभारत के समर में भी जब बड़ी हाहाकार मची थी तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए, युद्ध हो गया, कौरव मारे गए, पांडव जीत गए, तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए, वापस आए द्वारका, घर पूरा उजड़ने लगा, बच्चे आपस में लड़ने लगे, मरने लगे, सब यदुवंशी, भगवान की ही ये लीला थी, उनका ही ये नाटक था, वो ही अपनी आंखों के सामने करवा रहे थे, तब भी देखते ही देखते दाऊ भैया ने विदा ले ली, अब हम चल रहे हैं, तब भी हमारे ठाकुर, 100 साल बाद राधिका जी से मिलन हुआ, 100 साल के वियोग के बाद ब्रज से मिलन हुआ, 100 वर्ष के बाद गोपियों से मिले ठाकुर, तब भी हमारे गोविंद। एक समय ऐसा आया, छुप करके बाण मारा था बाली को, बाली ने कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुही मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्रिय हो गया, आपने मुझे मार दिया, भगवान बोले हमने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? बाण तो आपने चलाया, फिर तुमने तुमने गलती भी तो की। बाली कहता हमने बस गलती क्या की। हाँ, तुमने भाई की पत्नी को रखा, ये सबसे बड़ा अपराध है। अनुज बधु भगनी सुतनारी, ये चारों कन्या सब ये चारों कन्या के समान है और तुमने रखा बेटी के समान है, अपराध लगा। तो बाली अपना तर्क क्या गजब का देता, बाली के तर्कों से राम जी भी नहीं जीत पाए। बाली कहता है सुनो प्रभु, हम हैं वानर तुम हो नर, दोनों के अलग अलग नियम होते। ये आप लोगों का नियम है, हम वानरों का नियम नहीं है, हमारा नियम नहीं है। भगवान ने कहा तर्क तो बड़ा गजब का है। राम जी बोले अंत तो गत्वा, राम जी कहते हैं चलो चलो दूसरा कारण सुनो। बाली बोला दूसरा कारण बताओ। बोले जब तुम्हारी पत्नी ने रोका था कि मत जाओ, जब सुग्रीव ललकार रहा था तो तुम क्यों गए? तो मुस्कुराते हुए बाली बोला मरते मरते बोला एक बात बताओ, हमारे बेडरूम की बात तुम्हारे पास कैसे पहुंची? ये तो हम पति पत्नी बात कर रहे थे, तुम्हारे पास खबर कैसे गई? भगवान बोले हम ब्रह्म है ना, हम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं। बाली बोला वाह अब हम पहचान गए। बोले क्या? बोले आपने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया ना, बिनु पद चले चल सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु वास असेखा, अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वरनी। आपकी ब्रह्म होना कानों के सुनते बिना, पैरों के चलते बिना, हाथों के स्पर्श कर लेते, वही ब्रह्म होना, अनंत अखंड अभेद अछेद सर्वव्यापक, वही परमात्मा होना। भगवान बोले हाँ वही है। बोले बस यही भी सुनना था। बोले फिर? बोले प्रभु आप जब ब्रह्म हो और आपने ये सुन ही लिया कि हमारी पत्नी रोक रही थी कि ये सुग्रीव नहीं ललकार रहा, जो वनवासी हैं उन वनवासियों के बल पर ललकार रहा, मत जाओ, आपने ये सुन लिया, पर आपने दूसरी बात नहीं सुनी। भगवान बोले क्या? बाली बोला हमने अपनी पत्नी से कहा था यदि वो दो वनवासी राम हैं और वो नारायण हैं ब्रह्म हैं, यदि वो ही मुझे मारने आए हैं तो मेरा तो उनके हाथों उद्धार हो जाएगा, मैं अनाथ हूं, वो मुझे सनाथ कर देंगे, तो मैं जाऊंगा। ये नहीं सुना? भगवान बोले सुना तो है। पहली बार राम जी जलीलों से हार गए, जो बातें कहीं बाली ने, हार गए। जब बाली जाने लगा भगवान बोले हम पुनः जिंदा कर देते। बोले ना प्रभु, हमको जिंदा विंदा नहीं रहना है, इसी मृत्यु के लिए तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तरसते हैं कि यमुना जी गंगा जी यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, और हमारे तो आप सामने खड़े हैं, अब हम काय को ये मौका छोड़ दें, हम तो अब जा रहे हैं। पर भगवान ने जाते जाते वचन दिया, हमने तुम्हें छुपके बाण मारा, हम पर कर्जा हो गया, कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, तुम तीर चलाना, हम प्राण त्यागेंगे, कर्जा चुक जाएगा। और वही समय आया ब्रह्म का, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ना जन्म लेता न मरता है, लीला करता है। वाली के वचन को पूरा करने के लिए हमारे ठाकुर जब कृष्णचंद्र बन करके द्वारकाधीश बन करके हमारे ठाकुर आते हैं, नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चित्तचोर माखन चोर छलिया मोहन मुरारी माखन कहलाने वाले हमारे खाने वाले हमारे कन्हैया, जब कृष्ण बन करके आते हैं और कर्जा चुकाने की बात आती है तो हमारे ठाकुर जी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। महाभारत हो गई है, जब सब परिवार धीरे धीरे चला गया फिर भी मुस्कुराहट है, पेड़ के नीचे बैठ गए, दोनों पैरों के ऊपर पैर रख लिया, अंगूठे को ऐसे ऊपर नीचे करने लगे, पेड़ से टिक गए। एक बहलिया जो पूर्व जन्म में वही था बाली, वह इस जन्म में बहलिया बनकर के आया है, उसने भगवान के लाल लाल तलवों को देखा, कोई अजीब और गरीब विदेशी पक्षी है, अंगूठे को चलते देखा, उसे लगा ये कोई चौंच है, उसकी मुख है, ऐसा मानकर उसने तीर का संधान किया, भगवान के तलवे में तीर लग गया और वो भागा भागा आया, पक्षी मर गया होगा, देखा ठाकुर लेटे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस परिस्थिति में भी कोई मुस्कुरा सकता? तुम मर रहे हो, हंसोगे? संभव है। हम आपको कहना यह चाह रहे हैं, आप और हम इस परमात्मा के अंशज वंशज हैं, वो ठाकुर इस परिस्थिति में भी मुस्कुराता है, आप भी कोई भी परिस्थिति बनी रहे मुस्कुराइए। चाहे जो स्थिति बनी रहे हर हाल में मुस्कुराइए, ये भगवान कृष्ण से सीखिए, हर बात पर खोने वाला क्या है, जो पाया है वो कम थोड़ी है। तुम यहां बैठे हो, यहीं बैठने के लिए कितने लोग नहीं तरसते, अब क्या पाया का? इसमें भी भगवान को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद, हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद तो प्रभु बड़ी कृपा की। अच्छा मान लो मनुष्य ना बनाते भगवान, घोड़ा बनाते, फिर क्या कर लेते? भैंसिया बने होते, फिर क्या बीतती? बोलो बोलो बोलो, हैं हैं हैं, बंधे होते कहीं। भगवान की दया, चलो विचार करो, तुम भारत में भयो फिर जापान में आ गए, मान लो चीन में होते, क्या कर रहे होते? चिंग चांग चांग चांग चमा चांग, हैं हैं, कथा सुन रहे होते क्या? हम याद आ रहे होते तुम काहे को? भगवान की कितनी अनुकंपा, उन्होंने मनुष्य तन दिया, भारत जैसा वतन दिया। ये भगवान की कृपा। पहला सौभाग्य मनुष्य तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, और तीसरा सौभाग्य सनातन जैसा धर्म दिया। तुम्हारे तीन तीन सौभाग्य हैं, मनुष्य तन, भारत जैसा वतन और सनातन जैसा धर्म आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद भी आप कहो कि हमें भगवान ने दिया ही क्या, ठटरी के बड़े न कटा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: भाद्रपद के महीने से भगवान कृष्ण का क्या संबंध है? भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की पूजा भी होती है क्या? भाद्रपद का महीना क्या अशुभ महीना है? और भाद्रपद में दही खाना क्यों मना है? क्या है भाद्रपद की महिमा और क्या है इसके नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: पीएम मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के 4 दिवसीय दौरे पर हो रहे हैं रवाना, किर्गिस्तान में एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया नया रिकॉर्ड, 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 729.33 अरब डॉलर पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस, स्वास्थ्य फिटनेस के साथ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना उद्देश्य है। भारत ने नेपाल को भेजी राहत सामग्री की तीसरी खेप, 11 लोगों की मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, मित्र देश को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सौ सालों की मशक्कत के बाद कैंसर से लड़ना होगा मुमकिन, मॉडर्ना और मर्क की आरएनए वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल सफल हुआ, अमेरिका में अगले साल वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के दौरे पर होंगे रवाना, किर्गिस्तान में 26वें एससीओ समिट में करेंगे शिरकत। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ताशकंद की राजकीय यात्रा करेंगे पीएम मोदी, द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर होगा मंथन। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी एससीओ समिट, क्षेत्रीय सुरक्षा संपर्क और अवसरों पर होगा मंथन। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे पीएम मोदी, द्विपक्षीय बैठकों पर होगी नजर। किर्गिस्तान के 6ठे विश्व घुमंतु खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत करेंगे पीएम, सेंट्रल एशिया की संस्कृति की दिखेगी झलक। भारत से मदद लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची तीसरी फ्लाइट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। राहत सामग्री के साथ प्रभावित इलाकों में 11 लोगों की मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम भी मुस्तैद, लोगों को सुरक्षित निकालने की हर संभव कोशिशें जारी। जल आपदा से पीड़ित नेपाल को हर संभव सहयोग दे रहा है भारत, नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है सरकार। आपदा प्रभावित नेपाल की मदद के लिए यूपी के बस्ती में महिलाओं की पहल, रक्षाबंधन में भाई से मिले शगुन के पैसों को दान पात्र में किया जमा। मुश्किल वक्त में पड़ोसी देश के साथ मजबूती से खड़े भारतवासी, आपदा पीड़ितों के लिए जुटा रहे हैं धन। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कामरूप जिले में आधुनिक अमीगांव स्विमिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम। उज्जैन के आंगरेश्वर महादेव मंदिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभिषेक किया, परिवार के साथ प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। दिल्ली एनसीआर में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में आंधी चलने की भी संभावना। आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी उत्तराखंड के अलावा बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लिए चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई झमाझम बारिश, गिरा पारा, सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया नया रिकॉर्ड, 21 अगस्त को समाप्त हुए हफ्ते में 729.33 अरब डॉलर पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस, स्वास्थ्य फिटनेस के साथ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना उद्देश्य है। स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी में अलर्ट जारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए। श्रीलंकाई जेल से रिहा किए गए 7 मछुआरे पहुंचे चेन्नई, एयरपोर्ट पर परिजनों ने किया स्वागत। केरलम में बस में चढ़ते वक्त फिसला बुजुर्ग का पैर, क्लीनर ने फुर्ती दिखाकर यात्री को गिरने से बचाया। महाराष्ट्र के जालना में किसानों के बीच बढ़ा ड्रैगन फ्रूट की खेती का क्रेज, पानी की कमी के बीच दूसरे विकल्प बन रहे आमदनी का जरिया। जालना के एक किसान ने 1.5 एकड़ में लगाए करीब 5,500 ड्रैगन फ्रूट के पौधे, पहली बार में 10 से 15 लाख रुपए की आमदनी की उम्मीद। किसान नारायण गोरे ने मोबाइल की मदद के शुरू की ड्रोन ड्रैगन फ्रूट की खेती, लागत में 25 से 30% तक कमी होने का दावा। यूपी के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी हेड कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान, लोगों ने जमकर तारीफ की। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री का पैर, जीआरपी जवान सुरजीत कुमार ने दौड़कर बचाई जान। छड़ी मुबारक के साथ इस साल की पवित्र अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई, साधु संतों ने विशेष पूजा की। जुलाई से शुरू हुई बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का रक्षाबंधन तक यात्रा समाप्त, 57 दिनों में 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। कल महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में छड़ी मुबारक के साथ पवित्र गुफा पहुंचा साधुओं का एक दल, बाबा बर्फानी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर काशी में बाबा विश्वनाथ का किया गया झूला श्रृंगार, धूमधाम से झूलनोत्सव का हुआ समापन। भक्तों ने प्रेम से झुलाया भोलेनाथ को झूला, सुख समृद्धि और लोक मंगल के लिए कामना की गई। एक दिवसीय छोटा अमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, 15 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, दिखा आस्था का अटूट जुनून। बांदीपुरा में भक्तों ने पूरी की पदयात्रा, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर, पवित्र गुफा के दर्शन के लिए निकले शिव भक्त। पहाड़ों पर आस्था की अद्भुत तस्वीर, कश्मीर की वादियों में दिखी शिव भक्ति की शक्ति, कदम कदम पर गूंजा भोलेनाथ का नाम। अनंतनाग में गूंजे भोलेनाथ की जयकारे, थिजवारा अमरनाथ मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने पूजा की, कश्मीर में आस्था और श्रद्धा का खूबसूरत नजारा दिखा। महादेव की भक्ति में डूबे कश्मीरी पंडित, तेजवारा मंदिर में भक्तों ने चढ़ाई श्रद्धा के फूल, शिव के चरणों में श्रद्धालुओं ने टेका माथा। बिहार के बांका में सावन पूर्णिमा पर जस्ट गौर नाथ महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। जस्ट गौर नाथ महादेव मंदिर में दिखी भक्तों की लंबी कतारें, बम भोले के जयकारों की गूंज सुनी गई। फतेहपुर शेखावटी में श्रावणी उपाकर्म महोत्सव का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हेमाद्रि स्नान और आत्मशुद्धि की निभाई गई परंपरा, लोगों ने किया हेमाद्रि स्नान। अमृतसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोल्डन टेंपल में टेका मत्था, भगवान का आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चियों के साथ मनाया रक्षाबंधन, बच्चियों ने राष्ट्रपति को बांधी राखियां। राष्ट्रपति ने भी दिव्यांग और स्कूली छात्रों को बांधी राखी, तो वहीं राखी की डोर से जुड़ा राष्ट्रपति भवन और बच्चों का अपनापन। राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में बच्चों ने लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी, सांस्कृतिक कार्यक्रम से बांधा समा। राष्ट्रपति भवन में बच्चों की राखी से सजा उत्सव, राखी को राष्ट्रपति ने बताया प्रेम और देखभाल का प्रतीक। रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया पर्यावरण का संदेश, पेड़ों को भी रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स से बंधवाई राखी, रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। ब्रह्म कुमारी बहनों ने भी राजनाथ सिंह को बांधी राखी, राखी बांधकर बहनों ने दिया स्नेह का संदेश। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में बेटियों के साथ मनाया रक्षाबंधन, टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रही बेटियों से बंधवाई राखी। बेटियों के साथ अमित शाह का स्नेह भरा अंदाज देखने को मिला, अमित शाह ने बेटियों के साथ बांटी रक्षाबंधन की खुशियां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मनाया रक्षाबंधन, स्कूली छात्राओं ने सीएम योगी को बांधी राखी। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मनाया रक्षाबंधन, छात्राओं ने सेना अध्यक्ष कलाई पर राखियां बांधी। आर्मी हाउस में 14 स्कूलों की 38 छात्राओं ने मनाया खास रक्षाबंधन, स्नेह और सम्मान का दिखा संगम। एलओसी पर जवानों की कलाई पर सजी राखियां, नॉर्थ कश्मीर में खाकी फाउंडेशन ने जवानों को बांधी राखी। रांची में घर से दूर जवानों के साथ महिला मोर्चा ने मनाया रक्षाबंधन, सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर सजी राखी। सीआरपीएफ कैंप में गूंजा रक्षाबंधन का उल्लास, मिठाई खिलाकर बहनों ने जवानों के साथ बांटी खुशियां। भारत चीन सीमा पर जवानों ने मनाया रक्षाबंधन, नाथुला बॉर्डर पर महिलाओं ने जवानों को बांधी राखियां। सरहद पर जवानों की कलाई पर सजी राखी का प्यार, देश की रक्षा करते जवानों ने बांटी खुशियां। सुकमा में जवानों की कलाई पर सजा रक्षा सूत्र, स्थानीय बहनों ने सीआरपीएफ जवानों को बांधी राखी, बहनों ने कहा जवानों से सुरक्षित हुआ सुकमा। जवानों के शौर्य को बहनों ने कहा दिल से धन्यवाद, रक्षाबंधन पर जवानों को मिला स्थानीय बहनों का प्यार। दार्जिलिंग में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को बांधी राखी, दिखी सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की तस्वीर। कोटा में जेल में रक्षाबंधन पर छलके बहनों के आंसू, भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, राखी बांधते वक्त भावुक हुई बहनें। सलाखों के बीच भाई बहन का भावुक मिलन हुआ, राखी बांधकर बहनों ने मांगी भाई की लंबी उम्र की दुआ। करनाल जेल में हर्षोल्लास के साथ मना रक्षाबंधन, जेल में भाइयों की कलाई पर बंधी बहनों की राखी। कानपुर जेल में भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची सैकड़ों बहनें, राखी बांधकर बहनों ने भाई से लिया सुधार का वचन। अलवर सेंट्रल जेल में बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, बहनों ने भाई से लिया अच्छे रास्ते का वचन। 16 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म राणा बली, इंटरनेशनल एक्टर आर्नोल्ड वासलू भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म घोसला का घोसला 2 रिलीज, लगभग 20 सालों के बाद आ रहा है सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा कल ओटीटी पर रिलीज, नेटफ्लिक्स पर हुई स्ट्रीम। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी बॉबी देओल की बंदर, Z5 पर स्ट्रीम हुई। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी आज से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। सुमित व्यास, नीना गुप्ता, देवेन भोजानी या मायरा दस्तूर का अहम रोल है। अर्जेंटीना में इलाज के बाद 6 पेंगुइन्स को वापस उनके मूल निवास समुद्र में छोड़ा गया, मछली पकड़ने वाले जाल से हुई थी घायल। पेंगुइन के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में जुटे फाउंडेशन, अप्रैल के महीने में 15 पेंगुइन्स को इलाज के बाद वापस समंदर में छोड़ा गया। रैली पैराग्वे के शुरुआती दौर में न्यूजीलैंड के हेडन पार्डून ने बढ़त हासिल कर ली है। 2018 के बाद पहली बार पार्डून WRC में सबसे आगे पहुंचे हैं। रेस के दौरान जोश मैकेलिन दूसरे, जबकि चैंपियनशिप लीडर एल्फिन इवांस तीसरे स्थान पर हैं। दोनों के बीच सिर्फ 2.8 सेकंड का अंतर रहा। डिफेंडिंग चैंपियन सेबेस्टियन ओजियार का टायर पंक्चर हो गया, कार में मरम्मत के बावजूद वो तीसरे स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए। चाइना के वाइल्ड लाइफ पार्क में माला घूमता हुआ नजर आया चिंपैंजी, बेहद आसानी से पूरी माला घुमाता चिंपैंजी बना आकर्षण का केंद्र। शांची में माला घुमाते चिंपैंजी को देखने के लिए उमड़े लोग, वाइल्ड लाइफ पार्क में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना यह अनोखा नजारा। पार्क कर्मचारियों के मुताबिक चिंपैंजी ने खुद ही सीखा है ये हुनर, उसे किसी इंसान ने कभी नहीं दी माला घुमाने की ट्रेनिंग। चाइना के पांडा नेशनल पार्क से सामने आई बच्चे के साथ मां पांडा की प्यारी तस्वीरें, जंगल में घूमते हुए कैमरे में हुए कैद। वीडियो में बच्चे का पूरा ख्याल रखते हुए दिख रही है मां पांडा, पीछे चल रहे बच्चे को बार बार रुक रुक कर देखती हुई नजर आई मां। केन्या में सोलर क्लिनिक की टेस्टिंग, केन्या में डच छात्रों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल क्लिनिक का परीक्षण किया, बिना बिजली और ईंधन के इससे मेडिकल उपकरण चलाए गए। दूरदराज के लोगों को मिलेगा इलाज सोलर वाहन में, अल्ट्रासाउंड, पोर्टेबल एक्सरे और वैक्सीन फ्रिज की सुविधा है। स्टेला जुबा ने केन्या में 800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया, खराब और उबड़ खाबड़ सड़कों पर भी वाहन का हुआ सफल परीक्षण। दुबई में अब साइकिलिंग से तैयार पुराने कपड़े और सामान खरीदकर लोग सस्टेनेबल फैशन का दे रहे हैं बढ़ावा, इन दुकानों की कमाई से जरूरतमंद बच्चों को होती है मदद। थ्रिफ्ट फॉर गुड ने 18 बाल कल्याण परियोजनाओं को 50 लाख दिरहम से ज्यादा का दिया दान, रकम से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घर से जुड़े प्रोजेक्ट में मदद हुई। मॉडर्ना और मर्क की mRNA कैंसर वैक्सीन ने लेट स्टेज ट्रायल में पाई सफलता, मेलेनोमा के मरीजों में कैंसर लौटने का खतरा हुआ कम। मरीज के ट्यूमर के खास जेनेटिक म्यूटेशन को टारगेट करती है ये वैक्सीन, इससे इम्यून सिस्टम कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर करता है हमला। करीब एक सदी से जारी है कैंसर की वैक्सीन बनाने की कोशिशें, इस सफलता को माना जा रहा है इलाज के नए दौर की शुरुआत। mRNA वैक्सीन
0: गुंडे चुड़े इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भाद्रपद के महीने से भगवान कृष्ण का क्या संबंध है? भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की पूजा भी होती है क्या? भाद्रपद का महीना क्या अशुभ महीना है? और भाद्रपद में दही खाना क्यों मना है? क्या है भाद्रपद की महिमा और क्या है इसके नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद के महीने का आरंभ हो रहा है तो आज हम बात करेंगे भाद्रपद के महीने की महिमा के बारे में। इस महीने की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, इस महीने के व्रत और त्योहार क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं भाद्रपद के महीने की। भाद्रपद के महीने की महिमा क्या है? देखिए, भाद्रपद दो शब्दों से मिलकर बना है। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले, शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। भाद्रपद का महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए भाद्रपद का महीना सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने के लिए, मन में पवित्र भावनाएं भरने के लिए, पवित्र भावनाएं लाने के लिए ये महीना काफी असरदार है। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व, गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी भाद्रपद के महीने में आती है। यानी भाद्रपद में मुख्यतः भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। इस बार भाद्रपद का महीना 29 अगस्त से 26 सितंबर तक रहेगा, जिसमें हमें भाद्रपद महीने के नियमों का पालन करना चाहिए। भाद्रपद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद महीने के नियम क्या हैं और भाद्रपद महीने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, भाद्रपद महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करना चाहिए। कच्ची सब्जियां और सलाद ना खाएं, उबाल कर या पका करके ही खाएं। दही का प्रयोग करना
पूरी तरीके से वर्जित है। दही का प्रयोग भाद्रपद महीने में नहीं किया जाता। भाद्रपद के महीने में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना काफी होती है, इसका ध्यान उन्हें बनाए रखना चाहिए। भाद्रपद के महीने में आलस्य बहुत होता है, इसलिए इस महीने में शीतल जल से दोनों समय स्नान करना चाहिए ताकि आलस्य दूर हो जाए। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और तुलसी दल को चाय में या दूध में उबाल कर पीना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे। भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें मत खाइए और दही से परहेज करिए, क्योंकि भाद्रपद में दही खाने से पेट की दिक्कतें और त्वचा की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। भाद्रपद पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं कि भाद्रपद महीने के व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। भगवान गणेश की विशेष पूजा भाद्रपद शुक्ल पक्ष में

0: भाद्रपद के महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी मनाया जाता है। मुख्यतः भाद्रपद के दो हिस्से हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो अगर आप भाद्रपद में श्री कृष्ण और श्री गणेश जी की पूजा करें तो आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो भाद्रपद के महीने में गोपाल सहस्त्र नाम, इसका नियमित रूप से पाठ करिए, आपको संतान की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के 4 दिवसीय दौरे पर हो रहे रवाना, किर्गिस्तान में SCO समिट में हिस्सा लेंगे। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया नया रिकॉर्ड, 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 729.33 अरब डॉलर पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस, स्वास्थ्य फिटनेस के साथ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना मकसद है। भारत ने नेपाल को भेजी राहत सामग्री की तीसरी खेप, 11 लोगों की मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, मित्र देश को हर संभव मदद का भरोसा दिया। 100 सालों की मशक्कत के बाद कैंसर से लड़ना होगा मुमकिन, अब मॉडर्ना और मर्क की RNA वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल सफल हुआ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर।
5: Now,
4: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ

0: देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं भाद्रपद के महीने के बारे में। भाद्रपद का महीना शुरू होने जा रहा है, तो इस महीने के दौरान आप क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो इसका भरपूर फायदा आपको देंगे और आपके जीवन में इसका फायदा भी मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे। राशियों के बारे में हम बातचीत करेंगे, आगे जाकर आपके सवाल भी इस शो में शामिल करेंगे। महामंत्र के बारे में भी अंत में जाकर पंडित जी आपको बताएंगे। बहुत कुछ है इस शो में डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है आपके लिए।
1: अगर संतान प्राप्ति में आपको समस्या आ रही है तो पूरे

0: होगी।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं 29 अगस्त 2026 शनिवार के पंचांग के बारे में।
0: दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 9:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:37 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। जैसे कि हमने आपको बताया, भाद्रपद माह के बारे में हम बातचीत करेंगे इस शो में पंडित जी के साथ। तो सबसे पहले सवाल यही है कि क्या है भाद्रपद का ये महीना और पंडित जी इसकी महिमा क्या होती है?
0: जी, भाद्रपद का महीना आरंभ होने जा रहा है और आज के कार्यक्रम में हम आपको भाद्रपद महीने से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद के महीने की महिमा क्या है। देखिए, भाद्रपद दो शब्दों से मिलकर बना है, भाद्र और पद। भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना, शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। भाद्रपद का महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए सबसे बढ़िया महीना, सबसे उत्तम महीना भाद्रपद का महीना है। मन को शुद्ध करने में और पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है, गणेश महोत्सव मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। यानी भाद्रपद महीने में भगवान कृष्ण की कृपा और भगवान गणेश की कृपा आपको बड़े आसानी से मिल सकती है। इस बार भाद्रपद का महीना 29 अगस्त से आरंभ हो रहा है और ये 26 सितंबर तक रहेगा। तो जितने दिन भाद्रपद का महीना रहेगा उतने दिन भाद्रपद महीने के नियमों का पालन आपको करना चाहिए।
1: चलिए, इसके बारे में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं इसी मुद्दे के साथ जुड़े हुए, पंडित जी से आगे जाकर वो तमाम सवाल हम पूछेंगे। लेकिन अब आते हैं राशिफल पर। पहली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में क्या है।
0: मेष राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा पर जा सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए भाद्रपद माह के बारे में आपको बताते हैं। सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और पंडित जी आपके सामने रखती हूँ। वो सवाल ये है कि भाद्रपद महीने के बारे में तो आप बता रहे हैं, इसकी महिमा क्या है आपने बताया, अब ये बताइए कि भाद्रपद महीने के बीच में कौन से नियम और सावधानियां हमें बरतनी जरूरी है।
0: अब ये जानते हैं कि भाद्रपद महीने के नियम क्या है और भाद्रपद महीने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करिए। जो भी खाइए उबाल कर या पका कर अच्छी तरह से तब खाइए, क्योंकि इस समय कच्चे फलों में सलाद में इन्फेक्शन हो सकता है। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। भाद्रपद में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाद्रपद के महीने में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, रक्तचाप आपका बढ़ सकता है, इसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। भाद्रपद के महीने में आलस्य बहुत होता है, इसीलिए शीतल जल से दोनों समय स्नान करें ताकि आपका आलस्य दूर हो जाए। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिएगा और तुलसी दल को चाय में या दूध में अगर आप उबाल करके पिए तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। तो भाद्रपद के महीने में सलाद खाने से, कच्ची चीजें खाने से परहेज करना चाहिए। और सामान्य नियम ये है कि भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: चलिए, आपके सवाल भी इस शो में आगे जाकर शामिल हम करने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। लेकिन राशिफल पर आते हैं और कर्क सिंह और कन्या वालों के बारे में पंडित जी आपको जानकारी देंगे कि इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, चोट चपेट से सावधान रहें, परिवार में शांति बनाए रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए शामिल करते हैं आप सबके सवालों को इस शो में। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आपको एक बार सूचित कर देती हूं कि आप भी कोई भी प्रश्न अगर भेजना चाहते हैं इस शो में, अपने तमाम सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, इसी ईमेल आईडी पर आपको अपने तमाम सवाल इस शो में भेजने हैं। चलिए बढ़ते हैं पंडित जी पहले प्रश्न की तरफ।
0: जी, आज का पहला प्रश्न ममता जी ने हमें लिखा है और ममता जी हमें अलीगढ़ से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 12 अगस्त सन 2000, जन्म का समय रात में 10:35, जन्म स्थान है अलीगढ़। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी? ममता जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में जाने की इनकी संभावना कमजोर है। मैं आपको कहूंगा कि आप अपने बेटे को मैनेजमेंट या कंप्यूटर जैसी कोई पढ़ाई करवा दीजिए। मैनेजमेंट या कंप्यूटर की पढ़ाई करवाने से उसमें आगे चल करके ये अच्छा करियर बना सकेंगे। केवल गवर्नमेंट जॉब के भरोसे इनको सफलता नहीं मिल सकेगी। इनका करियर और जीवन बेहतर हो उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना धारण करवाएं और दूसरे नंबर पर इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सा है दूसरा सवाल और कौन से दर्शक का है दूसरा सवाल।
0: जी, अगला प्रश्न सीमा जी ने हमें लिखा है, गुड़गांव से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1989, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म स्थान है बागपत। में लिखती हैं गुड़गांव से। ये कह रही हैं कि मेरे करियर में बहुत सारी अड़चने रुकावटें आ रही हैं और मैं काफी समय से नौकरी बदलना चाह रही हूं लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और मेरा करियर कैसा रहेगा? सीमा जी, आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और अगर आप प्रयास करें तो लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में चली जाएंगी। आने वाला समय करियर के लिहाज से आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। देखिए, काम का प्रेशर अभी रहेगा आपके ऊपर, आप नई नौकरी में जाएंगी तो वहां भी रहेगा, उसको लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जो नई नौकरी मिलेगी उसमें आपकी तरक्की बेहतर दिखाई दे रही है। एक मोती बनवा के पहने, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए, भाद्रपद माह के बारे में हम लगातार जानकारियां आपको दे ही रहे हैं। आप पंडित जी से सवाल एक और लेते हैं। पंडित जी, सवाल यह है कि भाद्रपद माह के व्रत और त्योहार कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे।
0: हर महीने के अपने व्रत और त्योहार होते हैं, तो भाद्रपद महीने के व्रत, पर्व और त्योहार कौन से हैं? देखिए, भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है। श्री बलराम और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी भाद्रपद महीने में आता है। भाद्रपद के महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं और इससे अनंत पुण्य मिलेगा ऐसा माना जाता है। तो टेक्निकली अगर आप देखिए तो भाद्रपद के दो हिस्से हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, इसीलिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा होती है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में गणेश महोत्सव मनाया जाता है।
1: चलिए, राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की, जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, संपत्ति की समस्या दूर होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धन लाभ के योग हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, भाद्र माह की हम बात कर रहे हैं तो इसी महीने में हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा भी हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो कृपा पाने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा वो आपसे जानेंगे।
0: जैसा आपको पहले बताया कि भाद्रपद महीने का संबंध है भगवान कृष्ण के साथ और भगवान गणेश के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा भाद्रपद में कैसे मिलेगी? भाद्रपद के महीने में वैसे तो दही का प्रयोग वर्जित है, लेकिन अगर भाद्रपद कृष्ण पक्ष में, जो 15 दिन कृष्ण पक्ष के हैं, अगर आप भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत अर्पित करें, तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं है, उन लोगों को इस महीने या तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, उनका जन्म कराना चाहिए, या कृष्ण जी के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, 11वें अध्याय का इसका पाठ करना शुभ परिणाम देगा। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आप चाहें तो लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना करें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के मंत्रों का अधिक से अधिक जप आप कर सकते हैं।
1: चलिए पंडित जी से एक और प्रश्न लेते हैं। पंडित जी, सवाल आपके सामने ये है कि भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इस महीने में भाद्र माह में कौन कौन से अचूक उपाय किए जा सकते हैं?
0: देखिए, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में मुख्यतः भगवान गणेश की पूजा होती है, उसके लिए क्या करें? विद्या बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करें। रोज सवेरे उनको दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। पूरे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में रोज सुबह उनकी पूजा करें। पूरे महीने सात्विक रहें। अगर आप पूरे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो हर प्रकार की बाधा आपकी दूर होगी और जीवन की तमाम मुश्किलें बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। तो कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा करें और शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा करें, भगवत गीता का पाठ या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ पूरे भाद्रपद महीने में करना शुभ होगा।
1: चलिए राशिफल के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और अब बारी आ जाती है मकर कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं पंडित जी से ही कि इन सबके भाग्य में आज क्या लिखा है। पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि अगला प्रश्न इस शो में कौन से दर्शक का आया है। पंडित जी,
0: जी अगला प्रश्न विजय प्रताप जी ने हमें लिखा है और विजय प्रताप जी हमें पुणे से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1975। जन्म का समय रात में 9 बजे। जन्म का स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। विजय जी कह रहे हैं कि मेरा जो परिवार है वो मुंबई में रहता है और मैं पुणे में नौकरी कर रहा हूँ। काफी समय से मैं चाहता हूँ कि नौकरी में परिवर्तन हो सके ताकि मैं मुंबई जाकर अपने परिवार के साथ रह पाऊँ। ऐसा कब से होने की संभावना मेरे जीवन में दिखाई दे रही है। विजय जी, अभी तो थोड़ा समय लगेगा। जून 2027 के बाद आपकी नौकरी बदलेगी और आप दोबारा से अपने परिवार के पास, अपने परिवार के साथ जा करके रह सकेंगे। 2027 के जून के बाद ये संभावना आपके लिए बन रही है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो सेहत को लेकर परेशान मत हो, थोड़ा तनाव कम कर लें, आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। एक ओपल बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ बारी आ गई है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने की और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का आया है इस शो में।
0: जी, अंतिम प्रश्न अविनाश शर्मा जी ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखते हैं। अविनाश जी की जन्म तारीख है 27 मार्च 1981, जन्म का समय सुबह के 9 बजे, जन्म का स्थान है बदायूं, मेल लिखते मेरठ से। अविनाश जी कह रहे हैं कि एक मुकदमा मेरे ऊपर चल रहा है और उस मुकदमे को लेके काफी समय भी हो गया है, उसमें कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो मुझे मुकदमे से मुक्ति कब तक मिलेगी, इसका समाधान कब तक होगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके मुकदमे का निपटारा साल 2027 में होगा, अप्रैल से दिसंबर के बीच में, और जो मुकदमे का निपटारा होगा वो आपके पक्ष में रहेगा, आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं इतना कहूंगा कि बेवजह का वाद विवाद, बेवजह की झगड़े लड़ाई और बेवजह के क्रोध से बचिए, क्योंकि अप्रैल 2027 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। सुबह के समय जल में हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए अब पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 29 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका गुड डे उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

0: 29 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अविवाहितों का विवाह हो सकता है, साल के अंत में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा क्या कहती है।
0: हमने आपको बताया कि भाद्रपद के महीने में दही नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? देखिए, दही जो है वो एक विशेष बैक्टीरिया से बनती है, लैक्टोबैसिलस। भाद्रपद में ये बैक्टीरिया दही को जल्दी खराब कर देता है, जिससे दही का जल्दी पच पाना कठिन होता है, फूड पॉइजनिंग, पेट की और त्वचा की दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए भाद्रपद में दही का प्रयोग करने को मना किया जाता है।
1: पंडित जी से जानकारी लेते हैं अब 29 अगस्त 2026 शनिवार के शुभपहर के बारे में।
0: दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 29 अगस्त शनिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, वो पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के अंदर कौन सी गड़बड़ियां होती हैं और क्या सुधार करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। आपको बदला लेने की आदत और बेवजह चिंता करने की आदत से बचना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक होने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए, तमाम उपाय और इस शो से जुड़े हुए तमाम सवालों के बारे में पंडित जी ने आपको जवाब दे दिए हैं। अब बारी आते हैं खास उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है, वो जानेंगे।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे। रोज सवेरे जल में जरा सा गुड़ मिला करके शिव जी को जल चढ़ाइए। दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए और पूजा स्थान पर लाल कपड़े में बांध कर या लपेट कर तांबे का एक सिक्का रखकर प्रार्थना करिए कि आपका रिश्ता जुड़ जाए, आपका जो रिश्ता टूट रहा है वो बच जाएगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: चलिए, इसी के साथ इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा, भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं, भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं, जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: राफेल के रणकौशल को कॉपी करने में जुटा चीन, मिस्र के आसमान में शह और मात का दाम, राफेल को डिकोड करने वाला चीन का प्लान, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
5: बप्पा के स्वागत की तैयारियां इस वक्त पूरे देश में जोरों पर हैं। मुंबई से लेकर देश के अलग अलग शहरों में गणपति उत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्कशॉप्स में मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर बप्पा की प्रतिमाओं को सजाने और सवारने में लगे हैं। अलग अलग आकार की प्रतिमाएं इन दिनों रौनक बढ़ा रही हैं। कहीं छोटी गणेश मूर्तियां हैं तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग भर रहे हैं। अब इंतजार 14 सितंबर का है, जब पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से शुरू होगा।

0: गीली मिट्टी पर चलती उंगलियां, छेनी की हर एक बारीक चोट और फिर आकार लेता विघ्नहर्ता का ये पावन स्वरूप। ये सिर्फ मिट्टी को ढालने की कला नहीं, बल्कि बेजान पत्थरों और माटी में भगवान को गढ़ने की वो तपस्या है जो हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। श्रद्धा और भक्ति में डूबे मूर्तिकार दिन रात बप्पा की मूर्तियों को आकार देने में लगे हैं। अलग अलग आकार की प्रतिमा इन दिनों रौनक बढ़ा रही है। कहीं छोटी गणेश मूर्तियां हैं तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग भर रहे हैं। गणपति के चेहरे की बारीकियां, मुकुट की नक्काशी, मूर्ति के हर हिस्से को खूबसूरत बनाने में कलाकार जी जान से जुटे हैं। कलाकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, लेकिन इस बार अकोला से आस्था और कला की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने का बड़ा संदेश भी दे रही है।
1: घरेलू गणपति महाराष्ट्र में सबसे अधिक विराजमान होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि अपनी भक्ति आराधना साधना के साथ बाप्पा की 10 दिन मनोभावे पूजा भी अच्छी तरीके से हो और पर्यावरण भी जो है वो संतुलित रहे। इसी को लेकर जो है अकोला की पर्यावरण प्रेमी कल्पना राव जो है पिछले 5 सालों से अधिक समय से जो है इस पर्यावरण पूरक बाप्पा की प्रतिमाएं जो है निर्माण कर रही है।
0: अकोला में साडू मिट्टी से तैयार की जा रही प्रतिमाएं इन दिनों डिमांड में है, क्योंकि विसर्जन के बाद साडू मिट्टी पानी में आसानी से घुल जाती है और प्रदूषण का खतरा खत्म हो जाता है।
2: पिछले 5 साल पहले मैंने देखा कि जैसे गणपति का विसर्जन होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति गलती नहीं है और वो वैसे ही पड़े रहती इधर उधर, तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैं ऐसा सोची कि अपन क्यों ना मिट्टी से बनाए गणपति, और इतना हर महाराष्ट्र में हर घर में गणेश बैठाते हैं और मूर्तियां इतने प्रमाण में बिकती है और विसर्जित होती नहीं है, तो उससे पानी का भी नुकसान है, पानी की भी कमी है अकोला में।
0: मूर्तिकार कल्पना राव पिछले 5 सालों से साडू मिट्टी से इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं बना रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि कल्पना इन प्रतिमाओं पर कोई मुनाफा नहीं कमाती बल्कि सिर्फ लागत मूल्य पर मूर्तियां भक्तों को सौंपती हैं।
2: और मेरे जितने पहचान वाले मैंने सबसे आग्रह किया कि आप लोग साडू माता की मिट्टी की मूर्ति बनाइए और उसको घर पे विसर्जन करिए, और मान सम्मान के साथ सनातन धर्म में अपना पूजा पाठ को महत्व है, तो घर में हाथ से बनी मूर्ति रहेगी, आप लोग घर में विसर्जन करिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे को ये बिजनेस जैसा नहीं है, मेरी श्रद्धा है और पर्यावरण पूरक, मैं खुद चाहती हूँ कि यहाँ पे अपना पर्यावरण को बचाना है।
0: जैसे जैसे बप्पा के आगमन की घड़ी नजदीक आ रही है, भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। वैसे तो देश के कोने कोने में बप्पा की मूर्तियाँ बनती है, लेकिन राजस्थान के अलवर में काली मिट्टी से बनने वाली मूर्तियों की बात ही कुछ अलग है। अपनी खास इको फ्रेंडली बनावट के कारण अलवर की इन गणपति मूर्तियों की मांग सिर्फ भारत के शहरों में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक है।
3: गणपति महोत्सव में अलवर की गणपति जी की मूर्तियां विराजमान होती हैं। अलवर की मिट्टी से तैयार होने वाली मूर्तियां देश ही नहीं पूरे विदेश में भी अपनी खास पहचान रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार मूर्ति बनाने का काम जोरों से चल रहा है, रात दिन कारीगर मूर्ति बना रहे हैं और उसके बाद इन मूर्तियों को अलग अलग जगह डिमांड के अनुसार सप्लाई किया जाता है।
0: प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए खतरा होती हैं, लेकिन अलवर की चिकनी काली मिट्टी पूरी तरह प्राकृतिक है। इसे कूट कर, छान कर और कई दिनों तक भिगो कर सांचों में ढाला जाता है। पानी में जाते ही यह मूर्ति पूरी तरह घुल जाती है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अलवर और आसपास के इलाकों में 1000 से ज्यादा कारीगर साल भर इस काम में जुटे रहते हैं। ये मूर्तियाँ खास ऑर्डर्स पर तैयार होती हैं और यूरोप, स्पेन और नेपाल समेत 15 से ज्यादा देशों में अपनी छटा बिखेरती हैं।
4: जी अपने पास देखो नेचुरली मिट्टी होती है जो खेतों और बांधों से जरिए आती है, उस नेचुरली मिट्टी के द्वारा भी हम गणपति की मूर्ति रेडी करते हैं, और अपने पास 4 इंची से लेकर 5-6 फीट तक की मूर्ति अवेलेबल हो सकती है। मिट्टी को सबसे पहले तो इसको छानना पड़ता है, छानने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए फिर इसके एक मोल्ड होता है जो उसको मोल्ड में ढालने के बाद इसको निकालने के बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग के बाद इसके हाथ और सूंड वगैरह वो अलग से लगाए जाते हैं, तो इसको मतलब बनाने के प्रोसेस तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन के समथिंग आता है।
0: बप्पा के आगमन की तैयारी कर्नाटक और तमिलनाडु में भी जोर शोर से हो रही है, जहां इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। कर्नाटक के तेनकाशी में कलाकारों का हुनर और कारीगरी लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ भगवान गजानन की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं मौजूद हैं। तो वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में मूर्तियों पर की गई कलाकारी देखते ही बन रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर यहाँ गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर मिल रहे हैं। यानी इस बार बप्पा का स्वागत भव्य भी होगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार भी। गणपति उत्सव मुंबई के जिक्र के बिना अधूरा है। देश भर में भले ही गणपति उत्सव की रौनक है, लेकिन मुंबई में इस मौके पर भक्तों का जोश और जज्बा अलग ही होता है। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा की अलग अलग स्वरूपों वाली प्रतिमाओं की डिमांड है, लेकिन भगवान शिव और कृष्ण स्वरूप वाली मूर्तियां सबसे ज्यादा ट्रेंड में है।
5: ये टाइम पे बैलेंसिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बैलेंसिंग मूर्तियां बहुत ज्यादा देखने मिली है।
6: अच्छा, और जैसे अलग अलग रूप होते हैं, अवतार होते हैं, नरसिम्हा रूप हो गया या फिर किसान का रूप हो गया, क्या
5: शिवजी अवतार और कृष्ण अवतार बहुत ज्यादा ये टाइम पे फेमस है।
6: अच्छा, इस वजह से भी क्या, क्योंकि श्रावण भी चल रहा है?
5: ऐसा कुछ नहीं है,
6: क्योंकि श्रावण में लोग थोड़ा सा क्या है कि श्रावण में भी शिव जी को चार
5: तो हमेशा मतलब रहते हैं फेवरेट, बट शिव जी एंड कृष्ण की मूर्तियां ज्यादा चल रही है।
0: एक तरफ कलाकार अपनी कला से बप्पा के सुंदर स्वरूप को आकार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर इको फ्रेंडली गणपति की बढ़ती मांग एक नई सोच की तस्वीर पेश कर रही है। अब इंतजार 14 सितंबर का है, जब बप्पा का दरबार सजेगा और भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर होगा। अकोला से धनंजय साबले, अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
7: शादी हर किसी की जिंदगी का ये वो खास मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन आगर मालवा के सलोनी जैन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ एक नेक संदेश भी दिया। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चों में कटौती करके बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना तैयार करवाया। इस आशियाने में परिंदे रह सकते हैं जो उन्हें धूप, हवा और ठंड से बचाता है। तालाब के किनारे बना यह अनोखा आशियाना अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सलोनी की ये पहल शादी की खुशियों के साथ प्रकृति प्रेम की खूबसूरत मिसाल भी पेश कर रही है। तालाब किनारे खूबसूरत रंगों से सजा ये आशियाना दूर से ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। कुछ फीट ऊंचा ये आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहां परिंदों के लिए एक के ऊपर एक 6 मंजिलों में कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए हैं। इस आशियाने में छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, जबकि बड़े परिंदों के लिए थोड़े बड़े दरवाजे। हर मंजिल पर एक छत भी बनाई गई है।
8: आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग अपने विवाह कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर आगर मालवा की सलोनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उसने अपने विवाह के खर्च से कटौती करके बेजुबान पक्षियों के लिए आगर में स्थित मोती सागर तालाब के किनारे एक आशियाना बनाया है। सलोनी चाहती है कि जो बेजुबान पक्षी हैं, जो परेशान होते हैं, मौसमों की मार झेलते हैं, वो इस आशियाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
7: आगर मालवा की बेटी सलोनी जैन ने अपनी शादी के मौके पर इस अनोखे आशियाने का निर्माण करवाया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चे में कटौती कर ये पहल की ताकि बेजुबान परिंदों को भी अपना घर मिल सके।
9: मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तालाब किनारे रहती हूँ, बहुत सारे पक्षियों को देखती हूँ। ठंड में बहुत परेशान होते हैं वो, बारिश में उनके तेज हवा आंधी तूफान से घोंसले गिर जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। इतने सारे पक्षी है, उनके लिए मन में ऐसा लगता है कि ये परेशान हो रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इच्छा मन में जागृत हुई कि हम जो लाखों का खर्चा अपनी शादी में करते हैं सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, उस पैसे से हम वो काम कर सके जो किसी की जिंदगी के लिए थोड़ा सा हितकारी हो सके। मैंने बस वही प्रयास किया।
7: सलोनी की इस पहल के जरिए समाज को प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। यही वजह है कि सलोनी की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना भी हो रही है।
9: ये 6 मंजिला पक्षी घर है जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना आशियाना बना सकते हैं, घोंसले बना सकते हैं, उनका जब मन आए तब वो आके रह सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनको एक सेफ रहने के हिसाब से इस चीज को बनाया गया है। ये एक पिंजरा नहीं है, इसमें वो बिल्कुल भी कैद नहीं होंगे।
10: तालाब किनारे की ये जगह पक्षियों के लिए अनुकूल पाई गई और इसी सोच के साथ यहाँ बेजुबान परिंदों के लिए ये खूबसूरत आशियाना तैयार हुआ। राजस्थान और गुजरात से आए कारीगरों ने इस आशियाने को तैयार किया है।
11: जो बनाने का लक्ष्य है उसको पिंजरा नहीं बनाया गया है, पक्षी जब चाहे आएगा, उड़ाएगा, रहेगा और चला जाएगा, वो रात में रुकेगा। ये उसका एक आशियाना है, उसका एक आश्रय स्थल है, निवास रहेगा उसका, किंतु वो पिंजरा नहीं है।
10: अपनी इस पहल से सलोनी ने अपनी शादी को खास बना दिया। आगर बालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ वायरल वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगी, कुछ गुदगुदाएंगी और कुछ भावुक कर जाएंगी।
12: बस देखते जाइए इनकी हरकतें, पूरी मौज में हैं। इन्हें पता है कि लोग यहाँ उन्हें ही देखने आए हैं, सो पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। फोटो क्लिक करनी है तो करो ना, मैं पोज दे तो रहा हूँ। नन्ना हाथी सैलानियों के सामने जिस तरह से अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, जानवर के हों या इंसान के, ऐसी शरारतें करते क्यूट ही लगते हैं। नन्ने हाथी का ये अंदाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। पेड़ में लगा ये फल इन्हें चाहिए, लेकिन ये है कि हाथी नहीं।

0: लगता है स्कूल में कोई फंक्शन है, अब सुंदर तो दिखना पड़ेगा। पर घर में क्रीम लगाना भूल गई शायद, बाइक में लगा आईना देखा तो एकदम से याद आया, या फिर शायद घर में क्रीम लगाने की मनाही हो। मसला चाहे जो भी हो, सड़क पर जिस तरह से हाल हो रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे को नहीं पता था कि उसे आईने के अलावा भी कोई देख रहा है। जैसे ही नजर कैमरे पर पड़ी शर्मा गई। बच्चे के इस नेचुरल मुस्कान पर लोग दिल हार रहे हैं। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन दोनों ही माँ पापा के पैसों पर डिपेंड है तो यही होता है। बहन ने भाई को राखी बांधी, गिफ्ट मांगा तो भाई ने माँ की तरफ देखा। माँ ने पैसे दिए तो सही, लेकिन बहन के हाथ में आते ही फिर लपक लिया। आखिर इस छोटी सी उम्र में पैसों का करोगी क्या, संभाल कर रख देंगे हम, ये तो चीटिंग है ना। बच्चों का चेहरा देखिए जरा, मासूम बेचारे। ये वीडियो लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा? भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं? जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: राफेल के रणकौशल को कॉपी करने में जुटा चीन, मिस्र के आसमान में शह और मात का दाम, राफेल को डिकोड करने वाला चीन का प्लान, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
13: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों की रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम, 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर काठमांडू पहुंचा विमान। नेपाल में मुसीबत के बीच करिश्मा हुआ

0: साल के बच्चे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। एक दिन बाद किया गया एयरलिफ्ट, बच्चे से मिलकर भावुक हुई मां। आज से पीएम मोदी का उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का 4 दिवसीय दौरा। किर्गिस्तान में एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी के स्वागत में तिरंगे की रोशनी में नहाई हिल्टन होटल की इमारत। यूजीसी एनईटी के 84 विषयों के नतीजे घोषित किए गए। 4000 से ज्यादा छात्रों ने क्वालिफाई किया जेआरएफ। यूजीसी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं नतीजे। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। स्वास्थ्य फिटनेस के साथ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना उद्देश्य है। सौ सालों की मशक्कत के बाद कैंसर से लड़ना मुमकिन होगा। मॉडर्ना और मर्क की आरएनए वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल सफल। अमेरिका में अगले साल वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के दौरे पर होंगे रवाना। किर्गिस्तान में 26वें एससीओ समिट में शिरकत करेंगे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ताशकंद की राजकीय यात्रा करेंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर होगा मंथन। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी एससीओ समिट। क्षेत्रीय सुरक्षा संपर्क और अवसरों पर होगा मंथन। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय बैठकों पर नजर होगी। किर्गिस्तान के 6वें विश्व घुमंतु खेलों के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे पीएम। सेंट्रल एशिया की संस्कृति की दिखेगी झलक। भारत से मदद को लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची तीसरी फ्लाइट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। राहत सामग्री के साथ प्रभावित इलाकों में 11 लोगों की मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम भी मुस्तैद की गई। लोगों को सुरक्षित निकालने की हर संभव कोशिशें जारी। जल आपदा से पीड़ित नेपाल को हर संभव सहयोग दे रहा है भारत। नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है सरकार। आपदा प्रभावित नेपाल की मदद के लिए यूपी की बस्ती में महिलाओं की पहल। रक्षाबंधन में भाई से मिले शगुन के पैसों को दान पात्र में जमा कर रही हैं। मुश्किल वक्त में पड़ोसी देश के साथ मजबूती से खड़े भारतवासी। आपदा पीड़ितों के लिए जुटा रहे हैं धन। असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने कामरूप जिले में आधुनिक अमी गांव स्विमिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम। उज्जैन के अंगारेश्वर महादेव मंदिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभिषेक किया तो वहीं परिवार के साथ प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। दिल्ली एनसीआर में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में आंधी चलने की भी संभावना। आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी उत्तराखंड के अलावा बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई झमाझम बारिश, गिरा पारा, सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया नया रिकॉर्ड। 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 729.33 अरब डॉलर पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। स्वास्थ्य फिटनेस के साथ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना उद्देश्य है। स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी में अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए। श्रीलंकाई जेल से रिहा किए गए 7 मछुआरे पहुंचे चेन्नई एयरपोर्ट पर, परिजनों ने किया स्वागत। केरल में बस में चढ़ते वक्त फिसला बुजुर्ग का पैर, क्लीनर ने फुर्ती दिखाकर यात्री को गिरने से बचाया। महाराष्ट्र के जालना में किसानों के बीच बढ़ा ड्रैगन फ्रूट की खेती का क्रेज, पानी की कमी के बीच दूसरे विकल्पों को बना रहे हैं आमदनी का जरिया। जालना के एक किसान ने 1.5 एकड़ में लगाए करीब 5,500 ड्रैगन फ्रूट के पौधे, पहली बार में 10 से 15 लाख रुपए की आमदनी की उम्मीद है। किसान नारायण गोरे ने मोबाइल की मदद के साथ शुरू की ड्रोन ड्रैगन फ्रूट की खेती, लागत से 25 से 30 फीसदी तक कमी होने का दावा। यूपी के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी हेड कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान, लोगों ने जमकर तारीफ की। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का फिसला पैर, जीआरपी जवान सुरजीत कुमार ने दौड़कर बचाई जान। छड़ी मुबारक के साथ इस पवित्र अमरनाथ यात्रा का हुआ समापन, साधु संतों ने विशेष पूजा की। जुलाई से शुरू हुई बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा रक्षाबंधन तक चली, 57 दिनों में 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कल महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में छड़ी मुबारक के साथ पवित्र गुफा पहुंचा साधुओं का एक दल, बाबा बर्फानी की विधिवत की गई पूजा अर्चना। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर काशी में बाबा विश्वनाथ का किया गया झूला श्रृंगार, धूमधाम से झूलनोत्सव का हुआ समापन। भक्तों ने प्रेम से झुलाया भोलेनाथ को झूला, सुख समृद्धि और लोक मंगल के लिए कामना की गई। एक दिवसीय छोटा अमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, 15 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, दिखा आस्था का टूट जुनून। बांदीपुरा में भक्तों ने पूरी की पदयात्रा, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा पूरा शहर, पवित्र गुफा के दर्शन के लिए निकले शिव भक्त। पहाड़ों पर आस्था की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली, कश्मीर की वादियों में दिखी शिव भक्ति की शक्ति, कदम कदम पर गूंजा भोलेनाथ का नाम। अनंतनाग में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे, थिजवारा अमरनाथ मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने पूजा की, कश्मीर में आस्था और श्रद्धा का खूबसूरत नजारा। महादेव की भक्ति में डूबे कश्मीरी पंडित, थिजवारा मंदिर में भक्तों ने चढ़ाई श्रद्धा के फूल, शिव के चरणों में श्रद्धालुओं ने टेका माथा। बिहार के बांका में सावन पूर्णिमा पर जस्ट गौर नाथ महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक। जस्ट गौर नाथ महादेव मंदिर में दिखी भक्तों की लंबी कतारें, बम भोले के जयकारों की गूंज। फतेहपुर शिखावटी में श्रावणी उपाकर्म महोत्सव का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हेमाद्री स्नान और आत्मशुद्धि की निभाई गई परंपरा, लोगों ने किया हेमाद्री स्नान। अमृतसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोल्डन टेंपल में टेका मथा, भगवान का आशीर्वाद लिया। यूजीसी नेट की 84 विषयों के नतीजे घोषित, 4,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जेआरएफ के लिए चयनित। असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए 7.56% हुए पास, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0.70% छात्रों को मिली है सफलता। कैंसर के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी, एमआरएनए कैंसर वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल शुरू, सफल हुआ। कैंसर के दोबारा लौटने के जोखिम को करती है कम, मॉडर्ना और मर्क कंपनी ने टीके को किया विकसित। उच्च जोखिम वाले त्वचा कैंसर मरीजों पर किया ट्रायल, 1137 मरीजों पर किया गया परीक्षण। बंगला के जादवपुर में 10,000 लोगों ने एक साथ गाया वंदे मातरम, सीएम शुभेंदु अधिकारी रहे मौजूद। मदुरई में नशे के खिलाफ जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मेरठ में एसएसपी ने अनाथालय का किया दौरा, बच्चों को उपहार भेंट किए। गुरुग्राम के लोगों के लिए आई खुशखबरी, गुरुग्राम मेट्रो के लिए पहले यू गर्डर की लॉन्चिंग हुई। नेपाल से सीतामढ़ी लौटे 106 तीर्थयात्री, प्रशासन ने रहने और खाने का इंतजाम किया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मनाया रक्षाबंधन, छात्राओं ने सेना अध्यक्ष की कलाई पर राखियां बांधी। आर्मी हाउस में 14 स्कूलों की 38 छात्राओं ने मनाया खास रक्षाबंधन, स्नेह और सम्मान का दिखा संगम। एलओसी पर जवानों की कलाई पर सजी राखियां, नॉर्थ कश्मीर में खाकी फाउंडेशन ने जवानों को बांधी राखी। रांची में घर से दूर जवानों के साथ महिला मोर्चा ने रक्षाबंधन मनाया, सीआरपीएफ के जवानों की कलाई पर सजी राखी। सीआरपीएफ कैंप में गूंजा रक्षाबंधन का उल्लास, मिठाई खिलाकर बहनों ने जवानों के साथ बांटी खुशियां। भारत चाइना सीमा पर जवानों ने मनाया रक्षाबंधन, नाथुला बॉर्डर पर महिलाओं ने जवानों को बांधी राखियां। सरहद पर जवानों की कलाई पर सजा राखी का प्यार, देश की रक्षा करते जवानों ने बांटी खुशियां। सुकमा में जवानों की कलाई पर सजा रक्षा सूत्र, स्थानीय बहनों ने सीआरपीएफ जवानों को बांधी राखी, बहनों ने कहा जवानों से सुरक्षित हुआ सुकमा। जवानों के शौर्य को बहनों ने कहा दिल से धन्यवाद, रक्षाबंधन पर जवानों को मिला स्थानीय बहनों का प्यार। दार्जिलिंग में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को बांधी राखी, दिखी सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की तस्वीर। नेपाल में आई बाढ़ के बाद गोपालगंज में राहत की खबर, नहीं बढ़ा गंडक का जलस्तर, घट रहा है गंडक नदी का जलस्तर, लोगों ने राहत की सांस ली। नेपाल में आए अचानक बाढ़ के बाद बिहार की वाल्मीकि नगर में प्रशासन सख्त, गंडक नदी के जलस्तर की हो रही है लगातार निगरानी। वाराणसी में रुक रुक कर बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ, वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म प्रेम कीटाणु का दूसरा सॉन्ग रिलीज हुआ, फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इकतीस अगस्त को नई फिल्म दायरा का ट्रेलर रिलीज होगा, फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन का अहम रोल है। 18 सितंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। मिर्जापुर द मूवी की एडवांस बुकिंग 31 अगस्त से शुरू होगी, 4 सितंबर को फिल्म रिलीज होगी। फिल्म रेस 4 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ की एंट्री, फिल्म में आमिर खान अहम रोल में नजर आएंगे। सलार 2 में हुई धरा शौर्यांग की एंट्री, फिल्म में प्रभास के पिता के रोल में नजर आएंगे धरा। अर्जेंटीना में इलाज के बाद 6 पेंगुइन्स को वापस उनके मूल निवास समुद्र में छोड़ा गया, मछली पकड़ने वाले जाल से हुई थी घायल। पेंगुइन के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में जुटा है फाउंडेशन, अप्रैल महीने में 15 पेंगुइन्स को इलाज के बाद वापस समुद्र में छोड़ा गया। रैली पैराग्वे के शुरुआती दौर में न्यूजीलैंड के हेडन पार्डून ने बढ़त हासिल कर ली है, 2018 के बाद पहली बार पार्डून WRC में सबसे आगे पहुंचे हैं। रेस के दौरान जोश मैकुरलीन दूसरे, जबकि चैंपियनशिप लीडर एल्फिन इवांस तीसरे स्थान पर हैं। डिफेंडिंग चैंपियन सेबास्टियन एजियार का टायर पंक्चर हो गया, कार में मरम्मत के बावजूद तीसरे स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए। चाइना के वाइल्ड लाइफ पार्क में माला घुमाता हुआ नजर आया चिंपैंजी, बेहद आसानी से पूरी माला घुमाए। शांशी में माला घुमाते चिंपैंजी को देखने के लिए उमड़े लोग, वाइल्ड लाइफ पार्क में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना अनोखा नजारा। पार्क कर्मचारियों के मुताबिक चिंपैंजी ने खुद ही सीखा है ये हुनर, इसी इंसान ने कभी नहीं दी माला घुमाने की ट्रेनिंग। चाइना के पांडा नेशनल पार्क से सामने आई बच्चों के साथ मां पांडा की प्यारी तस्वीरें, जंगल में घूमते हुए कैमरे में कैद हुए। वीडियो में बच्चे का पूरा ख्याल रखते हुए दिख रही हैं माँ पांडा, पीछे चल रहे बच्चे को बार बार रुक रुक कर देखती हुई नजर आई माँ। केन्या में सोलर क्लिनिक की टेस्टिंग। केन्या में डच छात्रों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल क्लिनिक का परीक्षण किया। बिना बिजली और ईंधन के इसे मेडिकल उपकरण चलाए गए। दूर दराज के लोगों को मिलेगा इलाज। सोलर वाहन में अल्ट्रासाउंड, पोर्टेबल एक्सरे और वैक्सीन फ्रिज की सुविधा। तो वहीं इसे दूर के इलाकों में लोगों को मिल सकेगी जांच की सुविधा। स्टेला जुवा में ने केन्या में 800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया। खराब और उबड़ खाबड़ सड़कों पर भी वाहन का सफल टेस्टिंग हुई। दुबई में आप साइकिलिंग से तैयार पुराने कपड़े और सामान खरीद कर लोग सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दुकानों की कमाई में जरूरतमंद बच्चों की होती है मदद। थ्रिफ्ट फॉर गुड ने 18 बाल कल्याण परियोजनाओं को 50 लाख दिरहम से ज्यादा का दान दिया। रकम से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घर से जुड़े प्रोजेक्ट में हुई मदद। मॉडर्ना और मर्क की mRNA कैंसर वैक्सीन ने लेट स्टेज ट्रायल में पाई सफलता। मेलानोमा के मरीजों में कैंसर लौटने का खतरा कम हुआ। मरीज के ट्यूमर की खास जेनेटिक म्यूटेशन को टारगेट करती है वैक्सीन। इससे इम्यून सिस्टम कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर करता है अटैक। करीब एक सदी से जारी है कैंसर की वैक्सीन बनाने की कोशिशें। सफलता को माना जा रहा है इलाज के लिए नए दौर की शुरुआत। mRNA वैक्सीन को मर्क की कैंसर दवा की ट्रूडा के साथ दिया गया। दोनों मिलकर शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया को कैंसर के खिलाफ मजबूत करते हैं। अमेरिका में वैक्सीन को अगले साल तक मंजूरी मिलने की जुताई जा रही है उम्मीद। अब फेफड़े, किडनी और अग्नाशय के कैंसर में भी होगा इसका परीक्षण। फ्रांस में ड्रैगन बॉल थीम पार्क को लेकर फैंस में खासा उत्साह। पेरिस के पास बनेगा विशाल ड्रैगन बॉल पार्क। मैक्रों बिन सलमान की मौजूदगी में हुआ समझौता। फ्रांस में ड्रैगन बॉल की नई दुनिया बसाने की तैयारी। फ्रांस में बनेगा यूरोप का बड़ा ड्रैगन बॉल आकर्षण। किडिया प्रोजेक्ट बना फ्रांस पार्क की प्रेरणा। सऊदी अरेबिया ड्रैगन बॉल थीम पार्क के निर्माण में करेगा निवेश। 6 अरब यूरो के निवेश से बदलेगी तस्वीर। युवाओं को जोड़ने पर सऊदी अरेबिया का बड़ा दांव। किडिया से पेरिस तक ड्रैगन बॉल का विस्तार। चाइना के रोबोट ने बनाया नया इतिहास। रोबोट ने उसेन बोल्ट को 100 मीटर रिकॉर्ड में पछाड़ा। तियांगोंग अल्ट्रा ने 8.96 सेकंड में दौड़ पूरी की। उसेन बोल्ट के 9.58 सेकंड के रिकॉर्ड से भी तेज। बीजिंग में रोबोट की रफ्तार ने चौंकाया। ह्यूमनॉइड रोबोट की स्पीड ने मचाई हलचल। रोबोट की तेज चाल बनी प्रतियोगिता का आकर्षण। चाइना की रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी ने दिखाई अपनी ताकत। रोबोट ने छोटे छोटे तेज कदमों से रचा रिकॉर्ड। बैलेंस बनाए रखने के लिए रोबोट बढ़ाता है कदमों की रफ्तार। मोटर और सॉफ्टवेयर ने रोबोट को दी जबरदस्त स्पीड। 400 मीटर रेस में भी रोबोट ने दिखाया अपना दम। रोबोटिक्स और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का नया संगम देखने को मिला बीजिंग में। 2000 से ज्यादा रोबोट मुकाबले में रोबोट ने दौड़ से लेकर जिम्नास्टिक्स तक दिखाया हुनर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें रुद्रप्रयाग में भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह स्थली अब आस्था के साथ साथ शादियों के लिए भी खास पसंद बनती जा रही है। यहां बड़ी संख्या में जोड़े अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले साल नवंबर में इस साल जुलाई तक 1500 से ज्यादा जोड़ों ने यहां विवाह किया है। यानी शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी इस पावन धरती पर सात फेरे लेने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में रुद्रप्रयाग की ये पौराणिक धरती अब आस्था, पर्यटन और रोजगार के लिए नई पहचान बना रही है।

0: भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का साक्षी बना ये मंदिर अब आस्था के नए कीर्तिमान का गवाह भी बन रहा है। रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर दिन यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। मान्यता है कि भगवान नारायण के इस मंदिर में महादेव और माता पार्वती ने सात फेरे लिए थे। अब इस पवित्र धाम में देश भर से नए जोड़े आकर विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। अनंत आस्था की प्रतीक सदियों पुरानी अखंड धुनी नए जोड़े के विवाह की साक्षी बन रही है। वक्त के साथ इस मंदिर में विवाह का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल जुलाई तक 1500 से ज्यादा शादियां यहां संपन्न हो चुकी हैं।
1: 1564 शादियां वहां पर हुई है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी नए जोड़ों को जो वहां पर शादी करने में विश्वास रखते हैं। भगवान से भी यही प्रार्थना है कि वो दिलबुगरी रात चौधरी विनती करें। वहाँ पर इन शादियों से रोजगार भी हमारा बड़ा है। हमारे स्थानीय जो वहाँ पर परंपरागत मंदिर में सेवा देते हैं उनमें वो पानी वहाँ पर रोजगार बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है।
0: मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिव्य विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई, जबकि भगवान ब्रह्मा ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया। इस पौराणिक आस्था को महसूस करने के लिए आज भी नौ दंपति त्रियुगी नारायण पहुँचते हैं और अखंड धुनी को साक्षी मानकर सात फेरे लेते हैं।
2: यहाँ पे जितनी भी शादी बारात होती है हमारे गांव के स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिलता है। तीर्थ पुरोहित हो गए, चाहे होटल वाले हो गए, चाहे दुकानदार हो गए, चाहे गांव की महिलाएं हो गए, कीर्तन हो गए, मंडल कीर्तन और भजन, चार गांव की समूह की महिलाएं, सबके लिए बहुत अच्छा रोजगार मिलता है। और जितने भी तीर्थ यात्री केदारनाथ जाते उनमें से अधिक यात्री यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं।
3: यहाँ पर जो भी बरातें होती है उससे जो है कि स्थानीय पुरोहित लोगों को, स्थानीय दुकानदारों को, होटल व्यवसायों को, स्थानीय महिलाओं को काफी जो है कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम जो है तीर्थ यात्रियों से, प्रदेश वासियों से, समस्त देशवासियों से सभी से प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आकर जो है शादी का जो है अपना शादी का प्रोग्राम बनाए यहाँ पर और भगवान नारायण का आशीर्वाद लें।
0: त्रियुगिनी नारायण मंदिर की ख्याति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल 22 अप्रैल से अब तक 35,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से यहां होटल और होम स्टे की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिली है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र ही नहीं देश भर में गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं तो कहीं बप्पा का स्वागत किया जा रहा है। इस बार महाराष्ट्र के अकोला में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी विशेष तरह से की जा रही है।

0: जो जीवन में शुभता का संचार करते हैं, जो हर बाधा को दूर करने वाले विघ्नहर्ता हैं। बड़े कान, माथे पर तिलक, चेहरे पर मनमोहक मुस्कान और सूंड पर कलाकारी के रंग। भगवान गणेश का ये सुंदर स्वरूप हर किसी का मन मोह लेता है। भक्तों को बल, बुद्धि, सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देने वाले भगवान गजानंद का शुभ आगमन हो रहा है। जैसे जैसे बापा के आगमन की घड़ी नजदीक आ रही है, भक्तों का उत्साह बढ़ने लगा है। श्रद्धा और भक्ति में डूबे मूर्तिकार दिन रात काम में जुटे हैं। कहीं छोटी गणेश प्रतिमाएं आकार ले रही हैं, तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग भर रहे हैं। गणपति के चेहरे की बारीकियां, मुकुट की नक्काशी, मूर्ति के हर हिस्से को खूबसूरत बनाने में कलाकार जी जान से जुटे हैं। भक्ति, आस्था और उल्लास के बीच इस बार गणपति उत्सव की तैयारियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कलाकार ही नहीं बल्कि भक्तों की कोशिश है कि ये गणपति पहले से ज्यादा इको फ्रेंडली बने।
1: घरेलू गणपति महाराष्ट्र में सबसे अधिक विराजमान होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि अपनी भक्ति आराधना साधना के साथ बापा की 10 दिन मनोभावे पूजा भी अच्छी तरीके से हो और पर्यावरण भी जो है वो संतुलित रहे। इसी को लेकर जो है अकोला की पर्यावरण प्रेमी कल्पना राव जो है पिछले 5 सालों से अधिक समय से जो है इस पर्यावरण पूरक बापा की प्रतिमाएं जो है निर्माण कर रही है।
0: पीओपी की जगह साड़ू मिट्टी से तैयार ये प्रतिमाएं पानी में आसानी से खुल जाती हैं, जिससे इकोसिस्टम पर इनका कोई बुरा असर नहीं पड़ता। पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता का असर अब मांग पर भी दिखाई दे रहा है। इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमाओं के ऑर्डर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
2: सनातन धर्म में अपना पूजा पाठ को महत्व है, तो घर में हाथ से बनी मूर्ति रहेगी, आप लोग घर में विसर्जन करिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता।
0: मूर्तिकारों के हाथों से निकल रही हर प्रतिमा के साथ गणेशोत्सव का रंग भी गहराता जा रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इको फ्रेंडली बाप्पा की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। कर्नाटक के तेनकाशी में कलाकारों का हुनर और कारीगरी लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ भगवान गजानंद की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं मौजूद है। तो वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में मूर्तियों पर की गई कलाकारी देखते ही बन रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर से यहां गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यानी इस बार बापा का स्वागत भव्य ही होगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी। कलाकार अपनी कला से बापा के सुंदर स्वरूप को आकार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर इको फ्रेंडली गणपति की बढ़ती मांग एक नई सोच की तस्वीर पेश कर रही है। अकोला से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा? भाद्रपद के नियम और सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद के व्रत और पर्व कौन से हैं? जानिए भाद्रपद की पूरी जानकारी मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम, 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। नेपाल में मुसीबत के बीच करिश्मा हुआ, 8 साल के बच्चे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान, एक दिन बाद किया गया एयरलिफ्ट, बच्चे से मिलकर भावुक हुई मां। आज से पीएम मोदी का उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का 4 दिवसीय दौरा, किर्गिस्तान में एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में तिरंगे की रोशनी में नहाई हिल्टन होटल की इमारत। यूजीसी नेट के 84 विषयों के नतीजे घोषित किए गए, 4000 से ज्यादा छात्रों ने क्वालिफाई किया JRF, यूजीसी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं रिजल्ट। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस, स्वास्थ्य फिटनेस के साथ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना लक्ष्य है। 100 सालों की मशक्कत के बाद कैंसर से लड़ना होगा आसान, मॉडर्ना और मर्क की आरएनए वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल सफल, अमेरिका में अगले साल वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज गोलमेज की यह चर्चा यानी राउंड टेबल पर हम आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं, नेहा बाथम, सईद अंसारी, राजीव ढोंडियाल और पूजा शर्मा, हम 5 साथ मिलकर आपसे आज प्रश्न पूछेंगे। असल में प्रधानमंत्री जी ने ही कुछ दिन पहले IIT में एक संबोधन में कह दिया
4: जी
3: कि मैं बागबा बागेश्वर नहीं हूं जो आपके मन की बात जानू
4: जी।
3: युवाओं के बीच बैठे थे वो
4: जी,
3: क्या बाबा बागेश्वर युवाओं के मन की बात जानते हैं, और जानते हैं तो जेन जी की उस बात को कैसे रखें?
4: देश के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी मन की बात जानते भी हैं, समय परिस्थिति को भी नहीं जानते, और ये हमारे लिए और हम सबके लिए विशिष्ट बात ये है कि ऐसे वो जननायक हैं, 140 करोड़ लोग, अनेक महापुरुष संत, और वो हमारे जैसे छोटे से व्यक्तित्व को, छोटे से आदमी को स्मरण रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और उनकी असाधारण प्रतिभा के वो धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, आपको एक बात हम बहुत मजेदार बताएंगे, हम 1 साल चूक गए हैं जैन जी होने से।
5: हमारा दृष्टि में तो आप जैन
4: जी,
5: आप जैन
4: 1996 में हम आए और 97 के बाद में जो है जैन जी के लिए कहा गया, तो
5: अब चेंज कर देते हैं उसको।
4: ऐसा यदि हो जाए,
5: हो गया, हो गया,
4: बहुत धन्यवाद।
3: ये दोनों मध्य प्रदेश के लोग बैठ के आपस में कोई साजिश न बुलाट
6: कर रहे हैं।
4: जी जी, लेकिन हमें पता है कि हम कितनी भी सांठगांठ कर लें, आप लोगों के अंदर जो भगवत कृपा है, देवी अनुकंपा है, और जो आपका अध्ययन है, जो आपके पास लॉजिक तर्क है, हम लोगों की सांठगांठ चलेगी नहीं। जब देश की सांठगांठ नहीं चलती तो हम लोगों की सांठगांठ कहाँ चलेगी।
5: श्वेता ने मुझसे पूछा क्या पूछोगे, मैंने कद्दू पूछेंगे सारा, तो आप जानते हैं मन की बात।
6: बागेश्वर, ये जो जैन जी का क्योंकि जिक्र चला है, जिस तरीके से प्रदर्शन के जरिए सारी बांगों को घुमाया जा रहा है, एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये सही है?
4: अपनी बात रखना ठीक है, आंदोलन करना ठीक है, हक के लिए लड़ना ठीक है, पर आंदोलन सबसे अंतिम सीमा है अपनी बात रखने का। अनेक माध्यम है, पत्राचार माध्यम है, संवाद माध्यम है, केवल अपने बयान देना एक माध्यम है, सबसे लास्ट में है आंदोलन। लेकिन आंदोलन हो, लेकिन वो उसमें फुहारता ना हो, देश में अराजकता ना फैले, देश में हिंसा ना फैले, और हम किसी की भी माँ बहन को गाली ना, ये इतना ख्याल रखें कि हम अपनी बात रखें लेकिन देश में अराजकता ना हो। दूसरी बात, टेबल राउंड के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रार्थना करना चाहते, विशेष रूप से जैन जी सड़कों पर ही ना आए, हम चाहते हैं सरकार एक नया रास्ता चुने, सरकार ही जैन जी के पास जाए, एक ऐसा दरवाजा चालू किया जाए, एक ऐसा डोर खोला जाए कि जैन जी को आंदोलन करना ही ना पड़े।
3: कुछ मन में है आपके, कैसे होगा?
4: अरे ऐसे मन में कुछ है नहीं, बस इतना से ख्याल है, इस देश में बहुत बौद्धिक लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, प्रज्ञा मेधा के धनी लोग हैं, वो इस पर कार्य कर सकते हैं, पर हमारे मन में इतना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे देश की जैन जी अपनी बातें सरकार से सीधी कर पाए।
6: आजकल जैन जी थोड़ा डिल्यूजनल में भी जी रहा है, एक अपना उनका एक वर्ल्ड है
4: आपने अपने शब्द है मोए मोए है और ये भी है और ये भी है
6: तरीके से प्यार
7: हमने दो दिन में अभी सीखा है जब से दिल्ली आए तब से आप लोगों की ही ये संगत का असर पड़ा आप लोगों की संगत का असर पड़ा
6: हम लोगों को भी इतना नहीं पता है जितना बहुत
7: हमने इंटरव्यू में ही और पत्रकार आपकी भाई बहन थे वो हमें सिखाए
6: तो रील से जो ये पॉपुलैरिटी मिलती है इसको आप किस तरीके से देखते हैं कहाँ तक सही मानते हैं क्या ये आज का नजरिया है और इसमें शामिल होना क्या बाबा बागेश्वर के लिए भी एक मजबूरी है
4: वर्तमान के पहले भारत में एक एडिक्शन था एडिक्ट थे लोग ड्रग एडिक्ट अब एक नए एडिक्ट हो गए लोग ड्रग के बाद सोशल मीडिया एडिक्ट हम देश को नेशनल लव एडिक्ट करना चाहिए राष्ट्रपति
3: महाराज जी आपके भी रील वायरल
4: था एडिक्ट हम भी बनाते रील बनाना बुरा नहीं उसी सोशल मीडिया पर सुविचार हैं संदेश हैं टेक्नोलॉजी है जानकारियां हैं बड़े बड़े विचारकों के संवाद हैं लेकिन उसी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दिमागी कचड़े भी उन्होंने अपने कचड़े उस पर भर रखे उस कचड़े से संस्कारों पर कुछ प्रभाव पड़ रहा हमें एक बात समझनी होगी इस चैनल पर हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा अमेरिका से FB कहां से हैंडल हो रही अमेरिका से यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा अमेरिका से एक्स कहां से हैंडल हो रहा अमेरिका से इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में अमेरिका के हमें ये बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता व्यापारिक दबाव मानसिक आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाहता तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली न बन जाए
5: क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेंजी आंदोलन में हमने युवाओं की भाषा देखी वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर भी अटैक कर रहे हैं
4: कुछ बच्चे
5: अमेरिका या विदेशी शक्तियां विदेशी के माध्यम से
4: जी
5: या वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं उस पर
4: पूर्ण रूप से इस बात से सर निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहे कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहे हम चाहते हैं कि आंदोलन हो पर आंदोलन देश विरोधी ना आंदोलन हो आंदोलन तिरंगा विरोधी ना आंदोलन हो आंदोलन किसी माँ बहन की गाली से ना
6: छोटा सा एक सवाल बीच में आप टैक्स पे करते हैं आप टैक्स पेयर हैं
4: हम तो हैं RTI लगाओ
3: शिक्षा नीति में मकौले मुक्त उसको करना है या पहले शिक्षा को पेपर लीक मुक्त करना है
4: दोनों ही जरूरी बहुत जरूरी है सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक दिन और रात दोनों आवश्यक है तो हमें लगता है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता
3: एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि आप जातियों को जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहे हो
4: हाँ।
3: और आप इसके लिए आप पदयात्रा भी कर चुके हैं सब
4: अब अभी हम पदयात्रा भी करने वाले
3: इसी के लिए
4: हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना राष्ट्रवाद कास्टिज्म नहीं राष्ट्रिज्म हम चाहे
3: पर हिंदू राष्ट्र
4: का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ अगर हिंदू हाँ मुसलमान मुक्त होता तो आपकी तरफ भी सबकी नजर जा रही है तो हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि विचारक हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते और हिंदू कोई एक धर्म नहीं जीवन शैली है हिंदू का मतलब वसुदेव कुटुंबकम हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म अहिंसा नहीं अहिंसा हिंदू का मतलब व्यापार बाद में परिवार पहले ये हिंदू राष्ट्र हमें नहीं लगता कि ये गलत है ये तो सबकी मांग होनी चाहिए इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए
6: बाबा जी अपने राखी से पहले बहुत सारी राखियां पहन
4: हमारी बहुत बहनें हैं
6: बहुत सारी बहनें जहां जहां जा रहे हैं वहां बहन भी आपका रक्षाबंधन लग रहा है मन चुका है
4: अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगह तो आप
6: बहनें देख नहीं हम बांध देते
5: आपकी बहुत
4: जी
5: गर्लफ्रेंड
4: ये तो राम राम राम राम आपको लगता है लेकिन हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट
5: पा शादी करेंगे कि नहीं बाबा
4: हाँ घरवाली लाएंगे
5: और गर्लफ्रेंड से तो शादी करते हैं
4: ना ना भैया हमारी संस्कारों में पद्धति है माता पिता हैं हमारे यहाँ पर
5: आजकल आप जेंजी हैं ये तय हो गया
6: एक साथ
5: और हर
4: जेंजी से बड़े,
5: हर जेंजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद विवाह।
7: समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है। ना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ा है तो आप पूरा हाथ ही दबा दो। जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में।
5: शादी तो रहेंगे,
7: शादी आपको क्या लगता है हम लड़ूंगा मन?
3: तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते हैं,
6: रहते हैं।
7: बहुत जल्दी होगा। अभी हम फर्स्ट में, अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन 2027 के दिसंबर में फर्स्ट फेज में उसको चालू 2027 में, और हर वर्ष बेटियों का विवाह है वो संकल्प। अभी हमने एक नया प्रकल्प चालू किया धाम पर, वैदिक गुरुकुलम। 80 बच्चे मजदूरों के, जिनके माता पिता मजदूर हैं, उनके बच्चों का रहना खाना पुस्तक पढ़ाई लिखाई सब फ्री ऑफ वो चालू किया। तो उसमें केवल हम संस्कृत नहीं सिखाते, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, सिंगिंग, पूरा वैदिक और सबसे हाईटेक गुरुकुलम। हम सबसे तो नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक।
3: कोई ओलंपिक मेडल भी आएगा आपके?
7: अगर ये सफल होंगे तो निश्चित भगवान ने चाहा।
3: स्वामी रामदेव पे बोलेंगे
7: जी, तो हमारे आदर्श
5: आपके आदर्श में। क्या आप उनकी तरह आप भी, मतलब वो हर क्षेत्र में आप जो है चले गए, बहुत बड़े व्यापारी भी, अच्छे व्यापारी भी बन गए हैं, देश को बहुत मतलब रोजगार भी दे रहे हैं, तो क्या आप भी उस,
7: आप क्या चाहते? महात्मा सिर्फ मांगते ही रहे। देखो इस देश में हमारी आज से लेकर के अब तक के जितने भी प्रवचन के इंटरव्यूज या हमारे इंटरव्यू या कथा प्रवचन है सोशल मीडिया या मीडिया या यूट्यूब आदि पर प्रसारित, हमारी लाइव कथा प्रसारित टेलीकास्ट है, उन सबको आप सुनेंगे, हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए, और हम माया छोड़ने के पक्ष में नहीं। आज 100 रुपया है डॉलर, 100 रुपया है, कल 200 हो जाएगा, आप सबको बाबा बना दोगे तो देश का हाल क्या होगा? हम देश का विकास चाहते, अर्थ से परमार्थ की यात्रा चाहते, अर्थ कमाओ और परमार्थ में भी लगाओ। हम चाहते हैं दीनहीनों की भी मदद करो। धन कमाना बुरा नहीं है, पर किसी का दिल दुखा करके कमाना, झूठ छल कपट पाखंड अंधविश्वास फैलाकर कमाना महा बुरा है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति बिजनेसमैन बने, हर व्यक्ति व्यापारी बने, हर व्यक्ति अर्थ कमाने के स्रोत निकाले, नया आविष्कार करे, नई नई चीजों का आविष्कार करके समाज के सामने प्रस्तुत करे, हर क्षेत्र में वो सर्वगुण संपन्न हो। और बिल्कुल होना चाहिए, हमें स्वामी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती, सब में होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। हाँ, धर्म का धंधा नहीं होनी चाहिए, धंधे का धर्म तो होता है।
8: वो कौन लोग हैं और धर्म का धंधा कैसे करते हैं? धर्म का धंधा क्या होता है?
7: धर्म का धंधा ये होता है कि हम भगवान के नाम पर, झूठ छल कपट के नाम पर, दिखावा भय दिखा करके, धर्म का चोला ओढ़ करके अपने पेट भरना, ये धर्म का धंधा है। आप कहें कि आप तो नहीं ऐसा करते, हम कथा करते हैं दक्षिणा मिलती है, हम प्रवचन करते हैं दक्षिणा मिलती है, लेकिन हम मकान नहीं बनाते, अस्पताल बनाते, बेटियों के विवाह कराते हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोगों को निःशुल्क भंडारा कराते हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, वहां 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने विचार किया हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में मंदिर अब तक बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं।
6: महाराज जी, जब आप,
7: अब इसके विपरीत जो है वो धर्म का धंधा है।
6: तो जब आप बाहर होते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करते हैं?
7: नहीं, ट्रैक नहीं, हम रोज न्यूज
6: पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऑनलाइन मीडिया देखना पड़ता होगा ना, यूट्यूब पे या किसी
7: चलाते हैं। आपको क्या लगता है
6: कौन सा ऐप सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं?
7: एक्स हैंडल करते हैं,
6: एक्स हैंडल,
7: और इंस्टाग्राम करते हैं,
6: इंस्टा
3: खुद से करते हैं। आपका भी समय जाता है ऐसे?
7: 40 मिनट तो जाता है,
6: 40 मिनट,
7: 30 मिनट, 40 मिनट न्यूज पूरी पढ़ने में, आज कहां क्या क्या, किसने क्या क्या वहां बयान दिया, कहां पर क्या चल रहा, एक एक न्यूज को हमें, क्योंकि इसलिए भी अपडेट हमें रहना पड़ता है कि जैसे ही उतरो तुरंत माइक बताइए बाबा ये क्या, माइक लगाने वाले अपने कर ले, बाबा बड़ा ज्ञानी बनता था, बोल नहीं पा।
5: बाबा मेरे सारे साथी देखिए आपसे बहुत सख्त प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो मंत्र मुख दूंगा, देख रहा हूँ आप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको देखता रहूंगा।
7: जी जी, आप बहुत सज्जन,
5: आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। ये बताइए कि इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं,
7: जी
5: लग रहा है कि बहुत ही डिजाइनर, वो शानदार आपने कुर्ता पहना, कौन डिजाइन करता
7: है? हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि जो भी आता है वो श्रद्धा से दे जाता है, कोई फिक्स डिजाइनर नहीं।
5: अच्छा,
7: लोगों की इच्छा है, हमारे प्रति भावना जो जुड़े हैं।
5: ये भी कुर्ता किसी ने दिया है? कितने खुश हो रहे
4: हैं? अरे खुद के कहा, उनका हृदय बड़ा आह्लादित होता कि गुरु जी ने पहन लिया।
5: तो आपका
4: तो चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद में आप भी एक आध श्रद्धा दिखाओ। आपको भी मन में आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ कुर्ता कोई महात्मा पहने,
7: वो तो कोट देंगे अपने,
4: नहीं कोट ना दे, कोट कहा करें।
5: अच्छा, हम शानदार टी शर्ट देंगे आपको,
4: बाहर में गया हम ले भी
7: पैंट भी ले,
4: और अब आप मना ना कर पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कि हमने भगवान है, अगली बार कमेंट ही कर देंगे कि बड़े बड़े नहीं बार हमने देखे,
5: तो मतलब कुर्ता ही पहनेंगे आप?
4: नहीं नहीं, आप टी शर्ट दो, हम कहने देंगे
5: टी शर्ट पहनेंगे।
4: अरे उसमें कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल तुम जींस पैंट ले आओ, वो ना पहनेंगे,
5: टी शर्ट के साथ जींस भी देंगे।
4: ना ना, हम वो ना पहनेंगे पहले ही
5: क्यों? अच्छा तो है जींस पैंट पहनना, उसमें कोई आपत्ति है कुछ?
4: अरे भाई कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहन करके ना आए तो आप सीधा गए सबके भाई अपने अपने रूल होते हैं, ड्रेस कोड होता है देश में, डॉक्टर का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, साधु का भी भैया ड्रेस कोड है, उससे इंस्पायर होते हैं लोग कि हम स्पिरिचुअल हैं। भैया आप क्या चाहते हो?
6: महाराज जी, हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आजकल आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े डीजे, लाउड म्यूजिक, रास्ते में अवरोध होता है, पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हमने देखा कई, आपने भी देखे होंगे वीडियोस वायरल हुए जिसमें गंदगी फैलाई गई हरिद्वार के तटों पर, जहां पर बहुत टनों वेस्ट छोड़ा गया जो गंदे कपड़े थे, ऐसे इस पर अंकुश लगाम लगे कि हम आस्था को भी
4: चोट, यात्रा बंद करवाने की बात
6: नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उस
4: ठीक पर, करने की
6: उसको कैसे ठीक करें ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट का एलिमेंट माइनस हो
4: जाए। सजगता और सद्बुद्धि है, उसको ठीक भर ऐसे करना है कि हम कचरा जमीन पर ना फेंके, कचड़े को कूड़ेदान में ही डालें, और धर्म आस्था को सिर्फ इंजॉयमेंट में, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं, तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मते होती है, सब में सब प्रकार के होते हैं, पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी, एक विशेष सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
7: अब बड़े बड़े साधु हैं जो इस चीज को लेकर मतलब वो गंगा जी के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं, ये भी उन कांवड़ियों को अपने भक्ति के जोश में सोचना चाहिए।
6: जितने जितने शांति से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं, ठीक है कुछ, लेकिन जेंजी कुछ युवा है जो अभी लद्दाख का वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उतना गुस्सा जो उस महिला का था, और वो कह रही है हम जेंजी है, हम प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संकेत दें? गुस्से से ज्यादा बेहतर है शांति से अपनी
4: बात, हर रास्ते हर हल हर विवाद किसी भी समस्या का समाधान, संवाद ही हर समस्या का। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देके जाए, लव और पीस की बातें देकर जाए, तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना।
7: आजकल आप पर्ची निकालना छोड़ दिए?
4: ना चला रहे हैं, बस धाम पर है अभी।
7: अच्छा, मैं बाकी जगह नहीं कर,
4: कथाओं में भी होता है सब, लेकिन व्यस्तता पूर्ण जगह ज्यादा बढ़ गई, कथाएं ज्यादा, विदेश यात्रा ज्यादा, और पद यात्रा की तैयारी, कन्या विवाह की तैयारी, गुरुकुलम की तैयारी, कैंसर हॉस्पिटल की। पर्ची तो निकाले, वो तो जब तक जीना है तब तक भगवान ने जो कृपा दे रखी उस लगातार चला। अब आप लोग कम पर्ची दिखा रहे हैं, ये कह सकते
6: महाराज जी, आप इतनी विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन जब आप तुलना करते हैं भारत की और विदेश की, असीम और अपार संभावनाएं ऐसी जो भारत में, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जो विदेश में नहीं भी है फिर भी उन लोगों ने उसे डेवलप कर दिया। मसलन दुबई एक रेत था, रेतीला वहां पर मैदान था, फिर भी इतना डेवलप वो जगह बन गई है। ऐसी कौन सी संभावनाएं आपको हिंदुस्तान में भी दिखाई देती हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं?
4: भारत में सब कुछ बस प्रस्तुतीकरण, हमारी प्रस्तुतीकरण प्रेजेंटेशन ठीक है, वो अपने पहाड़ खुदे हुए पहाड़ों को भी टूरिस्ट प्लेस बता रहे हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है, तो हमें लगता है भारत का प्रस्तुतीकरण ठीक होना चाहिए। एक, भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भारत की स्वच्छता पर काम करना चाहिए। फर्स्ट, यदि भारत को ठीक करना है तो दो जगह सफाई होनी चाहिए, भारत की सड़कों पर और कोनों में और दिमाग
6: दिमाग की पहने से दिमाग में सफाई कथा के साथ होगी। बाकी सफाई सरकार को करनी है।
4: नहीं नहीं नहीं, वो दिमागी सफाई कथा से तो हम सिर्फ विचार दे सकते हैं, स्वीकार तो आप करेंगे, स्वीकार तो लोग करेंगे, हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना अभिव्यक्ति की आजादी, इतना कह सकते हैं कि आप बेहतर जीना चाहते तो हमारे पास वही विचार है, और विचार सदविचार बुरे विचारों को ठीक कर, पर कोई स्वीकार करे तब ना।
5: नई पीढ़ी आपको कितना सुनती है, मतलब आप भी कभी मतलब कुछ
4: ये डाटा तो आप ही ला सकते हैं हमें कितना सुनती है, हमारे बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा, हम नहीं कह सकते हम कितने अच्छे आदमी, हम आपके बारे में कह सकते।
6: ऐसा होता है कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग भाषा को इस्तेमाल करनी है कि भाई, क्योंकि आजकल पीढ़ियों में ऐसा बांट दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सी पीढ़ी, सबने पता किया है कि हम कौन सी पीढ़ी,
4: आप कौन है, आप यदि
5: मैंने श्वेता और हम जेंजी
4: हैं, आप यदि अपने
6: हम लोग 25 से एक साल ऊपर कभी नहीं होगा,
5: कभी नहीं कभी नहीं,
4: फिर हमको अखबार विचार ही घोषित करना पड़ेगा अपने आप।
6: उम्र तो दिमाग में होती है ना,
4: बीटा की बात कौन सी आई,
6: बीटा की
5: बात बीटा चल,
6: अभी तो बीटा चल रहा है,
4: अल्फा ज्यादा
6: ज्यादा बेटा बेटा पैदा हुआ है, हाँ। पैदा हुआ है, हाँ।
4: उसके बाद अच्छा बेटा है,
6: उसके बाद गामा डेल्टा थीटा ऐसे ही होता है ना,
4: गणित की ज्यामिति के सूत्र।
6: महाराज जी, आप एक आम जीवन से इस जीवन में कैसे परिवर्तित हुए, कौन सी वो आदतें थी आपके अंदर जो आपने बदलाव किया और आप बाबा बागेश्वर बन गए?
4: हम बचपन से ही उल्टे थे,
6: उल्टे थे क्या उल्टे काम किए आपने?
4: हाँ, कोई ऐसे उल्टे काम नहीं किए बहन, बचपन से ही हमने, हमको किसी ने बाबा बनाया,
6: कैसे
4: बनाए ही थे,
6: मैंने बनाया,
4: हमारा परिवार पूरा सामाजिक के साथ साथ धार्मिक में खूब सरोवर था, हमारे ग्रैंड फादर हनुमान जी के परम भक्त, उन पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी, एनलाइटमेंट था उनको, एनलाइटेड थे, उनके चरणों में रहे, हनुमान जी की सेवा बचपन से ही, हमारे पिताजी माताजी, हमारे दादाजी, दादाजी के भी पिताजी परदादा, तो हम जहाँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ वहाँ बालाजी का जो मंदिर है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते ही आ रही, तो वंशानुगत पूजा कर रहे हैं, तो दादाजी वहाँ रहते थे, तो दादाजी की हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक वहाँ का पीठपति या पीठाधीश्वर होता है, दादा ने हम पर कृपा की, गुरु ने हम पर दृष्टि डाली, तो हम बचपन से ही धार्मिक के धर्म के प्रति लगाव था ही, परिवार का माहौल ही ऐसा था, फिर दादाजी ने कृपा की तो गुरु अद्भुत मिल गए, तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया, तो हम बाबा बने नहीं, बने बनाए हुए हैं समान थे।
6: लेकिन आपकी बातों के साथ मतलब भले एक साल से आप कह रहे हैं कि चूक गए, लेकिन आपको फिर भी इस नई पीढ़ी के ही का ही आप प्रतिनिधित्व एक तरीके से करते हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर और एक कथा वाचन तक सबको अपनी बातें अपने विचार सुना रहा है, यात्राएं कर रहा है और आगे भविष्य के भारत के लिए एक उम्मीद बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची

0: आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: किर्गिस्तान में आयोजित SCO समिट में शामिल होने के लिए PM रवाना, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से अहम मुलाकात होगी। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों की रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम, 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक 2465 लोगों को एयरलिफ्ट किया, 163 विदेशी नागरिकों का भी रेस्क्यू हुआ। नेपाल में मुसीबत के बीच करिश्मा 8 साल के बच्चे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान, एक दिन बाद किया गया एयरलिफ्ट, बच्चे से मिलकर भावुक हुई मां। UGC नेट की 84 विषयों के नतीजे घोषित किए गए, 4000 से ज्यादा छात्रों ने क्वालिफाई किया JRF, UGC की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं नतीजे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद के महीने का आरंभ हो रहा है तो आज हम बात करेंगे भाद्रपद के महीने की महिमा के बारे में। इस महीने की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, इस महीने के व्रत और त्योहार क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।

0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह के 9:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:37 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं भाद्रपद के महीने की। भाद्रपद के महीने की महिमा क्या है? देखिए, भाद्रपद दो शब्दों से मिलकर बना है। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले, शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। भाद्रपद का महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए भाद्रपद का महीना सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने के लिए, मन में पवित्र भावनाएं भरने के लिए, पवित्र भावनाएं लाने के लिए ये महीना काफी असरदार है। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व, गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी भाद्रपद के महीने में आती है। यानी भाद्रपद में मुख्यतः भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। इस बार भाद्रपद का महीना 29 अगस्त से 26 सितंबर तक रहेगा, जिसमें हमें भाद्रपद महीने के नियमों का पालन करना चाहिए। भाद्रपद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, अपने रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, चोट चपेट से सावधान रहें, परिवार में शांति बनाए रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद महीने के नियम क्या हैं और भाद्रपद महीने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, भाद्रपद महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करना चाहिए, कच्ची सब्जियां और सलाद ना खाएं, उबाल कर या पका करके ही खाएं, दही का प्रयोग करना पूरी तरीके से वर्जित है, दही का प्रयोग भाद्रपद महीने में नहीं किया जाता। भाद्रपद के महीने में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना काफी होती है, इसका ध्यान उन्हें बनाए रखना चाहिए। भाद्रपद के महीने में आलस्य बहुत होता है, इसलिए इस महीने में शीतल जल से दोनों समय स्नान करना चाहिए ताकि आलस्य दूर हो जाए। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और तुलसी दल को चाय में या दूध में उबाल कर पीना चाहिए, ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे। भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें मत खाइए और दही से परहेज करिए, क्योंकि भाद्रपद में दही खाने से पेट की दिक्कतें और त्वचा की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। भाद्रपद पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या दूर होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं कि भाद्रपद महीने के व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। भगवान गणेश की विशेष पूजा भाद्रपद शुक्ल पक्ष में की जाती है। इसी महीने में भगवान कृष्ण का, श्री बलराम का और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी आता है। कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद के महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी मनाया जाता है। मुख्यतः भाद्रपद के दो हिस्से हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो अगर आप भाद्रपद में श्री कृष्ण और श्री गणेश जी की पूजा करें तो आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, लेकिन काम का प्रेशर रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो भाद्रपद के महीने में गोपाल सहस्त्र नाम, इसका नियमित रूप से पाठ करिए, आपको संतान की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: एक फकीर एक राजा के पास गया। फकीर बहुत पहुंचा था। राजा ने कहा कि कोई ज्ञान की बात बताओ, तो फकीर ने कहा कि अभी वर्तमान में तो हमारे पास ज्ञान की बात कुछ खास है नहीं, एक अंगूठी है जो हम तुम्हें देना चाहते। राजा ने कहा कि दे दे। फकीर ने कहा कि अंगूठी बड़ी पहुंची हुई है, ये बहुत अद्भुत है, अपने आप में बड़ी चमत्कारिक है। तो राजा ने कहा कि इसका चमत्कार बताओ। फकीर ने कहा कि वैसे इसका कुछ बड़ा चमत्कार नहीं, पर ये दो समय पर काम आ सकती है, जब बहुत मुसीबत हो तब, जब बहुत खुशी हो तब, जब बहुत तब ये काम आएगी, या जब बहुत खुशी हो तुम्हें तब ये काम आएगी। राजा ने कहा कि फिर तो ये काम किए। तो पूछा कि इसका प्रयोग कैसे करना है। बोले प्रयोग कुछ नहीं करना है, इसमें एक ढक्कन है, उसे खोलना है, उसमें कुछ चिट्ठी है, जब बहुत दुख हो तभी वो चिट्ठी पढ़ना, पहले मत खोल लेना, और जब बहुत खुशी हो, सुख हो, तभी वो चिट्ठी खोलना। दो बार के काम की ही है, दो समय के काम की है, बाकी बहुत अद्भुत चमत्कारिक अंगूठी। राजा था, फकीर की बातें थोड़ा अच्छी लगी, प्रिय लगी, तो कई बार अच्छी बातें लगने वालों पर भरोसा कर लिया जा सकता है। तो राजा ने वो अंगूठी पहन ली, फकीर चला भी गया, पहुंचा हुआ फकीर वो कहां रुके, और पानी ठहर जाए तो गंदा हो ही जाता है, और फकीर महात्मा भी ठहर जाए तो ठीक नहीं रहता। तो महात्मा तो चलते चलते हैं, तो चले गए। कुछ दिनों बाद राजा के साम्राज्य पर आक्रमण हुआ, किसी पड़ोसी देश के राजा ने चढ़ाई कर दी, युद्ध हुआ, राजा हारा गया, सेना मारी गई, साम्राज्य छिन गया, राजा के राज्य पर अधिकार और हक दूसरे राजा का हो गया। ये प्राण बचाकर भागा, भयंकर जंगलों के बीच से गुफा में जैसे तैसे करके भागकर बच पाया। ये भी मरने ही वाला था, पीछे से शत्रुओं के सैनिकों के सिपाही लगे थे, अश्व सवार घुड़सवार लगे थे, बड़े बड़े सैनिक नुकीले तीर लिए हुए राजा के पीछे लगे थे। ये भागा भागा एक गुफा में गया, दौड़ करके प्राण बचाए, बड़ी मुश्किल से सांस ले पाया। इसे लगा कि अब मरे, अब पकड़े गए, अब मारे गए, अब पकड़े गए, अब मारे गए, पकड़े गए। ये विचार कर ही रहा था कि बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई पड़ी, कि इसको लगा कि अब मरे। ये सोच ही रहा था तब तक अंगूठी दिखाई पड़ी। इसने सोचा कि अब काम की अंगूठी, सुना महात्मा ने कहा था कि चमत्कारिक अंगूठी है, तो जरा चेक कर लेनी चाहिए है भी कि नहीं, इससे ज्यादा मुसीबत भला क्या हो सकती है। तो उसने अंगूठी को खोला, उसमें एक चिट्ठी निकली, और चिट्ठी पर दो लाइन लाल रंग के कलर में लिखी थी, जो है सुबीत जाएगा। उसने अंगूठी को वापस बंद कर दिया, और मानो उसके कानों से कोई पंछी उड़ गया, जो भय था वो भाग गया, एक सबल उसके मन में आ गया, एक भरोसा उसके मन में आ गया, जो है वो बीत जाएगा। और हुआ भी यही, जो घुड़सवार पीछे मारने लगे थे थोड़ी देर में दिखाई नहीं पड़ा राजा, तो वो भाग गए। तो ये शांति के साथ बैठा, इसने सांस में सांस ली, प्राण में प्राण आए, थोड़ी शांति आई, थोड़ा मन आया कि अब सोच तो पाए कि करना क्या है, लुट तो गई, मरने से तो बचे कम से कम, अब जो होगा तो देखा जाएगा। पर अंगूठी का चिट्ठी जो लिखी थी वो कह रही थी, जो है वो बीत जाएगा। रात के समय राजा निकला, अपने कपड़े उतारे, छोटे फटे हुए थोड़े से कपड़े कर लिए ताकि कोई पहचान ना पाए। पास के पड़ोस में इसका एक दूसरा मित्र था, वो भी राजा था, उसके यहां ये भागा भागा गया। दरवाजे पर द्वारपाल को बताया कि हमारे ये मित्र हैं, और ऐसी ऐसी हालत हुई, जरा राजा को जगाओ, बती बड़ी इमरजेंसी है, और हमारे वो मित्र हैं। द्वारपाल ने अंदर खबर दी, मित्र भी बहुत अच्छा रहा होगा, उसने रात में आकर स्वागत किया, ये हालत तुम्हारी, उसने पहले तो कपड़े दिए, भोजन कराए, स्नान करवाया, स्वागत किया। बोले चिंता मत करो, हम हैं, कल सुबह होने दो, कुछ इंतजाम करेंगे। तो पूछा कि क्या मदद करें, इसने कहा कि और तो कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, हम साम्राज्य में तो तभी जाएंगे जब पुनः जीत लिया जाए। ये कहा तो मित्र ने कहा कि बस चिंता छोड़ो। दो चार दिन मित्र को तैयारी करने में लगे, अगल बगल से सेनाएं खोजी गई, अगल बगल से योद्धाओं को बुलाया गया, और जितनी सेना इसके राज्य में आकर के आक्रमण करके अतिक्रमण की थी उससे ठीक दोगुनी सेना इसके मित्र ने तैयार की, और राजा के राज्य पर फिर आक्रमण किया। जो शत्रु राजा था उसको भगाया गया, सेना उसकी मारी गई, ये फिर से अपना राज्य जीत गया। ये जीता, बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। स्वाभाविक है, हारा हुआ, खोया हुआ साम्राज्य पा लिया, फिर से प्राप्त कर लिया, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। सेना जैसे ही कब्जा करती है, राजा की खबर मिलती है, प्रजा भी बड़ी प्रसन्न होती, प्रजा भी लाइन से खड़ी हो गई, फूल माला लेकर, आरती की थालियां लेकर, स्वागत के लिए बाजे बजाए जा रहे, राजा रथ पर खड़ा है, हाथ हिला रहा है, गुमान में भरा है कि मैं वही हूं जो हार गया था और देखो मैं जीत के आ गया, ये सोच ही रहा था, हाथ हिला ही रहा था, तब तक अंगूठी याद आ गई। उसने फिर अंगूठी खोली और फिर चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था जो है वो बीत जाएगा। तो जो गुमान में हाथ हिला रहा था, हाथ नीचे हो गया, हाथ जुड़ गए और प्रणाम करने लगा, मुस्कुराहट थोड़ी हल्की हो गई, जो गुमान भर रहा था वो गुमान का बबूना फूट गया, वो गुब्बारा फूट गया, मुस्कुराता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ राजा अपने महल में प्रवेश करता है और अंत में यही कहता है, जो है वो बीत जाएगा। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो भी है ये भी एक दिन बीत जाएगा। भला है अथवा बुरा है, तुम्हारे जीवन में जो भी है, जैसा भी है, ये तय है, बीत जाएगा। यहां स्थाई कुछ भी नहीं, सब बीतना है। यदि तुम्हारे जीवन में दुख है तो पक्का मानो सुख आना है, यदि तुम्हारे जीवन में बहुत सुख है तो पक्का मानो कोई ना कोई दुख आना है। सारा संसार ऐसा ही चल रहा और सबके जीवन में आना है। राम जी के जीवन में आया, कृष्ण भगवान के जीवन में आया, मीरा के जीवन में आया, मीरा को पति से ही विष पीना पड़ा, तुम तो कुशल मनाओ तुम्हारा पति विष नहीं पिलाता, मीरा को विष पीना पड़ा, सूरदास को गांव के लोगों ने धक्के दिए, तुलसीदास जी को अपने ही पंडितों को परीक्षा देनी पड़ी, माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तुम कुशल मनाओ तुम्हारा पति तुमसे परीक्षा नहीं लेता, माता जानकी जी ने तो अग्नि परीक्षा दी थी, हो सकता तुम्हारा पति कह दे कि गैस चूल्हे पर ही हाथ रख दो, तो तुमसे तो परीक्षा भी नहीं ली जा रही। सबको सहना पड़ा, सबको दुख सहने पड़े, पर एक बात पक्की मानना मेरे पागलो, जो भी है वो बीत जाएगा। ये विचार घर लेकर जाना, जो भी है वो बीत जाएगा, पक्का है। और गुरु कुछ नहीं करता, गुरु इतना ही करता, हम परिस्थिति नहीं बदलते, मन स्थिति बदलते हैं, तो गुरु कुछ नहीं करता, मन की परिस्थिति बदलता, मन की परिस्थिति बदली कि जीवन बदला। तुम अभी यहां ऐसे बैठे हो, बहुत भीड़ भी बैठी, आप सब बैठे हो, बगल में कोई पैर पे पैर रख दे तो तुम तुरंत धक्का है, दूर हो भाई, ये मैच्योरिटी नहीं, दूर दूर। बगल में कोई कान में आके कह दी मंत्री जी है, अच्छा भाई समाज आ जाइए अच्छे से बैठ जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मन की ही तो परिस्थिति बदली, आदमी वही था, मन को एक बात पता लगी कि ये खास है, तो कल तक जो भार लगता था वो अब भार नहीं लगा, थोड़ी देर पहले जो भजन लग रहा था वो भजन थोड़ी लगता, और प्रेम में जिससे प्रेम होता है वो बोझ थोड़ी लगता है, और जिससे प्रेम नहीं होता है उसका बैठना भी, कई लोग तुम्हारे पास बैठते हैं तुम सोचते हो कब जाए, कहां से आ गया, अब वो एकदम मूड में बैठा बात करने के, हम तुमको अपनी फोटो दिखाएं और तुम कर रहे खुजली, अरे भाई बाद में दिखा, हाँ वो कह रहे नहीं देखता लो, अब वो फोटो अपनी दिखाई, अब फिर लगा रहा पर हमारी घर की और देख लो, अब तुम्हें इतनी उबन हो रही, इतनी बेचैन, और इतने में कोई प्रेमी आ जाए, अब वो कहे फोटो दिखाएं, तो मैं फोटो का पिक्चर का दिखाओ, पूरी फिल्म लगाओ, वीडियो लगाओ, अब कहां भी जा रहे, रुक जाए चाय और पी लो फिर जाओ, कोई अपना आता है तो वो जाने की जिद करता, तो अपन कहते अरे रुको रुको भैया चाय थोड़ा रुक के बनाओ ताकि थोड़ी देर और रुक सके, और कोई खुजली वाला आ जाए वो कहे जा रहे तो चाय भी बन रही होगी, ठीक है तो फिर अगली बार चाय हो जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है, मन का ही तो खेल। मन बदलता है, मन की स्थिति बदलती, परिस्थिति बदलती। मेरे पागलों, हम तुम्हें सिर्फ एक विचार देने आए। माइंड को ऐसा सेट रखो कि विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओ, बुरे समय को भी स्वागत करो। जापान से सीखो, कितने धक्के नहीं खाए जापान ने। नागासाकी, हिरोशिमा, 2011 की सुनामी, न्यूक्लियर वाला, कितने झंझट नहीं सहे, लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, इन्होंने कर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि इनका माइंड सेट था, तुम भी अपनी जिंदगी में दुखों को आने दो, उनका काम ही है आना। संसार में गीता में कहा, दुखालयम, यह संसार, ये संसार सागर दुखालय, यहां तो दुख मिलेगा ही, किसको नहीं मिला, तो तुम्हें मिले, पर तुम अपने माइंड को सेट कर लो, दुख भी आए तब भी मुस्कुराओ, वो भी शर्मा जाए किस बेशरम के पास आ गए। मुस्कुराओ, उसको भी कंफ्यूज कर दो, उसको भी परेशान कर दो। गाड़ी में सुना रहे थे, ट्रेन में बैठे थे हम और हरीश जी बगल में, हम कहा हम तो ऐसे आदमी है, जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो पर चाल तो हम सम्राटों जैसी चलते। हाँ, अपनी आदत बहुत बढ़िया है, बुंदेलखंड के आदमी, साधारण परिवार के आदमी, अंग्रेजी आती नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन ये किसी को आभास नहीं होने देते। अपन को अंग्रेजी अशुद्ध भी आती है तो इतने गंभीरता से बोलते हैं कि अंग्रेज भी फेल हो जाते हैं, उनको भी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। हम उनको गलत साबित कर देते हैं कि तुमने ये पढ़ी नहीं है जो हमें आती, बल्कि हमें ये पता है हम गलत पढ़ रहे हैं। हम ही को सी बोल देते थे, वो सी को ही बोल देते हैं, हमें पता है कि हम गलत बोल रहे हैं, पर बोलते इस कॉन्फिडेंस में है कि अंग्रेज को ये लगे कि उसे ये समझ नहीं आई, ये शब्द वो पढ़ नहीं पाया जो हम पढ़ चुके, जो हम बोल चुके। मेरे पागलों, हर परिस्थिति में मुस्कुरा, कृष्ण भगवान से यही सीखो, उन्होंने वृंदावन बाल्यकाल में छोड़ा, मुस्कुराए, गोवर्धन पर्वत उठाया, मुस्कुराए, अपने गोप बाल मित्रों को छोड़ना पड़ा, मथुरा आना पड़ा, फिर भी मुस्कुराए, मथुरा को भी जरासंध के कारण छोड़ना पड़ा और नाम रणछोड़ दास पड़ गया, तब भी आए, आकर के द्वारका में हो गए, 16,108 ब्याह की, तब भी तुम्हारा एक में का हाल है। लेकिन वो तब भी 16,000 रानियां, 16,100 रानियां, 8 पट रानियां, इन सबके 10-10 संतानें हुई, 161,080 बेटे हुए, उसके बाद भी इन बच्चों की शादी हुई तो इनके भी 10-10 बेटे हुए, तब भी इनके परिवार की जनसंख्या 55 करोड़ पहुंच गई, ऐसा लिखा, तब भी मुस्कुराए, और परिवार आपस में लड़के मरने लगा, तब भी महाभारत के समर में एक तरफ कौरव पक्ष खड़े, एक तरफ पांडव पक्ष खड़े, कौरव की सेना पांडवों को खा जाना चाहती, कौरव 100 हैं, पांडव 5 हैं, भीड़ कौरव के पास है पर भगवान पांडवों के पास, और विजय पांडवों की हुई, पराजय कौरवों की हुई। इससे सिद्ध होता है भीड़ जिसके पास हो जरूरी नहीं वो जीत जाए, भगवान जिसके पास होता है वो जीत जाता है। लेकिन उस महाभारत के समर में भी जब बड़ी हाहाकार मची थी तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए, युद्ध हो गया, कौरव मारे गए, पांडव जीत गए, तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए, वापस आए द्वारका, घर पूरा उजड़ने लगा, बच्चे आपस में लड़ने लगे, मरने लगे, सब यदुवंशी, भगवान की ही ये लीला थी, उनका ही ये नाटक था, वो ही अपनी आंखों के सामने करवा रहे थे, तब भी देखते ही देखते दाऊ भैया ने विदा ले लिया, हम चल रहे हैं, तब भी हमारे ठाकुर, 100 साल बाद राधिका जी से मिलन हुआ, 100 साल के वियोग के बाद ब्रज से मिलन हुआ, 100 वर्ष के बाद गोपियों से मिले ठाकुर, तब भी हमारे गोविंद। एक समय ऐसा आया, छुप करके बाण मारा था बाली को, बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्रिय हो गया, आपने मुझे मार दिया, भगवान बोले हमने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? बाण तो आपने चलाया, फिर तुमने तुमने गलती भी तो की। बाली कहता हमने गलती क्या की? हाँ, तुमने भाई की पत्नी को रखा, ये सबसे बड़ा अपराध है। अनुज बधु भगनी सुतनारी, ये चारों कन्या सब ये चारों कन्या के समान है और तुमने रखा बेटी के समान है, अपराध लगा। तो बाली अपना तर्क क्या गजब का देता, बाली के तर्कों से राम जी भी नहीं जीत पाए। बाली कहता है सुनो प्रभु, हम हैं वानर तुम हो नर, दोनों के अलग अलग नियम होते। ये आप लोगों का नियम है, हम वानरों का नियम नहीं है, हमारा नियम नहीं है। भगवान ने कहा तर्क तो बड़ा गजब का है। राम जी बोले अंत तो गत्वा, राम जी कहते हैं चलो चलो दूसरा कारण सुनो। बाली बोला दूसरा कारण बताओ। बोले जब तुम्हारी पत्नी ने रोका था कि मत जाओ, जब सुग्रीव ललकार रहा था तो तुम क्यों गए? तो मुस्कुराते हुए बाली बोला मरते मरते, बोला एक बात बताओ, हमारे बेडरूम की बात तुम्हारे पास कैसे पहुंची? ये तो हम पति पत्नी बात कर रहे थे, तुम्हारे पास खबर कैसे गई? भगवान बोले हम ब्रह्म है ना, हम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं। बाली बोला वाह अब हम पहचान गए। बोले क्या? बोले आपने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु वास असेखा, अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वरनी। आप ब्रह्म होना, कानों के सुनते बिना, पैरों के चलते बिना, हाथों के स्पर्श कर लेते, वही ब्रह्म होना, अनंत अखंड अभेद अछेद सर्वव्यापक, वही परमात्मा होना। भगवान बोले हाँ वही है। बोले बस यही सुनना था। बोले फिर? बोले प्रभु आप जब ब्रह्म हो और आपने ये सुन ही लिया कि हमारी पत्नी रोक रही थी कि ये सुग्रीव नहीं ललकार रहा, जो वनवासी हैं उन वनवासियों के बल पर ललकार रहा, मत जाओ, आपने ये सुन लिया, पर आपने दूसरी बात नहीं सुनी। भगवान बोले क्या? बाली बोला हमने अपनी पत्नी से कहा था यदि वो दो वनवासी राम हैं और वो नारायण हैं ब्रह्म हैं, यदि वो ही मुझे मारने आए हैं तो मेरा तो उनके हाथों उद्धार हो जाएगा, मैं अनाथ हूं, वो मुझे सनाथ कर देंगे, तो मैं जाऊंगा। ये नहीं सुना? भगवान बोले सुना तो है। पहली बार राम जी जलीलों से हार गए, जो बातें कहीं बाली ने, हार गए। जब बाली जाने लगा भगवान बोले हम पुनः जिंदा कर देते। बोले ना प्रभु, हमको जिंदा विंदा नहीं रहना है, इसी मृत्यु के लिए तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तरसते हैं कि यमुना जी गंगा जी यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, और हमारे तो आप सामने खड़े हैं, अब हम काय को ये मौका छोड़ दें, हम तो अब जा रहे हैं। पर भगवान ने जाते जाते वचन दिया, हमने तुम्हें छुपके बाण मारा, हम पर कर्जा हो गया, कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, तुम तीर चलाना, हम प्राण त्यागेंगे, कर्जा चुक जाएगा। और वही समय आया ब्रह्म का, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ना जन्म लेता न मरता है, लीला करता है। वाली के वचन को पूरा करने के लिए हमारे ठाकुर जब कृष्णचंद्र बन करके द्वारकाधीश बन करके हमारे ठाकुर आते हैं, नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चित्तौर माखन चोर छलिया मोहन मुरारी माखन कहलाने वाले हमारे खाने वाले हमारे कन्हैया, जब कृष्ण बन करके आते हैं और कर्जा चुकाने की बात आती है तो हमारे ठाकुर जी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। महाभारत हो गई है, सब परिवार धीरे धीरे चला गया, फिर भी मुस्कुराहट है, पेड़ के नीचे बैठ गए, दोनों पैरों के ऊपर पैर रख लिया, अंगूठे को ऐसे ऊपर नीचे करने लगे, पेड़ से टिक गए। एक बहलिया जो पूर्व जन्म में वही था बाली, वह इस जन्म में बहलिया बनकर के आया है, उसने भगवान के लाल लाल तलवों को देखा, कोई अजीब और गरीब विदेशी पक्षी है, अंगूठे को चलते देखा, उसे लगा ये कोई चौंच है, उसकी मुख है, ऐसा मानकर उसने तीर का संधान किया, भगवान के तलवे में तीर लग गया और वो भागा भागा आया, पक्षी मर गया होगा, देखा ठाकुर लेटे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस परिस्थिति में भी कोई मुस्कुरा सकता? तुम मर रहे हो, हंसोगे? संभव है। हम आपको कहना यह चाह रहे हैं, आप और हम इस परमात्मा के अंशज वंशज हैं, वो ठाकुर इस परिस्थिति में भी मुस्कुराता है, आप भी कोई भी परिस्थिति बनी रहे मुस्कुराइए। चाहे जो स्थिति बनी रहे हर हाल में मुस्कुराइए, ये भगवान कृष्ण से सीखिए, हर बात पर मुस्कुराइए। खोने वाला क्या है, जो पाया है वो कम थोड़ी है। तुम यहां बैठे हो, यहीं बैठने के लिए कितने लोग नहीं तरसते, अब क्या पाया कहां? इसमें भी भगवान को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद, हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद, तो प्रभु बड़ी कृपा की।
1: कौन सा रत्न धारण करने से हृदय रोग में सुधार होता है? कौन सा रत्न धारण करने से डिप्रेशन की बीमारी दूर हो जाती है? और कौन सा रत्न धारण करने से नसों की समस्या में सुधार होता है? रत्नों के प्रयोग से कैसे दूर करें बीमारियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: दो साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ

0: चाट लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में उलझते और सुलझते रिश्ते। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: राफेल के रणकौशल को कॉपी करने में जुटा चीन, मिस्र के आसमान में शह और मात का दाम, राफेल को डिकोड करने वाला चीन का प्लान, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
10: किर्गिस्तान में आयोजित SCO समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री रवाना, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से होगी अहम मुलाकात। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत के तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम, 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू।

सुख शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। अब पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनी को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा। FSSAI ने अदालत में दिए अपने हलफनामे में दी जानकारी।

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं गणपति की। जल्दी ही बप्पा का आगमन होने वाला है। उनके स्वागत के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, और इस बीच बड़े पंडालों में गणपति की विशाल मूर्तियों का आगमन भी शुरू हो चुका है, जिनकी साज सज्जा पर काम किया जाना है। तो दूसरी ओर मूर्तिकार भव्य और खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने में जुटे हैं। अमरावती और अकोला जैसे इलाकों में भगवान गणेश की अलग अलग अंदाज वाली प्रतिमाओं का निर्माण अपने आखिरी चरण में है। आज हम आपको बप्पा की बिल्कुल अलग कंसेप्ट वाली मूर्तियां दिखाएंगे, समझेंगे कि इस दौर में किस तरह से कलाकार पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियां बना रहे हैं। शुरुआत करते हैं अमरावती में बनाए जा रही भगवान गणेश की प्रतिमाओं से। महाराष्ट्र के इस इलाके में हमेशा बप्पा की बेजोड़ प्रतिमा बनाई जाती है, और इन प्रतिमाओं की न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के कई राज्यों में भारी डिमांड है, और उसकी वजह भी है। गणपति की इन मूर्तियों का रंग रूप बिल्कुल अलग होता है, अलग कॉन्सेप्ट पर तैयार की जाती हैं ये प्रतिमाएं, जिन्हें देखकर लगता है कि अभी बोल उठेंगी। तो चलिए आपको अमरावती के एक ऐसे बेजोड़ कलाकार से मिलवाते हैं, उनकी कार्यशाला के अद्भुत रंग भी दिखाते हैं।

0: अद्भुत है ये प्रतिमा और इस प्रतिमा की कल्पना माता पार्वती की गोद में मौजूद बाल गणेश, लेकिन बप्पा स्वयं शिव के रूप में, नीले शरीर पर पीली धोती, गुलाबी अंगवस्त्र और केश में मयूर पंख। बप्पा को जैसी मासूमियत के साथ मूर्त किया गया है वो बेमिसाल है। साथ में ममता भरी मुस्कान के साथ माता पार्वती, ऐसा लगता है जैसे मूर्ति अब बोली तब बोली। ये मूर्तियाँ उस विलक्षण कलाकार की पहचान है जिनके नाम की अमरावती में बड़ी शोहरत है, बड़ा सम्मान है। इस साल गणेश उत्सव के लिए हमेशा की तरह नरेश जोहरे ने अलग अलग थीम पर अलग अंदाज वाली बेमिसाल मूर्तियाँ बनाई हैं।
1: वैरायटीज तो एक पार्वती बाल वाली है, नारियल वाली है, अभिषेक वाली है, मावली है और तुतारी वाली है, उसके बाद में त्रिशूल डमरू वाली है और एक पशुपतिनाथ है। तो यहाँ से उज्जैन हो गया, तुम्हारे भोपाल हो गया, रायपुर हो गया, इधर जलगांव खानदेश, विजयवाड़ा, निजामबाद, नागपुर, यहाँ तक की मूर्तियाँ भी जाती।
0: अमरावती की इस कार्यशाला में एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ बन रही हैं, ज्यादातर तैयार हैं और अब बस उन्हें आखिरी रूप दिया जा रहा है। कहीं लाल बाग के राजा जैसी प्रतिमा है तो कहीं भोलेनाथ के स्वरूप वाले बाप्पा। इतना ही नहीं, तबले और तुतारी पर विराजमान गणपति भी आपका ध्यान खींच लेते हैं। तो वहीं परशुराम अवतार के स्वरूप में बनी बप्पा की प्रतिमा हैरान कर देती है। इस कला की बारीकी का क्या कहना, हर प्रतिमा जीवंत नजर आती है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से, इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। देखिए, बाप्पा की मूर्ति प्रतिमा तो जो है बनकर तैयार है, कलरिंग भी लेकर तैयार है, लेकिन बाप्पा को इस तरीके की ज्वेलरी लगाकर जो है एक नया सौंदर्य देने का काम जो है ये कलाकार करते हैं। कितनी सुंदर मूर्ति है, पार्वती माँ के गोद में लाडले बाप्पा जो है वो बैठे हुए है। तो उधर दूसरे उसके पीछे जो है देखिए, तबला और तुतारी जो है वो उस पर बाप्पा बैठे हैं। तो बाप्पा ने इसमें भोलेनाथ, अपने पिता भोलेनाथ का यहाँ पर रूप लिया है और उनके जो वाहन है नंदी उस पर वो सवार है।
0: अमरावती की इस कार्यशाला में बनी प्रतिमाओं की मांग जलगांव, नागपुर, वर्धा समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन और बुरहानपुर और तेलंगाना के निजामाबाद तक नरेश जोहरे की बनी प्रतिमाएं भेजी जाती हैं। गणेश उत्सव शुरू होने में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं, इसलिए हाथ तेजी से काम में जुटे हैं। प्रतिमाओं पर बारीक नक्काशी के साथ साथ अलग अलग तरह की ज्वेलरी और सजावटी सामग्री लगाई जा रही है। इस तरह बप्पा की हर प्रतिमा निखरती जा रही है, जिससे जल्दी ही पंडाल गुलजार होंगे। लेकिन पंडाल भी तो अपने आप में किसी कलाकृति से कम नहीं, खासकर मुंबई में गणपति के पंडाल कई बार सिनेमा के सेट जैसे नजर आते हैं। गणेश गली इलाके के गणपति को मुंबई का राजा कहा जाता है और हमेशा की तरह इस साल भी मुंबई के राजा पंडाल की भव्य सजावट हो रही है।
3: मुंबई, महाराष्ट्र, ये पूरा देश अब गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गया है। 14 सितंबर से हर किसी के घर में, हर कोई नुक्कड़ पर, हर किसी इलाके में हर सड़क पर बप्पा को विराजमान किया जाएगा। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के गणेश गली, जो मुंबई का राजा के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसकर सेट पर। देखिए, जब यहाँ पर श्रद्धालु और जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बड़ी ही सुंदर सुंदर तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जैसे कि पिछली बार यहाँ पर रामेश्वर बनाया गया था, रामेश्वर धाम जो है वो तब्दील किया गया था, और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पीछे की मेहनत देखें, एक डेढ़ महीने पहले से ही शुरू हो जाती है आलीशान बहुत बड़ा सेट, जो धीरे धीरे बहुत बड़े स्वरूप में बदलने वाला है।
0: पिछले साल सोमनाथ मंदिर के बैकग्राउंड पर पंडाल बनाया गया था। इस दफा कहा जा रहा है कि थीम महाराष्ट्र के संतों पर होगी।
4: मंडल का ये 99 ईयर है, और इस बार हम संतों की परंपरा या दिखाने की हमारी कोशिश है, जो कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो समृद्ध करने में उनका बहुत ही बड़ा सहयोग ये महाराष्ट्र में है। तो उनकी परंपरा क्या है ये इस पीढ़ी को पता चलिए, इसीलिए ये संतों की परंपरा हम यहाँ दिखाए।
3: अच्छा, इस बार जो जानकारी है उसके हिसाब से 99वां साल आप मना रहे, मतलब एक साल और फिर आप, मतलब शंबर क्रॉस। हाँ,
4: बिल्कुल।
3: तो क्या कहेंगे, क्या तैयारी इस बार आपने क्या सोच रखा है?
4: देखिए, ये तो 100 साल की हमारी एक टेस्ट मानी जाती है, तो उसी के हिसाब से इस साल जो भी करेंगे वो बहुत ही धूमधाम से, हर साल तो करते ही है, लेकिन इसमें इस साल इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भव्य दिव्यता लाने की कोशिश है वो ज़्यादा रहेगी।
0: मुंबई के राजा का ये 99वां साल है, यानी 1 कम 100। स्वाभाविक है ये पंडाल अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों को नया मकाम देना चाहेगा। मंडप के मुख्य द्वार बनाने का काम भी पूरा हो चुका है, और गणपति की प्रतिमा अपने आखिरी चरण में है।
4: मुंबई के राजा की ये परंपरा है, उनकी जो मूर्ति है वो जगह पे ही बनाई जाती है, और एक कम है वो ये जो मूर्ति है मुंबई में जो टोटली हैंडमेड है, उसमें साचा या मोल्ड का उपयोग नहीं किया जाता है, वो हाथ से ही बनाई जाती है। और वही खासियत है मूर्तिकार की, जिसमें उसका उसकी जो मेहनत है और उसकी जो खासियत है वो रंग लाती है।
3: मतलब हम ये मानकर चलें कि इस बार जो गणपति बप्पा आ रहे हैं वो किसी संत की भूमिका में होंगे, संत के अवतार में होंगे।
4: आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा 14 तारीख तक, क्योंकि सब मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो भी आप मूर्ति देखेंगे वो भव्य दिव्य रहेगी, और उसमें एक आध्यात्मिक भाव है वो आपको दिखाई देंगे।
3: इस महोत्सव के पहले, आखिरी सवाल, इस महोत्सव के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोग करते हैं मीडिया की, जहाँ पहला जो दर्शन है बप्पा का, वो तो वो कब किस तारीख होगा, और किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन देना चाहेंगे तमाम लोगों को?
4: देखिए, अभी तक तो हमने वो डिसाइड नहीं किया है किस तारीख पे ये होंगे, लेकिन गणेशोत्सव के पहले एक दो दिन पहले ही वो मुखा दर्शन जो हमारा है, फर्स्ट लुक है, वो हम करने की कोशिश है हमारी।
0: जब ये मंडप तैयार होकर सज जाएगा तब इसकी छटा कुछ और होगी। हर साल इस मंडप में मुंबई के राजा के दर्शन के लिए हजारों लोग आते हैं, उसी हिसाब से मंडप को भी विशाल और भव्य बनाने की कोशिश है। अमरावती से धनंजय साबले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: मुंबई के भव्य पंडालों में बप्पा का आगमन शुरू हो चुका है। गणेश उत्सव से पहले बप्पा की विशाल मूर्तियों की सजावट होती है, और इसीलिए उनकी पूजा से पहले उन्हें मंडप लाया जाता है। लेकिन जब गणपति की प्रतिमा आती है तब श्रद्धालुओं में भी गजब का जोश होता है। मुंबई की खेतवाड़ी गली में स्थापित होने वाले बप्पा को खेतवाड़ी चा, लंबोदर और मुंबई चा महाराजा के नाम से जाना जाता है। इस बार यहां पर बप्पा नरसिंह अवतार में विराजमान होंगे, जिनकी ऊंचाई करीब 47 फीट है। तो चलिए दर्शन करवाते हैं आपको।

0: बुद्धि, विवेक और संयम के प्रतीक बप्पा का अपने दिव्य और भव्य पंडालों में आगमन शुरू हो चुका है। मुंबई के सबसे ऊंचे गणपति का शुभागमन हो चुका है। गणेशोत्सव से करीब 15 दिन पहले से खेतवाड़ी 11वीं गली में गणपति बप्पा मोरिया का उद्घोष सुनाई देने लगा है। लगातार भगवान गणेश के प्रति आस्था और अगाध प्रेम से जुड़ी भावनाओं का संचार हो रहा है। बप्पा के आगमन के दौरान भक्तों में भारी उत्साह दिखा और पूरा परिसर गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष से गूंज उठा। मुंबई के सबसे ऊंचे गणपति आस्था, भक्ति और आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। वैसे गजानन विशाल मूर्तियों के लिए पूरे मुंबई में मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि गणेश उत्सव के लिए यहाँ विघ्नहर्ता की सबसे आकर्षक और विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है। हर वर्ष यहाँ बप्पा देवी देवताओं के अवतार के रूप में विराजमान होते हैं। इस बार विनायक की विशाल प्रतिमा को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में स्थापित किया गया है। यानी गजानन का ये स्वरूप उग्र होने के साथ ही दिव्य और भव्य भी है। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 47 फीट है।
1: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले महीने यानी कि 14 तारीख से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश महाउत्सव यानी कि गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गया है। शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हम हमेशा रोज ही अपनी खबरों में बताते हैं कि गणेश जी की जो ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं उन्हें पंडालों में लाने का काम भी शुरू हो गया है। इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर सहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा और अत्यंत भयंकर अवतार है, जिसमें उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का धारण किया है ताकि भक्त प्रहलाद को परेशान करने वाले हिरण्यकश्यप का वध किया जा सके। ऐसी परंपरा है कि मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन करने के बाद लाखों भक्त खेतवाड़ी की गलियों में बप्पा के अलग अलग रूपों के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और यही वजह है कि हर साल बप्पा नए अवतार में दिखते हैं। आस्था और भक्ति से जुड़ी ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है।
2: लास्ट 25 साल से भी ज्यादा हमें अनुभव हुआ है कि हम टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और लास्ट 5 साल से तो हम महाराष्ट्र में सबसे टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और उनका कंटिन्यू अवार्ड लेते हैं। और इसमें इस साल हमने नरसिम्ह अवतार बनानी है क्योंकि हम हर एक साल अलग अलग अलग अवतार हम यहाँ पे दर्शाते हैं और उसे मैसेज देते हैं कि जो यहाँ पे भक्तगण दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में आते हैं तो उनको अलग अलग रूप यहाँ पे दिखाई दे।
1: अच्छा, इसके पहले कौन से अवतार में बप्पा आ चुके हैं जिनके लिए आपने अवार्ड्स लिए?
2: उनके पहले आए हैं परशुराम अवतार आए हैं, फिर इंद्र अवतार बनाए हैं, फिर उसके बाद एक कल्कि अवतार बनाए हैं। कल्कि अवतार के बाद लास्ट ईयर स्वानंद देसाय, जो गणपति का खुद मूल स्थान है स्वानंद देसाय, वो रूप में गणेश जी की विराजमान की थी। वो भी 45 फीट की थी, इस बार 47 फीट की है। यहाँ पे इस बार नरसिम्ह अवतार की मूर्ति बनाई।
0: 47 फीट ऊंची प्रतिमा को अस्तित्व में लाना आसान कार्य नहीं था। निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिमा से जुड़ी कई बारीकियों का खास ख्याल रखा जाता है। इनमें गदा, त्रिशूल, चक्र और तलवार जैसे अस्त्रों का संयोजन शामिल होता है।
2: जब मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति के हम लोग करीबन 25 साल से, मैंने आपको कहा कि बड़ी मूर्तियां स्थापना करते, हम यहाँ पे ही हमारे नज़र के सामने ही मूर्ति बनाते। हमारे मूर्तिकार है सुनील वराड़कर जी। मैं और सुनील वराड़कर जी 2 महीने से शुरुआत करते हैं और उसमें कि उसका बैलेंस कैसा रहता है, उनके शस्त्र उनके जो बैलेंस रहता है उनको कैसे नियोजन करते हैं, उसमें सपोर्टिंग कैसे करते हैं, उसमें बहुत से रोल काम करते हैं। पहले कास्टिंग करते हैं, जो टीम रहती है पहले कास्टिंग की टीम काम करती है, कास्टिंग की टीम काम करने के बाद जॉइंटिंग करती है, जॉइंटिंग करने में वेल्डर की बहुत महत्व की भूमिका रहती है। उसके बाद जो आते हैं पॉलिश करने वाले, जो टीम आती है उसके बाद जो पॉलिशिंग करते हैं, उसके बाद कलर के काम करने वाले, कलर की टीम आती है, कलर टीम करने के बाद ही मंडल को सौंपा जाता है।
0: खेतवाड़ी की गलियों में स्थापित पंडालों की सजावट बहुत मशहूर है। यहाँ के पंडालों में आधुनिक लाइट और पौराणिक कथाओं की सुंदर सजावट की जाती है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए पंडाल की सजावट का विशेष ख्याल रखा जाता है। हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी थीम पर ही खेतवाड़ी की 11वीं लेन के गणपति पंडाल की सजावट होगी।
1: डेकोरेशन भी नरसिंह अवतार से ही आसपास के संबंधित होगा।
2: हाँ जी, नरसिंह अवतार के जो रिलेटिव्स जो भी है, हिरण्यकश्यप और उनके जो वध किया था, उस रिलेशन में ही हम लोग यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे।
0: खेतवाड़ी इलाके में गणपति के एक नहीं बल्कि अनेक पंडाल हैं और सभी की रौनक देखने वाली होती है। खेतवाड़ी के लंबोदर के दर्शन करने लाखों की तादाद में भक्त पहुँचते हैं, इसीलिए जब उनका मंडप में आगमन हुआ तो धूमधाम से हुआ। भक्त झूमते गाते ढोल बजाते जब गणपति की प्रतिमा को लेकर पूजा पंडाल की ओर चले तो लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। 32 फीट ऊंची खेतवाड़ी के लंबोदर की प्रतिमा गणेशोत्सव के दौरान चर्चा में रहती है। खेतवाड़ी का ये पंडाल मुंबई के प्रसिद्ध और नामी पूजा पंडालों में एक है। यहाँ इस साल भगवान गणेश की प्रतिमा को किसान के रूप में दिखाया गया है।
1: गणेश उत्सव की तैयारी मुंबई में जोरों शोरों से शुरू है। खासियत यह है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो पंडालों में लानी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप एक सक्रिय गली देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी गली है, इसी से उस बड़ी प्रतिमाओं को लाया गया है और पंडाल में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि मैं जहां मौजूद हूं, इलाके का नाम है खेतवाड़ी और यहां पर इस तरह की जो छोटी छोटी गलियां हैं कई हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पांच, छह, सात, फिलहाल मैं चौथी गली में हूं जहां के बप्पा इस समय लाए गए हैं और विराजमान कर दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि खेतवाड़ी के लंबोदर के दरबार में इस समय मौजूद हूं और एक दो दिन पहले ही बप्पा को यहां पर बकायदा धूमधाम से लाया गया है। देखिए कितना विशाल स्वरूप, कितना विशाल रूप बप्पा का यहां पर देखने मिल रहा है। खास बात यह है कि इस तरह से जो लंबी लंबी प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं उनके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया थीम भी लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए रखी जाती है।
0: खेतवाड़ी चा लंबोदर मंडल अपनी अलग थीम और भव्यता के लिए जाना जाता है। इस गणेश मंडल में हर साल एक नए थीम पर पंडाल बनता है और इस साल ये अपना 68वां गणेशोत्सव मनाने जा रहा है। इस बार इस गणेश मंडल में राज्य के किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किसान बचाओ थीम पर पंडाल बनाने का फैसला लिया गया।
3: संदेश दिया है गवर्नमेंट को कि खेतकड़ी के लिए बहुत कठोर बात है, इतना मेहनत करके भी उनको मार्केट के अंदर भाव बराबर मिलता नहीं है। एक गवर्नमेंट ने देखना मांगता है कि शेतकरी है करके अपन लोग है, शेतकरी अनाज नहीं पकाएंगे तो अपन लोग कुछ खा नहीं सकते है। अगर शेतकरी को कुछ नहीं दिया तो शेतकरी किधर से अनाज लाएगा अपने लिए, खत भी नहीं मिलेगा। एक तो इतना महंगाई हो गया है, मार्केट में इनको भाव भी बराबर नहीं मिलता है, कुछ नहीं देते। इसके लिए वो हम लोग ने गवर्नमेंट को ये संदेश दिया है
1: और बकायदा गणपति बप्पा के साथ संदेश दिया है,
3: गणपति बप्पा के साथ दिया है।
0: गली नंबर 4 में सजने वाला ये पूजा पंडाल अपनी सामाजिक और देशभक्ति थीम के लिए हर साल सुर्खियों में होता है। हर साल कोशिश यही रहती है कि गणेश पूजा के जरिए सामाजिक संदेश दिया जाए।
3: पहले साल लाया वामन अवतार, उसके बाद में लाया वर्ल्ड कप, उसके बाद में लाया ऑपरेशन सिंदूर। अभी शेतकरी आत्महत्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग गणराज लेके आए।
1: तो कैसे, मतलब आपस में आप लोग बातचीत करते, कमेटी बैठती, कैसे सोच होती है कि इस बार क्या होना
3: है? बगैर कुछ नहीं होता है, कमेटी एक साथ बैठते हैं हम लोग 5-6 जन है कमेटी में, मेन वो लोग बैठ के हम लोग डिसीजन लेते पूरे। फिर बाद में हम लोग बच्चे लोग को बताते, ये हमारे बच्चे लोग सब राह देखते है 365 साल में कभी आएंगे हमारे पापा, राह ही देखते रहते, दिन रात मेहनत भी वो लोग बच्चे लोग करते।
0: वैसे तो गणेशोत्सव का ये पर्व पूरे देश में ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन जैसी विविधता और रौनक इस पर्व को लेकर महाराष्ट्र में देखने को मिलती है वैसी कहीं और दिखाई नहीं देती। यहाँ हर साल छोटे बड़े सैकड़ों पूजा पंडाल सजते हैं जिनमें बप्पा के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। काला चौकीचा महाराजा और कामराचा महाराजा की ये प्रतिमा इसका उदाहरण है। ये प्रतिमाएं न सिर्फ आकार में बड़ी हैं, बल्कि इनकी सजावट और थीम भी काफी आकर्षक है।
4: हमारा जो 10 दिन का प्रोग्राम होता है, जितना दिन गणपति बैठते हैं, हम लोग पूरे 10 या 12 दिन पूरे धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, डेंटल चेकअप वगैरह, हेल्थ चेकअप, बहुत सारे ऐसे हमारे पूरे 10 के 10 दिन कार्यक्रम होता है। और हमारा 7वां दिन जो होता है उस दिन हम लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं।
0: खेतवाड़ी से चलिए परेल, जहां गणेश प्रतिमाओं के निर्माण से जुड़ा एक परिसर मौजूद है। इसे मुंबई का सबसे बड़ा गणपति वर्कशॉप कहा जाता है। मूर्ति कला के लिए इस सबसे बड़े और ऐतिहासिक केंद्र में मुंबई के सबसे मशहूर पंडालों के लिए विशालकाय और भव्य मूर्तियां तैयार की जाती हैं। यही वजह है कि इन मूर्तियों से जुड़ी इस कार्यशाला में 24 घंटे काम चलता रहता है।
1: बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, आपकी व्यस्तता चल रही है, कैसा चल रहा है आपका?
2: बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है।
1: अच्छा, तो कितनी अभी तक गणेश जी की प्रतिमाएं आप बना चुके हैं जो पंडालों में आपने भेज भी दिया है, और थोड़ा बताएं डिटेल?
2: काफी कम मूर्ति अभी तक निकली है, मतलब एक टेलर ही हुआ, शुरुआत हुई है अभी। इस संडे से ज्यादा के आगमन शुरू हो जाएंगे, ये संडे, अगला संडे, ये दो संडे काफी जरूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और अभी ये दो संडे में काफी सारी मूर्तियां, जो मुंबई की बड़ी बड़ी मूर्तियां, बिगेस्ट पंडाल है, उनके आगमन शुरू हो जाएंगे।
1: अभी इस समय पंडाल में भी होंगी बहुत सारी मूर्तियां बनकर रेडी हो चुकी
2: है, कई सारी मूर्तियां है, मतलब मुंबई के बिगेस्ट मंडल जो है उनकी मूर्तियां अभी ये संडे अगले संडे जाने बाकी।
1: थोड़ा सा दो चार नाम बताएं ताकि लोग आकर के इंतजार करें, मूर्ति निकले तो लोग वहां पे शामिल हो। कौन से वो बड़े मंडल है?
2: परेल वर्कशॉप से मुंबई के दिग्गज मंडल है, उनकी मूर्तियां जाना बाकी है, जैसे चिंतामणि हुआ, गंधराज हुआ, धावी खेतवाड़ी गली, खेतवाड़ी दसवीं गली, ओम तांडव हुआ, ऐसे बिगेस्ट मंडलों की मूर्तियां अभी तक यहाँ से जाना बाकी है।
1: अच्छा, अभी बहुत ही कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या सबकी मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं? और
2: कुछ मूर्तियां तैयार है और बाकी मूर्तियों काम चल रहा है।
1: कितने कितने समय तक आप काम करते हैं और कितने लोगों के साथ कर रहे हैं?
2: अभी 24 घंटे काम चल रहा है।
0: 14 सितंबर से शुरू होने वाला गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और ऐतिहासिक गौरव का भी प्रतीक है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने इसे राज्य महोत्सव घोषित किया है, जिससे इसकी सांस्कृतिक महत्वता और बढ़ गई है। गणपति उत्सव के दौरान बप्पा के भक्त अपने आराध्य की पूजा के साथ उनके गुणों और उनकी तरफ से मिलने वाले संदेशों को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। 14 सितंबर से 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश से सुख समृद्धि के आशीर्वाद की कामना की जाती है। पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कौन सा रत्न धारण करने से हृदय रोग में सुधार होता है, कौन सा रत्न धारण करने से डिप्रेशन की बीमारी दूर हो जाती है, और कौन सा रत्न धारण करने से नसों की समस्या में सुधार होता है, रत्नों के प्रयोग से कैसे दूर करें बीमारियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियस की दुनिया में उलझते और सुलझते रिश्ते। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: किर्गिस्तान में आज हुए सीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से होगी अहम मुलाकात। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम, 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक 2465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित देश के लिए जुटाया फंड, देश की सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। अब पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनीज को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा, FSSAI ने अदालत में दिए अपने हलफनामे में जानकारी दी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग इसे बिना जांचे हुए, बिना परखे हुए सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन पर सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है और नतीजा ये होता है कि लोग इसे बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक, जहां हम तमाम खबरों के फैक्ट चेक करने वाले हैं। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए हुए वायरल तस्वीरों की, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद के दृश्य हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की होगी जिसको शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अभी का है और पंजाब की भगवंत मान सरकार में सरकारी स्कूल की बदहाली को दिखाता है। क्या है इस वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से जोड़कर दो तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस कोलाज में नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीर को दिखाया गया है। वायरल हो रही तस्वीरों का सच और झूठ क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
4: नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई है जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। अब इसी संदर्भ में तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पहली तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस तस्वीर को तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल, शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। चीन अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, नेपाल त्रासदी का ताजा हाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों का ये कोलाज बनाकर शेयर किया जा रहा है और इसे नेपाल में आई भीषण बाढ़ की तस्वीर बताया जा रहा है। एक तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल और शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोड़ कर रख दिया। चाइना अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक की टीम वायरल दावे की जांच में जुट गई। हाँ, ये बात सच है कि नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इसी बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीरें इसी बाढ़ की हैं, ये जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने लगातार सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर एडिटेड तस्वीरों को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? जब हमने जांच की है तो क्या कुछ पाया है इस रिपोर्ट में देखिए।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी, सर्च के जरिए तस्वीरों को खोजा। इस दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये तस्वीरें नजर नहीं आईं। इसके बाद तस्वीरों को गौर से देखने पर हमें इसमें घरों की बनावट और सड़क पर मौजूद वाहनों का स्वरूप भी सामान्य नहीं लगा। इसके बाद हमने तस्वीरों के इस कोलाज को AI डिटेक्शन टूल हाइव डिटेक्ट पर चेक किया। इस दौरान इस टूल ने 90.2% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI जनरेटेड बताया। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के दावे से वायरल हुई तस्वीरों का सच जानने के लिए हमने इसे AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन पर भी जांचा। टूल ने अपने विश्लेषण में कोलाज में मौजूदा तस्वीरों को 99% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। कोलाज में मौजूद तस्वीरों को हमने एक और AI डिटेक्शन टूल 0GPT पर भी जांचा। इस टूल ने 85% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI निर्मित बताया। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के नाम पर वायरल कोलाज में मौजूद तस्वीरें AI जनरेटेड हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: पंजाब के एक सरकारी स्कूल की खराब स्थिति दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो में लड़कियों के टॉयलेट्स की बदहाली दिखाई गई है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग पंजाब के भगवंत मान सरकार के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के एक सरकारी स्कूल की इस बदहाली को दिखाते हुए शख्स का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाते हुए ये बता रहा है कि लड़कियों के टॉयलेट्स में छत ही नहीं है और न ही पानी की व्यवस्था है। कुछ लोग इस वीडियो को हाल फिलहाल का बताते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पंजाब में बेटियों के लिए नया फॉर्मूला, पंजाब के लोग दिखा रहे हैं कि केजरीवाल के नए शिक्षा मॉडल की असल हकीकत क्या है। पंजाब बीजेपी ने भी वीडियो को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और लिखा कि छात्राओं के लिए बने शौचालयों की दयनीय स्थिति आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल की खामियों को उजागर कर रही है।
5: शर्म आ रही है, चल वीडियो दिखा दे।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
5: तानू देख के लग रहा होगा कि ये जेंट्स टॉयलेट है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाता है। कुछ लोग इसे अभी का बता रहे हैं और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को देखा। इस दौरान हमें वीडियो की शुरुआत में स्कूल की बिल्डिंग पर पंजाबी में कुछ शब्द देखने को मिले। जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो ये जानकारी सामने आई कि ये जल्ला है और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में जल्ला गांव है, मतलब वायरल हो रहा वीडियो पंजाब का ही है। लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? जब फैक्ट चेक की टीम ने जांच पड़ताल की तो क्या कुछ पाया है इस रिपोर्ट में देखिए।
6: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम एक YouTube चैनल पर पहुंचे। यहां इसे 6 अगस्त 2018 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। साल 2018 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो फतेहगढ़ साहिब के जल्ला गांव के एक सरकारी स्कूल का है और ये वीडियो सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड नाम के एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया था। पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बीजेपी के दावे का खंडन करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें उस स्कूल का दौरा करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, साफ सुथरे शौचालय और छात्राओं के लिए बने टॉयलेट में सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था दिखाई दे रही है। साफ है कि वायरल वीडियो उस वक्त का है जब आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं थी। हालांकि मौजूदा वक्त की बात करें तो ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जिनके मुताबिक सरकारी दावों के उलट आज भी पंजाब में कुछ स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं तक की कमी है। हालांकि पंजाब ने इस साल नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में केरल को पछाड़कर टॉप रैंक हासिल की है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो साल 2018 का है। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए।

0: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुणे में 22 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं की समस्या भी सुनी और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बात की। इसी से जोड़कर ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पुणे में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में बेटियों की गूंज। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग धड़ल्ले से इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूम रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी था, तो फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए टीम ने सबसे पहले इस वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखा। वीडियो किसी स्टेडियम का लग रहा है जहां पर लोग हाथों में झंडा लिए हुए झूम रहे हैं। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो और 22 अगस्त को पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम की वीडियो की तुलना की तो फर्क साफ नजर आया। इससे यह इशारा मिला कि वायरल हो रहा वीडियो कहीं और का हो सकता है और इसके बाद फैक्ट चेक की टीम को वीडियो में एक जगह मेक्सिको लिखा हुआ नजर आया। साथ ही इस वीडियो में लोगों को मेक्सिको का झंडा लिए हुए भी देखा जा सकता है। ऐसे में हमें वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे के गलत होने का संदेह हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और कार्यक्रम से जुड़े हुए वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है? फैक्ट चेक की टीम की जांच में क्या कुछ सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक थ्रेड्स अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो मेक्सिको के जोकालो सिटी का है जहां फुटबॉल फैंस मेक्सिको टीम के गोल करने पर जश्न मना रहे थे। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक खेल पत्रकार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर करते हुए बताया गया है कि ये मेक्सिको के जोकालो सिटी में फुटबॉल फैंस के जश्न मनाने का है। प्रोफाइल को खंगालने पर हमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते कई वीडियो भी मिले। जांच के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट को 1 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मेक्सिको ने इक्वाडोर को हराकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई थी। मेक्सिको ने इक्वाडोर को इस मैच में 2-0 से हराया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम के नाम पर वायरल वीडियो मेक्सिको का है। जुलाई 2026 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच हुए फुटबॉल मैच का है जिसमें मेक्सिको ने इक्वाडोर को हरा दिया था। फुटबॉल फैंस इस जीत का जश्न मना रहे थे जिसे अब गलत दावे के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: कौन सा रत्न धारण करने से हृदय रोग में सुधार होता है? कौन सा रत्न धारण करने से डिप्रेशन की बीमारी दूर हो जाती है और कौन सा रत्न धारण करने से नसों की समस्या में सुधार होता है। रत्नों के प्रयोग से कैसे दूर करें बीमारियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुडलक स्पेशल में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
2: इन दिनों ये बच्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अपने घर के कच्चे आंगन में नंगे पैर खड़ा है। ताज्जुब की बात यह है कि बच्चे ने अपने एक हाथ में केले का गुच्छा पकड़ा हुआ है और दोनों हाथों को पीछे बांध रखा है। इसके बावजूद वो अपनी जांघों, पैरों और सिर के संतुलन से फुटबॉल को लगातार हवा में जगल करता रहता है। गांव के एक साधारण माहौल में बना वीडियो ये साबित करता है कि हुनर किसी सुविधाओं का मोहताज नहीं होता। बच्चे के चेहरे पर न तो कोई झिझक है और न ही एकाग्रता की कमी। वो पूरी मग्नता के साथ नंगे पैरों से फुटबॉल पर ऐसा नियंत्रण दिखाता है जैसा पेशेवर खिलाड़ी सालों के अभ्यास के बाद हासिल करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग बच्चे की कला और एकाग्रता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी से मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। इस वीडियो में पिंक फ्रॉक पहने एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्चे की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

एक पापा ही होते हैं जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में एक बच्ची हाथ में टेलकम पाउडर लेकर अपने भाई के पास जाती है। वो भाई को पाउडर लगाना चाहती है लेकिन भाई मना कर देता है। फिर बच्ची अपनी माँ के पास जाती है, माँ भी मना कर देती है। फिर बच्ची अपने पिता के पास जाती है, पिता लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। बेटी के हाथ में टेलकम पाउडर देखकर पिता मना नहीं करते हैं और आराम से लगा लेते हैं। ये देखकर बेटी खुश हो जाती है और पिता की गोद में बैठकर खूब मस्ती करती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब देख रहे हैं।

0: पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ में आती हैं। चीन में दो शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में उलझते और सुलझते रिश्ते। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: किर्गिस्तान में आयोजित SCO समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री रवाना, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से होगी अहम मुलाकात। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत के तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम, 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित देश के लिए जुटाया फंड, देश की सुख शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। अब पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनी को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा, FSSAI ने अदालत में दिए अपने हलफनामे में दी जानकारी।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जब तक मानव का जीवन है, मानव का शरीर है, उसे रोग बीमारियां होती रहती हैं, स्वभावतः शरीर में बीमारियां आती ही हैं। ज्योतिष में बीमारियों को दूर करने के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, यंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, रत्न के माध्यम से। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग रत्नों के माध्यम से, रत्नों का प्रयोग करके आप अपने रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं, और आपको विशेष रूप से बताएंगे आपके लग्न के हिसाब से किस तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं, और उस बीमारी को आप अपने लग्न में कौन सा उपाय करें कि आपकी बीमारी दूर हो जाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये तीन मंत्र दरअसल एक मंत्र हैं, इन्हें मंत्र त्रयी कहा जाता है। स्वास्थ्य की कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, अगर आप इस मंत्र त्रयी को पढ़ें, सुबह और शाम जप करें, तो आप स्वास्थ्य की समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। फिर से नोट करें, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। नियमित रूप से सुबह शाम जप करके आप अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि अलग अलग रत्नों के प्रयोग से आप अपनी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस प्रकार से हमारे शरीर पर असर डालते हैं और ये कैसे बीमारियों में हमें फायदा पहुंचाते हैं। देखिए, जैसे आकाश में 9 ग्रह स्थित हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, उन ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग हैं और स्वभाव प्रभाव हैं। आपके शरीर के ग्रहों का भी अलग अलग गुण है।

जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है या आकाश के ग्रहों के साथ इनका संबंध टूटने लगता है तब आपको बीमारी होने लगती है, क्योंकि वो कनेक्शन कमजोर हो जाता है। रत्न धारण करके आप आकाश के ग्रहों से शरीर के ग्रहों तक तरंगों को ठीक कर लेते हैं। आप उन ग्रहों की तरंगों को रास्ते पर लाते हैं, और जब आप

0: बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं, और अगर बीमारियों की संभावना है तो आप बीमारियों से बच जाते हैं। अलग अलग रत्न आपको किस बीमारी में फायदा पहुंचाते हैं, चलिए अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। पहला रत्न है माणिक्य। माणिक्य किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से किन बीमारियों में लाभ होता है? देखिए, माणिक्य जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, ये सूर्य का रत्न है। सूर्य इसका प्रमुख ग्रह है। माणिक्य का रंग सामान्यतः लाल और गुलाबी होता है। हृदय रोग के मामले में और हड्डियों की बीमारी के मामले में माणिक्य बहुत लाभ पहुंचाता है। अगर आपकी कुंडली में हृदय रोग की संभावना है या आप हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे हैं तो पक्की तौर पे जानिए कि कुंडली में सूर्य प्रभावित हुआ होगा। ऐसी स्थिति में आप सलाह लेकर एक माणिक्य पहन सकते हैं। इसको सोने या तांबे में धारण करना चाहिए। माणिक्य को सोने या तांबे की अंगूठी में, अनामिका अंगुली में रविवार की प्रातः धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अब दूसरे रत्न की बात करते हैं। दूसरा रत्न है मोती। मोती किस बीमारी में फायदा पहुंचाता है, कौन सी स्वास्थ्य की समस्या में मोती पहनने से लाभ होता है? देखिए, मोती जो है ये चंद्रमा का रत्न है। मोती के ऊपर जो असर होता है वो होता है चंद्रमा का। मोती जब आप धारण करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके शरीर पर असर डालता है। शीत रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, एनीमिया यानी खून की कमी और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के मामले में मोती पहनने से लाभ होता है। अगर खून की कमी है, थैलीसीमिया है, कोल्ड कफ जल्दी जल्दी होता है या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है आपका, तो आप सलाह लेकर एक मोती पहन सकते हैं। चांदी की अंगूठी में, सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होता है। अब जानते हैं मूंगे के बारे में। मूंगा किन बीमारियों में फायदा पहुंचाता है, किस तरह का इसका इंपैक्ट होता है? देखिए, मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है। मंगल ग्रह से संबंध रखता है। अगर आपको कमजोरी का अनुभव होता है, अगर आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होता है, आत्मविश्वास कमजोर होता है, बार बार आपको बुखार हो जाता है, ज्वर हो जाता है, तो इन मामलों में मूंगा पहनने से लाभ होता है। जिनके शरीर में इंटरनल गड़बड़ी ज्यादा है, जिनके शरीर में रिएक्शन और इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को मूंगा पहनना चाहिए। मूंगा पहनने से फायदा होगा। या जिन लोगों को बार बार बुखार हो जाता है, उनको भी मूंगा पहनने से काफी लाभ होता है। मूंगे को तांबे या सोने की अंगूठी में, अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः धारण करना चाहिए, काफी फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं पन्ने की। पन्ना यानी एमराल्ड, इसका क्या प्रभाव है और ये किस बीमारी से राहत देता है? देखिए, पन्ना जो है ये बुध का रत्न है, मरकरी का स्टोन है, अंग्रेजी में एमराल्ड कहते हैं, हरे रंग का बड़ा सुंदर सा रत्न है। ये रत्न मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से प्रभाव देता है। मानसिक रोग होने पर, डिप्रेशन होने पर, त्वचा की समस्या होने पर और वाणी की समस्या होने पर पन्ना धारण करना चाहिए। खास तौर से जिनको एलर्जी जल्दी होती है, एलर्जी की दिक्कतें होती हैं, या जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन है, ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, कोई मानसिक बीमारी है, ऐसे लोगों को पन्ना पहनने से बहुत फायदा होता है। पन्ना पहनना इनके लिए लाभकारी होता है। डिप्रेशन के मामले में पन्ना जरूर पहनना चाहिए। या जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर चिंता होती हो, छोटी छोटी बातों पर तनाव पालते हो, ऐसे लोगों को भी पन्ना पहनना चाहिए। चांदी की अंगूठी में, सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होता है। अब बात करते हैं पीले पुखराज के बारे में, येलो सैफायर के बारे में। पीला पुखराज कितना प्रभावशाली है और ये कैसा असर जीवन पर डालता है? देखिए, पीला पुखराज यानी येलो सैफायर बृहस्पति का रत्न है और जैसा इसका नाम है, ये पीले रंग का होता है। ये मध्यम गति से प्रभाव देता है, बहुत तेज भी नहीं और बहुत धीमे भी नहीं। शिक्षा, ज्ञान, पेट और कैंसर की समस्या में सलाह लेकर पीला पुखराज पहनना चाहिए। देखिए, पीले पुखराज के साथ दो बातें समझिए। अगर आपको पहले से पेट की गंभीर बीमारी है, अगर आपको पहले से लीवर की समस्या रहती है, तो आप पीला पुखराज मत पहनिएगा। अगर आपकी मोटापे की टेंडेंसी है, आप बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं या बहुत जल्दी आपका वजन बढ़ जाता है, तो भी आपको पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर पेट की बीमारी की संभावना है, कैंसर होने की संभावना बन रही है, तो आप सलाह लेकर बीमारी होने के पहले पीला पुखराज पहन सकते हैं। जीवन में गंभीरता लाने के लिए, चंचलता दूर करने के लिए, अपने मन के मोह को समाप्त करने के लिए पीला पुखराज पहनना बहुत अच्छा होता है। पीले पुखराज को सोने में धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा है। तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे, या अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तब आप इसको पीतल में पहन सकते हैं। बात करते हैं हीरे की, यानी डायमंड की। किन बीमारियों में हीरा पहनने से लाभ होता है? देखिए, हीरा जो है ये शुक्र का रत्न है, डायमंड। और हीरा जब आप पहनते हैं तो ये बड़ी तेज गति से, बड़ी तीव्र गति से जीवन में आपको प्रभाव देता है। नपुंसकता, इम्पोटेंसी, दुर्बलता, मधुमेह और आंखों के लिए हीरा लाभकारी होता है। जिन पुरुषों को इम्पोटेंसी की समस्या है या संतान उत्पत्ति के लिए स्पर्म काउंट कमजोर हैं, उन्हें सलाह लेकर एक हीरा पहनना चाहिए। डायबिटीज के मामले में भी हीरा पहनने से फायदा होता है, लेकिन सलाह लेकर के पहनेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हीरे को चांदी या प्लेटिनम में पहनना चाहिए। अगर आपको सेहत के लिए हीरा पहनना है तो तर्जनी उंगली में हीरा पहने, और अगर आपको रिलेशनशिप के लिए, प्रेम के लिए, आकर्षण के लिए हीरा पहनना है तो इसको अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। बात करते हैं नीलम की। नीलम यानी ब्लू सैफायर। किन बीमारियों में नीलम पहनने से फायदा होता है? किन बीमारियों में लाभ होता है? देखिए, नीलम यानी ब्लू सैफायर ये शनि का रत्न है। ये सबसे तेज गति से जीवन में प्रभाव देता है। स्नायु तंत्र की प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, बार बार दुर्घटना हो रही हो, पक्षाघात यानी पैरालिसिस की समस्या हो, या असाध्य बीमारी हो गई हो, कोई अनकंट्रोल्ड बीमारी हो गई हो, तो उसमें नीलम पहनने से आपको लाभ होता है। लेकिन बिना कुंडली अच्छी तरह से दिखाए, बिना पूरी जानकारी के नीलम नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम है, कोई नस दब रही है, नस के दबने की वजह से चलने में दिक्कत हो रही है, हाथ पैर में झनझनाहट होती है, बार बार चक्कर आते हैं, ऐसे लोग सलाह लेकर एक नीलम, चांदी या प्लेटिनम में, मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में अगर धारण करें तो इनके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं गोमेद की और लहसुनिया की। गोमेद और लहसुनिया किस ग्रह का रत्न है और इससे क्या लाभ है? देखिए, गोमेद जो है, हेसोनाइट ये राहु का रत्न है और लहसुनिया कैट्स आई विडालाक्ष ये केतु का रत्न है। सोच समझकर इसको धारण करना चाहिए क्योंकि राहु और केतु के रत्न से कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एकदम बीमारियां शूटअप कर जाती हैं। राहु की महादशा चलने पर जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो तुरंत गोमेद पहना देते हैं, ऐसा कभी मत करिएगा। और केतु की दशा चलने पे लोग तुरंत लहसुनिया पहना देते हैं या पहन लेते हैं, ऐसा भी मत करिएगा। राहु और केतु के रत्न सहायक रत्नों की तरह, सपोर्ट की तरह पहने जाते हैं, इसीलिए ये बेसिकली मुख्य रत्न नहीं है। बीमारी के नेचर के हिसाब से और बीमारी ठीक होने के समय के हिसाब से आपको राहु केतु का रत्न पहनाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग लग्न में कौन सा रत्न धारण करें जिससे रोग और बीमारी से सुरक्षा मिले। लग्न की बात करेंगे, राशि की नहीं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेष लग्न के बारे में। सामान्यतः मेष लग्न वालों का स्वास्थ्य मजबूत होता है, फिर भी आप देखेंगे कि मेष लग्न वालों के साथ दुर्घटना की और चोट चपेट की संभावना होती है। अक्सर इनके साथ दुर्घटना घटती है या इनको चोट चपेट लगती है। मेष वाले बीमार नहीं पड़ते, दुर्घटना के चोट चपेट के शिकार होते हैं। और उम्र बढ़ने पर मेष लग्न वालों को त्वचा की या आंखों की दिक्कत हो जाती है, ऐसा देखा गया है। अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो माणिक्य पहनना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको लगे कि कभी आप मेंटली ज्यादा परेशान होते हैं, ज्यादा चिंता करने लगे हैं, तो कुछ स्थितियों में मेष लग्न वालों को मोती पहनने से भी लाभ होता है। लेकिन कुल मिलाकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए मेष लग्न वालों को माणिक्य, थोड़ा बड़ा माणिक्य, 7-8 रत्ती का एक माणिक्य धारण करना चाहिए। वृषभ लग्न, स्वास्थ्य के मामले में ये लग्न भी मजबूत लग्न है। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य गड़बड़ कम होता है। कुल मिलाकर मेहनत करके ये अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। फिर भी वृषभ लग्न वालों को उम्र बढ़ने पर हार्मोन्स की समस्या, सर्दी जुखाम की समस्या और ENT कान नाक गले की समस्या परेशान करती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, निमोनिया का होना, छाती में जकड़न, ये समस्या वृष लग्न वालों के साथ बहुत होती है। वृष लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा होगा कि ये सलाह लेकर एक नीलम धारण करें। नीलम धारण करना इनके लिए अच्छा है। और अगर वृषभ लग्न के लोग नीलम के साथ ओपल का कॉम्बिनेशन पहने तो स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों का स्वास्थ्य मिला जुला रहता है, कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत ज्यादा खराब होता है, मध्यम स्थिति नहीं रहती, इनका स्वास्थ्य मिला जुला दिखाई देता है। मिथुन लग्न वालों को नसों की समस्या, नर्व की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या और त्वचा की समस्या होती रहती है। एलर्जी की प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से और त्वचा की समस्या से परेशान होते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा जो रत्न है वो है पन्ना। मिथुन लग्न वाले अगर पन्ना धारण करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मिथुन लग्न वालों को आग्नेय रत्नों से मूंगा, माणिक्य, लहसुनिया जो अग्नि प्रधान रत्न हैं, उनसे परहेज करना चाहिए। मिथुन लग्न वाले अगर पन्ना पहने तो स्वास्थ्य के अलावा करियर के और बाकी मामलों के मामले भी इनके बेहतर रहेंगे। कर्क लग्न, ये कमजोर स्वास्थ्य वाला लग्न है। सामान्यतः कर्क लग्न वालों का स्वास्थ्य कमजोर रहता है और ये बीमारियों को लेकर चिंता भी बहुत करते हैं, तनाव भी बहुत पालते हैं। इनको शारीरिक समस्या तो होती ही है, शरीर से ज्यादा मानसिक समस्या होती है। और कर्क लग्न वालों को पेट की दिक्कत, मेंटल डिप्रेशन की दिक्कत, कोल्ड कफ की दिक्कत कर्क लग्न वालों को ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, कोल्ड का टेम्परामेंट होता है। इसलिए कर्क लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा जो रत्न है वो है मूंगा। एक देसी मूंगा लगभग 14-15 रत्ती का कर्क लग्न वालों को पहनना चाहिए। और कर्क लग्न के लोग अगर मूंगा मोती के साथ पहने तो और भी अच्छा होगा। अनामिका उंगली में 14-15 रत्ती का मूंगा और सबसे छोटी उंगली में 8-10 रत्ती की अगर एक मोती धारण करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न सूर्य का लग्न है, इसीलिए इनका स्वास्थ्य काफी मजबूत रहता है। कठिन स्थितियों में भी मजबूत स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने पर ऐसा देखा गया है कि सिंह लग्न वालों को हड्डियों की दिक्कत, शरीर दर्द की दिक्कत, पेट की दिक्कत और आंखों की समस्या से थोड़ी बहुत परेशानी होती है। वैसे सिंह लग्न वाले जितने में आम आदमी बीमार पड़ जाएगा उतनी समस्या में भी बीमार नहीं पड़ते, बहुत देर बाद बीमार पड़ते हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। सिंह लग्न वालों को एक मूंगा पहनना चाहिए, 12-14 रत्ती का एक मूंगा अनामिका में पहने, स्वास्थ्य की स्ट्रेंथ बेहतर होगी। और अगर शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में तकलीफ हो रही है तो मूंगे के साथ एक माणिक्य, दाहिने हाथ में मूंगा पहन लीजिए, बाएं हाथ की अनामिका में माणिक्य पहन लीजिए। मूंगा माणिक्य का कॉम्बिनेशन अगर आप पहने और सूर्य के प्रभाव में रहें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपको सामान्यतः बीमारियां नहीं होंगी। कन्या लग्न, देखिए कन्या लग्न वालों का स्वास्थ्य या तो काफी खराब होता है या काफी अच्छा होता है, और इनको बड़ी विचित्र बीमारियां पकड़ती हैं, इनको सामान्य बीमारी नहीं पकड़ती, ऐसी बीमारी पकड़ेगी जो हजारों लाखों में किसी एक को होती है, फिर खोजते रहिए इलाज। तो कन्या लग्न वालों का स्वास्थ्य एकदम से या तो बहुत खराब होगा या काफी अच्छा होगा, थोड़ी थोड़ी समस्या इनके साथ रोज लगी नहीं रहती और ये अपना काम भी लगातार करते रहते हैं। कन्या लग्न वालों को नसों की समस्या, खासतौर से पीठ दर्द, लोअर बैक का पेन इनको काफी परेशान करता है। त्वचा की और बालों की समस्या काफी होती है। कन्या लग्न की जो लड़कियां हैं उनके बाल थोड़े पतले होते हैं या बाल बड़ी तेजी से झड़ते हैं और तमाम उपाय करने के बावजूद भी झड़ते रहते हैं, ऐसा देखा गया है। तो अगर आपका कन्या लग्न है और आप चाहते हैं कि आप लगातार स्वस्थ बने रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो इसके लिए आप पन्ना पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। पन्ना पहनने से आपके स्वास्थ्य को ताकत मिलेगी। और कुछ स्थितियां कन्या लग्न में ऐसी होती हैं, जैसे आपको कोई विचित्र बीमारी हो गई जिसकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है या जिसकी लंबे समय तक दवाइयां चल रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप सलाह लेकर पन्ने के साथ एक नीलम भी पहन सकते हैं, इससे भी आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। तुला लग्न, तुला लग्न वालों का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव वाला रहता है, कभी बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, कभी सेहत बिगड़ जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, लगातार निरंतर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, इनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। और तुला लग्न वालों को पेट की दिक्कत जरूर होती है, आंखें कमजोर होती हैं और एलर्जी की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या तुला लग्न वालों को पकड़ लेती है बहुत जल्दी। यूरिन इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, आंखों का इन्फेक्शन इनको पकड़ लेता है। तुला लग्न वालों की जो स्ट्रेंथ आती है ना, जो ताकत इनके जीवन में आती है, वो आती है दरअसल सैटर्न से, शनि से। तुला लग्न वालों का जो प्राण है ना, वो सैटर्न है। तो तुला लग्न वालों को सलाह लेकर एक नीलम पहनना चाहिए। अगर तुला लग्न वाले एक नीलम धारण करें तो काफी बेहतर होगा। और नीलम के साथ तुला लग्न वालों को एक ओपल या हीरा पहनना चाहिए। ज्यादा बेहतर होगा कि तुला लग्न वाले एक ओपल पहने और एक नीलम पहने, तो इससे इनका स्वास्थ्य ठीक होगा, इनका मन ठीक होगा, जीवन में बार बार के सेहत के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे। वृश्चिक लग्न, चंद्रमा के लिए बड़ा कमजोर लग्न है ये, इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों का स्वास्थ्य आप देखेंगे ज्यादातर कमजोर रहता है और मन के मामले में या तो बड़े उग्र होते हैं या तो बड़े कमजोर होते हैं, यानी या तो एग्रेशन में रहेंगे या तो डिप्रेशन में रहेंगे, बीच में नहीं रहते, बैलेंस मन नहीं होता, इनका मन ऊपर नीचे होता रहता है। और वृश्चिक लग्न वालों को सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ता है, इन्फेक्शन के रोग जल्दी होते हैं, मानसिक रोग जल्दी होते हैं, इनको नशा करने की आदत भी बहुत जल्दी पकड़ती है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है ना, जो वृश्चिक लग्न में लीड करती है, वो बड़ी पॉइजनस राशि है। वृश्चिक लग्न वाले बड़े अच्छे डॉक्टर भी बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन वृश्चिक लग्न वालों में नशा करने की एक टेंडेंसी भी पाई जाती है। और सर्दी जुकाम, इन्फेक्शन, मेंटल डिप्रेशन, नशा करने की आदत, ये सब इनको जल्दी हो जाता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मोती पहनना सबसे ज्यादा बढ़िया है, एक बड़ी सी मोती, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, और इनको मोती लॉकेट में अगर पहनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, चांदी के चेन में, चांदी के लॉकेट में बना के गले में पहने मोती तो बहुत ही बढ़िया होगा। और वृश्चिक लग्न वाले अगर बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार चिंताएं हो रही हैं, तो एक बढ़िया सा देसी मूंगा 12-14 रत्ती का, ये भी बनवा के आप पहनिएगा, इससे आपको लाभ होगा। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले एक तो अपने मन पर काबू करने का प्रयास करें और दूसरा नशे की आदत से, उल्टी सीधी चीजें खाने से बचें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और सलाह लेकर एक मोती और एक मूंगा पहन लीजिएगा। धनु लग्न, धनु लग्न मजबूत लग्न है। इनका स्वास्थ्य सामान्यता अच्छा रहता है, इनके स्वास्थ्य में ज्यादातर दिक्कतें नहीं होती और अनुशासन का लग्न है, तो धनु वालों को आप देखेंगे कि वो नॉर्मली डिसिप्लिन में रहते हैं। धनु लग्न वालों को चोट चपेट लग जाएगी, जंगली जानवर काट लेंगे, कुत्ता काट लेगा, गाय मार देगी, बैल मार देगा, ये सब घटना बहुत होती है। तो दांत वाले, नाखून वाले, सींग वाले जानवरों से धनु वालों को दूर रहना चाहिए। चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से बचना चाहिए, ऊंचाई से गिरने की दुर्घटनाओं की संभावना इनके साथ बहुत होती है। और धनु लग्न वालों को टाइफाइड बहुत जल्दी होता है, इसलिए खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। धनु लग्न वालों के लिए माणिक के पहनना बहुत शुभ है। अगर आप एक बढ़िया सा माणिक, थोड़ा बड़ा माणिक 8-10 रत्ती का तांबे या सोने में अनामिका उंगली में पहन लें रविवार को, तो इससे बहुत फायदा होगा। एक तो आपका भाग्य अच्छा होगा, सबसे पहली बात, और दूसरी बात क्या अच्छी होगी, माणिक पहनने से आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अगर साथ में पीला पुखराज भी पहन लें, हालांकि आपको सलाह लेके पुखराज पहनना चाहिए, अगर आप पीला पुखराज भी माणिक्य के साथ पहने तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। मकर लग्न, मकर लग्न वालों को देखा गया है कि बचपन में उम्र के लगभग 22-24 साल तक इनकी सेहत काफी कमजोर होती है। शुरुआत से ही, बचपन से ही इनको पेट की समस्या अक्सर पकड़ लेती है। सामान्यता उम्र बढ़ने के बाद 35 साल से लेकर 50 साल का जो समय होता है इनका, उसमें मकर लग्न वालों को पेट की दिक्कत काफी परेशान करती है और सामान्यता इनको पेट की हड्डियों की और आंखों की समस्या होती रहती है। अगर मकर लग्न है और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो एक पन्ना बनवा करके आपको पहनना चाहिए। एक पन्ना बनवाकर आप धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो थोड़ा कम होगा। और साथ में सलाह लेके एक हीरा या ओपल पहन लें तो इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप मजबूत होंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है और अक्सर देखेंगे आप कि कुंभ लग्न वाले एकदम ठीक रहेंगे, 6 महीना साल भर एकदम ठीक हैं, फिर एकदम से बीमार पड़ के डिटोरिएट कर जाते हैं। इनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। सामान्यतः कुंभ लग्न वालों को मानसिक बीमारियां जल्दी होती हैं, डिप्रेशन जल्दी होता है, नसों की बीमारियां होती हैं, न्यूरो प्रॉब्लम होता है और इन्फेक्शन वाली बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। कुंभ लग्न वालों का लीवर अक्सर कमजोर होता है, ऐसा देखा गया है। कुंभ लग्न वालों में चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है तो मेंटली ये कमजोर लग्न है। अगर इनको मेंटली ताकत मिले, मेंटल स्ट्रेंथ मिले, तो सामान्यतः ये स्वस्थ रहेंगे। तो क्या करना चाहिए, कुंभ लग्न वालों को ओपल या हीरा पहनना बहुत अच्छा है। अगर कुंभ लग्न के पुरुष हैं तो ओपल पहने, और अगर कुंभ लग्न की महिला हैं तो हीरा पहनने से फायदा होगा, तर्जनी उंगली में धारण करने से लाभ होगा। और अगर आपको विशेष दिक्कत है, आपको अंदर से कमजोरी, थकान महसूस होती है, स्ट्रेंथ का अनुभव नहीं होता, तो नीलम अगर आप पहन लें साथ में, ओपल या हीरे के साथ अगर एक नीलम धारण करें तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। मीन लग्न, मीन लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यता मिला जुला होता है और मीन लग्न वाले धीरे धीरे धीरे धीरे उल्टी सीधी हरकतें करके अपना स्वास्थ्य चौपट कर लेते हैं। 40 के बाद इनके स्वास्थ्य पर ज्यादा बुरा प्रभाव दिखाई देता है। इनको मोटापा तुरंत पकड़ेगा, इनको मोटापे की समस्या, त्वचा की समस्या और बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। मीन लग्न वालों को मोटापा बहुत जल्दी और काफी ज्यादा होता है और अक्सर मीन लग्न वालों को जीवन में 1 या 2 सर्जरी से भी गुजरना पड़ता है। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो एक मोती धारण करिएगा, एक बढ़िया सी मोती 12-14 रत्ती की बनवा के चांदी में सबसे छोटी उंगली में पहने अच्छा होगा। अगर बहुत मोटापा नहीं है या मोटापे की टेंडेंसी नहीं है तो पीला पुखराज पहनने से भी फायदा होगा, लेकिन अगर मोटापे की टेंडेंसी है और आपका लग्न मीन लग्न है तो मोती के साथ एक देसी मूंगा पहनिएगा, आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में उलझते और सुलझते रिश्ते। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: राफेल के रणकौशल को कॉपी करने में जुटा चीन। मिस्र के आसमान में शह और मात का दाम। राफेल को डिकोड करने वाला चीन का प्लान। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में उलझते और सुलझते रिश्ते। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: शादी, हर किसी की जिंदगी का ये वो खास मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन आगर मालवा के सलोनी जैन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ एक नेक संदेश भी दिया। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चों में कटौती करके बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना तैयार करवाया। इस आशियाने में परिंदे रह सकते हैं जो उन्हें धूप हवा और ठंड से बचाता है। तालाब के किनारे बना यह अनोखा आशियाना अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सलोनी की ये पहल शादी की खुशियों के साथ प्रकृति प्रेम की खूबसूरत मिसाल भी पेश कर रही है।
4: तालाब किनारे खूबसूरत रंगों से सजा ये आशियाना दूर से ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। कुछ फीट ऊंचा ये आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहां परिंदों के लिए एक के ऊपर एक 6 मंजिलों में कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए हैं। इस आशियाने में छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, जबकि बड़े परिंदों के लिए थोड़े बड़े दरवाजे। हर मंजिल पर एक छत भी बनाई गई है।
5: आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग अपने विवाह कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर आगर मालवा की सलोनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उसने अपने विवाह के खर्च से कटौती करके बेजुबान पक्षियों के लिए आगर में स्थित मोती सागर तालाब के किनारे एक आशियाना बनाया है। सलोनी चाहती है कि जो बेजुबान पक्षी हैं, जो परेशान होते हैं, मौसमों की मार झेलते हैं, वो इस आशियाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
4: आगर मालवा की बेटी सलोनी जैन ने अपनी शादी के मौके पर इस अनोखे आशियाने का निर्माण करवाया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चे में कटौती कर ये पहल की ताकि बेजुबान परिंदों को भी अपना घर मिल सके।
6: मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तालाब किनारे रहती हूँ, बहुत सारे पक्षियों को देखती हूँ। ठंड में बहुत परेशान होते हैं वो, बारिश में उनके तेज हवा आंधी तूफान से घोंसले गिर जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। इतने सारे पक्षी है, उनके लिए मन में ऐसा लगता है कि ये परेशान हो रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इच्छा मन में जागृत हुई कि हम जो लाखों का खर्चा अपनी शादी में करते हैं सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, उस पैसे से हम वो काम कर सके जो किसी की जिंदगी के लिए थोड़ा सा हितकारी हो सके। मैंने बस वही प्रयास किया।
4: सलोनी की इस पहल के जरिए समाज को प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। यही वजह है कि सलोनी की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना भी हो रही है।
6: ये 6 मंजिला पक्षी घर है जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना आशियाना बना सकते हैं, घोंसले बना सकते हैं, उनका जब मन आए तब वो आके रह सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनको एक सेफ रहने के हिसाब से इस चीज को बनाया गया है। ये एक पिंजरा नहीं है, इसमें वो बिल्कुल भी कैद नहीं होंगे।
4: तालाब किनारे की ये जगह पक्षियों के लिए अनुकूल पाई गई और इसी सोच के साथ यहाँ बेजुबान परिंदों के लिए ये खूबसूरत आशियाना तैयार हुआ। राजस्थान और गुजरात से आए कारीगरों ने इस आशियाने को तैयार किया है।
7: जो बनाने का लक्ष्य है उसको पिंजरा नहीं बनाया गया है, पक्षी जब चाहे आएगा, उड़ाएगा, रहेगा और चला जाएगा, वो रात में रुकेगा। ये उसका एक आशियाना है, उसका एक आश्रय स्थल है, निवास रहेगा उसका, किंतु वो पिंजरा नहीं है।
4: अपनी इस पहल से सलोनी ने अपनी शादी को खास बना दिया। आगर बालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ वायरल वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगी, कुछ गुदगुदाएंगी और कुछ भावुक कर जाएंगी।
8: बस देखते जाइए, इनकी हरकतें पूरी मौज में हैं। इन्हें पता है कि लोग यहाँ उन्हें ही देखने आए हैं, सो पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। फोटो क्लिक करनी है तो करो ना, मैं पोज दे तो रहा हूँ। नन्ना हाथी सैलानियों के सामने जिस तरह से अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, जानवर के हों या इंसान के, ऐसी शरारतें करते क्यूट ही लगते हैं। नन्ने हाथी का ये अंदाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। पेड़ में लगा ये फल इन्हें चाहिए, लेकिन ये है कि हाथी नहीं आ रहा। कोशिश पूरी है, कभी मुंह से कभी हाथ से। ये लोहे का बैरियर न होता तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही कहाँ है। डॉगी जिस तरह से उस फल को खाने के लिए बेसब्र दिखता है और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, वो देखना दिलचस्प है। लगता है स्कूल में कोई फंक्शन है, अब सुंदर तो दिखना पड़ेगा, पर घर में क्रीम लगाना भूल गई शायद। बाइक में लगा आईना देखा तो एकदम से याद आया, या फिर शायद घर में क्रीम लगाने की मनाही हो। मसला चाहे जो भी हो, सड़क पर जिस तरह से हल हो रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे को नहीं पता था कि उसे आईने के अलावा भी कोई देख रहा है। जैसे ही नजर कैमरे पर पड़ी शर्मा गई। बच्चे के इस नेचुरल मुस्कान पर लोग दिल हार रहे हैं। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन दोनों ही माँ पापा के पैसों पर डिपेंड है तो यही होता है। बहन ने भाई को राखी बांधी, गिफ्ट मांगा तो भाई ने माँ की तरफ देखा। माँ ने पैसे दिए तो सही, लेकिन बहन के हाथ में आते ही फिर लपक लिया। आखिर इस छोटी सी उम्र में पैसों का करोगी क्या, संभाल कर रख देंगे हम, ये तो चीटिंग है ना। बच्चों का चेहरा देखिए जरा, मासूम बेचारे। ये वीडियो लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में उलझते और सुलझते रिश्ते। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: किर्गिस्तान में आयोजित SCO समिट में शामिल होने के लिए PM रवाना हुए, पुतिन और शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से अहम मुलाकात होगी। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत के तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम, 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक 2465 लोगों को एयरलिफ्ट किया, 163 विदेशी नागरिकों का भी रेस्क्यू हुआ। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित

0: अब पैकेज्ड फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनियों को बतानी होगी नमक, तो वहीं चीनी और फैट की मात्रा। FSSAI ने अदालत में दिए अपने हलफनामे में जानकारी दी।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: पीएम मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के दौरे पर हुए रवाना, किर्गिस्तान में 26वें सीओ समिट में शिरकत करेंगे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ताशकंद की राजकीय यात्रा करेंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर मंथन होगा। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी एससीओ समिट, क्षेत्रीय सुरक्षा संपर्क और अवसरों पर होगा मंथन। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे पीएम मोदी, द्विपक्षीय बैठकों पर होगी नजर। किर्गिस्तान के 6वें विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे पीएम मोदी, सेंट्रल एशिया की संस्कृति की दिखेगी झलक। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक 2465 लोगों को एयरलिफ्ट किया। रेस्क्यू में 163 विदेशी नागरिकों का भी रेस्क्यू हुआ, कई जगहों पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। नेपाल में मुसीबत के बीच करिश्मा 8 साल की बच्चे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। एक दिन बाद किया गया एयरलिफ्ट, बच्चे से मिलकर भावुक हुई मां। चाइना में फंसे 400 भारतीय सुरक्षित, भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ निकासी में जुटा। भारत में मदद को लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची तीसरी फ्लाइट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। राहत सामग्री के साथ प्रभावित इलाकों में 11 लोगों की मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम भी मुस्तैद, लोगों को सुरक्षित निकालने की हर संभव कोशिशें जारी। जल आपदा से पीड़ित नेपाल को हर संभव सहयोग दे रहा है भारत, नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है सरकार। आपदा प्रभावित नेपाल की मदद के लिए यूपी की बस्ती में महिलाओं की पहल, रक्षाबंधन में भाई से मिले शगुन के पैसों को दान पात्र में किया जमा। मुश्किल वक्त में पड़ोसी देश के साथ मजबूती से खड़े भारतवासी, आपदा पीड़ितों के लिए जुटा रहे हैं धन। यूपी में रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा का बहनों ने उठाया लाभ, 40 लाख बहनों ने मुफ्त बस यात्रा की। 20 लाख सहयात्रियों ने भी योजना का लाभ उठाया, आज रात 12 बजे तक मिलेगी मुफ्त यात्रा की सौगात। पैकेज्ड फूड को लेकर

पैकेट पर चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव है। लाल रंग षटकोणीय चेतावनी लेबल का प्रस्ताव है। FSSAI ने जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दिया प्रस्ताव। UGC नेट के 84 विषयों के नतीजे घोषित किए गए। 4000 से ज्यादा अभ्यर्थी JRF के लिए सिलेक्टेड। असिस्टेंट प्रोफेसर PhD के लिए 7.5% से ज्यादा हुए पास। JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0.7% छात्रों को मिली सफलता। कैंसर के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी। mRNA कैंसर वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल सफल हुआ। कैंसर के दोबारा लौटने के जोखिम को करती है कम। मॉडर्ना और मर्क कंपनी ने टीके को किया विकसित। उच्च जोखिम वाले त्वचा कैंसर मरीजों पर किया गया ट्रायल। 1137 मरीजों पर किया गया परीक्षण। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गोगाजी महाराज की पवित्र छड़ी की पूजा की। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। रक्षाबंधन के अगले दिन भोजरिया उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। जल्द मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने मवेशियों को खिलाया चारा। गौशाला का भी निरीक्षण किया। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं सैलानी। दिल्ली में 50 साल पुराना मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण को होगा मंचन। आज से 4 सितंबर तक कमानी ऑडिटोरियम में दिखाई जा रही है कृष्ण की लीलाएं। पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन में कृष्ण का भव्य मंचन। शास्त्रीय नृत्य संगीत और शानदार सेट लाइटिंग आकर्षण का केंद्र। कृष्ण में जन्म से लेकर रासलीला और महाभारत तक की दिखाई गई है कहानी। गीता के जरिए जीवन के महत्वपूर्ण संदेश दिए जाएंगे। न्यूयॉर्क के इस्कॉन मंदिर में RSS प्रमुख मोहन भागवत का भव्य स्वागत किया गया। भागवत ने मंदिर का दौरा किया। तेलंगाना के मलक जगीरी में अजय देवगन की बेटी निशा देवगन ने श्री भवानी राम लिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। लिंगेश्वर भगवान का आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में 10,000 लोगों ने एक साथ गाया वंदे मातरम। सीएम शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। मदुरई में नशे के खिलाफ जागरूकता वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मेरठ में ASP ने अनाथालय का दौरा किया। बच्चों को उपहार भेंट किए। गुरुग्राम के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई। गुरुग्राम मेट्रो के लिए पहले यू गर्डर की लॉन्चिंग हुई। नेपाल से सीतामढ़ी लौटे 106 तीर्थयात्री। प्रशासन ने रहने और खाने का इंतजाम किया। छड़ी मुबारक के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई। साधु संतों ने विशेष पूजा की। जुलाई से शुरू हुई बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का रक्षाबंधन तक चली। 57 दिनों में 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। कल महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में छड़ी मुबारक के साथ पवित्र गुफा पहुंचा साधुओं का एक दल। बाबा बर्फानी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर काशी में बाबा विश्वनाथ का झूला श्रृंगार किया गया। धूमधाम से झूलनोत्सव संपन्न हुआ। भक्तों ने प्रेम से झुलाया भोलेनाथ को झूला। सुख समृद्धि और लोक मंगल के लिए कामना की। महाराष्ट्र के जालना में किसानों के बीच बढ़ा ड्रैगन फ्रूट की खेती का क्रेज। पानी की कमी के बीच दूसरे विकल्प बन रहे आमदनी का जरिया। जालना के किसान ने 1.5 एकड़ में लगाए करीब 5,500 ड्रैगन फ्रूट के पौधे। पहली बार में 10 से 15 लाख रुपए की आमदनी की उम्मीद है। किसान नारायण गोरे ने मोबाइल की मदद से शुरू की ड्रैगन फ्रूट की खेती।

0: लागत में 25-30% तक कमी होने का दावा। यूपी के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी हेड कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान, लोगों ने जमकर तारीफ की। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री का पैर, जीआरपी के जवान सुरजीत कुमार ने दौड़कर बचाई जान। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया नया रिकॉर्ड, 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 729.33 अरब डॉलर पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य फिटनेस के साथ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में उलझते और सुलझते रिश्ते। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज
2: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार, दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार, अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: राफेल के रणकौशल को कॉपी करने में जुटा चीन, मिस्र के आसमान में शह और मात का दाम, राफेल को डिकोड करने वाला चीन का प्लान, देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
7: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए। मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए, और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, ये है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: किर्गिस्तान में आयोजित एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी रवाना हुए, पुतिन और शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से होगी अहम मुलाकात। नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों की रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम, 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक 2465 लोगों को एयरलिफ्ट किया, 163 विदेशी नागरिकों का भी रेस्क्यू हुआ। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित देश के लिए जुटाया फंड, देश की सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। अब पैकेज्ड फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनियों को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा, एफएसएसएआई ने अदालत में दिए हलफनामे में जानकारी दी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट।
9: दोस्तों मैं हूं रिंकी भाभी और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां, जहां आपको मिलता है सीरियल, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया का हर मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ।
10: एंटरटेनमेंट के गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए, गायत्री सुनाएंगी अन्नू को फैसला, लेकिन अन्नू करेगी दहलीज पार।
11: सच बोलने की दवाई और वो पेड़ा धैर्य जी को खिला दे।
10: मन्नत और विक्रांत की मास्टर प्लानिंग से क्या होगा धैर्य का खुलासा। रुद्र के फना होने पर घरवालों को लगेगा झटका, शिवाय को पड़ेंगे चाटे।

0: मैं तुम्हें बचा नहीं पाई रूथ।
1: सीरियल मन सुंदर में होगी जानवी के संगीत की रस्म, आएगा लड़ाई का ट्विस्ट।

0: सुमन अति सुंदर में एकता के सामने खुलेगा मिर्ची वाले लड्डुओं का राज, लगेगा राध्या पर इल्जाम, होगा बवाल।
1: वे एकता के लड्डू में मिर्ची मिला दी?
2: अगर भगवान खुद भी आकर मुझे बोलेंगे ना कि राध्या ने इन लड्डुओं में मिर्ची मिलाई है, मैं तब भी नहीं मानूंगा।
0: और साथ ही करेंगे मुलाकात टीवी की बहुरानी काजल चौहान से, जो करने जा रही हैं बॉलीवुड में डेब्यू सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सीरियल मन सुंदर में निहाल और जानवी के संगीत की रस्म चल रही है, लेकिन इस दौरान रुचिता के कारण संगीत सेरेमनी में आ गया ट्विस्ट। कैसे, चलिए देखते हैं।
1: जानवी और निहाल का संगीत

झूम कर नाचे घर वाले। रस्म में आया झगड़े का ट्विस्ट। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में आज हो रही है निहाल और जानवी के संगीत की रस्म, जहां पर आज सभी घरवाले बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और तो और, पूरा परिवार मिलकर पहुंच गया है नच के मंच पर और देखिए कैसे सभी एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांट रहे हैं और ताल से ताल भी मिला रहे हैं।

0: सभी घर वाले जमकर नाच ही रहे थे कि तभी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हो जाती है निहाल की एंट्री, जो रुचिता का हाथ पकड़ कर आया है, और पीछे से आ जाता है मोहित, जो कर देता है निहाल पर हमला, जिसके चलते डांस पर ब्रेक लग जाता है और शुरू हो जाता है निहाल और मोहित के बीच झगड़ा। भाई दोनों की लड़ाई तो रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच मोहित ने चम्मच से कर दिया निहाल पर हमला, और तो और घर वालों ने खतरे को भांप लिया और जाकर इस लड़ाई पर ब्रेक लगा दिया।
1: कितना मारा है मेरे बेटे को, पूरा चेहरा लाल हो गया। नहीं सर, इसका ये तुमने मेरे बेटे को दिखाया है, किसी को मारा?
2: यार तूने मोहित को क्यों मारा बेटा?
3: हाँ, क्योंकि इस मोहित ने बदतमीजी की रुचिता के साथ।
2: क्यों मारा नहीं यार मोहित?
3: क्योंकि इस मोहित ने बदतमीजी की रुचिता के साथ।
0: भाई निहाल ने ना सिर्फ ये बताया कि मोहित ने रुचिता के साथ बदतमीजी की, बल्कि ये भी बताया मोहित उसका वीडियो बना रहा था। इसी बीच वहाँ पर आ जाता है रुहान, जो ये सब सुनकर हैरान होता है और अपनी बहन रुचिता से जानने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसे सच पता चलता है तो उसका भी गुस्सा भड़क उठता है।
4: जबकि गलती किस इंसान की है?
5: अरे
1: काबू में रखिए अपने बेटे को।
0: भाई रुचिता ने तो अपने भाई को रोक लिया, वरना आज तो मोहित की शामत आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर मोहित की माँ बात का बतंगड़ बना रही है और तो और सभी के सामने रुचिता को ही खरी खोटी सुना रही है।
1: देखा बड़ी माँ, तुम्हारे संदी कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मेरे बेटे पे? अरे मेरा मासूम सा बेटा इस लड़की के पीछे पड़ेगा जिसकी खुद की शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। इससे अच्छी तो हमारे गाँव में गोबर ठोकने वाली होती है। इस टाइप की लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।
6: ब्याह के माहौल में बहुत गर्मा गर्मी हो गई, इसलिए बेहतर होगा तुम लोग इस वक्त यहाँ से चले जाओ, उसी में सबकी भलाई है।
1: वहाँ बाबूजी हम भी जा ही रहे हैं, इतनी बेइज्जती कराने हम भी यहाँ रुकने वाले नहीं है। चलो जी, चलो बेटा, बुला लेते हैं शादी में और फिर बेइज्जत करते हैं।
0: भाई मोहित के मम्मी पापा तो ताने कसते हुए यहाँ से निकल गए, लेकिन संगीत का माहौल बिगड़ गया, सभी परेशान हैं। रुहान और जानवी रुचिता का ख्याल रख रहे हैं। इसी बीच निहाल जाने लगता है कि तभी रुहान जाकर हाथ जोड़कर निहाल का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि निहाल ने उसकी बहन की इज्जत जो बचा ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब निहाल अपना गिरा हुआ फोन उठाकर अपने जेब में रखता है, और तभी उसकी फटी हुई बाजू उसे परेशान करती है और वो बाजू और भी फाड़ देता है, जिसके चलते उसकी बाजू में जो टैटू है वो रुहान देख लेता है और उसकी कुछ अतीत की यादें ताजा हो जाती हैं। वो परेशान हो जाता है, घबराता हुआ वहाँ से निकल भी जाता है। लेकिन अब रुहान वो टैटू से याद कर रहा है कि इस परिवार के साथ उसके परिवार का पुराना नाता है। देखना होगा कि ये टैटू का क्या राज है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट जगत की रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज।
0: हो गया है रीयूनियन टीवीएफ वेब सीरीज ट्रिपलिंग का, जहां पर सुमित व्यास, मानवी गगरू, अमोल पराशर और कुणाल राय कपूर सभी साथ में नजर आए हैं अपने फैंस से मिलने के लिए।

अरशद वारसी, प्रतीक गांधी और तिग्मांशु धूलिया तीनों जुट गए हैं अपनी आने वाली फिल्म घमासान के प्रमोशन के लिए और साथ में स्पॉट किए गए हैं।

अली फैजल और देवेंद्र शर्मा दोनों ने मिलकर बीती रात रखी है दावत, जहां पर पहुंच गए हैं सभी सितारे उस दावत का मजा लेने के लिए, जिनमें नाम शामिल है पंकज त्रिपाठी, श्वेता त्रिपाठी, सोनाली बेंद्रे, दिया मिर्जा, रसिका दुग्गल, श्रेया पिलगांवकर, सयानी गुप्ता, मोहित मलिक, राजकुमार संतोषी। इसी के साथ नजर आए हैं हर्षिता गौर, प्रतीक गांधी, सोनल चौहान और किरण राव भी, साथ ही दिखे कई और सितारे भी।

0: चलते हैं सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर, जहां आज सास बहू और बेटियां से मुलाकात की गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं ने, जो आजकल सोसाइटी में हो रही चोरियों से परेशान हैं।
1: चोर बहुत स्मार्ट है और शार्प है।
2: मेरे तो मेहनत से कमाए हुए इयररिंग्स गायब हुए हैं।
3: मेरे पति की तो पुश्तैनी अंगूठी थी, वो चोरी हो गई।
1: फर्स्ट एनिवर्सरी पे चेन लिया, वो ही चोरी हो गया।
4: भूत को इंसान के रूप में आना पड़ेगा और पोपट भाई से शादी करनी पड़ेगी।
1: सजा है
4: पर ये सजा तो नहीं है।

0: So, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि समाज में गोल्ड का प्राइस जो है वो आसमान छू रहा है, लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है। जिस तेजी से गोल्ड चोरी हो रहा है उसी तेजी से यहाँ पर चोरी हुई है कि नहीं हुई है, क्या कंप्लेन है आपकी?
1: हुई है ना, हमारी अच्छी अच्छी चीजें चोरी हुई है गोल्ड की।
0: स्पेसिफिकली गोल्ड की और क्या क्या चोरी हुआ है
2: वो तो हमें नहीं पता, बट चोर बहुत स्मार्ट है और शार्प है, क्योंकि इसलिए स्पेसिफिकली गोल्ड ही चुरा रहा है, नकली चीजें नहीं चुरा रहा है। और जो मुश्किल से पैसे बचा बचा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे फर्स्ट एनिवर्सरी पे चेन लिया, वो ही चोरी हो गया। तो अब क्या ही कहे, बहुत ही बदमाश और शातिर।
1: और मेरी अंगूठी चोरी हो गई, हमने तो इनफैक्ट चोर के लिए चोर को इनवाइट किया था कि चोर आए चोरी करे और हम उसको पकड़ ले।
3: मेरे पति की तो पुश्तैनी अंगूठी थी, वो चोरी हो गई, तो वो तो और भी ज्यादा वो डिप्रेस हो चुके हैं कि पुश्तैनी अंगूठी थी वो वापस कैसे आएगी, कहाँ से ढूंढेंगे, और चोर पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन है चोर। सब लगे हुए हैं, रात को भी हम खुद नीचे सिक्योरिटी बन के सब वो पहरेदारी कर रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा चोर कौन है। नहीं,
4: बाकी तो ज्वेलरी हमारी बैंक में है, लॉकर में, ये तो कभी कहीं जाना होता है, कोई ओकेजन है तो थोड़ा सा रखा था घर में, तो गया अभी,
3: थोड़ा ही चोरी हो गया।
4: ए?
5: ढूंढ रहे अभी हम लोग, चोर है क्या है भूत है कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है। मेरे तो मेहनत से कमाए हुए इयररिंग्स गायब हुए हैं, अब वो वही ढूंढना है कि कौन है।
0: गोल्ड ही क्यों,
5: अब वो उसको जब मिलेगा तो पूछेंगे ना कि गोल्ड ही क्यों। ऐसे तो कितने सारे पड़े इमिटेशन पुराने दे देती मैं, लेकिन फिर गोल्ड ऐसे मेहनत से कमाए हुए पैसों से नहीं चुराना चाहिए ना, तो जो मिलेंगे तब पूछेंगे और बताएंगे।
0: बदन क्या लगता है गोल्ड का रेट करंटली कितना चल रहा है और कितने पैसे का गोल्ड आप लोग का चोरी हुआ
4: है ना? आप हमारा लॉस हुआ है गोल्ड का और आप हमको रेट पूछ रहे हैं, कैसे बोले हम?
6: 1,20,000 चल रहा है,
2: पता नहीं ज्यादा। अरे बाप रे, मत आप मत, और आप डरा रहे हैं, रुला रहे हैं।
3: 180 है ना, हमें क्या मतलब
5: है उसका। कभी आप ना कितना भी आप रेट पकड़ो, लेकिन वो हमेशा आपके लिए हाई ही होता है। जैसे ही पुराने जमाने से अगर वो सस्ता हम पकड़े तो वो पुराने जमाने में, लेकिन तभी के जमाने के लिए भी सोना तब महंगा ही था, तो हमेशा सोना महंगा ही होता है। वो कब सस्ता होता है
4: जो इमोशंस जुड़े हैं उसके साथ,
5: वो आप काउंट कीजिए, उसकी कीमत पूछिए, सोने की नहीं।
0: और जब सोना था तो सोना ही सोना था, अब जब सोना नहीं है तो कितना सोना सोना लग रहा है।
3: रोना ही रोना है अब तो, बस रोते ही रहो।
4: गया
3: सोना रोना सब चल रहा है,
2: कोने कोने से कोना कोना से चुराया गया,
3: कोने से रोना रोना हो रहा है,
5: सोना ढूंढ निकाला और हमें आ रहा है अभी रोना रोना।
4: हमने इसको उसको फोना फोनी कर दिया,
3: फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ ही नहीं आ रहा कौन है।
0: पर सोने का तो था खोना ही खोना। चलिए खोना खोना हो गया है सोने का, पर अब ढूंढना ढूंढना कैसे होने वाला है? शक शक है किसी पे?
2: शक
1: शक शक, देखो हम शक नहीं करते, पुलिस शक करती है, फिर हमको भी शक होता है, लेकिन हम हमेशा सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, क्योंकि चोर फिर एंड में कोई और ही निकलता है, कुछ और निकलता है।
0: आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। किसी पे शक
2: नहीं, नहीं हमें नहीं है, और हमें तो लग रहा है जिस पे शक जा रहा है वो भी बिल्कुल गलत है, गलत शक है वो, लेकिन अगर वो नहीं है तो जो दूसरा थॉट आ रहा है अगर वो है तो और भी डर लग रहा है, तो फिलहाल तो हम कुछ भी सोचने की अवस्था में नहीं है।
0: आपको किस पर शक है?
3: मुझे तो भूत पर शक है, क्योंकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना कोई निशानी छोड़ के जा रहा है चोर, कुछ तो पता चले, पुलिस भी कुछ पकड़ नहीं पा रही शायद, वो भी बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, पर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे भूत भूत वाला ही चक्कर है कि वो आ रहा है हमारे घर पे छुपके से चोरी कर रहा है और भाग जा रहा है।
2: और मेन बात ये है कि भूत को जेल में कैसे लेके जाएंगे,
3: भूत को पकड़ेंगे कैसे?
2: हाँ,
0: कौन है इनका गोल्ड डिगर, आइए पूछते हैं इनसे कौन है गोल्ड डिगर।
5: देखिए हमें शक नहीं, हमें शौक है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली किसने क्या चुराया है। अगर चोर हो तो फिर भी हम लोगों को होप्स है कि वो पकड़ा जाए और हमें हमारा सोना वापस मिल जाए, लेकिन अगर वो भूत निकला तो गया ही।
3: बोलती बंदी हो जाएगी ना, भूत के सामने कौन कुछ बोल पाएगा, हम तो वैसे ही डरे हुए हैं।
1: एक मिनट, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर भूत चोरी कर रहा है, ओके, सोना इयररिंग्स, वो पहनेगा कैसे, वो गिर नहीं जाएंगी?
3: उसकी इच्छा अधूरी रह गई होगी, इसलिए वो सब ये कर रहा होगा शायद। पिछले जन्म की इच्छा होती है ना, सोना पहनना था, पहन नहीं पाई, पाया पता नहीं।
2: हाँ, क्योंकि वो भी तो दुल्हन का
5: बोलती बहुत बंद हो गया, बहुत बोल रही है।
0: अच्छा चलिए, आज सास बहू और बेटिया की टीम इन सभी को एक मौका देगी, क्योंकि हमने देखा है कि बॉलीवुड में जब भी ऐसा कुछ रॉबरी होता है या कुछ इंसिडेंट होता है तो हीरोइक अंदाज में एक कॉप आते हैं जो कि सभी टेंशन्स को दूर कर देते हैं। हमने बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स देखे हैं, सिंघम आते हैं, दबंग चुलबुल पांडे आते हैं। आज हम आपको मौका देंगे और ये लोग एक एक कैरेक्टर पिक करेंगे और उनके अंदाज में बताएंगे कि आप किस तरह से चोर को ढूंढने वाले हैं।
1: CID दया, मैं तो दरवाजा ही तोड़ूंगी, लेकिन दरवाजा है ही नहीं तोड़ने के लिए, तो क्या ही तोड़ू, मैंने क्विन को तोड़ूंगी फिर सीधा लात मार के।
2: देखो ऐसे तो सिंघम है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं कॉप बनती तो मैं करेले का जूस पिला पिला के चोर को 3rd degree टॉर्चर देती।
3: मुझे चुलबुल पांडे जी बहुत पसंद है, सलमान खान, लेकिन अगर रूपा पकड़ती तो मैं उसको रील का लालच देती कि तू वायरल, मैं तुझे वायरल बना दूंगी, मेरी रील में आ जा, मेरी पोस्ट में आ जा, तो शायद मैं रील के थ्रू चोर को मतलब भूत को पकड़ सकती हूँ।
6: खुश तो बहुत होगी तुम कि तुम्हारे पास आज सोना है, पकड़ के रखूंगा तुमको आई साले।
5: मैं तो कहूंगी कि हमारे जो चालू पांडे जी है वही पकड़े, क्योंकि वैसे भी उनको हमने कभी स्कोप ही नहीं दिया है चोर पकड़ने का, तो एटलीस्ट इस बार तो वो पकड़े, तो हमारा वही कैरेक्टर है। और अगर मैं कुछ करना चाहूँ इसके मामले में तो फिर मैं अचार पापड़ के अलावा और क्या ही दूं उनको दे सकती हूँ, कि मैं उसका लालच दे सकती हूँ कि बहुत सारा अचार पापड़ हर दिन, मतलब जब भी आपको चाहिए तो फ्री मिलेगा।
0: ओके, लास्टली जाते जाते बता दीजिए, क्योंकि चोर पकड़ने के बाद उसकी सज़ा बहुत ही अटपटी सी होनी चाहिए, क्योंकि इतना अटपटा सा जब ये कहानी आया भी है, तो क्या सज़ा देंगी आप?
1: डिपेंड्स ऑन चोर क्या है, अगर भूत चोर है तो उसको क्या ही सजा देंगे,
0: कुछ तो देंगे।
1: तो अगर भूत चोर है तो हम उसको
2: अगर वो लड़की निकली और वो सिंगल दुल्हन निकली तो फिर पोपट भाई, तो फिर पता नहीं मुझे फिर,
1: और अगर वो खूबसूरत निकली तो फिर पोपट भाई को शायद अच्छी लग सकती है, फिर भूत को इंसान के रूप में आना पड़ेगा और पोपट भाई से शादी करनी पड़ेगी।
2: ये सजा है?
1: पर ये सजा तो नहीं है, ये सजा तो नहीं है, तो अब पता नहीं भूतों को क्या सजा।
2: मुझे यूजुअली लगता है जैसे हम सब है, हम चोर को भी गले लगाएंगे और उसे हाँ। प्यार से कहेंगे कि भाई चोरी, वो चोरी खुद से ही छोड़ देगा, इतना इमोशनल हो जाएगा कि वो इमोशनल, हाँ मतलब इतना प्यार देंगे उसे, और चाचा जी तो उसे बेटे की तरह या बेटी की तरह जो भी वो आशीर्वाद देंगे कि हम इतना आशीर्वाद देते हैं कि तुझे चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े, और वो खुद से ही सब कुछ हमें दे देगा, चोरी छोड़ देगा।
1: तो भूत की सजा ये हो सकती है कि भूत से कोई डर नहीं रहा है और हमने उसको फ्रेंडली नेबरहुड घोस्ट बना लिया है। हाँ मुझे वो कर दो ना, काम कर दो ना प्लीज, अच्छा मेरे लिए वो लाओ ले आओ ना प्लीज, मेरा साफ कर दो ना प्लीज, उसकी सजा यही होगी।
0: आप क्या करवाएंगे?
3: पकड़े तो सही पहले भूत को, चोर जो भी है, मैं तो क्या ही दूंगी, मैं उससे अच्छा चालू पांडे जी डिसाइड करेंगे कि वो चोर को पकड़ेंगे और फिर वही डिसाइड करेंगे कि क्या सजा देनी है।
0: आपके हाथ में रहेगा अगर चोर पकड़ाने के बाद, तो उसके साथ रात में किस तरह का डिस्कशन होगा?
5: हाँ?
0: किस तरह का डिस्कशन करेंगे कि वो सच्चाई बता पाए?
4: डिस्कशन क्या है, एक बार चोर कौन है पता चला, हमारा सामान ले लेंगे और उसको पुलिस के हवाले करेंगे, फिर अपना चोर का कुछ लेना देना नहीं।
5: क्या बैठेंगे चेयर पे? बैठो बेटा बताओ, ऐसा थोड़ी हो, उनके साथ
4: अच्छे घर के लोग हैं, हम उसको तुरंत पुलिस के हवाले करेंगे,
5: हमारा काम हो गया, हो गया।
0: बिल्कुल, तो इसी थॉट के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सारी महिला मंडली है इनको अपने चोर का जो है वो पता मिल जाए और गोल्ड गोल्ड जो है वो भी मिल जाए, है ना?
3: गोल्ड भी मिल जाए, करेक्ट।
7: आईआर इंस्पेक्टर बनेगा और आईआर सब इन्वेस्टिगेशन करेगा कि आपने इसको ऐसे संस्कार क्यों दिए, फिर इसके संस्कार चेंज कीजिए और इसको अच्छे संस्कार दीजिए। अंधविश्वास पे भरोसा ना कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए।
0: सो गोल्ड का रेट और यहाँ पर इस तरह से इतनी चोरी, पहले सब तो आप बताइए क्या चल रहा है गोल्ड का रेट, पता है आपको?
7: नहीं मालूम क्या चल रहा है,
0: पर लाखों में चल रहा है। इस बात का तो अंदाजा होगा,
7: लाखों में चल रहा है तो मालूम है मुझे
0: बिल्कुल। और धड़ल्ले से जो स्पाइक है वो हमने देखी है कि किस तरह से गया है, तो क्या लगता है ये चोर की जो बुरी नजर है वो इस तरह से गोल्ड पर ही क्यों है?
7: कोई लेडी चोर होगा गोल्ड किसको चाहिए ज्यादा यहाँ पे कोई बिजनेसमैन होगा उसको चाहिए होगा, लेकिन अभी ऐसा है कि हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं चोर को ढूंढने की, और मिल तो जाएगा क्योंकि गोकुल धाम वाले कभी हार नहीं मानते हैं
0: जी। सो किस पर शक है आपको?
7: शक तो किसी पर भी नहीं है, जो भी चोर होगा वो सामने आ जाएगा। ऐसा कह रहे हैं कि सोसाइटी में ही चोर, लेकिन सोसाइटी में कोई चोर नहीं है, हम सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं।
0: चोर के दाढ़ी में तिनका, वैसा वाला हाल होने वाला है?
7: यस यस, ऐसा ही कुछ होगा।
0: पर जब बात आ रही है महिला मंडली की और बाकी सबकी, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भूत भी हो सकता है या कोई मैनीक्विन है जो कि अटपटी सी चीजें कर रही है, क्या क्या हो रहा है?
7: मैं भूत वूत में विश्वास नहीं रखता, बींग अ साइंटिस्ट मुझे उसमें भरोसा नहीं है। भूत क्या करेगा, अभी अगर जो भूती ये कर रहा है तो देखते हैं अभी आगे आगे एपिसोड, अभी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आगे आगे एपिसोड जब आएंगे तब पता चलेगा कि किसने चोरी की है वो।
0: मतलब बॉलीवुड में हमने देखा है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक पुलिस की भूमिका निभाई है
7: जी।
0: आपके कौन से फेवरेट रहे?
7: बहुत बच्चन साहब रहे, जब भी पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं तब।
0: तो आपको अगर मौका मिलेगा इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का, किसी फेमस बॉलीवुड एक्टर कॉप जिन्होंने प्ले किया है, तो किसके अंदाज में करेंगे और कैसे करेंगे?
7: किसके अंदाज में करूँगा? देखिए अगर जो मुझे पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर मिल जाए और मैं ये सब का इन्वेस्टिगेशन कैसे करूँ, तो मैं अय्यर का ही प्ले करूँगा। अय्यर इंस्पेक्टर बनेगा और अय्यर सब इन्वेस्टिगेशन करेगा।
0: और क्या सजा रखेंगे चोर के लिए?
7: चोर के सजा ये रखेंगे कि उसको एक तो उठक बैठक लगवाएंगे, उसे जो जो चोरी की है वो सबको दिलवाएंगे, उसकी पत्नी को बुलवाएंगे, उसके मदर फादर को बुलवाएंगे कि आपने इसको ऐसे संस्कार क्यों दिए, पहले इसके संस्कार चेंज कीजिए और इसको अच्छे संस्कार दीजिए, हम उसको सुधार केंद्र में भेजेंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और क्योंकि शक जो है वो कहीं ना कहीं भूत पर भी है, तो उसके लिए क्या सजा निर्धारित करेंगे?
7: भूत पे क्या सजा देंगे, भूत को क्या होगी, क्या सजा देंगे भूत को? भूत हमको ही सजा दे के चला जाएगा। भूत को कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन अभी देख रहे हैं क्या ये भूती है, कौन है, क्या है।
0: चलिए जाते जाते बता दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक ट्रैक कुछ ना कुछ मैसेज लेकर आता है, क्या लगता है ये क्या मैसेज लेकर आया?
7: अंधविश्वास पे भरोसा ना कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, ये ऐसा ही मैसेज है इसमें कि अंधविश्वास जो होता है वो आपको पूरा अंधा कर देता है, तो अंधे ना हुए आप दृष्टि से देखिए, अपने आप को परखिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, तो सब कुछ ठीक ठाक होता है।
8: सास बहू और बेटियां के स्पेशल डे आउट में आज हमारी खास मेहमान है एक्ट्रेस काजल चौहान, जिनके साथ हमने किया एक घर वाला डे आउट। तो चलिए चलते हैं काजल के घर

टीवी में बनी बहुरानी, फिल्मों में दिखाया जलवा। ये एक्टिंग करती है, डांस की दीवानी है और है काफी संस्कारी। हम बात कर रहे हैं काजल चौहान की, जिनके साथ आज हम एक पूरा दिन बिताने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि ये नजर आ चुकी है टीवी सीरियल मेरी सास भूत है में, साथ ही नथ में भी ये नजर आ चुकी है। और अब छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर इन्होंने छलांग लगाई है और ये बन गई है हीरोइन। हाल ही में इनकी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है दिल दीवाना हो गया, जिसके लिए वो काफी खुश है। तो आज काजल के बारे में कई और बातें जानेंगे, कैसा रहा उनका करियर नामा, रियल लाइफ में काजल कैसी है, कैसा होता है इनका दिनचर्या, करेंगे इनके आशियाने की सैर, देखेंगे इनका कुकिंग टैलेंट, इनकी बहन संग आज ये अपने बचपन में खोने वाली है, यानी कि होगा फन अनलिमिटेड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की।

0: हाय एवरीवन, दिस इज काजल चौहान, यानी कि आपकी प्यारी गोपिका कह सकते हैं, गौरा कह सकते हैं, मेरी सास भूत है और प्लस नथ। और फिलहाल आप मुझे फिल्मों में देख रहे हैं, जैसे कि अभी मेरी फिल्म जो चल रही है दिल दीवाना हो गया, जिसको आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो। और सबसे ज्यादा सरप्राइज मेरे लिए ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी कर रही हूँ, यानी कि सास बहू और बेटियां मेरा फेवरेट शो हमेशा से रहा है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे घर पे आए हैं। और ये जो आप घर देख रहे हैं, आई थिंक आपको याद है मैंने जब पहली स्टोरी भी की थी अपने घर की, तो आप लोगों के साथ मैंने पहले की थी, याद है आपको? तो वो जो मेरा घर था, वो आई नो मेरे फैंस देख चुके हैं, बट ये जो है ये मेरा नया घर है, आप देख सकते हो, ये और खूबसूरत है और मैंने प्यारा बनाया है इसको। तो पहली स्टोरी भी आप लोगों के साथ थी एंड देन सेकेंड भी मैं आप लोगों के साथ ही कर रही हूँ। कुछ तो रिश्ता है ना हमारा, एकदम खास खास, ठीक है?
1: तो भाई हाल फिलहाल में ये अपने नए घर में शिफ्ट हुई हैं और नए घर की सैर भी ये करवा रही हैं सास बहू और बेटियां को और खासकर अपने फैंस को। तो चलिए सबसे पहले इनके होम स्वीट होम की सैर करते हैं।
0: तो सबसे पहले मैं अपने घर का आपको सबसे प्यारा कॉर्नर दिखाती हूँ, जो मुझे याद दिलाता है कि मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है भाई। तो जब आप लोगों ने याद होगा, अगर मेरी पहली जब स्टोरी की थी तो वहाँ पे सिर्फ मेरे 3 अवार्ड थे एंड देन सी अभी आप देखो पूरी ट्रॉफी से भर चुका है। तो आप देख सकते हैं ये सारे मेरे अवार्ड हैं, काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल, और बहुत सारे यहाँ पर आने भी हैं। अभी यहाँ पे फिल्म फेयर आना है, आईटी आना है, आईफा आना है, नेशनल आना है। तो आप देख सकते हैं, और ये जो जगह है ना, ये जो ट्रॉफी होती है, मुझे हमेशा ये याद दिलाती है कि काजल ये जर्नी अभी शुरू हुई है, तुम्हें वहां पहुंचना जहां तुम खुद को देखती हो। तो हर सुबह मैं जब भी उठती हूँ मुझे लगता है ओह थैंक गॉड मैंने बॉम्बे में इतनी कम एज में इतना कुछ अचीव कर लिया है, सो थैंक यू, टच वुड, धू धू नजर ना लगे। और ये आप प्लांट्स देख सकते हैं, जितने लोग मुझे जानते हैं वो सबको मतलब ये बात पता है कि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है। मतलब मेरा बस चले ना, मैं घर का फर्नीचर निकाल दूं और मैं सिर्फ प्लांट्स से अपना घर सजा दूं। मतलब मुझे प्लांट पता नहीं क्यों यार, मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्लांट्स यू नो ग्रीनरी एकदम फ्रेश और हमेशा आपको फ्रेशनेस वाली वाइब देते हैं। ये है स्नेक प्लांट और इसको बोलते हैं रबर प्लांट। वाओ मुझे इतनी नॉलेज है। मैं शॉक हूँ। और आई थिंक इसको बनाना का बोलते हैं शायद, वही है इसका मुझे नाम नहीं पता। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा मैंने कहा। और ये इसका नाम क्या है यार, पता नहीं इसका नाम भी है। ये तो जेट प्लांट है, ये मनी के लिए बहुत काम आता है, जिनको मनी चाहिए प्लीज ये लगाइए। ये मेरी तुलसी और फिर ये भी प्लांट्स हैं। तो मतलब मेरा पूरा घर से प्लांट से मिलेगा आपको, पता नहीं यार मुझे प्लांट का बहुत ही शौक है। और फिर उसके बाद में ये मेरा मंदिर, आप देख सकते हैं ये मैंने खुद डेकोरेट किया है। और हाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सबसे स्पेशल चीज़ ये। दिल दीवाना हो गया का पोस्टर, जो मेरी फिल्म रिलीज हो चुकी है, जो कि टचवुड बहुत अच्छा कर रही है और लोग हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। टचवुड इन्हीं की वजह से मैंने सीरियल से जर्नी शुरू की थी, और सबको पता है कि सीरियल से फिल्मों में जाना आसान नहीं होता है। इन्हीं की वजह से और मेरी फैमिली की वजह से मतलब मुझे फिल्मों में ब्रेक मिला। और टचवुड आज जो मेरी फिल्म थिएटर में लगी हुई है, कम से कम मतलब पूरे इंडिया में वो फिल्म लगी है और बहुत लोग प्यार दे रहे हैं। सबका सपना होता है कि हम भी फिल्म करेंगे, बट मुझे वो मिल गया सब इनकी वजह से। मतलब मैं बॉम्बे में भी रह के आज भी इतनी स्पिरिचुअल हूँ ना, कि आप मुझे मंदिर दे दो, मुझे मेरे भगवान दे दो, मेरी फैमिली दो, मैं खुश हूँ भाई, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो मेरे सीने। तो भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है और जिनकी वजह से मुझे मिला है, तो ऑब्वियस ही बात है उनको थैंक यू तो बनता है ना। तो चलो भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं।
1: उनके घर में सबसे खास जगह है ये मंदिर। रियल लाइफ में काजल काफी संस्कार

तो भगवान जी को थैंक यू हो चुका है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ महादेव की और राधा रानी की। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए और सब कुछ बहुत अच्छा हो, तो प्लीज़ आप राधा नाम का जाप शुरू करो। आपको खुद बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये पर्सनली फील किया है। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना कुछ दिया। आई लव यू और हमेशा मेरे साथ रहना। तो चलो अभी हम प्लांट्स को पानी देते हैं, क्योंकि अगर प्लांट्स भी तो हमारे बच्चों की तरह होते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है जैसे हमें खाना चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए भाई, तो प्लांट्स को भी पानी चाहिए, उनको भी खाना चाहिए। तो चलो पानी देते हैं ताकि वो हमेशा फ्रेश रहे। या ये भी प्लांट्स एंड देन ये भी प्लांट्स, सब प्लांट्स प्लांट्स प्लांट्स। मेरे घर में अगर आप आओगे ना, तो आपको प्लांट्स और पॉजिटिविटी के अलावा और हैप्पीनेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो फिर पानी, सी ये भी प्लांट। यहाँ भी ये हमारी अन्नपूर्णा माता है जो हमें खाना देती है, इनको भी हमेशा थैंक यू बोलो।

0: तो भाई भगवान की पूजा हो गई और पेड़ों को भी पानी दे दिया। अब बारी है पेट पूजा की, जिसके लिए काजल पहुंच गई हैं अपने किचन में और आज ये बनाने वाली हैं ये नूडल्स, जो दो मिनट में तो बिल्कुल नहीं बनते हैं, क्योंकि काजल के ये नूडल्स बनने में काफी समय लगता है। पूरी मेहनत से वो ये कुकिंग करती है, तो आज हम देख लेंगे काजल का मास्टर शेफ वाला टैलेंट भी।
1: तो आज शूट तो है नहीं, और मेन जो सास बहू और बेटियां को मेरे साथ जो शूट करना था वो यही उनको देखना था कि अगर मैं शूट नहीं करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ। तो ठीक है, मैं अपने ट्रेनर को नहीं बताऊंगी कि आज मैंने चीट किया है। तो चलो आज मैगी खाते हैं, आ जाओ। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चॉपिंग करना, ठीक है, क्योंकि अगर वेजिटेबल्स का आप यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी मैगी में टेस्ट नहीं आएगा। तो हम करेंगे सबसे पहले चॉपिंग। ये हमारा टमाटो, अनियन, तो इसको हम वॉश कर लेते हैं पहले। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं कुकिंग शो कर रही हूँ।

तो अभी हम मैगी बनाना स्टार्ट करते हैं. सब लोग बहुत प्लेन नॉर्मल मैगी खाते हैं, बट मैं और मेरी फैमिली प्लेन मैगी बिल्कुल नहीं खाते हैं. हम लोग सारे मसाले डालते हैं, स्पाइसी खाते हैं, सारी वेजीज का यूज़ करते हैं. बट अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं सब वेजीज मिक्स कर सकूँ, तो सबसे पहले हम डालेंगे तेल.

0: तो धीमे धीमे पक रही है काजल की ये स्पेशल डिश। काफी सारे मसालों के साथ इन्होंने लगाया है अपने स्वाद का इस नूडल्स में तड़का।
1: फिर इसमें जाएगा चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है और मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे एक एक दो दो घंटा जाता है कुकिंग करने में, क्योंकि मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ और आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो ना खाने में तो आपको बहुत टाइम जाता है। मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है कि और मैं क्या क्रिएटिविटी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग करना, एक्टिंग तो मेरा पैशन है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, बट कुकिंग करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे घर डेकोरेट करना, मंदिर जाना, मुझे थोड़ी संस्कारी वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, बताने क्यों यार। आई थिंक मेरी जिससे भी शादी होगी ना मेरी फैमिली बहुत खुश रहेगी। अब इसमें हम थोड़ा चीज़ें मिक्स करेंगे, थोड़ी अलग चीज़ें डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और विनेगर।

मेरी मैगी अगर आप लोगों को खानी है ना तो मेरी मैगी बहुत स्पेशल होती है. तो ये इसमें गया लेमन. फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके बिना मैगी होती है अधूरी वो है मैगी मसाला.

बनाने का तरीका ना थोड़ा बहुत अलग होता है जो मैंने आपको बताया, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी मिलाती हूँ उसमें, मुझे लगता है आई थिंक कोई नहीं मिलाता होगा, मैं जैसे चाट मसाला मिलाती हूँ। चाट मसाले से क्या होता है, फ्लेवर बहुत चेंज होता है, आपका जो टेस्ट होता है, जैसे फ्रूट्स की चाट में कैसा होता है कि थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर आ जाता है, तो मैं अपने हर खाने में मोस्टली, पता नहीं क्यों मुझे आदत है, मैं चाट मसाला और लेमन मेरा कंपलसरी है मिलाना, तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी चाट मसाला प्लस थोड़ा सा और जो मेरे मसाले रखे हैं, जैसे कि कैसे बताऊं मैं आपको, दिखाती हूँ।

0: हौली हौली लकन घुमा के नच।
1: वैसे नूडल्स वाली ये स्पेशल डिश बनाते हुए काजल दे रही है कुछ खास टिप्स भी जो कुकिंग में यूज की जा सकती है।
2: अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज,

इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया था और मैंने इसको आजमाया है। कभी भी जब आप नमक खाने में मिलाते हो तो पहले इसको थोड़ा खुद स्मेल किया करो, आप कभी नोटिस करना आपकी नमक तेज नहीं होगी। कभी आजमाना फिर मुझे बताना ये चीज़, ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। और मैं कभी भी नमक डालती हूँ तो मैंने पहले ऐसे इसको सूंघती हूँ, स्मेल करती हूँ एंड देन मैं डालती हूँ, मेरी नमक कभी तेज़ नहीं होती है। हाँ रेयरली कभी होगी, मैंने 4-5 बार मिला दिया तो, अदरवाइज कभी नहीं होती है।

0: तो अभी हम इसको थोड़ा टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम चढ़ाएंगे अन्नपूर्णा माता को. मैं जब भी खाना बनाती हूँ या मेरी फैमिली में, हम पहले अन्नपूर्णा माता को चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं. तो पहले मैं उनके नाम का थोड़ा सा निकाल देती हूँ. अब मैं नमक मिर्च तेल टेस्ट करती हूँ खुद.
1: तो पूरी हो चुकी है काजल की ये नूडल्स वाली रेसिपी. और बनते ही ये नूडल्स काजल खिलाएगी अपनी बहन को, जो स्पेशली आई हुई है काजल के पास. मैं इनकी फिल्म रिलीज हुई है, ऐसे में इनकी बहन इनका साथ देने यहाँ पहुँची है. तो बहना के लिए ये स्पेशल वाली मैगी हो गई है तैयार.
0: तो हमारी मैगी रेडी हो चुकी है. 2 मिनट नहीं, ऑलमोस्ट 10 मिनट लगे हैं मैगी बनने में. तो चलो अभी मैगी निकालते हैं और चलते हैं हॉल में मैगी खाने के लिए. लेकिन हाँ, ये मैगी मैंने जिसके लिए बनाई है, सबसे स्पेशल इंसान मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी दीदी जो आ रखी है इस वक्त बॉम्बे मेरे पास में, तो उनको मेरी तरफ से छोटी सी मैगी ट्रीट. और उनको उनको पता भी नहीं है कि मैंने उनके लिए मैगी बनाई है. वो एक्चुअली तब से रूम के अंदर ही कैमरा कॉन्शियस. तो मैगी हो गई है रेडी और दीदी को बुलाते हैं खिला के, उनसे पूछते हैं कि कैसी बनी है. दूसरा इंसान सच बोलेगा बनी कैसी है. संध्या दी जल्दी आओ, तुम्हारे लिए मैगी ट्रीट. ये है मेरी बड़ी बहन संध्या, संध्या चौहान. और ये मेरी फिल्म के लिए आ रखी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी फिल्म अपनी फैमिली के साथ देखूं, मेरी फर्स्ट फिल्म, मेरा डेब्यू. तो मेरी बहन, मेरी मम्मा चले गए हैं, तो ये आपके लिए. और हाँ, एक और चीज़, ये जो आप मुझे इतना खूबसूरत दिख रहे हैं ना, एक्चुअली ये मेकअप आर्टिस्ट भी हैं. या ये मेकअप, सारे मेकअप यही करती हैं मेरे. प्लस इन्होंने खुद का अचार भी लॉन्च किया है. यस, मल्टी टैलेंटेड. सच सच बताना, सच सच खाना बनाना तुमने मुझसे ही सीखा है. चलो ऑनेस्टली, ठीक है, ऑनेस्ट बताना. हाँ, अच्छी है.
2: मैं यही कहना चाहूंगी, मेरी बहन पहले आर्ट सीरियल करती थी, तो बेचारी मेरे से जब सूट करके आती थी थक के, तो बोलती थी दीदी मुझे फिल्मों में जाना है, मुझे सूट नहीं करना याला, मतलब टीवी वाला. फिर बाद में उन्होंने अपना ऑडिशन दिया था तो मूवी के लिए सिलेक्शन हो गया था. बहुत अच्छा लग रहा है, जब पहली बार स्क्रीन पे देखा था यकीन नहीं होता मेरी बहन ही है.
0: पड़ोसी की है, पड़ोसी की.
2: नहीं और जब मैंने देखा था तो इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, काम इसने बहुत ही अच्छा किया. प्लीज गाइस, जाके आप मूवी देखिए इसकी.
0: दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया. उनका नाम है, जाओ देखो और प्यार दो. ये दिल है
3: बेशरम, तुम्हारे कारण नहीं बिगड़ी है ये.
4: पापा मैं बिगड़ी हुई बेटी नहीं, कोई लड़की पसंद है क्या? दिल, दिल, दिल,
5: दिल, दिल, पसंद तो है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती.
0: अच्छी है, खट्टी है लेकिन अच्छी है. हाँ, लेमन है. तो हाँ, ये मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. आप ये देख सकते हैं त्रिमूर्तियाँ. ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया मेरे बर्थडे पर, मेरा बर्थडे था 23 जुलाई को. सी, ये मी, ये मेरी फ्रेंड क्रिस्टी और ये रुशिका. तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारा ही गिफ्ट दिया और मुझे इसलिए दिखाना था क्योंकि देखो ऐसे भी दोस्त होते हैं आपके पास में जो आपको इतनी स्पेशल चीज़ बनवा कर देते हैं.
1: नूडल्स के साथ साथ काजल ने अपनी बहन संग शेयर की कई और बातें और देखने को मिला ये सिस्टर वाला बॉन्ड. अब कर लेते हैं काजल के बाकी घर की सैर और देखते हैं इनके घर में क्या कुछ खास है, क्योंकि आज काजल घुमाएंगी अपना कमरा जिसे इन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है.
0: अभी मैं आपको अपने घर का सबसे पीसफुल कॉर्नर दिखाती हूँ कि जब मैं बोर होती हूँ या जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ या जब मैं काम नहीं कर रही होती या जब मैं काम कर थक कर भी आती हूँ, तो ये जो प्लेस है ये मेरी फेवरेट है मेरे घर की. मतलब ये मेरा हॉल है और ये जो व्यू है आप बॉम्बे का, जिसके लिए लोग इतनी मेहनत करते कि काश ऐसा व्यू हमें एवरी डे देखने को मिले, और टचवुड मेरे पास वो है. तो मैं जब भी कुछ सोचती हूँ या मेरा मन नहीं लगता, मैं यहाँ कैसे खड़ी हो जाती हूँ और ऐसे देखती रहती हूँ. और कभी लाइफ में ऐसा होता है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, यहाँ स्ट्रेस क्यों है, ये क्यों है, तो मैं यहाँ देखती हूँ और सोचती हूँ कि यार ऊपर वाले ने इतना कुछ तो दिया है, मतलब कितने लोगों का ख्वाब है काजल ये, और तेरे पास तो है वो चीज़, तो तुझे टेंशन किस चीज़ की है. तो यहाँ मैं ऐसे बैठती हूँ, देखती हूँ, फिर वादियों को देखूंगी ऐसे, फिर सोचूंगी, थॉट लूंगी, एंड देन फिर ये मेरा कॉर्नर है, यहाँ मैं बैठती हूँ रात में, दिन में लाइट्स ऑफ करके, और खाना खाती हूँ, कभी कभी गाना भी गा लेती हूँ, जो कि मैं सिंगर नहीं हूँ, बट ऑब्वियस ही बात है मेरी फिल्म का गाना मैं गाती हूँ. बेताबियाँ आँखों में थी

गया, ये मेरी फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। तो ये गाया है एक बहुत मेरी फेवरेट सिंगर है, परमिला जी उनका नाम है, जिन्होंने वो गाना गाया था जो एक टाइम पे मेरा बहुत फेवरेट गाना था। वो आई थिंक आपने सुना भी होगा, ओ सनम काश होता अगर तुम निभा जाते यूं जिंदगी का सफर, बॉबी दिल का गाना था। तो उन्होंने ये गाना गाया और टच मूड मैंने उन्हीं के साथ काम किया, मतलब जो एक टाइम पे मेरा स्कूल के टाइम पे मेरा फेवरेट गाना था ये, ओ सनम सबके दिल टूटे होंगे यार, तो सभी गाना सुनते थे तो मैं भी सुनती थी कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे। तो ये वो कॉर्नर है और ये तो आप लोगों ने देख लिया है, ये मेरे हॉल की जितनी भी पेंटिंग्स लगी हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पेंटिंग कुछ ना कुछ समझाती है। ये पॉजिटिव थॉट्स हैं जो मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब देते हैं कि लाइफ में क्या अचीव करना है क्या नहीं करना है। और मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो ये मेरे महाकाल, ये मेरे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं जो जो हाँ। तो जब जब मैं जिस ज्योतिर्लिंग में जाती हूँ मैं वहाँ की एक तस्वीर पेंटिंग खरीद के लाती हूँ और मैं लगाती हूँ। तो ये 12 जब कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे 12 दिखेंगे, अभी मेरे 3 हुए हैं, जैसे अपना काशी विश्वनाथ हो गए, ये अपने त्र्यंबकेश्वर, वो महाकाल, एंड देन वो मेरे नीम करोली बाबा जिनका आशीर्वाद है। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको कॉर्नर में दिख रही है तो आपको दिखेगा, उसको बोलते हैं ग्रीन तारा माँ, और इनकी भी एक स्टोरी है। ग्रीन तारा माँ बेसिकली तब आप इनकी पूजा करें जब आपको लाइफ में स्ट्रेस है या फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा है, कोई आपको विश करनी है तो आप इनसे प्रे कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं मांगती हैं, सिर्फ आप इनको कैंडल्स दे सकते हैं या ग्रीन कोई फ्रूट्स हो गए या ग्रीन चीज़ बेसिकली इनको पसंद है, इनको खुशबू का बहुत शौक है। तो मैं बिलीव करती हूँ सब चीज़ों पे और टचपुर आज शायद यहाँ इन्हीं लोगों की वजह से हूँ। हॉल हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। आई नो रूम सबको नहीं दिखाते हैं, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि रूम आपके लिए बहुत स्पेशल होता है, आप रूम में सोते हो, आपकी बहुत एनर्जी होती है। बट ठीक है, मैं सास और बेटिया के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। दिस इज़ फॉर यू ओनली, सास और बेटिया। तो ये मेरा रूम है, बहुत सिंपल बहुत क्यूट सा ब्लू थीम मैंने इसका रखा है। तो आपको अगर नोटिस होगा तो हर चीज़ आपको ऐसे ब्लू ब्लू ब्लू ब्लू दिखेगी इस रूम में, क्योंकि ब्लू कलर मुझे पसंद है। हाँ है, ये मैनिफेस्टेशन है मेरा, मैं बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ, और बहुत सी चीज़ें उसमें मेरी सच हो चुकी हैं। और एग्जैक्ट मैंने अपने आप को 2029 का टाइम दिया है ये सारे ड्रीम्स पूरा करने के लिए। लोग कहते हैं कि अपने ड्रीम्स किसी को नहीं दिखाने चाहिए काजल, बट ठीक है, मैं एक चीज़ पर बिलीव करती हूँ, अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप हार्डवर्क करते हो तो आई थिंक बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद चीज़ फॉलो करेंगे और वो भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, हार्डवर्क प्लस बिलीव कर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिलीव करो पेपर चिपका दो, ऐसा नहीं होता, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहते हैं नज़र लग जाती, नहीं दिखाना चाहिए, बट ठीक है, मेरी वजह से अगर 10 लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो मेरे लिए अच्छा है। तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, एंड देन फिर ये मेरा एक चेक है जो मैंने लगा रखा है, काजल चौहान 37 करोड़ 2027। यस, मुझे करियर से बहुत प्यार है, मतलब आई थिंक मुझे ऐसा है कि मुझे कोई बोले बॉयफ्रेंड चुनना है या फिर करियर चुनना है तो मैं बोलूँगी करियर, क्योंकि भाई मैं यहाँ कुछ बनने के लिए आई हूँ और मेरे माँ बाप के बहुत सपने हैं मुझे लेकर, जब सही टाइम आएगा तब सही पार्टनर भी मिलेगा। तो ये सब ब्लू ब्लू ब्लू, और ये मेरी एक्चुअली ये पेंटिंग है और ये हैंडमेड पेंटिंग है, हाँ ये हाथ से बनाई गई है, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी इसी बर्थडे पे, और ये सबने मुझे बोला है कि काजली पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा हाँ यार, ये देखो इंसान भी तो मैं हूँ ना, इसके अंदर तो खूबसूरत तो होगी। हाँ, मुझे टेडी का बहुत बहुत बहुत शौक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों पे बिलीव करने से अच्छा आप टेडी अपना फ्रेंड बना लो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं अकेले रहती हूँ और जब भी मैं बोर होती हूँ या कुछ ऐसा होता है तो मैं इन्हीं से बात करती हूँ, क्योंकि ये मुझे सुनते हैं, ये मुझे सवाल नहीं करते हैं, ये मुझे सुनते हैं, जो मैं बोलती हूँ सिर्फ हाँ करते हैं, बस जुबान नहीं लड़ाती मेरे साथ में, तो इसलिए ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। देखो ये छोटा टैडी, ये भी मुझे बेसिकली सारे टैडी मुझे गिफ्ट मिले हैं। ये मुझे मेरी बहन आंचल ने भेजा था जब मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी, तब मैंने बोला तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं भिजवाया, फ्रेंड्स लोग इतना कर रहे हैं, मेरी फैमिली क्यों नहीं कुछ कर रही है।
एंड देन फिर मेरी बहन ने मुझे ये टेडी दिया, और ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था टेडी, जिसने पेंटिंग दी है उसी ने टेडी भी दिया है। ये भी मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। एंड देन ये मेरे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। मैं नाराज़ हुई थी सर से अपने, तो सर बोलता है ये तो बच्ची है इसको टेडी दे देता हूँ। तो ये भी मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। ये मेरे रूम का व्यू है, मतलब यार टच वुड थू थू तो नज़र न लगे, बहुत कुछ दिया है बिन मांगे भगवान ने। तो ये रात में इतना खूबसूरत दिखता है ना, ऐसे पूरी लाइट्स लाइट्स लाइट्स लाइट्स दिखती हैं। और मैं हमेशा इमेजिन करती हूँ कि एक वक्त होगा जब हर इंसान यहाँ पे से चिल्ला रहा होगा काजल काजल काजल काजल, और वो मुझे कहीं ना कहीं बिलीव होता है, वो अंदर से फील होता है।

0: भाई डांस मस्ती तो हो गई, लेकिन मस्ती अभी बाकी है। भाई आज काजल पहुंच गई है अपनी बहन संग बिल्डिंग के इस गार्डन में, जहां आज याद करेंगी ये दोनों अपने बचपन के दिन। झूलेंगी झूला, स्लाइड करेंगी और सीसॉ करेंगी, साथ ही खेलेंगी बैडमिंटन। यानी कि आज काजल और उनकी बहन अपना बचपन जी रही है, वो भी दिल खोल कर।
1: तो डांस हो चुका है और डांस करके मैं बहुत ज्यादा रिफ्रेश हो चुकी हूँ। सोच रही हूँ कि अभी दीदी आ रखी हैं तो थोड़ी पुरानी यादें ताजा कर ली जाए, और चलो अभी फिर चलते हैं कुछ गेम्स खेलते हैं दीदी के साथ। बचपन की यादें हम लोग ताजा करने के लिए आ चुके हैं हमारे प्ले एरिया में, ठीक है, हमारा ई सेक्शन एरिया जो कि बहुत खूबसूरत बनाया गया है। और चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, बट कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, तो दिल हमारा भी बच्चा ही है। तो चलो गेम्स खेलते हैं और दीदी वो यादें ताजा करते हैं जो हम लोग बचपन में खेलते थे, आम के पेड़ पे ये वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ।

0: बहुत बहुत बहुत मजा आया और बहुत यादें ताज़ा हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा था सच में हम 10 साल के बच्चे बन गए हैं क्योंकि ये बच्चों का ही था जो भी गेम्स थे, बट ठीक है यार। और तुम्हें मजा आया?
1: हाँ, मुझे बहुत मजा आया।
0: ये सच में फंसने वाली थी इसके अंदर, इसलिए आई नहीं। एक और चीज़ जो हम हमेशा खेलते थे स्कूल टाइमिंग में भी, बैडमिंटन, और वो आज भी हमारा फेवरेट है, तो चलो बैडमिंटन खेलते हैं।

0: आज तक के लिए यही गेम समाप्त किया जाता है।
1: बचपन में होता था,
0: अब ऐसे नेट नहीं थे ना, तो वो नीचे ही आती थी, इसको नेट लगा दिए तो
2: मरते हैं लोग यार ये व्यू देखने के लिए कि यहाँ से मेट्रो जा रही है, मुंबई दिख रहा है, क्या चाहिए ऊपर वाले, थैंक यू।
3: तो भाई वक्त हो चला है काजल को बाय बाय कहने का, फिर हम तो यही कहेंगे कि यूं ही काजल चमकती रहे और अपने फैंस को एंटरटेन करती रहे।
2: लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगी गाइस कि मेरी फिल्म रिलीज हो चुकी है, 31 जुलाई को हमारी फिल्म रिलीज हो चुकी थी, दिल दीवाना हो गया, जो कि बहुत अच्छा कर रही है और अच्छा कर सकती है। आप लोग और प्यार दीजिए, अपने पास के थिएटर में देखने के लिए जाइए, टिकट बुक कीजिए और बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी है, ठीक है। प्लीज जितना हो सके हमारी फिल्म को प्यार दीजिए, दिल दीवाना, ताकि मैं नेक्स्ट फिल्म में और अच्छे से एक्टिंग करूँ और अच्छे से मुझे मोटिवेशन मिल सके आप लोगों की वजह से। सो थैंक यू सो मच सासू बेटियाँ, आई लव यू मेरे फैंस को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबको थैंक यू सो मच, बाय।

0: सीरियल तुमसे तुम तक में अनु ने सास के फरमान के बावजूद घर छोड़ने का फैसला ले लिया है। आखिर क्या है अनु की इस बगावत का कारण, चलिए जानते हैं।
1: बड़ी अनु की घबराहट।
2: इस किचन से बाहर निकल जाओ, दोबारा कभी कदम मत।
1: अनु को मिला किचन निकाला।
3: मैं नहीं चाहती कि तुम उस घर जाओ।
1: गायत्री का फरमान।
3: अगर तुम्हें हमारी बात का मान रखना है तो तुम वहां नहीं जाओगे।
1: जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक में अनु की जिंदगी में मच गई है उथल पुथल। भाई जब से सभी घरवालों को ये पता चला है कि आर्यवर्धन गायत्री का बेटा नहीं है, तब से सभी ने अनु के साथ रिश्ते का दरकिनारा कर लिया है और आज तो हद ही हो गई। असल में अनु रसोई में गई थी खाना बनाने वाले को ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि आज घर में सबके लिए क्या बनेगा, कि तभी वहाँ पहुँच जाती है मानसी जो अपना मेन्यू बताती है। ऐसे में अनु अपनी बात मानसी के सामने रखती तो है, लेकिन मानसी मौके का फायदा उठाती है और देखिए कैसे नौकरों के सामने अनु को ये याद दिलाती है कि उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। बेचारी अनु ये सब सुनकर चुपचाप खड़ी है और उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा है।
2: एक बात क्लियरली समझो, जब तुम्हारे हस्बैंड का ही इस घर के रहने पर सवाल, तुम किस हद से इतना सारा सब कुछ कर रहे हो? जब ब्रोइनलॉ इस घर के बेटे नहीं है तो तुम वो कैसे हो गए? इस घर में क्या बनेगा, इस किचन में क्या होगा, ये डिसीजन इस घर की बहू लेगी। तो मैं और मीरा ऑफिस जाती हूँ।
1: भाई मानसी को तो बस मौका चाहिए था अनु को नीचे गिराने का और आज उसे ये मौका मिला है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, अनु को खरी खोटी सुनाने के बाद मानसी ने अनु को किचन के बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। बेचारी अनु चाह कर भी कुछ कर नहीं पाई और चुपचाप वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी ओर गायत्री माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और हो रही है इमोशनल, क्योंकि जब से आर्यवर्धन का सच सभी घरवालों के सामने आया है तब से सभी ने अपना हक मांगना शुरू कर दिया है।
3: मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में ये सब होगा। कभी नहीं सोचा था कि मेरी आंखों के सामने मुझे ये सब देखने को मिलेगा। हे माता रानी, और बुरे दिन आए उससे पहले मुझे अपने पास बुला लीजिए।
4: माँ कैसी बातें कर रही हैं आप, प्लीज कसम मत खाइए।
3: तो और क्या करूं अनु, क्या करूं? अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बेचारा मेरा आर्य कितनी बदनामी झेल रहा है। क्या कुछ नहीं किया उसने इस घर के लिए, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अभी उसे अपने ही कमरे से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 20 साल से इस घर को मैंने जोड़ के रखा है, मेरी आंखों के सामने सब बिखर रहा है।
1: भाई अनु गायत्री को संभाल ही रही थी कि तभी अनु को आ जाता है उसकी मम्मी का कॉल। असल में उसकी मम्मी ने उसके लिए फेवरेट खाना बनाया है। ऐसे में अनु कहती तो है कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन तभी गायत्री अपना फरमान अनु को सुना देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अनु मायके जाए।
3: जिन लोगों की वजह से मेरे घर में ये सब हुआ, मैं नहीं चाहती कि तुम उस घर जाओ।
4: मीरा,
3: ससुराल वालों की तरफ या मैं की तरफ। फिलहाल अपने ससुराल वालों का साथ, इस घर का साथ, आर्य का साथ।
5: अगर तुम्हें हमारी बात का मान रखना है तो तुम वहां नहीं जाओगे।
4: ठीक है मेरी, बस पता नहीं क्यों अचानक सर में बहुत दर्द होने लगा। शायद मैं आज नहीं
6: आऊँ।
4: नहीं, मेरा मतलब आप क्यों परेशान हो रही हो? आपको आने की जरूरत नहीं है। आर्य सर ने मुझे मेडिसिन दे दी है, मैं ठीक हो
6: चुकी। सच बता बेटा, घर में सब ठीक है ना?
4: हाँ मम्मी, मैंने कहा ना सब ठीक है। और
1: बेचारी अनु, वो चाहती ही नहीं है कि गायत्री माँ का दिल तोड़े। ऐसे में अनु अपनी माँ को कॉल कर ना आने की वजह बताती है और झूठ बोलकर रख देती है फोन। खैर अनु ने तो फैसला कर लिया है कि वो नहीं जाएगी, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अनु के पापा को आ गया है हार्ट अटैक। ये खबर सुनते ही अनु बेचैन हो गई है और बस अपने घर जाना चाहती है।

0: ऐसे में यश आकर अनु को उसके दिल की बात कहता है और अनु बिना सोचे समझे दहलीज पार कर लेती है।
1: तुम गौर के पास क्या करी?
2: यश भैया मुझे अभी कॉल आया कि पापा को हार्ट अटैक आया। माँ ने मुझे वहां जाने से मना किया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ पापा के।
1: नहीं अनु, अनु तुम्हें जाना चाहिए, इस सिचुएशन में जाना चाहिए सबसे पहले, तो तुम जल्दी जाओ। हाँ जाओ, जल्दी जाओ।
0: फिलहाल तो अनु अपने मायके गई है, अब देखना होगा गायत्री को अनु का जाना राज आएगा और क्या अनु को वापस इस घर में जगह मिलेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: विक्रांत और मन्नत दोनों जल्द ही धैर्य का खुलासा करने वाले हैं और इसे लेकर उन्होंने तैयार किया है एक मास्टर प्लान। तो चलिए देखते हैं क्या है इन दोनों का प्लान।
4: घर पे बेड़े बनते हैं, क्यों ना हम बेड़े में ट्रूथ सीरम मिलाते।
0: मन्नत और विक्रांत का मास्टर प्लान,
4: सच बोलने की दवाई और वो पेड़ा धैर्य जी को खिला दे, हेलुसिनेशन होने लगेगा और वो सबके सामने अपना सच कबूल कर लेंगे।
0: त्योहार में होगा धैर्य का खुलासा। क्या खुलासे में लग जाएगा ब्रेक? कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत और विक्रांत ने इस जन्माष्टमी के मौके पर पूरी तैयारी कर ली है धैर्य का खुलासा सभी के सामने करने की। ऐसे में देखिए कैसे आज मन्नत के घर में हो रहा है जन्माष्टमी का प्रोग्राम, जहां पर मन्नत पूरी देखरेख कर रही है और तो और उसने कैमरा भी लगवा लिया है क्योंकि उसे पता है कि स्पेशल प्रोग्राम में धैर्य खुद अपना खुलासा करेगा। ऐसे में देखिए कैसे बार बार वो कैमरामैन को इंस्ट्रक्शंस दे रही है। भाई धैर्य और रोनी तो मन्नत की इस तैयारी से बेहद खुश हैं, लेकिन धैर्य उन्हें मिलने वाला है सरप्राइज, वो भी बच्चों के हाथों, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं स्पेशल स्किट की तैयारी और उसी की प्रैक्टिस में दुआ बंटी और युवराज तीनों जुटे हुए हैं। ऐसे में धैर्य को हो जाता है डाउट और वो पहुंच जाते हैं उन बच्चों से स्किट के बारे में जानने के लिए। बस फिर क्या, बंटी बताना शुरू तो करता है। ऐसे में मन्नत भी घबरा जाती है और वो भी पहुंच जाती है कि मौके पर बंटी को रोक सके, लेकिन बंटी निकला चालाक, उसने कर दिया धैर्य को गुमराह। ऐसे में मन्नत भी बच्चों से बहुत खुश है। भाई मन्नत तो निकल गई है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और यहाँ पर जन्माष्टमी का प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। गोपियाँ जन्माष्टमी के मौके पर अपनी डांस लीला दिखा रही हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं। याशिका और मन्नत के बीच इशारे भी हो रहे हैं। ऐसे में मन्नत लेकर आ चुकी है मिठाइयाँ और देखिए कैसे वो मेहमानों को बांट रही है। इसी बीच वो पहुंच जाती है धैर्य के पास उन्हें मिठाई देने के लिए कि तभी बंटी वो मिठाई खाने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत रोक लेती है क्योंकि मन्नत ने उस मिठाई में की है मिलावट। खैर वो मिठाई खाकर धैर्य बेहोश हो जाता है और मन्नत और याशिका मिलकर धैर्य को जैसे तैसे कमरे में ले आते हैं, लेकिन मन्नत वो हो रही है परेशान और जैसे ही विक्रांत आता है तो मन्नत अपनी परेशानी विक्रांत के सामने जाहिर करती है क्योंकि धैर्य सच का खुलासा करते करते रह गया है। अब मन्नत और विक्रांत का मास्टर प्लान चौपट तो हो गया है और धैर्य वो बेहोशी हालत में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन क्या पता धैर्य भी बेहोश होने का ड्रामा कर रहा हो क्योंकि इस सीन से पहले जब धैर्य के सामने नौकरानी का खुलासा हुआ था तो धैर्य ने उसे डराने धमकाने के लिए फ्लावर पॉट तक उठा लिया। ऐसे में डर के मारे उस नौकरानी ने धैर्य को बता दिया कि वो कैमरा उसने नहीं लगाया था।
2: मुझे नहीं पता वो कैमरा कहाँ से आया, इंसान के सर पे ही आप भेजा है सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर।
5: तुम्हारे पास कैमरा था
2: सर? वो तो मैं सफाई कर रही थी, सफाई करते वक्त मिला था। मुझे लगा कि उस कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा जो अंकित सर के काम आ जाए, तो बस मैंने उठा लिया सर। सर और मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर मुझे जाने दीजिए ना।
5: सोचने वाली बात यह है कि विक्रांत के कमरे में कैमरा लगाया, तीन लोगों का मोटिव हो सकता है, राजवंश परिवार, मनमित जी और मैं। तीन के अलावा कोई और कैमरा लगाया नहीं।
0: अब धैर्य तो ठहरा पुलिस या आदमी, दिमाग के घोड़े तो दौड़ाएगा ही। अब देखना होगा कि मन्नत और विक्रांत का मास्टर प्लान जो चौपट हुआ है, क्या उसमें धैर्य का ही हाथ है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल जगत धात्री में रुद्र फना हो चुका है और देशमुख फैमिली में मातम छाया हुआ है, लेकिन रुद्र के फना होने पर शिवाय पर क्यों हो रही है थप्पड़ों की बरसात, चलिए देखते हैं।

0: देशमुख परिवार में छाया मातम। मातम में थप्पड़ शो। रुद्र के फना होने पर दुखी हुए घरवाले।
1: जगदात्री बचाओ मुझे।
0: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री के सामने रुद्र का सच आ तो गया है और जगधात्री उसे गिरफ्तार भी करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही रुद्र के साथ हादसा हो जाता है जिसमें रुद्र हो जाता है फना।
2: जगधात्री प्लीज हेल्प मी।
0: और ऐसे में जैसे ही घर वालों को ये बात पता चलती है कि रुद्र के साथ अनहोनी हो गई है, तो देखिए कैसे घबराए घर वाले पहुँच गए हैं पुलिस से ये जानने के लिए कि रुद्र सही सलामत है या नहीं। माया तो कमिश्नर से बार बार पूछ रही है। इससे पहले कि कमिश्नर कुछ कहते, वहाँ पर आ जाता है शिवाय। बस फिर क्या, माया शिवाय से जानने की कोशिश करती है। सभी घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि शिवाय कुछ बोलेगा, लेकिन शिवाय की बोलती बंद है।
3: रुद्र कहाँ है बता?
4: बोलो शिवाय।
3: क्या वो है घर? उन्हें कोई कुछ बता। कमिश्नर अंकल, लोग सब चुप क्यों है? कमिश्नर अंकल, एंड आप कुछ ब्लास्ट के बारे में बोल रहे थे ना? व्हाट अबाउट दैट ब्लास्ट? अरे कुछ तो बोलिए है घर। उन्हें कोई कुछ बोल के नहीं रहा। रुद्र कहाँ है कमिश्नर अंकल?
4: अरे सर बोलिए ना, कहाँ है?
5: बोलिए।
3: आप लोग चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए।
4: स्पीक अप प्लीज।
6: आई एम सॉरी, उस ब्लास्ट में रुद्र नहीं रहा।
7: तो एक रात पहले पता चलता है शिवाय एक्चुअली मेरे रूम में आता है कि उसे रुद्र से बात करनी है। तो वो मेरे बाजू में ही सोया होता है एंड द मोमेंट आई टर्न वो गायब हो गया अचानक से। फिर शिवाय पैनिक क्रिएट माहौल करता है मेरे लिए, तो मैं खुद भी पैनिक हो जाती हूँ कि रुद्र अभी यहीं पे था, वो कहाँ चला गया। और फिर शिवाय बताता है कि जगधात्री भी गायब है, तो फिर मैं सोचती हूँ रुद्र जगधात्री दोनों ही गायब है, तो समथिंग इज ऑन फॉर यू ऑल। फिर घर में तमाशा होता है और घर पे लोग भी पैनिक होने लगता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। एंड उसके बाद कमिश्नर अंकल का कॉल आता है कि आप लोग प्लीज़ फटाफट से सब हॉस्पिटल आ जाए। सो मैं हॉस्पिटल, हम सब आते हैं यहाँ पे और अब पता चलता है दैट मेरा पति मर गया है।
0: रुद्र की मौत की खबर सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इतना ही नहीं, जैसे ही कमिश्नर रुद्र के सामान की शिनाख्त करने के लिए कहते हैं तो रुद्र की माँ आरती वो ये मानने को तैयार ही नहीं है।
6: I'm sorry, पता नहीं कैसे कहूँ, रुद्र की बॉडी के पास कुछ सामान है। I think आपको चल के देखना चाहिए, उसके बाद बॉडी आइडेंटिफाई करेंगे।
8: सुना तुमने?
3: क्या बोल रहे आप? हाँ, क्या ये बॉडी? बॉडी मेरे रुद्र की बॉडी नहीं है। माया तुम बोलो ना, ये रुद्र को कुछ नहीं हुआ है ना, उसे कुछ हो सकता है। महेश जी की क्या बेहूदा मजाक कर रहे हैं? तुम्हें पता है ये सब फालतू के मजाक मुझे पसंद नहीं है। इनको बोलो चुप करें। रुद्र कहाँ है? इनको बोलो बुला। इनको बोलो ना, रुद्र को बुला। रुद्र,
4: आरती,
3: रुद्र।
0: भाई आरती की जो हालत है वो सभी बखूबी समझ रहे हैं। ऐसे में माया शिनाख्त करने के लिए कमरे में जाती है जहाँ पर रुद्र का सामान देखकर माया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी बीच पहुँच जाती है तपस्या भी, जो रुद्र की टी शर्ट देखकर रोने लगती है और एक एक कर सभी को रुद्र की निशानियाँ दिखाई देती हैं।

0: हम सब शॉक में हैं एक्सट्रीम लेवल पे बिकॉज वी डिड नॉट सी दिस कमिंग एट ऑल. हाँ, और मैं खुद भी डिसबिलीव में रहती हूँ. शिवाय को बोलती भी हूँ कि प्लीज़ बोलो कि ये लोग मजाक कर रहे हैं या रुद्र यही कही है, कुछ तो है, सच बोलो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो.
1: आरती को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा. ऐसे में शिवाय रुद्र की माँ को संभालने के लिए आगे बढ़ता है तो देखिए कैसे आरती को रुद्र पर ही गुस्सा आ जाता है और वो उसके गालों पर जोरदार तमाचों पर तमाचे जड़ देती है.
2: शिवा तुझे पता है रुद्र कहाँ है? चल सच बता, कहाँ है रुद्र? रुद्र कहाँ है शिवाय, बोल. शिवाय झूठ बोल रहे थे. झूठ क्यों बोल रहा है? तूने कहा था मुझे, क्या कहा था तूने मुझे? तूने कहा था तू रुद्र को घर लेके आएगा, है ना? सही सलामत तूने कहा था ना फोन पे? तो तू छोटा भाई के तो से ये करते भाई के साथ तूने क्या क्यों नहीं दिया मेरे रुद्र का? शिवाय तूने कहा था तू उसे घर लेके आएगा, तुझे पता ना होता है. तूने क्या क्यों नहीं दिया रुद्र के साथ? क्या क्यों नहीं दिया तेरे शिवाय? तूने क्या क्यों नहीं दिया? मुझे मेरा रुद्र चाहिए, मुझे रुद्र वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए रुद्र, है ना?
0: हाँ वो डिजर्व करता है ना. क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि रुद्र मेरा भाई है, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा. एंड वो घर से भी निकलता है वही एक्सक्यूज देके, जब मैं उसे रोकती हूँ पूछती हूँ कि रुद्र कहाँ पर है, तो वो कुछ बोले बना निकल जाता है. और उसके पहले भी मतलब भाई है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, वही थप्पड़ खाएगा, मैं थोड़ी कहूंगी.
1: अब आरती को तो यही लग रहा है कि ये सब रुद्र और जगधात्री की वजह से ही हुआ है. खैर माया आरती को संभालने की कोशिश कर रही है तो वही मनीष का दिल भी टूट गया है और उनका दर्द उनकी आंखों से बह रहा है. जैसे ही शिवाय इस बात की कंफर्मेशन करता है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और शिवाय उन्हें संभाल रहा है. देखना होगा क्या घर वालों को ये बात पता चल पाएगी कि रुद्र की मौत के मौके के वक्त जगधात्री वहाँ मौजूद थी. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
3: सीरियल मन अति सुंदर में एक बार फिर दादी राध्या से नाराज हो गई है. अब इस बार क्या है दादी की नाराजगी का कारण, चलिए देखते हैं.
4: अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई,
1: एकता को लगी मिर्ची
4: हो गई, अरे सीटी बज गई,
1: राध्या पर लगा इल्जाम
4: चला, गड़बड़ हो गई,
1: दादी ने मचाया घर में कोहराम.
4: मुझको संभालो.
1: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में एकता दूसरी बार माँ बनने जा रही है. ऐसे में उसके मायके से आया है पार्सल जिसमें है मिठाइयाँ. ये देखकर एकता बेहद खुश है. इसी बीच प्रथम और राध्या भी डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए घर से निकलने की तैयारी करते हैं. ऐसे में जैसे ही एकता डब्बा खोलने जाती है तो दादी उसे रोक लेती है. इतना ही नहीं वो ये सारा काम राध्या को दे देती है. ऐसे में बेचारी राध्या करती ना करती उसने मिठाई की थाली ला कर दे दी एकता को. और जैसे ही एकता ने मिठाई खाई मच गया बवाल क्योंकि एकता को लग गई जोरदार मिर्ची.
4: अरे गड़बड़.

0: quanto pode ser aqui.
1: Em de bote, não olho, pode ser.
2: भाई एकता की ये हालत देखकर प्रथम ने डॉक्टर को फोन लगा दिया और सारी सिचुएशन बता दी। ऐसे में डॉक्टर ने दिलासा दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन तभी दादी ने अपना खेल खेल दिया और उर्मी से लड्डू चेक करने के लिए कहा। ऐसे में उर्मी ने लड्डू उठाया, फोड़ा और देखा उसके अंदर मिर्ची है। इतना ही नहीं, उसने सारे लड्डू फोड़ कर देख लिए, सभी लड्डुओं के अंदर मिर्ची निकली। बस फिर क्या, दादी ने सरेआम लगा दिया राध्या पर इल्जाम और राध्या ये इल्जाम देखकर हो रही है हैरान।
0: राध्या, एकता के लड्डू में मिर्ची मिला दी?
3: बस कीजिए दादी।
4: दादी, भाभी,
3: अगर भगवान खुद भी आकर मुझे बोलेंगे ना कि राधा ने इन लड्डुओं में मिर्ची मिलाई है, मैं तब भी नहीं मानूंगा।
0: इतना अंधविश्वास अच्छा नहीं होता। अगर राधा निर्दोष है तो लड्डुओं में लाल मिर्ची आई कहां से?
2: भाई जैसे ही राध्या ने अपनी बात रखी, सभी को शक हुआ और दादी वो डर गई क्योंकि कारनामा उन्हीं का है। ऐसे में इस बात की तह तक कोई घर वाला पहुँचे न पहुँचे, दादी बवाल मचाना शुरू कर देती हैं, लेकिन तभी ओमकार लगा देता है इस बवाल पर ब्रेक।
5: माँ जब एक बार सुरक्षित है, उसका बच्चा सुरक्षित है, तो फिर ये बहस करने से क्या फायदा है?
0: एकता सुरक्षित है क्योंकि उसने लड्डू नहीं खाया। अगर उसने लड्डू खा लिया होगा तो राधे तो वैसे भी हमें कोई खुशी देने वाली है नहीं, लेकिन एक बैठ घर को जो बच देने वाली है वो इस राधे की जलन की वजह से कहीं हम सबसे दूर नहीं हो जाए। इस बात का तो ध्यान रखना ही होगा ना। अपना क्या काम कर सकते, उस बात का हमें बहुत दुख, लेकिन इतना तो अपनी बात कर सकती है। हमें इस बात की कोई जलन नहीं है राधे, हमारे लिए जीत कीजिए।
2: अब दादी तो किसी भी तरह से राध्या पर पूरा इल्जाम लगाना चाहती है। ऐसे में कुछ लोग राध्या का साथ दे रहे हैं, लेकिन एकता उसके मन में राध्या के खिलाफ शक घर कर रहा है। ऐसे में राध्या जब एकता के पास जाती है सच बताने के लिए, तो एकता राध्या पर ही बरस पड़ती है क्योंकि उसे डाउट हो गया है कि राध्या उसकी खुशी देख नहीं सकती।
1: राध्या, तुम्हें जो कोई भी प्रॉब्लम है वो प्लीज सिर्फ मुझ तक रखो, कि मेरे बच्चे से अपनी ये बुरी नजर, ये खराब हरकत से दूर रखो। अगर उसे कुछ हो जाता तो राधा, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रखो।
2: अब एकता ने तो अपना फैसला सुना दिया और दादी ये फैसला सुनकर बहुत खुश हैं क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि सभी की नजरों में राध्या गिर जाए। और तो और वो ये भी चाहती थी कि राध्या अस्पताल पहुंच ना पाए। इसी बीच रजनी को राध्या और प्रथम दोनों पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि दोनों अस्पताल जाने वाले थे लेकिन अब घर के बखेड़े में बिजी हो गए हैं। ऐसे में रजनी दोनों को ना सिर्फ डांटती है बल्कि उन्हें अस्पताल जाने को कहती है। भाई प्रथम और राध्या को अस्पताल जाता देख दादी परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो तो इन्हें रोकना चाहती हैं, लेकिन तभी प्रथम को आ जाता है डॉक्टर का कॉल जहां पर वो इन्हें बताती हैं कि ये 5 मिनट लेट हो गए हैं जिसके चलते अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया है और अब अगले 1 हफ्ते तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर किसी काम के चलते छुट्टियों पर जा रही है। और यही बात प्रथम ने सभी घर वालों को बताई। ऐसे में दादी ये सुनकर खुश हो गई क्योंकि उन्हें 1 हफ्ते का मौका मिल गया है राध्या को परेशान करने का। अब देखना होगा कि इस 1 हफ्ते में दादी कौन सी नई चाल चलेंगी राध्या को प्रथम से दूर करने की। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट
6: है। एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।
2: सास सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग खबर जुड़ी हुई है अजय देवगन और तब्बू से। अजय देवगन और तब्बू की आने वाली फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन का पोस्टर रिलीज हो गया है। जल्द ही ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज भी होगी और जल्द ही इसका ट्रेलर भी आएगा। जल्द बनने वाली है जोड़ी सिद्धांत चतुर्वेदी और एलिजे अग्निहोत्री की। खबरों की माने तो जल्द ही एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म आएगी जिसका नाम टेंटेटिवली ट्राइब रखा गया है। हालांकि अब तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं आया है।

खबरों की माने तो अलू अर्जुन की आने वाली फिल्म राका में अलू अर्जुन एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन रोल निभाएंगे। बता दें कि अलू अर्जुन इसमें ट्विंस का रोल तो निभाएंगे ही, साथ ही उन ट्विंस के पापा का रोल भी अलू अर्जुन ही निभाने वाले हैं।

फिल्म रेस से जुड़े फैंस के लिए आ गई है गुड न्यूज। खबरों की माने तो आमिर खान जल्द ही एक्शन थ्रिलर फिल्म रेस 4 की शूटिंग शुरू करेंगे और इस फिल्म में आमिर खान के साथ नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ भी। हालांकि अभी तक इस फिल्म से रिलेटेड कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, बस खबरें यही है कि ये तीनों साथ में रेस 4 में नजर आएंगे।

रियल लाइफ कपल सारा खान और क्रिश पाठक दोनों ही साथ में नजर आने वाले हैं नए किरदार में। खबरों की माने तो स्टोरी टीवी जो कि वर्टिकल ड्रामा लेकर आता है, उसमें सारा खान और क्रिश पाठक एक नई सीरीज लेकर आएंगे।

सना मकबूल खान ने अपने फैंस को दे दी है गुड न्यूज कि जल्द ही नए किरदार में नजर आ सकती हैं। हालांकि उनका नया प्रोजेक्ट क्या है इस बात की जानकारी अभी तक उन्होंने नहीं दी है। दिल चाहता है को पूरे हो गए हैं 25 साल। ऐसे में हो गया है इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का रीयूनियन, जहां पर सभी मिलकर कर रहे हैं 25 साल होने की खुशी का सेलिब्रेशन। वहां पर नजर आए सैफ अली खान, आमिर खान, डिंपल कबाड़िया, श्रेया पिलगांवकर, शंकर महादेवन, अख्तर फैमिली और साथ ही नजर आई ईरा खान, जो आई है अपने हस्बैंड के साथ। साथ ही दिखी संजना सांगी भी।

0: आस बहू और बेटियां में। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: इसकी
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
6: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम। 10 टन राह सामग्री की तैयारी, तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी,

भगवान से प्रार्थना की। किर्गिस्तान में आयोजित एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना। पुतिन, शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से होगी अहम मुलाकात।

0: 기다리고 있습니다.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के दौरे पर हुए रवाना, किर्गिस्तान में 26वें एससीओ समिट में करेंगे शिरकत। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ताशकंद की राजकीय यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर होगा मंथन। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी एससीओ समिट, क्षेत्रीय सुरक्षा संपर्क और अफसरों पर होगा मंथन। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, द्विपक्षीय बैठक पर होगी नजर। किर्गिस्तान के 6वें विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी, सेंट्रल एशिया की संस्कृति की दिखेगी झलक। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक 2465 लोगों को किया एयरलिफ्ट। रेस्क्यू में 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू, कई जगहों पर चल रहा है रेस्क्यू अभियान। नेपाल में मुसीबत के बीच करिश्मा 8 साल के बच्चे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। एक दिन बाद किया गया एयरलिफ्ट, बच्चे से मिलकर भावुक हुई मां। चीन में फंसे 400 भारतीय सुरक्षित, भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ निकासी में जुटा। भारत से मदद को लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची तीसरी फ्लाइट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। राहत सामग्री के साथ प्रभावित इलाकों में 11 लोगों की मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम भी मुस्तैद, दोनों को लोगों को सुरक्षित निकालने की हर संभव कोशिश जारी। जल आपदा से पीड़ित नेपाल को हर संभव सहयोग दे रहा है भारत, नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है सरकार। आपदा प्रभावित नेपाल की मदद के लिए यूपी के बस्ती में महिला

0: पहल, रक्षाबंधन में भाई से मिले शगुन के पैसे को दान पात्र में किया जमा। मुश्किल वक्त में पड़ोसी देश के साथ मजबूती से खड़े भारतवासी, आपदा पीड़ितों के लिए जुटा रहे हैं धन। यूपी में रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा का बहनों ने उठा लाभ, 40 लाख बहनों ने की मुफ्त बस यात्रा। 20 लाख सहयात्रियों ने भी योजना का उठा लाभ, आज रात 12 बजे तक मिलेगी मुफ्त यात्रा की सौगात। पैकेज फूड को लेकर हेल्थ से जुड़ी अच्छी खबर, पता लगा सकेगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा। मानक से अधिक होने पर देनी होगी जानकारी, सेहतमंद विकल्प चुनने में ग्राहकों को मिलेगी मदद। पैकेट पर चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव, लाल रंग षटकोणीय चेतावनी लेबल का प्रस्ताव, FSSAI ने जनहित याचिका पर SC में दिया प्रस्ताव। UGC नेट के 84 विषयों के नतीजे घोषित, 4000 से अधिक अभ्यर्थी JRF के लिए चयनित। असिस्टेंट प्रोफेसर PhD के लिए 7.56% हुए पास, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0.70% लोग छात्रों को मिली सफलता। कैंसर के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी, mRNA कैंसर वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल सफल। कैंसर के दोबारा लौटने के जोखिम को करती है कम, मॉडर्ना और मोक कंपनी के टीके को किया विकसित। उच्च जोखिम वाले त्वचा कैंसर मरीजों पर किया ट्रायल, 1137 मरीजों पर किया गया प्रशिक्षण। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने की गोगा जी महाराज की पवित्र छड़ी की पूजा, प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। रक्षाबंधन के अगले दिन भुजरिया उत्सव को धूमधाम से मनाया गया, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने मवेशियों को खिलाया चारा, गौशाला का भी किया निरीक्षण। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं सैलानी। दिल्ली में 50 साल पुराना मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का होगा मंचन, आज से 4 सितंबर तक कमानी ऑडिटोरियम में दिखाई जा रही कृष्ण की लीलाएं। पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन में कृष्ण का भव्य मंचन, शास्त्रीय नृत्य संगीत और शानदार सेट लाइटिंग आकर्षण का केंद्र। कृष्ण में जन्म से लेकर रासलीला और महाभारत तक की दिखाई जाएगी कहानी, गीता के जरिए जीवन के महत्वपूर्ण संदेश। न्यूयॉर्क के इस्कॉन मंदिर में RSS प्रमुख मोहन भागवत का भव्य स्वागत, भागवत ने मंदिर का दौरा किया। तेलंगाना के मलकजगिरी में अजय देवगन की बेटी निशा देवगन ने श्री भवानी रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की, लिंगेश्वर भगवान का आशीर्वाद लिया। बंगाल के जादवपुर में 10,000 लोगों ने एक साथ गाया वंदे मातरम, सीएम शुभेंदु अधिकारी रहे मौजूद। मदुरई में नशे के खिलाफ जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। देवरिया को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात, करीब 305 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। गुरुग्राम के लोगों के लिए खुशखबरी, गुरुग्राम मेट्रो के लिए पहले यू गर्ड की लॉन्चिंग। नेपाल से सीतामढ़ी लौट 106 तीर्थयात्री, प्रशासन ने रहने और खाने का इंतजाम किया। छड़ी मुबारक के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा हुई संपन्न, साधु संतों ने की विशेष पूजा। जुलाई से शुरू हुई बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा रक्षाबंधन तक चली, 57 दिनों में 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कल महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में छड़ी मुबारक के साथ पवित्र गुफा पहुंचा साधुओं का एक दल, बाबा बर्फानी की विधिवत की गई पूजा अर्चना। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर काशी में बाबा विश्वनाथ का किया गया झूला श्रृंगार, धूमधाम से झूलनोत्सव हुआ संपन्न। भक्तों ने प्रेम से झुलाया भोलेनाथ को झूला, सुख समृद्धि और लोक मंगल के लिए की गई कामना। महाराष्ट्र के जालना में किसानों के बीच बड़ा ड्रैगन फ्रूट की खेती का क्रेज। पानी की कमी के बीच दूसरे विकल्प बन रहे हैं आमदनी का जरिया। जालना के एक किसान ने 1.5 एकड़ में लगाए करीब 5,500 ड्रैगन फ्रूट के पौधे। पहली बार में 10 से 15 लाख रुपए की आमदनी की उम्मीद है। किसान नारायण गोरे ने मोबाइल की मदद से शुरू की ड्रैगन फ्रूट की खेती। लागत में 25 से 30 फीसदी तक कमी होने का दावा। यूपी के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जेआरपी हेड कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान। लोगों ने की जमकर तारीफ। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री का पैर। जीआरपी जवान सुरजीत कुमार ने दौड़कर बचाई जान। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया नया रिकॉर्ड। 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 729.33 अरब डॉलर पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। स्वास्थ्य फिटनेस के साथ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मकसद। स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी में अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए। श्रीलंकाई जेल से रिहा किए गए 7 मछुआरे पहुंचे चेन्नई एयरपोर्ट पर परिजनों ने किया स्वागत। केरल में बस में चढ़ते वक्त फिसला बुजुर्ग का पैर। क्लीनर ने फुर्ती दिखाकर यात्री को गिरने से बचाया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाइयों और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9:00।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी। नेपाली सेना ने अब तक 2465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित देश के लिए जुटाया फंड, देश की सुख शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। किर्गिस्तान में आयोजित एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई अहम नेताओं के साथ होगी मुलाकात। अब पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनीज को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा। FSSAI ने अदालत में दिए अपने हलफनामे में जानकारी दी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। चतुर्मास का पहला मास सावन विदा हो चुका है। चतुर्मास का पहला मास सावन देवादिदेव महादेव को समर्पित था, तो भाद्रपद का महीना श्री कृष्ण, श्री हरि और गणपति जी को समर्पित है। इस माह को लोग भादो के नाम से भी जानते हैं। आखिर क्यों इस माह की पूजा उपासना को कामना पूर्ति के लिए विशेष माना जाता है, आइए आपको बताते हैं।

0: भाद्रपद में बदल जाएगा आपका भाग्य। श्री कृष्ण की कृपा से टल जाएगा दुर्भाग्य। दैवीय कृपा पाने का सबसे दिव्य मास। महाप्रयोग से सफल होंगे आपके प्रयास। होने वाला है त्योहारों और पर्वों के मास भाद्रपद का आरंभ। जब अलग अलग तिथियों पर पूजे जाएंगे अलग अलग भगवान। भाद्रपद महीने को कहीं कहीं भादो के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भाद्रपद का महीना 29 अगस्त से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेगा। तो आखिर चतुर्मास के इस दूसरे महीने को इतना कल्याणकारी और वरदानों वाला क्यों माना जाता है? सबसे पहले चलिए यही आपको बताते हैं। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला। भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने और पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है।
1: चतुर्मास का द्वितीय मास को हम भाद्रपद मास के नाम से जानते हैं। ये भगवान नारायण को समर्पित है। इसके देवता नारायण माने जाते हैं, पर नारायण का एक विशेष स्वरूप है ऋषिकेश। उनके ऊपर जो नियंत्रण रखता है वो ऋषिकेश नारायण, इससे स्वामी है। और इस समय नियम संयम द्वारा अपने शरीर और नाड़ियों को साधने का सबसे सुंदर अवसर भाद्रपद मास होता है।
0: भाद्रपद को त्योहारों का माह कहा जाता है, जिसका आरंभ ही कजरी तीज से होता है, जो जन्माष्टमी से पहले ही मनाया जाता है। इसी माह में श्री कृष्ण के बलदाऊ का महोत्सव हल छठ के रूप में मनाया जाता है, जब महिलाएं बिना हल के जोता हुआ अनाज खाती हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस महीने में कई पवित्र त्योहार और पर्व ऐसे हैं जो व्यक्ति के मन को शुद्धता से परिपूर्ण कर सकते हैं। जिस तरह सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है, ठीक उसी तरह भाद्रपद महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश की भक्ति से उनकी कृपा हासिल करके कई कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। साथ ही भाद्रपद में बरसती है राधा रानी की भी कृपा, जो राधाष्टमी के नाम से जग में विख्यात है,
1: क्योंकि इसमें भगवान के अवतारी भी हुए हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के देवताओं का सेवा का भी अवसर मिलता है। और नियम वाला इतना है कि भोजन से लेकर शयन तक के सारे नियम इसी मास में लागू होते हैं। अब अपना कल्याण चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं और आशीर्वाद स्वरूप घर में आनंद चाहते हैं, तो जन्माष्टमी पे भगवान का घर में पूजन अवश्य करना चाहिए।

0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पंचांग में आषाढ़ से चार माह तक व्रत और पूजन का विशेष महत्व है। इन चार महीनों में मौसम में बदलाव होता है और इन महीनों में बैक्टीरिया भी अधिक पनपते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में चार महीनों में नियम, संयम और व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। जिससे सेहत अच्छी बनी रहे और बदलते मौसम का बुरा प्रभाव कम से कम हो। तो आखिर भाद्रपद में किन बातों का रखना है विशेष ख्याल, चलिए आपको बताते हैं। इस महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करें। दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों वेला स्नान करें ताकि आलस्य दूर हो पाए। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए।
1: इसमें क्योंकि नियम वाला ही है, इसमें आचरण, भोजन सब नियम से बने हैं। दही का विशेष तौर पर निषेध कह दिया गया है। इसमें एक समय भोजन करने का विशेष बताया गया और भोजन रात्रि में करें भी तो बहुत हल्का। दही से बनी वाले जितने पकवान है, कढ़ी आदि, वो सब निषेध कर दिए गए हैं क्योंकि इस समय मंदाग्नि बहुत अधिक होती है, शरीर में रोग उत्पन्न होने का रहता है। और साथ में जल पान खुद स्वयं करना, पानी की मात्रा अधिक बढ़ा के रखें, ये इसके विशेष नियम है।
0: इस महीने में स्नान, दान और व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट किया जा सकता है। साथ ही कुछ सावधानियां आपकी सेहत को भी उत्तम बनाए रख सकती हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि भाद्रपद में कौन कौन से प्रमुख तीज त्योहार आते हैं, साथ ही जानेंगे कि इस माह में कैसे आप पा सकते हैं गणपति संघ कान्हा का वरदान। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में कई व्रत त्योहार भी आते हैं जो इस महीने को सबसे ज्यादा पावन और खास बनाते हैं। तो किन किन पर्व त्योहारों का महीना है भाद्रपद और किन देवी देवताओं की पूजा इस महीने में लाभकारी होती है, ये अब जानेंगे और साथ ही जानेंगे महालाभ के वो महा उपाय जिनसे निश्चित ही आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं।

0: भाद्रपद में गणपति संग पधारेंगी रिद्धि सिद्धि। गणेशोत्सव में आपके घर आएगी समृद्धि। भादो में ही पधारेंगे मुरली मनोहर श्याम। श्री कृष्ण की उपासना से बनेंगे बिगड़े काम। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भाद्रपद माह त्योहारों, व्रत और उपवास की तिथियों के कारण सबसे खास हो जाता है। पंचांग की तिथि कहती है कि इस महीने गणपति अपने भक्तों के घर जाकर विराजते हैं और उनका कल्याण करते हैं, तो वहीं लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों को दर्शन देकर उन्हें निहाल कर देते हैं। तो आखिर इस महीने किन देवी देवताओं की आराधना की जाती है और कौन कौन से पर्व आते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। इस महीने में गणेश महोत्सव का पर्व आता है। इसी महीने में श्री कृष्ण बलराम और राधा का जन्मोत्सव भी आता है। इस महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज आता है। इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भाद्रपद का सबसे बड़ा उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जब कान्हा अपने नन्हे कदमों से धरती पर आकर सबकी पीड़ा सुनते हैं और उनकी कृपा से दूर हो जाते हैं भक्तों के सारे कष्ट।
1: किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण की और अपनी नाड़ियों के ऊपर नियम पाना हो, अर्थात नाड़ी को शुद्ध करके रोग मुक्त होकर और भगवान की प्रीति प्राप्त करनी हो, तो ये मास सबसे सुंदर है। योग अवश्य करें, भोजन पर नियंत्रण रखें, तो आप निश्चित रोग मुक्त होकर और योग की मुद्राओं के माध्यम से नाड़ी शुद्ध करते हुए मन की कामना भगवान तक साक्षात प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो अगर आप भी भाद्रपद में चाहते हैं लीलाधर की कृपा, तो जान लीजिए श्री कृष्ण की कृपा पाने के सबसे सरल और सटीक उपाय, जो यकीनन आपके सारे संकट को हर लेंगे। इस महीने में दही का प्रयोग तो वर्जित है, परंतु अगर पूरे माह श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, उन लोगों को कृष्ण जी के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुभ परिणाम देता है। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना से घर में धन और संपन्नता आती है।
1: इस मास में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता, अर्थात भगवान जन्म है। भाद्रपद की रोहिणी नक्षत्र में जब जन्मे थे तो इस धरती का ही कल्याण करने के लिए हुए थे, तो भगवान कृष्ण का पूजन करना, अपने घर में उनका ठाकुर स्वरूप रखना और उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति गृहस्थी जन के घर में किसी प्रकार का दुर्भिक्ष कमी नहीं हो सकती, कोई रोग नहीं आ सकता और सदैव एक मन भावन शांति और प्रेम बना रहता है।
0: ज्योतिषी बताते हैं कि यूं तो हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए इस चतुर्थी का सबसे ज्यादा महत्व है। कहते हैं घर घर जाकर गणपति अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए आप भी जानिए भाद्रपद में गणपति की कृपा के सबसे सरल प्रयोग।
1: चूंकि इसमें गणेश चतुर्थी भी इसी मास में पड़ती है और भगवान का सबसे सुंदर आशीर्वाद देने वाले भगवान गणेश के पूजन के दिन रहते हैं, तो जो गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान को पूजन करे और उनकी सेवा शुश्रूषा करे, भगवान को उनके प्रिय मोदक, भगवान को प्रिय दूर्वा, भगवान को प्रिय पान सुपारी अर्पण करे, गणाध्यक्ष आपके सारे मनोकामना को पूर्ण करते हैं, शुभता घर में बनी रहती है, लाभ तो हर चीज का होता है आपको।
0: विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए इस माह श्री गणेश की उपासना करें, पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें, नित्य प्रातः उनको दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं, पूरे माह सात्विक रहें, हर प्रकार की बाधा का नाश होगा। तो देखा आपने कितना कल्याणकारी है भाद्रपद का ये महीना। अगर आप भी चाहते हैं कि गणपति और श्री कृष्ण भाद्रपद के महीने में आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें, तो आपके पास सुनहरा मौका है। इसे जाने न दें, तो आप विधि विधान से भाद्रपद के माह में भक्ति रस में डूब कर करें ईश्वर की प्रार्थना, जिससे आपकी पूर्ण हो सारी मनोकामना। भाद्रपद के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी समेत कई महत्वपूर्ण तिथियां और व्रत आते हैं। ये वो मौके हैं जब भक्ति की शक्ति से आप ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर पाते हैं और दूर हो जाते हैं आपके सभी कष्ट। तो आखिर भाद्रपद में आने वाले पर्व त्योहारों से क्या क्या लाभ होता है और क्या है इनके पीछे की पौराणिक मान्यता, चलिए वो भी जान लेते हैं। सावन के बाद आने वाला हिंदू पंचांग का छठा माह है भाद्रपद। माना जाता है कि ये माह के धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का सरताज है, इसलिए इस माह में जप, तप, ध्यान और दान का महत्व बढ़ जाता है। चतुर्मास का ये दूसरा मास जीवन में संयम और अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की, जो 4 सितम्बर को मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्णाष्टमी को होने के कारण इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वे आज विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस माह के एक और प्रमुख व्रत हरितालिका तीज की, जो इस साल 14 सितंबर को मनाई जाएगी। माना जाता है कि भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। तो चलिए इस व्रत की महिमा भी जान लेते हैं।
1: हरतालिका तीज विशेष तौर पर है, इसको मंगल तीज भी कहते हैं। स्त्रियों को सौभाग्य वृद्धि करने वाला ऐसा सुंदर अवसर होता है, संतान की आयु लगाने वाला, प्रेम बढ़ाने वाला और घर में सुख की कामना बढ़ाने वाला हरतालिका का व्रत किया जाता है।
0: इसको हरितालिका तीज भी कहते हैं और हरतालिका भी, इसका संबंध शिव से है। इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है।

0: ये वो माह होता है जब भक्त गणपति बाप्पा का एक साल से इंतजार कर रहे होते हैं, जब गणपति घर घर में स्थापित किए जाते हैं, उनकी पूजा वंदना की जाती है और बाप्पा से मांगा जाता है सफल और सुखद जीवन का वरदान। तो चलिए जानते हैं भाद्रपद में आने वाले गणेश चतुर्थी का महत्व, जो इस बार 14 सितंबर से हो रहा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है। गणपति विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। मान्यता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके जीवन मुश्किलें दूर की जा सकती हैं। तो भाद्रपद की इस तब से कल्याणकारी तिथियों पर विधिवत की जाए ईश्वर की आराधना, साथ ही निभाए जाएं वो शास्त्रीय परंपराएं जिससे दैवीय कृपा के द्वार खुल जाते हैं और दूर हो जाते हैं बड़े से बड़े कष्ट। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देखो
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
9: बाप्पा के स्वागत की तैयारियां इस वक्त पूरे देश में जोरों पर है। मुंबई से लेकर देश के अलग अलग शहरों में गणपति उत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्कशॉप में मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर बाप्पा की प्रतिमाओं को सजाने और संवारने में लगे हैं। अलग अलग आकार की प्रतिमाएं इन दिनों रौनक बढ़ा रही हैं। कहीं छोटी गणेश मूर्तियां हैं तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग भर रहे हैं। अब इंतजार 14 अगस्त का है, जब पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से शुरू होगा।

0: गीली मिट्टी पर चलती उंगलियां, छेनी की हर एक बारीक चोट और फिर आकार लेता विघ्नहर्ता का ये पावन स्वरूप। ये सिर्फ मिट्टी को ढालने की कला नहीं बल्कि बेजान पत्थरों और माटी में भगवान को गढ़ने की वो तपस्या है जो हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। श्रद्धा और भक्ति में डूबे मूर्तिकार दिन रात बप्पा की मूर्तियों को आकार देने में लगे हैं। अलग अलग आकार की प्रतिमाएं इन दिनों रौनक बढ़ा रही हैं। कहीं छोटी गणेश मूर्तियां हैं तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग भर रहे हैं। गणपति के चेहरे की बारीकियां, मुकुट की नक्काशी, मूर्ति के हर हिस्से को खूबसूरत बनाने में कलाकार जी जान से जुटे हैं। कलाकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, लेकिन इस बार अकोला से आस्था और कला की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने का बड़ा संदेश भी दे रही है।
1: घरेलू गणपति महाराष्ट्र में सबसे अधिक विराजमान होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि अपनी भक्ति आराधना साधना के साथ बाप्पा की 10 दिन मनोभावे पूजा भी अच्छी तरीके से हो और पर्यावरण भी जो है वो संतुलित रहे। इसी को लेकर जो है अकोला की पर्यावरण प्रेमी कल्पना राव जो है पिछले 5 सालों से अधिक समय से जो है इस पर्यावरण पूरक बाप्पा की प्रतिमाएं जो है निर्माण कर रही है।
0: अकोला में साडू मिट्टी से तैयार की जा रही प्रतिमाएं इन दिनों डिमांड में है क्योंकि विसर्जन के बाद साडू मिट्टी पानी में आसानी से घुल जाती है और प्रदूषण का खतरा खत्म हो जाता है।
2: पिछले 5 साल पहले मैंने देखा कि जैसे गणपति का विसर्जन होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति गलती नहीं है और वो वैसे ही पड़े रहती इधर उधर, तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैं ऐसा सोची कि अपन क्यों ना मिट्टी से बनाए गणपति, और इतना हर महाराष्ट्र में हर घर में गणेश बैठाते हैं और मूर्तियां इतने प्रमाण में बिकती है और विसर्जित होती नहीं है, उससे पानी का भी नुकसान है, पानी की भी कमी है अकोला में।
0: मूर्तिकार कल्पना राव पिछले 5 सालों से साडू मिट्टी से इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं बना रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि कल्पना इन प्रतिमाओं पर कोई मुनाफा नहीं कमाती बल्कि सिर्फ लागत मूल्य पर मूर्तियां भक्तों को सौंपती हैं।
2: और मेरे जितने पहचान वाले मैंने सबसे आग्रह किया कि आप लोग साडू माता की मिट्टी की मूर्ति बनाइए और उसको घर पे विसर्जन करिए और मान सम्मान के साथ सनातन धर्म में अपना पूजा पाठ को महत्व है, तो घर में हाथ से बनी मूर्ति रहेगी, आप लोग घर में विसर्जन करिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे को ये बिजनेस जैसा नहीं है, मेरी श्रद्धा है और पर्यावरण पूरक, मैं खुद चाहती हूँ कि यहाँ पे अपने पर्यावरण को बचाना है।
0: जैसे जैसे बप्पा के आगमन की घड़ी नजदीक आ रही है भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। वैसे तो देश के कोने कोने में बप्पा की मूर्तियाँ बनती है, लेकिन राजस्थान के अलवर में काली मिट्टी से बनने वाली मूर्तियों की बात ही कुछ अलग है। अपनी खास इको फ्रेंडली बनावट के कारण अलवर की इन गणपति मूर्तियों की मांग सिर्फ भारत के शहरों में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक है।
3: गणपति महोत्सव में अलवर की गणपति जी की मूर्तियां विराजमान होती हैं। अलवर की मिट्टी से तैयार होने वाली मूर्तियां देश ही नहीं पूरे विदेश में भी अपनी खास पहचान रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार मूर्ति बनाने का काम जोरों से चल रहा है, रात दिन कारीगर मूर्ति बना रहे हैं और उसके बाद इन मूर्तियों को अलग अलग जगह डिमांड के अनुसार सप्लाई किया जाता है।
0: प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए खतरा होती हैं, लेकिन अलवर की चिकनी काली मिट्टी पूरी तरह प्राकृतिक है। इसे कूट कर, छान कर और कई दिनों तक भिगो कर सांचों में ढाला जाता है। पानी में जाते ही यह मूर्ति पूरी तरह घुल जाती है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अलवर और आसपास के इलाकों में 1,000 से ज्यादा कारीगर साल भर इस काम में जुटे रहते हैं। ये मूर्तियाँ खास ऑर्डर्स पर तैयार होती हैं और यूरोप, स्पेन और नेपाल समेत 15 से ज्यादा देशों में अपनी छटा बिखेरती हैं।
4: जी अपने पास देखो नेचुरली मिट्टी होती है जो खेतों और बांधों से जरिए आती है, उस नेचुरली मिट्टी के द्वारा भी हम गणपति की मूर्तियाँ रेडी करते हैं और अपने पास 4 इंची से लेकर 5-6 फीट तक की मूर्ति अवेलेबल हो सकती है। मिट्टी को सबसे पहले तो इसको छानना पड़ता है, छानने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए फिर इसके एक मोल्ड होता है जो उसको मोल्ड में डालने के बाद इसको निकालने के बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग के बाद इसके हाथ और सूंड वगैरह वो अलग से लगाए जाते हैं, तो इसको मतलब बनाने के प्रोसेस तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन के समथिंग आता है।
0: बप्पा के आगमन की तैयारी कर्नाटक और तमिलनाडु में भी जोर शोर से हो रही है, जहां इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। कर्नाटक के तेनकाशी में कलाकारों का हुनर और कारीगरी लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ भगवान गजानन की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं मौजूद हैं। तो वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में मूर्तियों पर की गई कलाकारी देखते ही बन रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर यहाँ गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर मिल रहे हैं। यानी इस बार बप्पा का स्वागत भव्य भी होगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार भी। गणपति उत्सव मुंबई के जिक्र के बिना अधूरा है। देश भर में भले ही गणपति उत्सव की रौनक है, लेकिन मुंबई में इस मौके पर भक्तों का जोश और जज्बा अलग ही होता है। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा की अलग अलग स्वरूपों वाली प्रतिमाओं की डिमांड है, लेकिन भगवान शिव और कृष्ण स्वरूप वाली मूर्तियां सबसे ज्यादा ट्रेंड में है।
5: ये टाइम पे बैलेंसिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बैलेंसिंग मूर्तियां बहुत ज्यादा देखने मिली है।
6: अच्छा, और जैसे अलग अलग रूप होते हैं, अवतार होते हैं, नरसिम्हा रूप हो गया या फिर किसान का रूप हो गया, क्या
5: शिवजी अवतार और कृष्ण अवतार बहुत ज्यादा ये टाइम पे फेमस है।
6: अच्छा, इस वजह से भी क्या, क्योंकि श्रावण भी चल रहा है?
5: ऐसा कुछ नहीं है,
6: क्योंकि श्रावण में लोग थोड़ा सा क्या है कि श्रावण में भी शिव जी को चार
5: जी तो हमेशा मतलब रहते हैं फेवरेट, बट शिवजी और कृष्ण की मूर्तियां ज्यादा चल रही है।
0: एक तरफ कलाकार अपनी कला से बप्पा के सुंदर स्वरूप को आकार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर इको फ्रेंडली गणपति की बढ़ती मांग एक नई सोच की तस्वीर पेश कर रही है। अब इंतजार 14 सितंबर का है, जब बप्पा का दरबार सजेगा और भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर होगा। अकोला से धनंजय साबले, अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
7: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
8: बस देखते जाइए, इनकी हरकतें पूरी मौज में हैं। इन्हें पता है कि लोग यहाँ उन्हें ही देखने आए हैं, सो पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। फोटो क्लिक करनी है तो करो ना, मैं पोज दे तो रहा हूँ। नन्ना हाथी सैलानियों के सामने जिस तरह से अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है, वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, जानवर के हों या इंसान के, ऐसी शरारतें करते क्यूट ही लगते हैं। नन्हे हाथी का ये अंदाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। पेड़ में लगा ये फल इन्हें चाहिए, लेकिन ये है कि हाथी नहीं आ रहा। कोशिश पूरी है, कभी मुंह से कभी हाथ से। ये लोहे का बैरियर न होता तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही कहाँ है। डॉगी जिस तरह से उस फल को खाने के लिए बेसब्र दिखता है और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, वो देखना दिलचस्प है। लगता है स्कूल में कोई फंक्शन है, अब सुंदर तो दिखना पड़ेगा, पर घर में क्रीम लगाना भूल गई शायद। बाइक में लगा आईना देखा तो एकदम से याद आया, या फिर शायद घर में क्रीम लगाने की मनाही हो। मसला चाहे जो भी हो, सड़क पर जिस तरह से हल हो रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे को नहीं पता था कि उसे आईने के अलावा भी कोई देख रहा है। जैसे ही नजर कैमरे पर पड़ी शर्मा गई। बच्चे के इस नेचुरल मुस्कान पर लोग दिल हार रहे हैं। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन दोनों ही माँ पापा के पैसों पर डिपेंड है तो यही होता है। बहन ने भाई को राखी बांधी, गिफ्ट मांगा तो भाई ने माँ की तरफ देखा। माँ ने पैसे दिए तो सही, लेकिन बहन के हाथ में आते ही फिर लपक लिया। आखिर इस छोटी सी उम्र में पैसों का करोगी क्या, संभाल कर रख देंगे हम, ये तो चीटिंग है ना। बच्चों का चेहरा देखिए जरा, मासूम बेचारे। ये वीडियो लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
10: राफेल के रणकौशल को कॉपी करने में जुटा चीन, मिस्र के आसमान में शह और मात का दाम। राफेल को डिकोड करने वाला चीन का प्लान, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
5: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों की रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेके विमान काठमांडू पहुंचा। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी। नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ सफल रेस्क्यू। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित देश के लिए जुटाया फंड, देश की सुख शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। किर्गिस्तान में आयोजित SCO समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री हुए रवाना, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से होगी अहम मुलाकात। पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनियों को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा। FSSAI ने अदालत में दी अपने हलफनामे में दी उसके बारे में जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और गुड न्यूज टुडे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब आपको दिखाते हैं कुछ खास और शानदार खबरें। देखिए, शादी हर किसी की जिंदगी का वो खास मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन आगर मालवा के सलोनी जैन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ एक नेक संदेश भी दिया। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चों में कटौती कर बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना तैयार करवाया।
6: तालाब किनारे खूबसूरत रंगों से सजा ये आशियाना दूर से ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। कुछ फीट ऊंचा ये आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहां परिंदों के लिए एक के ऊपर एक 6 मंजिलों में कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए हैं। इस आशियाने में छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, जबकि बड़े परिंदों के लिए थोड़े बड़े दरवाजे। हर मंजिल पर एक छत भी बनाई गई है।
7: आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग अपने विवाह कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर आगर मालवा की सलोनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उसने अपने विवाह के खर्च से कटौती करके बेजुबान पक्षियों के लिए आगर में स्थित मोती सागर तालाब के किनारे एक आशियाना बनाया है। सलोनी चाहती है कि जो बेजुबान पक्षी हैं, जो परेशान होते हैं, मौसमों की मार झेलते हैं, वो इस आशियाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
6: आगर मालवा की बेटी सलोनी जैन ने अपनी शादी के मौके पर इस अनोखे आशियाने का निर्माण करवाया है।

0: सलोनी ने अपनी शादी के खर्चे में कटौती कर ये पहल की ताकि बेजुबान परिंदों को भी अपना घर मिल सके।
1: मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तालाब किनारे रहती हूँ, बहुत सारे पक्षियों को देखती हूँ। ठंड में बहुत परेशान होते हैं वो, बारिश में उनके तेज हवा आंधी तूफान से घोंसले गिर जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। इतने सारे पक्षी हैं, उनके लिए मन में ऐसा लगता है कि ये परेशान हो रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इच्छा मन में जागृत हुई कि हम जो लाखों का खर्चा अपनी शादी में करते हैं सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, उस पैसे से हम वो काम कर सकें जो किसी की ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा हितकारी हो सके। मैंने बस वही प्रयास किया।
0: सलोनी की इस पहल के जरिए समाज को प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। यही वजह है कि सलोनी की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना भी हो रही है।
1: ये 6 मंजिला पक्षी घर है जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना आशियाना बना सकते हैं, घोंसले बना सकते हैं, उनका जब मन आए तब वो आके रह सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनको एक सेफ रहने के हिसाब से इस चीज़ को बनाया गया है। ये एक पिंजरा नहीं है, इसमें वो बिल्कुल भी कैद नहीं होंगे।
0: तालाब किनारे की ये जगह पक्षियों के लिए अनुकूल पाई गई और इसी सोच के साथ यहाँ बेजुबान परिंदों के लिए ये खूबसूरत आशियाना तैयार हुआ। राजस्थान और गुजरात से आए कारीगरों ने इस आशियाने को तैयार किया है।
2: जो बनाने का लक्ष्य है उसको पिंजरा नहीं बनाया गया है, पक्षी जब चाहे आएगा, उड़ाएगा, रहेगा और चला जाएगा, वो रात में रुकेगा। ये उसका एक आशियाना है, उसका एक आश्रय स्थल है, निवास रहेगा उसका, किंतु वो पिंजरा नहीं है।
0: अपनी इस पहल से सलोनी ने अपनी शादी को खास बना दिया। आगर बालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, आमतौर पर फैशन शो का नाम सुनते ही जहन में खूबसूरत मॉडल्स और रैम फॉक की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन नागपुर में हुए एक अनोखे फैशन शो ने सोच को ही बदल कर रख दिया। यहाँ पे रैम पर मॉडल्स नहीं बल्कि 65 से 80 साल की उम्र के सीनियर सिटीजन्स ने अपना जलवा बिखेरा। उम्र को पीछे छोड़ते हुए इन बुजुर्गों ने पूरे कॉन्फिडेंस और जोश के साथ रैम पर वॉक किया। नागपुर के इस फैशन शो में सिर्फ कपड़े और स्टाइल ही खास नहीं था बल्कि इन सीनियर सिटीजन्स का आत्मविश्वास और जिंदगी को खुल के जीने का अंदाज भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। 65 से 80 साल की उम्र के प्रतिभागियों ने जिस एनर्जी के साथ रैंप पर कदम रखा उसे देखकर हर कोई तालियां बजाने को मजबूर हो गया।
4: आमतौर पर रैंप पर मॉडल्स की कैटवॉक आपने खूब देखी होगी, लेकिन नागपुर में जब रैंप पर ये चेहरे उतरे तो नजारा ही कुछ अलग था। किसी की चाल में ठहराव था तो किसी के अंदाज में गजब की शरारत। किसी ने अपने जमाने का स्टाइल लेकर रैंप पर एंट्री मारी तो किसी ने ओल्ड फैशन से न्यू फैशन का दामन थाम लिया। 65 से 80 साल की उम्र, लेकिन जोश ऐसा कि अच्छे अच्छे मॉडल्स को मात दे दें, तो किसी ने रेट्रो लुक के साथ पुराने दौर की यादें ताजा कर दी। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने स्टाइलिश और फंकी अंदाज में बता दिया कि फैशन की कोई उम्र नहीं होती।
5: ये रैंप में आने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, जैसा लगा कि हम बचपन में आ गए हैं। यहाँ आने के बाद हम बहुत ही खुश रहे। जैसी प्रेरणा मिली हम लोगों को स्टूडियो के पैकिंग से, तो हमने तुरंत सोच लिया कि हम यहाँ पे आएंगे और अपना परफॉर्मेंस, अपना एज खुल के सब अच्छे से काम करेंगे।
6: हम लोग यहाँ पे बुढ़ापे में जवानी हमारे अंदर आ गई है और बड़ा ही आनंद आ रहा है और सभी एक एक से बढ़ के एक पार्टिसिपेंट है।
4: नागपुर में हुए सेकंड इनिंग सीनियर सिटीजन फैशन शो में जैसे ही ये सीनियर सिटीजन रैंप पर पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। किसी ने अपनी चाल से दिल जीता, किसी ने अपनी मुस्कान से और किसी ने अपनी अदाओं से। ये सिर्फ फैशन शो नहीं था, ये उस सोच के खिलाफ एक खूबसूरत जवाब था जो मानती है कि उम्र बढ़ने के साथ जिंदगी की चमक फीकी पड़ जाती है। यहाँ हर कदम कह रहा था उम्र बढ़ सकती है, लेकिन स्टाइल, आत्मविश्वास और जिंदगी जीने का जज्बा कभी बूढ़ा नहीं होता। नागपुर से योगेश वसंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात वेस्ट मटेरियल से बन रहे कान्हा जी के सिंहासन के बारे में करते हैं। देखिए 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाने वाला है, ऐसे में कान्हा के जन्मोत्सव की जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। कान्हा जी के जन्मदिन को लेकर बाजार में तरह तरह के सजावट के सामान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कहीं कान्हा जी की वेशभूषा वाले कपड़े, तो कहीं मुकुट, तो कहीं सिंहासन। लेकिन यूपी के सहारनपुर में कारीगरों का एक परिवार कान्हा जी का विशेष तरह का सिंहासन तैयार कर रहा है, जिसकी भी काफी मांग है। तो वहीं दूसरी तरफ सिंहासन के साथ झूले और बेड की भी मांग बढ़ गई है।
7: क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं 26 अगस्त के बाद से?
8: बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है सड़क का हाइट बढ़ गया है, खोला इधर थोड़ा सा उधर से इधर साइड में आ गया है पहले से।
7: मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक और ये जो
8: डेवलपमेंट विकास बैंक,
7: हाँ, ये सब नीचे है और सड़क ऊपर है, ऐसा था या नहीं
8: लग रहा है? नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी लग रहा है। थोड़ा सा नीचे तो था लेकिन कम था।
7: अच्छा, तो अब और नदी इसी तरीके से?
8: नदी तो बहुत परिवर्तन हुआ है पहले।
7: क्या परिवर्तन हुआ है?
8: इसका चौड़ाई बढ़ गया है पहले से।
7: हाँ।
8: ये पूरा खेत था इसके पछाड़ी, पूरे खेत में
7: ये खेत था,
8: खेत था इसके पछाड़ी।
7: अच्छा,
8: इस साइड में पूरे घर था, यहाँ पे हर आदमी अपना बिजनेस व्यवसाय करता था लोग।
7: आपकी कौन मिसिंग है?
9: मेरी दीदी मिसिंग है और भांजी भी, तीन भांजी, एक हाँ। दीदी और एक नतनी मिसिंग है।
7: कहाँ रह रहे थे?
9: वो लोग रसुआ और नुआकोट के बॉर्डर पे रहते थे।
7: अच्छा।
9: क्या कहता हूँ,
7: रसुआ नुआकोट के बॉर्डर पे। तो आप हर उस जगह आके ढूंढ रहे हैं कि
9: हर जगह जाने के वहाँ कोई साधन ही नहीं है।
7: हाँ।
9: और वहाँ तक मिसिंग ही है और जा नहीं पा रहे हैं।
7: फोटो एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे।
9: ये भांजी हुई, ये भांजी की लड़की हुई।
7: कितने साल की है
9: ये बच्ची? 2 साल की है।
7: 2 साल की बच्ची।
9: ये दीदी हुई।
7: हाँ।
9: ये भांजी है, ये भी भांजी है।
7: तो ये मिल नहीं पा रहे हैं?
9: नहीं मिल पा रहे हैं।
7: आप हर जगह जाके बस ढूंढ रहे हैं?
9: ढूंढ रहे हैं।
10: और उस टाइम में सब खबर आ गया, भागो भागो बोल गए।
7: हाँ।
10: सब खाना खा के ये रास्ता हो गया।
7: आंखों के सामने आपने आते हुए देखा?
10: हाँ।
7: कैसा डरावना था?
10: बहुत एकदम डरावना था। बहुत
7: नुकसान कितना हो गया आपको?
10: नुकसान था उधर 15 रूम था गेस्ट रूम होटल का।
7: हाँ।
10: अटैच बाथरूम रूम, एसी रूम।
7: हाँ।
10: हॉल था, डाइनिंग, किचन।
7: हाँ।
10: कितना सरकार ने उसको
7: जान किसी की नहीं गई।
3: हाँ। तो चलिए अब बात प्लास्टिक के कचरे से जुड़ी क्रिएटिविटी की कर लेते हैं। देखिए जिस प्लास्टिक को प्रकृति और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, उस पर दिल्ली का एक कपल अपने इनोवेटिव आइडिया के जरिए लगातार प्रहार कर रहा है। दरअसल उनका स्टार्टअप रिसाइकलिंग के जरिए कचरे में फेंके जा रहे प्लास्टिक से सुंदर और इस्तेमाल करने लायक उत्पाद बना रहे हैं, जिसमें कुर्सियां, डस्टबिन, गमले और यहां तक कि पार्क में बैठने वाले बड़े साइज के बेंच भी शामिल हैं।

0: धरती के लिए अभिशाप सिंगल यूज प्लास्टिक का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंक्रीट, आरसीसी या ग्रेनाइट पत्थर की तरह दिखने वाले ये बेंच और टेबल केवल एक बार इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक से बनाए गए हैं। जल, जमीन और हवा को दूषित करने में प्लास्टिक सबसे आगे है। इसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार ही हो पाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के इस कपल ने प्लास्टिक कचरे को नया स्वरूप दे दिया जो दिखने और इस्तेमाल में अपने मूल आकार और स्वरूप से ज्यादा खूबसूरत है।
1: दिल्ली में प्लास्टिक एक बेहद बहुत ही बड़ी समस्या है और वो प्लास्टिक के कचरे की अगर हम बात करें और अगर उस कचरे का इस्तेमाल दोबारा से किया जाए तो ये कचरा किसी के भी काम आ सकता है। खास तौर पर ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जो है बेहद ही फायदेमंद वाली चीज़ हो सकती है। जिस पर मैं बैठी हूँ ये उसी का एक उदाहरण जो है मैं आपको पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे पीछे भी और जिस पे मैं बैठी हूँ और आसपास भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएगी जो उसी प्लास्टिक के कचरे से जो है बनी है। इसकी जो शुरुआत हुई है उसी प्लास्टिक के कचरे से हुई है जिसको आप और मैं बेकार समझकर जो है फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बेंचेस जो है वो नज़र आ जाएगी, आपको टेबल नज़र आ जाएगी, आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है चीज़ें नज़र आने वाली है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से जो है वो बनाई गई है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको जो है बनाया गया था ताकि इसका इस्तेमाल जो है वापस से किया जा सके। आप इसको किसी भी ओपन स्पेस में रख सकते हो, चाहे इन बेंचेस का, इन टेबल का इस्तेमाल पार्क में किया जा सकता है, स्कूल में किया जा सकता है, किसी भी ओपन स्पेस में जो है इसको लगाया जा सकता है।
0: सड़क, पार्किंग, गार्डन और फर्श को मजबूत बनाने और सुंदर दिखने के लिए कंक्रीट या सीमेंट के छोटे टुकड़े का इस्तेमाल होता है जिसे पेवर ब्लॉक कहा जाता है। इसको बनाने में भी अब प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल होने लगा है।
1: तो आपको यहाँ पे पेवमेंट ब्लॉक्स दिख जाएंगे, आपको ये छोटे छोटे इस तरीके की जो टाइल्स जैसे दिखती है पेवमेंट ब्लॉक्स जो है वो नजर आ जाएगा। और ये सभी जो है रिसाइकल प्लास्टिक से जो है बनाया गया है, यानी जिस प्लास्टिक को आप और मैं इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं बेकार समझकर, उसी प्लास्टिक को जो है रिसाइकल करके, प्रोसेस करके इस चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों में जो है बदला जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल जो है लंबे समय तक किया जा सके।
0: कंक्रीट की पक्की सड़क के मुकाबले ये लचीली सतह बनाते हैं जिससे जमीन के धंसने पर भी इनमें दरारें नहीं आती हैं। भारी वजन पड़ने पर भी ये आसानी से नहीं टूटते। दिल्ली के रहने वाली सोनल और उनके पति ने प्लास्टिक कचरे के बेहतर इस्तेमाल को अपना लक्ष्य बना लिया। NIT कुरुक्षेत्र से मास्टर्स करने वाले पति पत्नी ने मिलकर एक कॉन्सियस नाम का स्टार्टअप शुरू किया जिसका मकसद प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके ऐसी चीजें तैयार करना है जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों की सुविधा के लिए किया जा सके।
1: इस पहल की शुरुआत की है दिल्ली के इस कपल ने जो इस वक्त मेरे साथ है, सोनल और वैभव मेरे साथ बैठे हैं। सोनल, मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि प्लास्टिक वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम कितनी भी कोशिश कर लेकिन प्लास्टिक कम नहीं होता, बट उसको थोड़ा सा कम करने की शायद आपने एक पहल जो है वो शुरू करी है।
2: डेफिनेटली प्लास्टिक में शुरुआत हमारी एक्चुअली कोइंसिडेंटली हुई थी। सो हम दोनों ने MTech किया NIT कुरुक्षेत्र से। वैभव का मेजर था एनवायरनमेंट में, तो उसमें ही वॉज स्टडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज जो मेरा एक कॉन्शियस थॉट था टुवर्ड्स डूइंग समथिंग अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी, कोविड के टाइम पे शुरुआत करी स्पेशली, क्योंकि उस टाइम पे हम देख रहे थे कि बहुत सारा सिंगल यूज प्लास्टिक इन द फॉर्म ऑफ PPE किट्स या फिर मास्क कह लीजिए या फिर लोग वैसे भी पैकेजिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो हमने एक कॉन्शियसली थॉट किया कि दिस इज़ आई फील द बेस्ट टाइम कि हमें कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए एंड ऑल्सो कि हम उसको कुछ कन्वर्ट कर पाएँ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हमें हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफाई कर सके। सो ड्यूरिंग कोविड वी स्टार्टेड।
0: शुरुआत में सोनल और वैभव ने प्लास्टिक के कचरे से घर सजावट का सामान बनाना शुरू किया था, लेकिन बाद में पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उसी के इस्तेमाल पर फोकस कर लिया। यही वजह है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन के लिए वो पिकअप सुविधा भी देते हैं।
2: प्लास्टिक का जो हमारा कलेक्शन का सेटअप है वो हम दिल्ली में बेस्ड एक स्टार्टअप है। सो हमारा जो भी कलेक्शन सेटअप है दैट इज़ इन दिल्ली NCR। लोग हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट होकर हमें प्लास्टिक देते हैं। वी प्रोवाइड अ पिकअप सर्विस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ NGO पार्टनर्स हैं जो हमारे बिहाफ में वो कलेक्शन करते हैं और फिर हम उनके थ्रू सोर्सिंग करते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारे वेस्ट वर्कर्स होते हैं, कबाड़ी वाले भैया दीदी लोग होते हैं, सो हम उनसे भी सोर्सिंग करते हैं।
0: पिछले साल महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और गोपनीयता के लिए 1000 से अधिक विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए थे जिनको सोनल और वैभव की स्टार्टअप कंपनी ने एक संस्था के साथ मिलकर तैयार किया था, जिसमें करीब 5 लाख किलो प्लास्टिक को रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल किया गया।
3: ये महाकुंभ का ये जो प्रयागराज में हुआ था 2025 में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो हमने इस पे एक थॉट दिया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है और महिलाओं को एक स्पेस सेफ स्पेस मिलेगी चेंज करने के लिए उनको स्नान के बाद में। तो हमने चेंजिंग रूम्स बनाए 1000, वहाँ पे एक चेंजिंग रूम में लगभग 550 किलो प्लास्टिक को हमने इसमें रिसाइकल किया, 550 किलो, तो लगभग 5 लाख केजी तक हमने प्लास्टिक को इसमें रिसाइकल करके हमने चेंजिंग रूम्स बनाए इससे।
0: प्लास्टिक से होने वाला कचरा दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करने के बाद खुले में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी की प्रोडक्टिविटी यानी उर्वरता भी घट जाती है। फिर भी देश की एक बड़ी आबादी सिंगल यूज प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण के नुकसान को गंभीरता से नहीं लेती, जिनको जागरूक करने का बीड़ा सोनल और वैभव ने अपने कंधों पर उठाया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: नोएडा की महज 17 साल की रोहिणी बंसल अभी 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, लेकिन उनके हौसले ने सैकड़ों महिलाएं की जिंदगी बदल दी है। देखिए, रोहिणी गांव की महिलाओं और लड़कियों को सिलाई कढ़ाई और बुनाई की ट्रेनिंग देती है और फिर उन्हें काम भी उपलब्ध कराती है। पर जो बात सबसे ज्यादा खास है वो ये कि रोहिणी वेस्ट मटेरियल से डिजाइनर पोशाक तैयार कर रही है। इसी काम को लेकर साल 2024 में इन्होंने सूत्रधार नाम से अपना एक स्टार्टअप भी खोला। 2 साल पहले 6 महिलाओं से शुरू हुई उनकी इस पहल से अब 250 महिलाएं जुड़ चुके हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको रोहिणी से।
5: ट्वेल्थ में पढ़ाई करने वाला 17 साल का बच्चा ये सोच रहा होता है कि स्कूल से निकलने के बाद ट्वेल्थ के बाद करना क्या है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। लेकिन ट्वेल्थ क्लास की ही एक बच्ची ने एक ऐसी अनोखी पहल की शुरुआत कर दी जिसने कई गरीब महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी बदल कर रख दी है। मिलवाते हैं आज आपको नोएडा की रोहिणी से। तो रोहिणी मेरे साथ में है, सिर्फ 17 साल की है, बोर्ड्स के एग्जाम 12th में ये इस बार बैठेंगी, लेकिन जो सोच, जो समझदारी इन्होंने दिखाई है, इनका काम इनकी उम्र से कहीं आगे निकल चुका है, कहीं ज़्यादा इनको उम्र से अपना बड़ा बता रहा है, कम से कम मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर। बहुत सारी चीज़ें आप जो यहाँ पर देख रहे हैं वो सब रोहिणी के इनिशिएटिव से तैयार हुई हैं। ये कभी वेस्ट मटीरियल हुआ करता था, फैक्ट्री से कपड़ा निकलता था, नदियों तक पहुँचता था, ना सिर्फ नदियों को दूषित कर रहा था कई बार किसी एक शर्ट में जो 3 कपड़े 4 कपड़े इस्तेमाल हुए हैं वो 3-4 फैक्ट्री से आए हैं, तो वो तो बल्क में आते होंगे, उनको अलग अलग करना, छाटना, ये सब कुछ बड़ा मुश्किल काम होगा।
6: ये सब
5: और फिर वो सब जाके जुड़ेंगे कैसे किसी एक चीज में, ये भी समझ होनी चाहिए।
6: ये सब हमारी लेडीज करती हैं। वर्षा दीदी है जिनने 35 से ज़्यादा वर्कशॉप्स यहाँ पे लिए हैं सूत्रधार में, वो 2 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको डिज़ाइन की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो उनके साथ साथ हम सब ने सीखा, इनफैक्ट मैंने भी सीखा, और उनने हमारे को सबको ट्रेनिंग दी कि हम लोग काफ़ी सारा बल्क मटेरियल जो हमारे पास बोरियाँ भर भर के आता है किलोज में, उसको हम कैसे सेपरेट करें, हम उसको कैसे अलग अलग करके चूज़ करें कि कौन सा कपड़ा किसके साथ फिट जाएगा।
5: एक तो हम कहते हैं कि स्टिचिंग का सिखाया, फिर आपने बताया कि ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये भी आपने लड़कियों को सिखाई, और क्या क्या सिखाया?
7: जैसे टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग होती है, फैब्रिकेशन होता है, जिसको जितना आता है, जैसे कोई सिलाई कढ़ाई में है, किसी को पेंटिंग अच्छी आती है, कोई बुनाई अच्छी कर लेती है, किसी को क्रोशिया आता है, ऊन सिलाई आती है, तो जिसकी जो भी क्वालिटीज होती है उसको उस हिसाब से काम दिया जाता है।
5: लड़कियों से शुरुआत हुई, 6 महिलाओं से शुरुआत हुई, आज ये नंबर 2.5 साल 3 साल में कितना बड़ा हो गया?
6: आज हमारे पास 2050 से ज्यादा महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
5: 250
6: से ज्यादा, और जल्दी ये नंबर 300 तक भी पहुंच जाएगा। जो सेवा भारती है, एक इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट, उन्होंने सूत्रधर को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है ताकि मेरे कॉलेज जाने के बाद वो अपने अंडर सूत्रधर को कंटिन्यू कर पाए। तो उसके थ्रू हमारी महिलाएं जब जुड़ जाएंगी तो असली नंबर हमारे पास 10 या 11 हज़ार का हो जाएगा। तो इसके अंडर सूत्रधर ने काफ़ी औरतों को हेल्प करी, 300 औरतों को मात्र, अभी होने वाले 300 औरतें, उनकी डायरेक्टली हेल्प करी।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
10: देखते जाइए, इनकी हरकतें पूरी मौज में हैं। इन्हें पता है कि लोग यहाँ उन्हें ही देखने आए हैं, सो पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। फोटो क्लिक करनी है तो करो ना, मैं पोज दे तो रहा हूँ। नन्ना हाथी सैलानियों के सामने जिस तरह से अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, जानवर के हों या इंसान के, ऐसी शरारतें करते क्यूट ही लगते हैं। नन्ने हाथी का ये अंदाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। पेड़ में लगा ये फल इन्हें चाहिए, लेकिन ये है कि हाथ ही नहीं आ रहा। कोशिश पूरी है, कभी मुंह से कभी हाथ से। ये लोहे का बैरियर न होता तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही कहाँ है। डॉगी जिस तरह से उस फल को खाने के लिए बेसब्र दिखता है और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, वो देखना दिलचस्प है। लगता है स्कूल में कोई फंक्शन है, अब सुंदर तो दिखना पड़ेगा, पर घर में क्रीम लगाना भूल गई शायद। बाइक में लगा आईना देखा तो एकदम से याद आया, या फिर शायद घर में क्रीम लगाने की मनाही हो। मसला चाहे जो भी हो, सड़क पर जिस तरह से हाल हो रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे को नहीं पता था कि उसे आईने के अलावा भी कोई देख रहा है। जैसे ही नजर कैमरे पर पड़ी शर्मा गई। बच्चे के इस नेचुरल मुस्कान पर लोग दिलहार रहे हैं। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन दोनों ही माँ पापा के पैसों पर डिपेंड है तो यही होता है। बहन ने भाई को राखी बांधी, गिफ्ट मांगा तो भाई ने माँ की तरफ देखा। माँ ने पैसे दिए तो सही, लेकिन बहन के हाथ में आते ही फिर लपक लिया। आखिर इस छोटी सी उम्र में पैसों का करोगी क्या, संभाल कर रख देंगे हम, ये तो चीटिंग है ना। बच्चों का चेहरा देखिए जरा, मासूम बेचारे। ये वीडियो लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: क्या शनि आपको लंबी आयु दे सकते हैं? क्या शनि आपकी आयु को घटा और बढ़ा सकते हैं? शनिदेव का आपकी आयु से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी। नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित देश के लिए जुटाया फंड, देश की सुख शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। किर्गिस्तान में आयोजित एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना, पुतिन, शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से होगी अहम मुलाकात। अब पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनियों को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा। एफएसएसएआई ने अदालत में दी अपने हलफनामे में दी इसके बारे में जानकारी।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के दौरे पर हुए रवाना, किर्गिस्तान में 26वें एससीओ समिट में करेंगे शिरकत। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ताशकंद की राजकीय यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर होगा मंथन। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी एससीओ के समिट, क्षेत्र सुरक्षा, संपर्क और अवसरों पर होगा मंथन। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्विपक्षीय बैठकों पर होंगे निशान। किर्गिस्तान के 6वें विश्व घुमंतु खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी, सेंट्रल एशिया की संस्कृति की दिखेगी झलक। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी। नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, रेस्क्यू में 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू, कई जगहों पर चल रहा है रेस्क्यू अभियान। नेपाल में मुसीबत के बीच हुआ करिश्मा, 8 साल के बच्चे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। एक दिन बाद किया गया लिफ्ट, बच्चे से मिलकर भावुक हुई मां। चीन में फंसे 400 भारतीय सुरक्षित, भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ निकासी में जुटा। भारत से मदद को लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची तीसरी फ्लाइट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी। राहत सामग्री के साथ प्रभावित इलाकों में 11 लोगों की मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम भी मुस्तैद, लोगों को सुरक्षित निकालने की हर संभव कोशिश जारी। जल आपदा से पीड़ित नेपाल को हर संभव सहयोग दे रहा है भारत, नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में सरकार। आपदा प्रभावित नेपाल की मदद के लिए यूपी के बस्ती में महिलाओं की पहल रक्षाबंधन में, भाई से मिले शगुन के पैसों को दान पात्र में किया जमा। मुश्किल वक्त में पड़ोसी देश के साथ मजबूती से खड़े भारतवासी, आपदा पीड़ितों के लिए जुटा रहे हैं धन। में रक्षाबंधन के मौके पे मुफ्त बस यात्रा का बहनों ने उठाया लाभ, 40 लाख बहनों ने की मुफ्त बस यात्रा। 20 लाख सहयात्रियों ने भी योजना का उठाया लाभ, आज रात 12 बजे तक मिलेगी मुफ्त यात्रा की सौगात। पैकेज फूड को लेकर हेल्थ से जुड़ी अच्छी खबर, पता लगा सकेंगे नमक, चीनी और फैट की मात्रा। मानक से अधिक होने पर देनी होगी अब जानकारी, सेहतमंद विकल्प चुनने में ग्राहकों को मिलेगी सीमित। पैकेट पर चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव, लाल रंग षटकोणीय चेतावनी लेबल का प्रस्ताव, SSSAI ने जनहित याचिका पर SC में दिया प्रस्ताव। यूसीजी नेट के 84 विश्व के नतीजे हुए घोषित, तो 4000 से अधिक अभ्यर्थी JRF के लिए चयनित। असिस्टेंट प्रोफेसर PhD के लिए 7.56% हुए पास JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0.70% छात्रों को मिली सफलता। कैंसर के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी, mRNA कैंसर वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल सफल। कैंसर के दोबारा लौटने के जोखिम को कम करती है मॉडर्ना और मर्क कंपनी के टीके को किया है विकसित। उच्च जोखिम वाले त्वचा कैंसर मरीजों पर किया गया इसका ट्रायल, 1137 मरीजों पर किया गया परीक्षण। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने की गोगाजी महाराज की पवित्र छड़ी की पूजा, प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रक्षाबंधन के अगले दिन बुजरिया उत्सव को धूमधाम से मनाया गया, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुने लोगों की फरियाद, जल्द मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने मवेशियों को खिलाया चारा, गौशाला का भी किया निरीक्षण। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, शिकारा राइड का आनंद लेते नजर आए सैलानी। दिल्ली में 50 साल पुराना मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का होगा मंचन, आज से 4 सितंबर तक कमानी ऑडिटोरियम में दिखाई जा रही कृष्ण की लीलाएं। पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन में कृष्ण का भव्य मंचन, शास्त्रीय नृत्य संगीत और शानदार सेट लाइटिंग आकर्षण का मुख्य केंद्र। कृष्ण में जन्म से लेकर रासलीला और महाभारत तक की दिखाई जाएगी कहानी, गीता के जरिए जीवन के महत्वपूर्ण संदेश। न्यूयॉर्क के इस्कॉन मंदिर में RSS प्रमुख मोहन भागवत का भव्य स्वागत, भागवत ने मंदिर का किया दौरा। तेलंगाना के मलकजगिरी में अजय देवगन की बेटी निशा देवगन ने श्री भवानी रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना, लिंगेश्वर भगवान के लिए आशीर्वाद। बंगाल के जादवपुर में 10,000 लोगों ने एक साथ गाया वंदे मातरम, सीएम शुभेंदु अधिकारी रहे इस दौरान मौजूद। मधुरई में नशे के खिलाफ जागरूकता वॉकाथॉन का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल। देवरिया को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात, करीब 305 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। गुरुग्राम के लोगों के लिए खुशखबरी आई सामने, गुरुग्राम मेट्रो के लिए पहले यू गर्डर की लॉन्चिंग। नेपाल से सीतामढ़ी लौटे 106 तीर्थयात्री, प्रशासन ने रहने और खाने का किया इंतजाम। छड़ी मुबारक के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा हुई संपन्न, साधु संतों ने की विशेष पूजा अर्चना। जुलाई से शुरू हुई बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का रक्षाबंधन तक चलेगी 57 दिन में 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने के दर्शन। कल महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में छड़ी मुबारक के साथ पवित्र गुफा पहुंचा साधुओं का एक दल, बाबा बर्फानी की विधिवत की गई पूजा अर्चना। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर काशी में बाबा विश्वनाथ का किया गया झूला श्रृंगार, धूमधाम से झूलनोत्सव हुआ संपन्न। भक्तों ने प्रेम से झुलाया भोलेनाथ को झूला, सुख समृद्धि और लोक मंगल के लिए की गई कामना। महाराष्ट्र के जालना में किसानों के बीच बड़ा ड्रैगन फ्रूट की खेती का क्रेज, पानी की कमी के बीच दूसरे विकल्प बन रहे हैं आमदनी का जरिया। जालना के किसान ने 1.5 एकड़ में लगाए करीब 5,500 ड्रैगन फ्रूट के पौधे, पहली बार में 10 से 15 लाख रुपए की आमदनी की उम्मीद है। किसान नारायण गोरे ने मोबाइल की मदद से शुरू की ड्रैगन फ्रूट की खेती, लागत में 25 से 30% तक कमी होने का दावा। यूपी के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी हेड कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान, लोगों ने जमकर की तारीफ। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री का पैर, जीआरपी जवान सुरजीत कुमार ने दौड़कर बचाई यात्री की जान। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया नया रिकॉर्ड, 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 729.33 अरब डॉलर पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय खेल दिवस, स्वास्थ्य फिटनेस के साथ खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना है इसका मकसद। स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी में अलर्ट जारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए। श्रीलंकाई जेल से रिहा किए गए 7 मछुआरे पहुंचे चेन्नई, एयरपोर्ट पे परिजनों ने किया स्वागत। केरल में बस में चढ़ते वक्त फिसला बुजुर्ग का पैर, क्लीनर ने फुर्ती दिखा के यात्री को गिरने से बचाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कामरूप जिले में आधुनिक अमीगांव स्विमिंग कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम। उज्जैन के अंगारेश्वर महादेव मंदिर में सीएम मोहन यादव ने किया अभिषेक, परिवार संग प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना। दिल्ली एनसीआर में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में आंधी चलने की संभावना। आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, यूपी उत्तराखंड के अलावा बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लिए चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई झमाझम बारिश, गिरा पारा, सैलानी उठा रहे मौसम का लुत्फ। नेपाल में आई बाढ़ के बाद गोपालगंज में राहत की खबर, नहीं बढ़ा गंडक का जलस्तर, घट रहा गंडक नदी का जलस्तर, लोगों ने ली राहत की सांस। नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद बिहार के वाल्मीकि नगर में प्रशासन सख्त, गंडक नदी के जलस्तर की हो रही है लगातार निगरानी। वाराणसी में रुक रुक कर बारिश, लोगों को गर्मी से मिल राहत। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, वाहन चालकों को भी हो रही है परेशानी। देहरादून में भारी बारिश के बाद बड़ा तमसा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों को किया गया अलर्ट। गुवाहाटी में बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का भी बड़ा जलस्तर, लोगों को सतर्क रहने की अपील। यूपी के चित्रकूट में फिर बढ़ने लगा मंदाकिनी नदी का जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर आया पानी, यूपी एमपी को जोड़ने वाली सड़क पर आया पानी। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल में होगी भारी बारिश। फिल्म प्रेम कीटाणु का दूसरा सॉन्ग हुआ रिलीज, फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 31 अगस्त को नई फिल्म दायरा का ट्रेलर होगा रिलीज, फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन का अहम रोल, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मिर्जापुर द मूवी की एडवांस बुकिंग 31 अगस्त से होगी शुरू, 4 सितंबर को फिल्म होगी रिलीज। फिल्म रेस 4 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ की हुई एंट्री, फिल्म में आमिर खान अहम रोल में आएंगे नजर। सलार 2 में हुई धरा शौर्यांग की एंट्री, फिल्म में प्रभास के पिता के रोल में आएंगे नजर। अर्जेंटीना में इलाज के बाद 6 पेंगुइन को वापस उनके मूल निवास समुद्र में छोड़ा गया, मछली पकड़ने वाले जाल से हुए थे घायल। पेंगुइन के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में जुटे फाउंडेशन, अप्रैल महीने में 15 पेंगुइन को इलाज के बाद वापस समंदर में छोड़ा गया। रैली पैराग्वे के शुरुआती दौर में न्यूजीलैंड के हेडन पाडोन ने बढ़त हासिल कर ली है, साल 2018 के बाद पहली बार पाडोन WRC में सबसे आगे पहुंचे हैं। रेस के दौरान जोश मैक एरलीन दूसरे, जबकि चैंपियनशिप लीडर एल्फिन वांस तीसरे स्थान पर है, दोनों के बीच सिर्फ 2.8 सेकंड का अंतर रहा। डिफेंडिंग चैंपियन सेबेस्टियन ओजियर का टायर पंक्चर हो गया, कार में मरम्मत के बावजूद तीसरे स्ट्रेट से आगे नहीं बढ़ सके। चीन के वाइल्ड लाइफ पार्क में माला घुमाता नजर आया चिंपैंजी, बेहद आसानी से पूरी माला घुमाता चिंपैंजी बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। शांजी में माला घुमाते चिंपैंजी को देखने उमड़े लोग, वाइल्ड लाइफ पार्क में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना यह अनोखा नजारा। पार्क कर्मचारी के मुताबिक चिंपैंजी ने खुद ही सीखा है ये हुनर, उसे किसी इंसान से कभी भी कुछ भी सीखने को नहीं मिला, उन्होंने खुद ही ले सीखे। चीन के पांडा नेशनल पार्क से सामने आई बच्चे के साथ मां पांडा की प्यारी सी तस्वीरें, जंगल में घूमते हुए कैमरे में हुए कैद। वीडियो में बच्चे का पूरा ख्याल करती दिखी मां पांडा, पीछे चल रहे बच्चे को बार बार रुक रुक कर देखती नजर आई मां। केन्या में 16 क्लिनिक की टेस्टिंग, केन्या में डच छात्रों ने सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल क्लिनिक का किया परीक्षण, बिना बिजली और ईंधन के मेडिकल उपकरण चलाए गए। दूर दराज के लोगों को मिला इलाज, सोलर वाहन में अल्ट्रासाउंड, पोर्टेबल एक्सरे और वैक्सीन फ्रिज की है सुविधा, इससे दूर के इलाकों में लोगों को मिल सकेगी जांच की सुविधा। स्टेला जुबा ने केन्या में 800 किलोमीटर से ज्यादा का किया सफर, खराब और उबड़ खाबड़ सड़कों पर भी वाहन का हुआ सफर परीक्षण। दुबई में अप साइकिलिंग से तैयार पुराने कपड़े और सामान खरीदकर लोग सस्टेनेबल फैशन को दे रहे हैं बढ़ावा, इन दुकानों की कमाई से जरूरतमंद बच्चों की हो रही है मदद। थ्रिफ्ट फॉर गुड ने 18 बाल कल्याण परियोजनाओं को 50 लाख दिरहम से ज्यादा का दिया है दान, रकम से बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और घर से जुड़े प्रोजेक्ट में हुई मदद।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: अब आपको दिखाते हैं कैसी खबर जो पहले आपको थोड़ा हैरान कर सकती है, लेकिन अगले ही पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बिल्लियों की कहानी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कोई अपनी अदा से लोगों का दिल जीत रहा है, तो कोई अपने कारनामों से इंटरनेट पर छाई हुई है। और देखिए, खास बात यह है कि इन वायरल बिल्लियों की लिस्ट में एक नाम भारत की बिल्ली का भी है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इन इंटरनेट सेंसेशन बिल्लियों से, जिनकी मासूम शक्ल और अनोखी अदाएं लोगों को बना रही हैं अपना फैन।
7: चौकन्नी पैनी निगाहें, गंभीर जैसी दिखने वाली सूरत, चुस्त और चौकस वितरत, ये वह अनोखी बिल्ली है जिसका जिक्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहने वाली एक जिंजर कैट है। ये बिल्ली अक्सर मुंबई मेट्रो की रेड लाइन यानी लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन के एंट्री गेट पर बैठी रहती है, जो कभी कभार घूमती फिरती भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये मेट्रो स्टेशन पर हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही हो। मेट्रो के एक मुसाफिर संदेश सामंत ने इस बिल्ली की तस्वीर खींची और मजे लेने के लिए MMMOCL यानी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना सैलरी के काम कर रही इस बिल्ली की कर्तव्य निष्ठा देखते हुए इसका कोई सरकारी पद मिलना चाहिए। MMMOCL ने भी इससे कदम आगे बढ़कर मुसाफिर की सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक में ही इस बिल्ली को चीफ फ्लाइंग ऑफिसर यानी CFO का मानद पद देने का ऐलान भी कर दिया। बहरहाल ये बिल्ली अब यात्रियों के बीच खास पहचान बना चुकी है, लोग इसे दुलारते भी हैं और ये अपनी ड्यूटी भी पूरी जिम्मेदारी से करती नजर आती है। वैसे तो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर बिल्लियां, कुत्ते और बंदर अक्सर आराम करते पाए जाते हैं, लेकिन इस बिल्ली की तो बात ही जुदा है। ये वजह है कि अब इसे चीफ फ्लाइंग ऑफिसर का खास सेलिब्रिटी स्टेटमेंट भी मिल गया है। मुंबई मेट्रो के CFO के पास न कोई कार्यालय है, न पहचान पत्र और न ही तय ड्यूटी का समय, लेकिन इतना जरूर है कि गुंडावली स्टेशन इन दिनों उसकी पंजों वाली निगरानी में है। मुंबई के वारा जिंजर कैट जैसी अनोखी बिल्लियां चीन के गासू में भी है। गासू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 बिल्लियों के लिए शानदार कैट शेल्टर बनाया गया है। इसी साल इनके बारे में खबर वायरल हुई तो प्रशासन ने इन्हें चीफ माउसर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पदवी से नवाज दिया। एयरपोर्ट के गेट D58 के नजदीक इसके लिए कैट शेल्टर के रूप में खास ग्लास रूम बनाया गया है, जिसे माउस कैचिंग ऑफिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर इन बिल्लियों के लिए बकायदा बिस्तर और दूसरी सुविधाएं मौजूद है, जहाँ ये आराम फरमाती दिखती है। एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए ही बिल्लियों का ये बसेरा अजूबा तो है, लेकिन यादगार फोटो स्पॉट भी है। सिर्फ भारत और चीन में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में भी एक बिल्ली को वाला सरकारी अफसर का दर्जा दिया गया है। लैरी नाम की ये बिल्ली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तैनात है। इसे चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस की पदवी दी गई है। ये बिल्ली 2011 से यहाँ मौजूद है और अब तक 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी है। सोशल मीडिया पर बकायदा इसके इंस्टा फैन अकाउंट और अनऑफिशियल एक्स अकाउंट भी हैं, जिन पर इसके बारे में जानकारी और तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। इसी तरह बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पालतू बिल्ली मैक्सिमस भी सोशल मीडिया पर काफी शोहरत बटोर चुकी है। ये बिल्ली अक्सर PM बार्ट डी वेवर के साथ अपनी बॉन्डिंग के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बिल्ली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। बेल्जियम के PM बार्ट डी वेवर को काफी गंभीर और सख्त नेता माना जाता है, लेकिन मैक्सिमस के साथ उनकी तस्वीरें आम जनता के बीच उनके संवेदनशील और मिलनसार छवि पेश करने में मददगार है। बिल्लियों को अक्सर कुत्तों के ही समान पालतू और वफादार माना जाता है। कुत्ते जहां बाहर गतिविधियों में माहिर माने जाते हैं, वहीं बिल्लियों की पहचान अलहदा है, इसलिए इन्हें भी इंसान का बेहतरीन साथी माना जाता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: विदेश की धरती पर जब भारतीय मंदिर आकार लेते हैं तो ये सिर्फ इमारतें नहीं होती, इनके साथ भारत की आस्था, संस्कृति और संस्कार भी वहां पर पहुंचते हैं। पेरिस के पास बना BAPS स्वामी नारायण मंदिर भी ऐसा ही एक खूबसूरत पहचान का पात्र है। सितंबर में BAPS के इस मंदिर का एक भव्य उत्सव के दौरान उद्घाटन कार्यक्रम है। स्वामी नारायण मंदिर की खूबसूरती जितनी खास है उतनी ही खास है इसकी कहानी। विदेश में बना यह मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की झलक दिखाता है। यहां आने वालों को पूजा के साथ भारत की कला, यहां की वास्तुकला और संस्कारों का भी एहसास होता है, यानी सात समंदर पार भी भारत की मिट्टी की खुशबू और संस्कृति की रोशनी कायम है।
9: भारतीय मठ मंदिर देश की संस्कृति, परंपराओं का विस्तार और भारतीय विरासत के वैश्विक प्रसार की ही अनमोल संपदा हैं। विदेशों में बने भारतीय मंदिर न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वो भारतीय कला, वास्तुकला, संस्कार और तीज त्योहारों को भी दुनिया भर में पहुंचाने का काम बखूबी निभाते आ रहे हैं। ऐसी ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक संपदा फ्रांस में पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बुसी सेंट जॉर्जेस में खड़ी की गई है, जो बैप्स स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के रूप में भारतीय संस्कृति के विस्तार का एक और अध्याय लिखने के लिए तैयार है। बैप्स यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसके द्वारा बनाया गया ये मंदिर फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। इसका उद्घाटन अगले महीने यानी सितंबर में होगा। 2 से लेकर 14 सितंबर तक 13 दिन का यहाँ फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित होगा। इस दौरान हिंदू परंपरा, भारतीय कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। 2 से लेकर 13 सितंबर तक खास तौर से यहाँ वैदिक महायज्ञ आयोजित होगा। उद्घाटन और उत्सव कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदू समुदाय और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के शामिल होने की काफी उम्मीद है। समझाया जा रहा है कि इस दौरान आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और साथ ही पेरिस की धरती पर हिंदू मंदिर बनने की कहानी को भी समझने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि फ्रांस में हिंदू मंदिर बनाने का विचार साल 1970 में आया था। इसके करीब 25 साल बाद 1995 में पेरिस में मंदिर बनाने की योजना पर काम आगे बढ़ा। साल 2017 में बुसी सेंट जॉर्जेस में मंदिर के लिए जमीन मिली, जिसके बाद साल 2021 में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और आखिरकार करीब 56 साल बाद अब 2026 में मंदिर बनकर तैयार है। पेरिस के पास बना ये स्वामी नारायण मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होगा, बल्कि यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 50 के दशक से ऊपर का समय लगाते हुए इस मंदिर को बनाने में काफी मेहनत और मेधा का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर को बनाने में भारत से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें भारत में करीब 1000 साल पुरानी नक्काशी की तकनीकों से तैयार किया गया। कई हिस्सों पर तो कारीगरों ने हाथ से बारीक नक्काशी की है। मंदिर निर्माण के काम में भारतीय कारीगरों के साथ फ्रांस के विशेषज्ञ भी शामिल रहे, जिनमें नोट्रे डैम कैथेड्रल की मरम्मत से जुड़े कारीगर भी थे। इस मंदिर में भारतीय शिल्पकला और फ्रांस की आधुनिक निर्माण तकनीक का मेल भी देखने को मिलता है। वहीं मंदिर की संरचना में गुंबद, स्तंभ और शिखर जैसी पारंपरिक हिंदू वास्तुकला भी शामिल है। बता दें कि बैप्स के बनाए गए सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर में भी अक्षरधाम परिसर है। दिल्ली का अक्षरधाम पारंपरिक भारतीय शैली में बनाया गया है, जिसे बनाने में हजारों कारीगरों और स्वयंसेवकों ने काम किया था। बैप्स के अनुसार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को पारंपरिक वास्तु और शिल्प परंपराओं के अनुसार तैयार किया गया। बेशक एक वैश्विक हिंदू संस्था के रूप में बैप्स न सिर्फ धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सेवा भी करता रहा है। इस तरह से भारत के अलावा विदेशी धरती पर भी ये संस्था हिंदू धर्म के मूल्यों और संस्कारों को सींच रही है। बैप्स के मंदिर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में हैं, जहां पूजा और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भारतीय संस्कृति, भाषा, संगीत, कला और बच्चों से जुड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। बैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि गुजरात के बोचासन में स्वामी नारायण परंपरा को मानने वाले शास्त्री जी महाराज ने ही साल 1907 में इस संस्था को बनाया। मौजूदा वक्त में संस्था के प्रमुख महंत स्वामी महाराज हैं। बैप्स के दुनिया भर में 1300 से ज्यादा मंदिर हैं और इसका नेटवर्क 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और पेरिस के पास बना बैप्स स्वामी नारायण मंदिर भी इसी वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। निश्चित तौर पर पेरिस जैसे वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय पारंपरिक वास्तुकला और हिंदू आध्यात्मिक परंपरा का ये नया केंद्र भारतीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। यही वजह है कि सितंबर में होने वाला मंदिर महोत्सव इस लंबे निर्माण सफर के समापन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
10: राफेल के रणकौशल को कॉपी करने में जुटा चीन, मिस्र के आसमान में शह और मात का दाम। राफेल को डिकोड करने वाला चीन का प्लान, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में
6: विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: शनि आपको लंबी आयु दे सकते हैं? क्या शनि आपकी आयु को घटा और बढ़ा सकते हैं? शनिदेव का आपकी आयु से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेके विमान काठमांडू पहुंचे। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी। नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने

0: पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनियों को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा। FSSAI ने अदालत में दी अपने हलफनामे में दी इसके बारे में जानकारी। खेल दिवस पर युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाली खबर आई सामने। दरभंगा में 200 करोड़ रुपए की लागत का स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ तैयार। डे नाइट मैचों का भी हो सकता है आयोजन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: रफेल एक ऐसा नाम जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी परेशान रहता है। रफेल की ताकत और तकनीक ही कुछ ऐसी है कि रण क्षेत्र में दुश्मनों को तबाह करके ही दम लेता है। रफेल की बेमिसाल खूबियां ही सबसे बड़ी वजह है कि दुश्मन रफेल के रण कौशल को डिकोड करने की कोशिश में लगा रहता है। खबर है कि चीन रफेल के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है ताकि रफेल की बारीकियों को समझा जा सके। चीन और मिस्र के बीच ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 का आयोजन किया गया है। ये एक्सरसाइज मिस्र में हो रही है जिसमें चीन के J-16 फाइटर जेट सीधा रफेल के साथ कॉम्बैट ऑपरेशंस कर रहे हैं। क्या इसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि चीन रफेल की क्षमताओं को परखना चाहता है? क्या चीन रफेल के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए ही इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का हिस्सा बना है? 23 अगस्त को चीन मिस्र संयुक्त एयर एक्सरसाइज में J-16 और रफेल आमने सामने आए। इस एक्सरसाइज में चीन के J-16 और मिस्र के रफेल के बीच कॉम्बैट ट्रेनिंग हुई। ये पहली रिपोर्टेड ट्रेनिंग थी जिसमें किसी चीनी फाइटर ने रफेल के साथ सीधे कॉम्बैट ड्रिल में हिस्सा लिया। इस मिलिट्री ड्रिल में पूरा युद्ध जैसा ही सीन था। एक और चाइनीज J-16 गरज रहे थे तो दूसरी तरफ रफेल जेट्स। दरअसल मिस्र में चीन के फाइटर पायलट्स वहां की सेना और रफेल के साथ सीधे तौर पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं जिसमें पहली बार चीन के पायलट्स किसी पश्चिमी देश में बने 4.5 जेनरेशन के रफेल फाइटर जेट के साथ अभ्यास कर रहे हैं और उसकी बारीकियों को जानने समझने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे युद्धाभ्यास के जरिए चीन को रफेल की क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हवाई युद्ध की रणनीतियों को समझने का मौका मिल सकता है।
1: जो चाइना और इजिप्ट की एक्सरसाइज हो रही है, एक लंबी एक्सरसाइज और इसका नाम दिया गया है ईगल ऑफ सिविलाइजेशन 2026। ये दिखाता है कि दो सिविलाइजेशन की एक्सरसाइज, इजिप्ट की भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, सो इज चाइना, तो इसका नाम बड़ा ही एप्ट रखा है। अब दो बड़े प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट, एक राफेल जो 4.5 जनरेशन है और साथ में F-16 वो भी 4.5 जनरेशन, बहुत सिमिलरिटी है दोनों में, जिस तरीके से डीप स्ट्राइक करते हैं, जिस तरीके से बियॉन्ड विजुअल रेंज स्ट्राइक करते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं। तो जब दोनों एक साथ हवा में उड़ेंगे और जब एक्सरसाइज करेंगे तो उससे दोनों देशों को पता लगेगा विच एयरक्राफ्ट इज बेटर। हालांकि दोनों की कैपेबिलिटी अलग अलग है, किस तरीके से आप उसको कॉम्बैट एयर में इस्तेमाल करते हैं ये देखना होगा।
0: भारतीय वायुसेना ने LSC पर रफेल को तैनात कर रखा है जो चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि चीन वॉर एक्सरसाइज के जरिए रफेल की कमजोरियों और उसकी उड़ान सीमाओं को समझना चाहता है। मिस्र के रफेल के साथ J-16 फाइटर के एक्सरसाइज से चीन क्या डिकोड कर सकता है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है रफेल का एरोडायनामिक्स और युद्ध क्षमता जानना, जिसमें रफेल का टर्न रेट यानी कि ये हवा में कितनी तेजी से मुड़ सकता है, क्लाइम रेट क्या है और ये क्लोज रेंज डॉग फाइट में

0: राफेल कितनी ऊर्जा बरकरार रखता है। दूसरा है राफेल का बेसिक रडार सिग्नेचर पता लगाना। चीन के J-16 के ऐसा रडार मिस्र के राफेल का रडार क्रॉस सेक्शन डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, जिससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि राफेल उनके रडार पर कितनी दूरी से दिखाई दे सकता है। और तीसरा, पश्चिमी युद्ध रणनीति। मिस्र की वायुसेना फ्रांसीसी और अमेरिकी युद्ध शैलियों का पालन करती है। इसके खिलाफ लड़कर चीनी पायलट पश्चिमी वायुसेनाओं की हवाई रणनीतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक चीन के फाइटर जेट्स का मुकाबला केवल ब्रिटिश और रशियन मूल के फाइटर जेट्स के साथ ही हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे खुद चीन एक मौके के तौर पर देख रहा है, जहां पर मिस्र में इस अभ्यास में उसे किसी पश्चिमी देश, खासतौर पर फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल के साथ सीधे एक्सरसाइज करने का मौका मिला। रक्षा जानकारों का मानना है कि एक युद्ध अभ्यास से राफेल की सभी क्षमताओं या कमजोरियों का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन चीन के लिए इसकी अहमियत जरूर है। पहली बार J-16 को राफेल के खिलाफ सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट का प्रत्यक्ष अनुभव मिला है, और यही अनुभव भविष्य की ट्रेनिंग और टैक्टिक्स को प्रभावित कर सकता है। चीन राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मेटियोर मिसाइल के रडार सिग्नेचर को बारीकी से ट्रैक कर रहा है। ऐसा करने से चीनी डिफेंस सिस्टम को राफेल में लगी मिसाइलों को जाम करने या फिर उन्हें चकमा देने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।
1: देखिए, चाइना जब किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करता है, जब भी कोई जॉइंट एक्सरसाइज करता है, उसके कई सारे मैनी फोल्ड एम्स होते हैं। सबसे बड़ा एम तो यह है कि विश्व में वो J-16 का मार्केट खोज रहा है। दूसरी तरफ वो जब राफेल के साथ उड़ेगा तो राफेल की कमियों को वो नोटिस करेगा और अपने सिस्टम में वो सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करेगा, और साथ में हिंदुस्तान के पास आज की डेट में राफेल है तो इन सारी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मकसद तो एक यही है कि राफेल के कंपटीशन में J-16 को पिच करके अपने वर्ल्ड में मार्केट पकड़ना, और दूसरा, अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कभी उसको ऑपरेशनली कमिट करना पड़ा J-16, तो वो राफेल को कैसे काउंटर करेगा, ये इसका अल्टीरियर एम है।
0: राफेल विमान का स्पेक्ट्रा यानी सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू काउंटर थ्रेट्स फॉर राफेल एयरक्राफ्ट एक बेहद उन्नत और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो राफेल लड़ाकू विमान को दुश्मन के खतरों के खिलाफ अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करता है। स्पेक्ट्रा कैसे काम करता है और इसकी खासियत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रा से राफेल को 360 डिग्री सुरक्षा और डिटेक्शन मिलती है। मल्टी स्पेक्ट्रल वार्निंग के जरिए ये विमान के चारों तरफ और 360 डिग्री की कवरेज देता है। लंबी दूरी से ही दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेजर और इंफ्रारेड खतरों को समय रहते भापा जा सकता है। दुश्मन का रडार या मिसाइल किसी दिशा से आ रहे हों, यह उसकी सटीक लोकेशन पायलट को बताता है। स्पेक्ट्रा के जरिए आक्रामक और रक्षात्मक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार जैमिंग, स्मार्ट डिकॉय, एक्स गार्ड डिकॉय के जरिए राफेल की सुरक्षा तय होती है। रडार जैमिंग के लिए राफेल में एक्टिव फेज्ड एरे रडार जैमर्स लगे हैं, जो दुश्मन के रडार सिग्नल्स को जाम कर सकते हैं। स्मार्ट डिकॉय में ये सिस्टम इंफ्रारेड फ्लेयर्स और चाफ छोड़ता है, ताकि थर्मल या फिर रडार गाइडेड मिसाइल मिसगाइड होकर राफेल के बजाय नकली मशीनों पर वार कर दें। एक्स गार्ड डिकॉय में एडवांस्ड टोज डिकॉय सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये स्मार्ट बॉडी डबल या छलावे के रूप में काम करता है। उड़ान के दौरान जरूरत पड़ने पर एक्स गार्ड डिकॉय का इस्तेमाल होता है, जिसमें एडवांस टॉट डिकॉय को विमान के पीछे 100 मीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए हवा में छोड़ दिया जाता है। एआई की मदद से डिकॉय हूबहू उसी लड़ाकू विमान के रडार क्रॉस सेक्शन, डॉपलर वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स की नकल करता है, जिससे दुश्मन के रडार और मिसाइल ट्रैकर भ्रमित हो जाते हैं और वो असली लड़ाकू विमान के बजाय डिकॉय को ही असली विमान मानकर उस पर लॉक कर देते हैं।
1: देखिए, एक्स गार्ड डिकॉय एक ऐसा सिस्टम है जो कि राफेल एयरक्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया। जब एयरक्राफ्ट किसी मिशन में जाता है या बियॉन्ड विजुअल रेंज से किसी मिसाइल को लॉन्च करता है और कहीं हवा में उसको ये महसूस होता है कि दुश्मन के रडार ने उसको लॉक कर लिया या दुश्मन के एयरक्राफ्ट ने, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ने उसके ऊपर मिसाइल दागने के लिए उसको लॉक कर रखा है, ऐसे समय में एक्स गार्ड डिकॉय को वो रिलीज करता है। एक्स गार्ड डिकॉय कुछ नहीं बल्कि 100 मीटर लंबा फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू एक डिकॉय सिस्टम है जिसका कि वजन 30 kg होता है। वो 100 मीटर दूर एक स्टिंग आप समझ लीजिए उससे जुड़ा हुआ वो हवा में आता है। तो जब वो एयर में इस तरीके से उड़ता है तो जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट की लोकेशन है वो डिकॉय रडार पे दिखाता है, और जो मिसाइल जो लॉकिंग की हुई है आज की डेट में, जब वो हवाई जहाज के नजदीक आती है तो उस डिकॉय को डिस्ट्रॉय करती है।
0: स्पेक्ट्रा में एक सेंट्रल मैनेजमेंट यूनिट होता है यानी कंप्यूटर यूनिट, जो सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में जोड़ता है। खतरा दिखने पर यह सिस्टम बिना किसी देरी के पायलट को सबसे सटीक पैतरेबाजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक जवाबी कार्रवाई करने का सुझाव देता है। आसान भाषा में अगर स्पेक्ट्रा को समझना हो तो सीधे तौर पर यह एक तरीके से राफेल के रक्षा कवच के तौर पर काम करता है। हवा या फिर जमीन से आने वाले किसी भी खतरे को ये भटका सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस ने हाल ही में स्पेक्ट्रा के नए F4 वर्जन को और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश शुरू कर दी है। दुनिया को पता है कि चीन और पाकिस्तान का रक्षा गठजोड़ कितना गहरा है। चीन राफेल के खिलाफ हवाई युद्ध से जो भी डेटा और खुफिया जानकारियां जुटा रहा है उसे वो पाकिस्तानी वायुसेना के साथ साझा भी कर सकता है, और इससे पाकिस्तान को भी भारतीय राफेल से निपटने की रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है। चीन और पाकिस्तान का रक्षा गठजोड़ इतना गहरा है कि दोनों देश इसे आयरन ब्रदर्स और ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहते हैं। ये सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है बल्कि संयुक्त हथियार विकास, खुफिया जानकारी साझा करने, परमाणु सहयोग और रणनीतिक सैन्य अड्डों तक फैल चुका है, जिसका अहम मकसद भारत को घेरना है।
1: आसिम मुनीर कई बार चाइना के विजिट कर चुके हैं और चाइना पाकिस्तान को अपना एक स्ट्रेटजिक पार्टनर मानता है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान को उसने स्लेव बना रखा। सीपैक और बीआरआई के प्रोजेक्ट बहुत ही तेजी से पाकिस्तान में चल रहे हैं और साथ में ये डिफेंस टाइप, मकसद एक है कि तमाम चीजों का एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाइना इस एक्सरसाइज से गैदर कर रहा है या अदरवाइज गैदर कर रहा है उसका वो शेयरिंग पाकिस्तान से जरूर करता है, और पाकिस्तान को अपने हथियार बेचता है, J-16 बेचता है, तमाम तरीके के 5th जनरेशन या 6th जनरेशन जो J-सीरीज के एयरक्राफ्ट है वो भी बेचने की बात है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को वो इस फ्रंट पे उलझा के रखना चाहता है।
0: सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का 70% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन से आता है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक J-10CE फाइटर जेट दिए हैं जिन्हें पाकिस्तान भारत के राफेल के मुकाबले तैनात करता है। चीन पाकिस्तानी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसके तहत टाइप 054AP जियांगकाई 2 क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और हैंगर क्लास टाइप 039B पनडुब्बियां शामिल हैं जो समुद्र में भारत की घेराबंदी के लिए हैं। पाकिस्तानी सेना चीन में बने VT-4 मेन बैटल टैंक और SH-15 होवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर रही है। चीन सिर्फ हथियार बेचता नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलकर उनका निर्माण भी करता है, जिससे पाकिस्तान आत्मनिर्भर दिखने की कोशिश करता है। आधुनिक युद्ध रणनीति में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। चीन अपने सैटेलाइट जैसे ब्यूडो नेविगेशन सिस्टम के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता है। हाल के वर्षों में चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और रडार को चकमा देने वाली तकनीकों जैसे होलोथीरियन एंटी रडार डिकॉय सिस्टम पर एक साथ काम करना तेज कर दिया है। दोनों देशों की सेनाएं साल भर उच्च स्तरीय अभ्यास करती हैं, जिससे दोनों की युद्ध प्रणालियां आपस में पूरी तरह से घुल मिल गई हैं। यानी दो दुश्मनों की सांठगांठ भारत के लिए खतरा पैदा करती है। और अब मिस्र में राफेल के साथ J-16 के एक्सरसाइज से पाकिस्तान की नजरें भी चीन पर ही टिक गई हैं। वैसे देखा जाए तो चीन मिस्र में राफेल के साथ जिस एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है उसमें इसके बुनियादी ढांचे को परखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ये बात भूल रहा है कि वो राफेल के
2: बाहरी ढांचे को तो परख सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को परखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के पास जो राफेल है वो मिस्र के राफेल से बहुत अलग है। इसीलिए चीन के लिए राफेल को, खास तौर पर भारतीय राफेल को डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। चीन मिस्र के राफेल का डाटा ले रहा है, लेकिन भारतीय राफेल फिर भी सुरक्षित है। भारत ने इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड्स, यानी कि भारत ने फ्रांस से जो राफेल खरीदे हैं उनमें 13 विशेष बदलाव करवाए हैं, जिसमें कोल्ड स्टार्ट क्षमता, खतरनाक हथियारों का पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार और ट्रैकिंग समेत कई तकनीकें जोड़ी गई हैं। लद्दाख और अरुणाचल जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज में युद्ध के नियम काफी हद तक बदल जाते हैं। यहाँ पर विमान की एक्चुअल कागजी स्पीड काम नहीं करती है, यहाँ काम करती है विमान की पेलोड क्षमता और कोल्ड कैपेसिटी, यानी कितने भारी मात्रा में विमान हथियारों को ले जा सकता है हाई ऑल्टीट्यूड में। राफेल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है, जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट पर भारी पड़ने का मादा रखता है।
1: राफेल एक ऐसा डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो हाई अल्टीट्यूड में भी काम करता है। ये इसका ऑपरेटिंग रेट 50,000 फीट है, और 50,000 फीट से ऊपर से अगर कोई ये उड़ सकता है, अपनी काबिलियत रखता है, तो ये तमाम टारगेट को, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे अरुणाचल हो या हाई अल्टीट्यूड एरिया, उसमें वो स्ट्राइक कर सकता है। और साथ में इसके मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज पर आप लॉन्च करते हैं, साथ में इसका डिकॉय सिस्टम जो इसको इनहेरेंट सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो एक बड़ा ही वर्सटाइल प्लेटफॉर्म है। हमें 4.5 जनरेशन के इस तरीके के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। इसकी संख्या और बढ़ेगी, जैसे कि हम पाकिस्तान और चाइना अगर दो फ्रंट वॉर लड़ना पड़े तो उसके लिए भी हम सक्षम हो।
2: भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए राफेल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है, जो भले ही फिफ्थ जेनरेशन ना हो, लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर फिफ्थ जेनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के राफेल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का राफेल 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है। J-20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं राफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J-20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J-20 हथियार अंदर छिपाता है, जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं राफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9,500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह राफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J-20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है, जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं राफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है, और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ राफेल का पलड़ा भारी है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J-20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। राफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J-20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। राफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है, जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। राफेल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J-20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J-20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J-20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। राफेल का थैलिस एफएसओ इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड, इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J-20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि राफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। राफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J-20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है। यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J-20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J-20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J-20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
3: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रडार से ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: राफेल से चीन की बोलती इसलिए भी बंद है क्योंकि राफेल को हमने ऐसी जगह पर तैनात कर रखा है जहां से चीन को निशाने पर लेना आसान है। भारत के पास 36 राफेल फाइटर प्लेन है, एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है जबकि दूसरे की तैनाती पश्चिम बंगाल के हासेमारा बेस पर की गई है। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंबाला एयरबेस रणनीतिक महत्व का स्क्वाड्रन रहा है जो दिल्ली में वेस्टर्न एयर कमांड के अधिकार में आता है। फरवरी 2019 में पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मिराज ने अंबाला एयरबेस से ही टेक ऑफ किया था, यही से उड़ान भरी थी। और इसके अलावा करगिल युद्ध में भी हमने देखा कि किस तरीके से अंबाला एयरबेस ने एक बहुत बड़ी और एक अहम भूमिका निभाई थी और यहीं पर राफेल का स्क्वाड्रन भी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अंबाला एयरबेस चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, दोनों की दूरी यहां से 200 किलोमीटर है, यानी अंबाला एयरबेस से एक साथ दोनों को एक समय में टारगेट किया जा सकता है।
5: एयरबेस की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा इसलिए बन जाती है, इसके दो कारण है। एक तो ये है कि ये हमारे वेस्टर्न और नॉर्दर्न जो एडवर्सरीज हैं यानी पाकिस्तान और चाइना, उन दोनों के ऊपर मार रखने की यहाँ से हमारे फाइटर जेट जो हैं वो क्षमता रखते हैं। ये तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर है ताकि हमें इतना डिफेंस का टाइम मिल जाए कि इन केस ऑफ एडवर्सरी अटैकिंग अस हम उसकी तैयारी कर सकें। और ये इंडिया का पहला, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एयरबेस है जहाँ इंडियन एयरफोर्स है और हेडक्वार्टर दो कोर आर्मी की वो भी है। ये यहीं से 18 स्क्वाड्रन जो है, जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखों ने जाके श्रीनगर के ऊपर अटैक किया था और उनको पहला परमवीर चक्र जो इंडियन एयरफोर्स में मिला वो उनको मिला था। यहाँ पर मिग, जागुआर और अभी रिसेंटली जैसे सबको पता है कि यहाँ पर हमारे राफाल जो हैं वो भी यहीं पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर शामिल हुए हैं।
2: अम्बाला एयरबेस पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के नजदीक है। अम्बाला एयरबेस पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। वहीं चीन की सीमा से भी इसकी दूरी 200 किलोमीटर है। अम्बाला एयरबेस से 300 किलोमीटर दूर पर लेह के ठीक सामने चीन का गर्गुसा एयरबेस है जो राफेल के टारगेट

0: रक्षा जानकारों का मानना है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो फिर चीन का पछलग रहा पाकिस्तान भी दूसरी तरफ से भारत पर हमला बोलकर मुसीबतें बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को दो अलग मोर्चे बनाने से बेहतर है कि एक बड़ी यूनिट के तौर पर रणनीति बनाई जाए।
1: टू फ्रंट वार की बात काफी देर से चल रही है पर अभी ये एक रियलिटी बन गई है। और लॉन्ग टाइम बैक महान जेआरडी टाटा को जब उनको एक दिया गया सर्वे करने को और एक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने कहा कि इंडिया को टू फ्रंट वार के लिए तकरीबन 66 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है पर भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन जो अप्रूव किए। अभी हमारे पास 33 स्क्वाड्रन हैं जिसमें से दो स्क्वाड्रन जो हैं जैसे आप जानते हैं रफाल के हैं, मिग के हैं, मिग 29 के हैं, सू के हैं, SU-30 के हैं, SU-35 भी है। तो ये टू फ्रंट वार के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल भूमिका अम्बाला एयरबेस की रहेगी।
0: पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर रफाल की तैनाती की गई है और ये वो इलाका है जहां से देश की पूर्वी सीमा पर पुख्ता निगरानी का इंतजाम हो सकेगा, साथ ही चीनी सीमा पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। हासीमारा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यहां से एक साथ सेंट्रल और ईस्टर्न तिब्बत में चीन पर नजर रखी जा सकती है, साथ ही चीन के एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन पर निगाहें रख सकते हैं। वहीं डोकलाम पर नजर रखना भी आसान होगा। डोकलाम में भारत चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद रहा है। सबसे खास बात यह है कि हासीमारा पर रफाल की तैनाती के साथ चीन के शिगात्से एयरबेस के ऑपरेशंस पर भारत 21 साबित हुआ है। शिगात्से एयरबेस को 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद ही खड़ा किया गया था। शिगात्से के नजदीक ही चीन ने गारीगुसा में एक सर्फेस टू एयर फैसिलिटी भी तैयार कर रखी है। ऐसे में चीन की बढ़ती पावर को काउंटर करने के लिए हासीमारा में रफाल के और स्क्वाड्रन की तैनाती अचूक दाव साबित होगा।
1: हासीमारा एयरबेस जो है वो वेस्ट बंगाल में है और ये 1962 की भारत चीन लड़ाई के बाद एस्टेब्लिश किया था। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये चुंबी वैली जो कि इंडिया भूटान और तिब्बत के कोने पर है वहाँ पर ये चाइना को देखने के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वहाँ रफाल के दो स्क्वाड्रन जो हैं वो भारत की शक्ति को बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करेंगे।
0: भारत हमेशा से लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से करता आया है। आज भी भारत की वायुसेना में रूस के बने विमान MiG-27 और Sukhoi-30 जैसे विमान शामिल हैं। रूस से सुखोई खरीदने के 23 साल बाद भारत ने रफाल जैसा कोई बड़ा रक्षा सौदा किया था जो आज कामयाबी की किताब में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने खुद को अपग्रेड करने के लिए साल 2007 में मल्टी रोल फाइटर जेट्स के टेंडर निकाले थे जिसमें तमाम मुल्कों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। अमेरिका की तरफ से F-16 की दावेदारी पेश की गई, F-22 की दावेदारी पेश की गई। रूस की बात करें तो रूस ने अपने MiG-21 की दावेदारी पेश की थी। इसी तरीके से यूरोप ने यूरो फाइटर्स की दावेदारी पेश की, फ्रांस ने रफाल की दावेदारी पेश की, लेकिन आखिरकार 2011 में केवल यूरो फाइटर्स और रफाल ही दौड़ में शामिल रह गए और उसके बाद 2012 में फाइनली ये टेंडर फ्रांस को दिया गया, फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी जो कि रफाल बना रही थी। रफाल खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस लड़ाकू विमान की लागत का करीब 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च किया गया है जिसके कारण इसका पता लगाना और निशाना बनना बेहद मुश्किल है। रफाल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट करता है। रफाल फाइटर जेट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी कि ISR रडार लगा है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR भी है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है।

0: लगी स्कैल्प और मेच्योर मिसाइलें इसे और विध्वंसक बनाती हैं। रफेल में लगने वाले स्कैल्प मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। ये मूविंग टारगेट को भी आसानी से निशाना बना सकते हैं। स्कैल्प मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। स्कैल्प रात और दिन दोनों समय में काम करने में सक्षम है। INS और GPS से लैस आधुनिक नेविगेशन सिस्टम स्कैल्प मिसाइल को अचूक बनाता है। स्कैल्प मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसे जमीन के अंदर और बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। जमीन के अंदर बने बंकरों को स्कैल्प तबाह कर सकता है।
1: स्कैल्प मिसाइल सिस्टम जो है ये एंग्लो फ्रेंच मिसाइल सिस्टम है। इसको फ्रेंच में तो स्कैल्प बोलते हैं और इंग्लैंड में इसको स्टॉर्म शैडो बोलते हैं। अभी इसका रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर का है और इसका पेलोड भी 400 किलोग्राम है। इसका रोल बेसिक जो है वो डीप स्ट्राइक और एयर डोमिनेंस के लिए किया जाता है।
0: वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल मेट्योर रफेल को बेहद ताकतवर बनाती है, क्योंकि मेट्योर अपनी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल है। इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। रफेल विमान में लगाई जाने वाली मेट्योर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मेट्योर मिसाइल हर मौसम में वार करने में सक्षम है। रामजेट इंजन मेट्योर को बेहद तेज रफ्तार देता है। मेट्योर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे बेहद घातक बनाते हैं। मेट्योर मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बताने की एक और वजह है, मेट्योर मिसाइल थर्ड पार्टी टारगेट डेटा का इस्तेमाल करती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर फाइटर प्लेन का पायलट किसी टारगेट को मेट्योर से निशाने पर लेता है और जमीन पर बैठा कमांड किसी वजह से उसमें बदलाव चाहता है तो वो दूसरे टारगेट को भी हिट कर सकते हैं। रफेल की खासियतों को जानकर आप समझ गए होंगे कि भारत का रफेल चीन के लिए क्यों सिरदर्द बना हुआ है और चीन चाहकर भी रफेल की सीक्रेट जानकारी को डिकोड नहीं कर सकता। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: क्या शनि आपको लंबी आयु दे सकते हैं? क्या शनि आपकी आयु को घटा और बढ़ा सकते हैं? शनिदेव का आपकी आयु से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: और अब बात गणपति बप्पा की कर लेते हैं। बप्पा के स्वागत की तैयारियां इस वक्त पूरे देश में जोरों शोरों पर है। मुंबई से लेकर देश के अलग अलग शहरों में गणपति उत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्कशॉप में मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर बप्पा की प्रतिमाओं को सजाने और संवारने में लगे हैं। अलग अलग आकार की प्रतिमाएं दिनों रौनक बढ़ा रही हैं। कहीं छोटी गणेश मूर्तियां हैं तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग भर रहे हैं। अब इंतजार है 14 सितंबर का, जब पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से शुरू होगा।

0: गीली मिट्टी पर चलती उंगलियां, छेनी की हर एक बारीक चोट और फिर आकार लेता विघ्नहर्ता का ये पावन स्वरूप। ये सिर्फ मिट्टी को ढालने की कला नहीं बल्कि बेजान पत्थरों और माटी में भगवान को गढ़ने की वो तपस्या है जो हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। श्रद्धा और भक्ति में डूबे मूर्तिकार दिन रात बप्पा की मूर्तियों को आकार देने में लगे हैं। अलग अलग आकार की प्रतिमा इन दिनों रौनक बढ़ा रही है। कहीं छोटी गणेश मूर्तियां हैं तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग भर रहे हैं। गणपति के चेहरे की बारीकियां, मुकुट की नक्काशी, मूर्ति के हर हिस्से को खूबसूरत बनाने में कलाकार जी जान से जुटे हैं। कलाकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, लेकिन इस बार अकोला से आस्था और कला की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने का बड़ा संदेश भी दे रही है।
1: घरेलू गणपति महाराष्ट्र में सबसे अधिक विराजमान होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि अपनी भक्ति आराधना साधना के साथ बाप्पा की 10 दिन मनोभावे पूजा भी अच्छी तरीके से हो और पर्यावरण भी जो है वो संतुलित रहे। इसी को लेकर जो है अकोला की पर्यावरण प्रेमी कल्पना राव जो है पिछले 5 सालों से अधिक समय से जो है इस पर्यावरण पूरक बाप्पा की प्रतिमाएं जो है निर्माण कर रही है।
0: अकोला में साडू मिट्टी से तैयार की जा रही प्रतिमाएं इन दिनों डिमांड में है क्योंकि विसर्जन के बाद साडू मिट्टी पानी में आसानी से घुल जाती है और प्रदूषण का खतरा खत्म हो जाता है।
2: पिछले 5 साल पहले मैंने देखा कि जैसे गणपति का विसर्जन होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति गलती नहीं है और वो वैसे ही पड़े रहती इधर उधर, तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैं ऐसा सोची कि अपन क्यों ना मिट्टी से बनाए गणपति, और इतना हर महाराष्ट्र में हर घर में गणेश बैठाते हैं और मूर्तियां इतने प्रमाण में बिकती है और विसर्जित होती नहीं है, तो उससे पानी का भी नुकसान है, पानी की भी कमी है अकोला में।
0: मूर्तिकार कल्पना राव पिछले 5 सालों से साडू मिट्टी से इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं बना रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि कल्पना इन प्रतिमाओं पर कोई मुनाफा नहीं कमाती बल्कि सिर्फ लागत मूल्य पर मूर्तियां भक्तों को सौंपती हैं।
2: और मेरे जितने पहचान वाले मैंने सबसे आग्रह किया कि आप लोग साडू माता की मिट्टी की मूर्ति बनाइए और उसको घर पे विसर्जन करिए और मान सम्मान के साथ सनातन धर्म में अपना पूजा पाठ को महत्व है, तो घर में हाथ से बनी मूर्ति रहेगी, आप लोग घर में विसर्जन करिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे को ये बिजनेस जैसा नहीं है, मेरी श्रद्धा है और पर्यावरण पूरक, मैं खुद चाहती हूँ कि यहाँ पे अपना पर्यावरण को बचाना है।
0: जैसे जैसे बप्पा के आगमन की घड़ी नजदीक आ रही है भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। वैसे तो देश के कोने कोने में बप्पा की मूर्तियाँ बनती है, लेकिन राजस्थान के अलवर में काली मिट्टी से बनने वाली मूर्तियों की बात ही कुछ अलग है। अपनी खास इको फ्रेंडली बनावट के कारण अलवर की इन गणपति मूर्तियों की मांग सिर्फ भारत के शहरों में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक है।
3: गणपति महोत्सव में अलवर की गणपति जी की मूर्तियां विराजमान होती हैं। अलवर की मिट्टी से तैयार होने वाली मूर्तियां देश ही नहीं पूरे विदेश में भी अपनी खास पहचान रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार मूर्ति बनाने का काम जोरों से चल रहा है, रात दिन कारीगर मूर्ति बना रहे हैं और उसके बाद इन मूर्तियों को अलग अलग जगह डिमांड के अनुसार सप्लाई किया जाता है।
0: प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए खतरा होती हैं, लेकिन अलवर की चिकनी काली मिट्टी पूरी तरह प्राकृतिक है। इसे कूट कर, छान कर और कई दिनों तक भिगो कर सांचों में ढाला जाता है। पानी में जाते ही ये मूर्ति पूरी तरह घुल जाती है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अलवर और आसपास के इलाकों में 1000 से ज्यादा कारीगर साल भर इस काम में जुटे रहते हैं। ये मूर्तियाँ खास ऑर्डर्स पर तैयार होती हैं और यूरोप, स्पेन और नेपाल समेत 15 से ज्यादा देशों में अपनी छटा बिखेरती हैं।
4: जी अपने पास देखो नेचुरली मिट्टी होती है जो खेतों और बांधों से जरिए आती है, उस नेचुरली मिट्टी के द्वारा भी हम गणपति की मूर्तियाँ रेडी करते हैं और अपने पास 4 इंची से लेकर 5-6 फीट तक की मूर्ति अवेलेबल हो सकती है। मिट्टी को सबसे पहले तो इसको छानना पड़ता है, छानने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए फिर इसके एक मोल्ड होता है जो उसको मोल्ड में ढालने के बाद इसको निकालने के बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग के बाद इसके हाथ और सूंड वगैरह वो अलग से लगाए जाते हैं, तो इसको मतलब बनाने के प्रोसेस तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन के समथिंग आता है।
0: बप्पा के आगमन की तैयारी कर्नाटक और तमिलनाडु में भी जोर शोर से हो रही है, जहां इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। कर्नाटक के तेनकाशी में कलाकारों का हुनर और कारीगरी लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ भगवान गजानन की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं मौजूद हैं। तो वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में मूर्तियों पर की गई कलाकारी देखते ही बन रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर यहाँ गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर मिल रहे हैं। यानी इस बार बप्पा का स्वागत भव्य भी होगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार भी। गणपति उत्सव मुंबई के जिक्र के बिना अधूरा है। देश भर में भले ही गणपति उत्सव की रौनक है, लेकिन मुंबई में इस मौके पर भक्तों का जोश और जज्बा अलग ही होता है। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा की अलग अलग स्वरूपों वाली प्रतिमाओं की डिमांड है, लेकिन भगवान शिव और कृष्ण स्वरूप वाली मूर्तियां सबसे ज्यादा ट्रेंड में है।
5: ये टाइम पे बैलेंसिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बैलेंसिंग मूर्तियां बहुत ज्यादा देखने मिलेगी ये टाइम।
6: अच्छा, और जैसे अलग अलग रूप होते हैं, अवतार होते हैं, नरसिम्हा रूप हो गया या फिर किसान का रूप हो गया, क्या
5: शिवजी अवतार और कृष्ण अवतार बहुत ज्यादा ये टाइम पे फेमस है।
6: अच्छा, इस वजह से भी क्या, क्योंकि श्रावण भी चल रहा है?
5: ऐसा कुछ नहीं है,
6: क्योंकि श्रावण में लोग थोड़ा सा क्या है कि श्रावण में भी शिवजी को चार
5: तो हमेशा मतलब रहते हैं फेवरेट, बट शिवजी और कृष्ण की मूर्तियां ज्यादा चल रही है।
0: एक तरफ कलाकार अपनी कला से बप्पा के सुंदर स्वरूप को आकार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर इको फ्रेंडली गणपति की बढ़ती मांग एक नई सोच की तस्वीर पेश कर रही है। अब इंतजार 14 सितंबर का है, जब बप्पा का दरबार सजेगा और भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर होगा। अकोला से धनंजय साबले, अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
7: शादी हर किसी की जिंदगी का वो खास मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लेकिन आगर मालवा की सलोनी जैन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ एक नेक संदेश भी दिया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चों में कटौती कर बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना तैयार करवाया। इस आशियाने में परिंदे रह सकते हैं जो उन्हें धूप, हवा और ठंड से बचाता है। तालाब किनारे बनाई ये अनोखा आशियाना अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सलोनी की ये पहल शादी की खुशियों के साथ प्रकृति प्रेमियों की खूबसूरत मिसाल भी उनके लिए पेश कर रही है। तालाब किनारे खूबसूरत रंगों से सजा ये आशियाना दूर से ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। कुछ फीट ऊंचा ये आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहां परिंदों के लिए एक के ऊपर एक 6 मंजिलों में कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए हैं। इस आशियाने में छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, जबकि बड़े परिंदों के लिए थोड़े बड़े दरवाजे। हर मंजिल पर एक छत भी बनाई गई है।
8: आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग अपने विवाह कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर आगर मालवा की सलोनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उसने अपने विवाह के खर्च से कटौती करके बेजुबान पक्षियों के लिए आगर में स्थित मोती सागर

0: तालाब के किनारे एक आशियाना बनाया है। सलोनी चाहती है कि जो बेजुबान पक्षी हैं, जो परेशान होते हैं, मौसमों की मार झेलते हैं, वो इस आशियाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
1: आगर मालवा की बेटी सलोनी जैन ने अपनी शादी के मौके पर इस अनोखे आशियाने का निर्माण करवाया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चे में कटौती कर ये पहल की ताकि बेजुबान परिंदों को भी अपना घर मिल सके।
2: मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तालाब किनारे रहती हूँ, बहुत सारे पक्षियों को देखती हूँ। ठंड में बहुत परेशान होते हैं वो, बारिश में उनके तेज हवा आंधी तूफान से घोंसले गिर जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। इतने सारे पक्षी हैं, उनके लिए मन में ऐसा लगता है कि ये परेशान हो रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इच्छा मन में जागृत हुई कि हम जो लाखों का खर्चा अपनी शादी में करते हैं सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, उस पैसे से हम वो काम कर सके जो किसी की जिंदगी के लिए थोड़ा सा हितकारी हो सके। मैंने बस वही प्रयास किया।
1: सलोनी की इस पहल के जरिए समाज को प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। यही वजह है कि सलोनी की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना भी हो रही है।
2: ये 6 मंजिला पक्षी घर है जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना आशियाना बना सकते हैं, घोंसले बना सकते हैं, उनका जब मन आए तब वो आके रह सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनको एक सेफ रहने के हिसाब से इस चीज़ को बनाया गया है। ये एक पिंजरा नहीं है, इसमें वो बिल्कुल भी कैद नहीं होंगे।
1: तालाब किनारे की ये जगह पक्षियों के लिए अनुकूल पाई गई और इसी सोच के साथ यहाँ बेजुबान परिंदों के लिए ये खूबसूरत आशियाना तैयार हुआ। राजस्थान और गुजरात से आए कारीगरों ने इस आशियाने को तैयार किया है।
3: जो बनाने का लक्ष्य है उसको पिंजरा नहीं बनाया गया है, पक्षी जब चाहे आएगा, उड़ाएगा, रहेगा और चला जाएगा, वो रात में रुकेगा। ये उसका एक आशियाना है, उसका एक आश्रय स्थल है, निवास रहेगा उसका, किंतु वो पिंजरा नहीं।
1: अपनी इस पहल से सलोनी ने अपनी शादी को खास बना दिया। आगर बालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
5: बस देखते जाइए, इनकी हरकतें पूरी मौज में हैं। इन्हें पता है कि लोग यहाँ उन्हें ही देखने आए हैं, सो पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। फोटो क्लिक करनी है तो करो ना, मैं पोज दे तो रहा हूँ। नन्ना हाथी सैलानियों के सामने जिस तरह से अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, जानवर के हों या इंसान के, ऐसी शरारतें करते क्यूट ही लगते हैं। नन्ने हाथी का ये अंदाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। पेड़ में लगा ये फल इन्हें चाहिए, लेकिन ये है कि हाथी नहीं आ रहा। कोशिश पूरी है, कभी मुंह से कभी हाथ से। ये लोहे का बैरियर न होता तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही कहाँ है। डॉगी जिस तरह से उस फल को खाने के लिए बेसब्र दिखता है और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है वो देखना दिलचस्प है। लगता है स्कूल में कोई फंक्शन है, अब सुंदर तो दिखना पड़ेगा, पर घर में क्रीम लगाना भूल गई शायद। बाइक में लगा आईना देखा तो एकदम से याद आया, या फिर शायद घर में क्रीम लगाने की मनाही हो। मसला चाहे जो भी हो, सड़क पर जिस तरह से हाल हो रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे को नहीं पता था कि उसे आईने के अलावा भी कोई देख रहा है। जैसे ही नजर कैमरे पर पड़ी शर्मा गई। बच्चे के इस नेचुरल मुस्कान पर लोग दिल हार रहे हैं। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन दोनों ही माँ पापा के पैसों पर डिपेंड है तो यही होता है। बहन ने भाई को राखी बांधी, गिफ्ट मांगा तो भाई ने माँ की तरफ देखा। माँ ने पैसे दिए तो सही, लेकिन बहन के हाथ में आते ही फिर लपक लिया। आखिर इस छोटी सी उम्र में पैसों का करोगी क्या, संभाल कर रख देंगे हम, ये तो चीटिंग है ना। बच्चों का चेहरा देखिए जरा, मासूम बेचारे। ये वीडियो लोगों को खूब गुदगुदा रहा।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार, दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार, अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: क्या शनि आपको लंबी आयु दे सकते हैं? क्या शनि आपकी आयु को घटा और बढ़ा सकते हैं? शनिदेव का आपकी आयु से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम। नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों का एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ सफल रेस्क्यू। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित देश के लिए जुटाया फंड। देश की सुख शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। किर्गिस्तान में आयोजित एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री हुए रवाना। पुतिन, शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से होगी अहम मुलाकात। अब पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनियों को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा। FSSAI ने अदालत में दी अपने हलफनामे में दी इसके बारे में जानकारी। खेल दिवस पर युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाली खबर। दरभंगा में 200 करोड़ रुपए की लागत का स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा तैयार। डे नाइट मैचों का भी हो सकेगा आयोजन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की।
5: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान का ये युवा संत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया

ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका समेत कई देशों में रामकथा की पुण्य सरिता प्रवाहित कर चुका है। अद्भुत बात यह है कि इनकी रामकथा के प्रभाव से विदेशी धरती पर भी वैचारिक बदलाव की बयार महसूस की जा रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लोगों के मन की बात जानकर उनकी पर्ची फाड़ने वाले बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। बाबा बागेश्वर ने पिछले 3-4 सालों से विदेशी धरती पर सनातन का कालजयी संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है और इसी कड़ी में बाबा कुछ दिनों पहले पहुंच गए थे उगते सूरज के देश यानी कि जापान में। उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर ने सूर्यवंशी राम की कथा का वाचन कर लोगों का दिल जीत लिया। माथे पर त्रिपुंड, तन पर राम नामी कुर्ता और पैरों में खड़ाव डालकर बाबा जब जापान की सड़कों पर निकलते तो उन्हें देखकर जापानीज लोग कौतूहल से भर जाते, पर बाबा तो अपनी ही मस्ती में रमे रहने वाले इंसान हैं। जो भी मिला उसे शुद्ध सनातनी अंदाज में आशीर्वाद दिया।

स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का

सनातन चेतना के वैश्विक प्रसार की अपनी मुहिम के तहत बाबा बागेश्वर ने 21 अगस्त को कदम रखा उस जापान में जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है।

सूरज के देश में बाबा बागेश्वर जो कुर्ता पहनकर नमूदार हुए उस पर सूर्यवंशी राम के सुंदर नाम अंकित थे। राम के पतित पावन नाम के बीच में राम भक्त हनुमान की तस्वीर सुदूर पूर्व के देश जापान में सनातन के पौराणिक ज्ञान प्रकाश का प्रसार करती जान पड़ रही थी।

भारतीय ऋषि मुनियों सन्यासियों की पनही माने जाने वाले खड़ाओं को पैरों में डालकर बाबा बागेश्वर जब उगते सूरज के देश की सड़कों पर निकले तो वहां सनातन का पूरा बिंब सजीव हो उठा।

0: लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया, इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए। और हाँ, अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप भूकंप चला गया।
1: बड़ा मेरा बजरंग
2: 21 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे बाबा बागेश्वर ने 22 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो के मंच पर अपनी ओजस्वी वाणी में हनुमंत कथा का वाचन कर विदेशी धरती पर राम भक्ति की जीवन दायिनी धारा प्रवाहित की।
3: ऐसा ही चल रहा और सबके जीवन में आना।

0: राम जी के जीवन में आए, कृष्ण भगवान के जीवन में आए,
1: हनुमान जी एकमात्र ऐसे पुत्र हुए जो मां के दूध के ऋण से मुक्त हुए, मां के दूध के कर्ज से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बेटा ऐसा बेटा नहीं होगा, बेटा अथवा बेटी नहीं होगी जो अपने मां के दूध के कर्ज से मुक्त हुई हो या हुआ हो, पर हनुमान जी हैं।
2: ओम पार्वती बदायरे हर हर महादेव।
3: अपने चार दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर जापान के कई शहरों में गए, वहां की अद्भुत व्यवस्था देखी, सड़कों की साफ सफाई देखी, तकनीक का उत्कर्ष देखा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखी, लोगों का अनुशासित जीवन देखा। लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने उसी धरती से, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा को उद्घोष करने से कतई परहेज नहीं किया।
0: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव, यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपलिसिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
1: हे ठाकुर सुनो, जरा ध्यान से सुनो, पागलो भगवान से कहो, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, थोड़ा और जोर से पूछो।
4: तेरी बंदगी से मैं
3: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों से विदेशी धरती पर जाकर लगातार सनातन धर्म के वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का कालजयी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। जापान जाने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगस्त में ही द्वीपों के देश

0: इंडोनेशिया के बाली में उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का अलग जगाते हुए ऊर्जा संचय समागम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीपीय देश में मौजूद सनातन धर्म के अनुयायी या इस धर्म के दार्शनिक विचारों में विश्वास करने वाले लोगों को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा और एकाग्रता के मार्ग में प्रवृत्त करना था।
1: बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है। यहाँ पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहाँ रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
0: अगस्त में अपनी 4 दिवसीय बाली यात्रा से पहले इसी साल जून के 4th हफ्ते में भी बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखकर सनातन धर्म का परचम लहराया था। जून के 4th हफ्ते में बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हनुमंत कथा की पावन सरिता प्रवाहित की थी। जकार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मानव मात्र की एकता को सबसे बड़ा दर्शन और मानवता की निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताकर सबका दिल जीत लिया था।
2: यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ना चाहिए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत बहुत कम।
0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मानवता का पावन संदेश देने से पहले जून 2026 में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में बाबा बागेश्वर ने सनातन और बौद्ध धर्म की तात्विक समरसता का समावेशी संदेश प्रसारित कर सबका दिल जीत लिया था। हनुमान जी के अनन्य उपासक बाबा बागेश्वर श्रीलंका की धरती पर कदम रखने के बाद उस अशोक वाटिका में भी गए जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं।
3: यहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी जिस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी, अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं। ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की ठटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने।
0: श्रीलंका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सीता एलिया गांव के अलावा कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर, सनातन और बौद्ध धर्म के अनोखे संगम के रूप में प्रतिष्ठित गंगार माया मंदिर समेत कई दिव्य स्थानों पर गए और हर जगह सनातन के इस युवा संत का प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। यहाँ तक कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया।
4: लोगों का लोगों से मिलन होना,
5: हम यही चाहते हैं और उसका यही तो उपाय है कि भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने आए और श्रीलंका के लोग रामलला के दर्शन करने जाए।
4: Guruji is hoping that Indians from India come to see the Ramayana trail over here and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama's birthplace.
5: People to people
4: will connect through Ramayana.
5: Uska sarvottam upay hi hai Ramayana ki dono ek dusre se jud payenge।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा का विदेशी धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराने का ये सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ था। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलख जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया। दिलचस्प तो ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले आने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
6: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरुजी कब आओगे भारत? हमने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे? हमकी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक बाद बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका अतिथि सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंगबली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: सारी शाखा पार
1: इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं ताकि विश्व में शांति होवे सबका मंगल होवे ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें सब पर कृपा करें सब में एकता हो सनातन धर्म की उन्नति हो ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
2: ब्रिटेन के अलावा बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की धरती को भी धन्य कर चुके हैं। 8 से 22 अप्रैल 2026 के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे जहां कैनबेरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया। अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। खास बात तो यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा भी कर चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा बागेश्वर विदेशी सरजमी पर सनातन के मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार कर स्वामी विवेकानंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद परमहंस योगानंद महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों की मुहिम को इस युग में आगे बढ़ा रहे हैं।
3: बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो युग बोध वाले संत हैं। भक्ति के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को लेकर वे हमेशा सजग रहते हैं। ये तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाहिर नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे गहराई से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बाबा को राजनीति और कूटनीति से लेकर वैश्विक हलचलों तक की बारीक जानकारी है। बागेश्वर बाबा सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखते हैं और युवाओं को उसके दुष्परिणामों से दूर रहने की सलाह देते हैं।

0: सनातन का आध्यात्मिक संदेश और राम कथा की सरिता विदेशी धरती पर प्रसारित प्रवाहित करने वाले बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने के अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। बालाजी यानी बजरंग बली की भक्ति में अपना जीवन होम कर चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खासियत ये है कि उनके भीतर गजब का युग बोध है। सोशल मीडिया आज भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जेन अल्फा और जेन जी से लेकर जेन एक्स और जेन मिलेनियल्स तक आज कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया के प्रभाव से अछूता है। कमाल यह है कि बालाजी के भक्ति भाव से आप्लावित रहने वाले बाबा बागेश्वर को सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से लेकर उसके डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोलर्स तक के बारे में गहराई से जानकारी है।
1: इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एफबी कहां से हैंडल हो रही? अमेरिका से। यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एक्स कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। तो इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली ना बन जाएं।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा बागेश्वर की सुबह भजन कीर्तन साधना उपासना से शुरू होती है। राम कथा के वाचन और सद्विचारों के प्रसार के साथ उनका दिन चढ़ता है। धाम पर आए श्रद्धालुओं के साथ संवाद और उनके मार्गदर्शन की कोशिशों के बीच इस युवा संत की संध्या होती है। पर इन सब के साथ ही राष्ट्रहित का चिंतन भी सतत चलता रहता है। भारत के मौजूदा हालात और देश में विदेशी शक्तियों के कुत्सित हस्तक्षेप को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असहज हैं और युवा पीढ़ी को इसे लेकर जागरूक करना चाहते हैं।
1: कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहते, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहते। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन किसी मां बहन की गाली से ना हो।
0: भारत की धरती पर ऐसी कई विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपने युग में आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा का भी संचार किया। महर्षि अरविंद और स्वामी चिन्मयानंद से लेकर स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती तक ने एक ओर जहां वेद, पुराण और उपनिषदों की युगीन विवेचना की, तो दूसरी ओर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी प्रबल की। निसंदेह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान की इसी अतुल्य परंपरा का संवोहन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि युवा पीढ़ी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुने और ड्रग या सोशल मीडिया एडिक्ट होने की जगह कथा का एडिक्ट बने, तो इससे युवाओं के भविष्य के साथ ही राष्ट्र का भविष्य भी संवरेगा।
1: संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना। देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़े तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देकर जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना चाहिए।
0: साफ है कि बाबा बागेश्वर प्रभु की भक्ति के साथ ही राष्ट्र की भक्ति का संगम संतुलन स्थापित करने के पक्षधर हैं। वैसी भक्ति जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित पर प्रतिकूल असर पड़े, बाबा को स्वीकार नहीं है। इसीलिए बाबा बागेश्वर उन कावड़ियों को भी संदेश देते हैं जो अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान आमजन के लिए परेशानी का सबब बनते हैं या फिर स्वच्छता का आग्रह दरकिनार कर देते हैं।
1: धर्म आस्था को सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखे। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विषय, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन के इस युवा संत के भीतर भक्ति की शक्ति तो है, लेकिन धर्म या परंपरा को लेकर कट्टरता या दुराग्रह नहीं है। बागेश्वर बाबा परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम की संजीवनी को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाकर विकास की सरिता प्रवाहित करने के पक्षधर हैं। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, इसी दर्शन को आत्मसात कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम में 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा 13 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सनातन वैदिक गुरुकुलम नाम के एक भव्य दिव्य शैक्षणिक संस्थान का शुभारंभ भी उन्होंने कराया है। इस गुरुकुलम में वैदिक शिक्षा के साथ ही साइंस, मैथ्स और दूसरे रोजगारोन्मुखी विषयों की भी शिक्षा दी जा रही है। बाबा बागेश्वर खुद अविवाहित हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर गरीब, असहाय और अनाथ कन्याओं के लिए अपनी छत्र छाया में सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करते हैं। साफ है कि बाबा बागेश्वर को कम उम्र में ही जो बेहिसाब लोकप्रियता मिली है उसके पीछे उनकी त्याग तपस्या के साथ ही मानवीय संवेदना और जनहितकारी कार्यों का बड़ा योगदान है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने बाबा बागेश्वर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: आयु दे सकते हैं? क्या शनि आपकी आयु को घटा और बढ़ा सकते हैं? शनिदेव का आपकी आयु से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम। नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित देश के लिए जुटाया फंड, देश की सुख शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। किर्गिस्तान में आयोजित एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए रवाना, पुतिन शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से होगी अहम मुलाकात। अब पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनियों को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा। FSSAI ने अदालत में दी अपने हलफनामे में इसके बारे में दी जानकारी। खेल दिवस पर युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाली खबर, दरभंगा में 200 करोड़ रुपए की लागत का स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा तैयार, डे नाइट मैचों का भी हो सकेगा आयोजन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: करगिल की सुरु घाटी में भव्य समर फेस्टिवल, दमसना में संस्कृति और रोमांच कथे का शानदार संगम। सुरु घाटी में सजा रंगारंग उत्सव, नुनकुन की चोटियों के बीच सजा फेस्टिवल, लोक कलाकारों और गायकों ने बांधा समा। संस्कृति संगीत और रोमांच से गुलजार हुआ पूरा इलाका, युवाओं और बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध किया। विदेशी सैलानियों ने चखा लद्दाख के लोकल फूड का स्वाद, पारंपरिक व्यंजनों ने जीता पर्यटकों का दिल। हाथ से बने प्रोडक्ट्स के स्टॉल पर उमड़ी भीड़, लोकल हस्तशिल्प की खरीदार में दिखा जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में 50 साल पुराना मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का होगा मंचन, आज से 4 सितंबर तक कमानी ऑडिटोरियम में दिखाई जा रही कृष्ण की लीलाएं। पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन में कृष्ण का भव्य मंचन, शास्त्रीय नृत्य संगीत और शानदार सेट लाइटिंग आकर्षण का केंद्र। कृष्ण में जन्म से लेकर रास लीला और महाभारत तक की दिखाई जाएगी कहानी, गीता के जरिए जीवन के महत्वपूर्ण संदेश। न्यूयॉर्क के इस्कॉन मंदिर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हुआ भव्य स्वागत, भागवत ने मंदिर का किया दौरा। तेलंगाना के मलकजगिरी में अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन ने श्री भवानी रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना, लिंगेश्वर भगवान के लिए आशीर्वाद। दरभंगा में बनेगा नेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम, 200 करोड़ रुपए की लागत से होगा इसका निर्माण, खेले जा सकेंगे डे नाइट आईपीएल मैचेस। नए स्टेडियम में हाई मास्ट लाइट्स और बड़ी स्क्रीन्स होंगे, पुराने नेहरू स्टेडियम की जगह बनेगा नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। क्रिकेट के साथ कई इंडोर गेम्स की भी इसमें होगी सुविधा, स्विमिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बैडमिंटन और बास्केटबॉल की होगी व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए बनेगा हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर। देवरिया में 305 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। सड़क पुल से मजबूत होगी देवरिया की कनेक्टिविटी, कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार। यूजीसी नेट के 84 विषयों के नतीजे घोषित, 4,000 से अधिक अभ्यर्थी जेआरएफ के लिए चयनित। असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए 7.56% हुए पास, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0.70% छात्रों को मिली सफलता। कैंसर के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी, एमआरएनए कैंसर वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल सफल। कैंसर के दोबारा लौटने के जोखिम को कम करती है मॉडर्ना और मर्क कंपनी ने टीके को किया है विकसित। उच्च जोखिम वाले त्वचा कैंसर मरीजों पर किया गया इसका ट्रायल, 1137 मरीजों पर किया गया इसका परीक्षण। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा का बहनों ने उठाया लाभ, 40 लाख बहनों ने की मुफ्त बस यात्रा। 20 लाख सहयात्रियों ने योजना का उठाया लाभ, आज रात 12 बजे तक मिलेगी मुफ्त यात्रा की सौगात। पैकेज फूड को लेकर हेल्थ से जुड़ी अच्छी खबर आई सामने, पता लगा सकेंगे अब आप नमक, चीनी और फैट की मात्रा। मानक से अधिक होने पर देनी होगी जानकारी, सेहतमंद विकल्प चुनने में ग्राहकों को मिलेगी इससे मदद। पैकेट पे चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव, लाल रंग षटकोणीय चेतावनी लेबल का प्रस्ताव, FSSAI ने जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दिया इसका प्रस्ताव। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की गोगाजी महाराज की पवित्र छड़ी की पूजा, प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रक्षाबंधन के अगले दिन भुजरिया उत्सव को धूमधाम से मनाया गया, बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की फरियादें सुनी, जल्द मामलों के निपटारे करने के भी निर्देश दिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने मवेशियों को चारा खिलाया, गौशाला का भी निरीक्षण किया। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, शिकारा राइड का आनंद लेते हुए नजर आए सैलानी। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 106 पर्यटकों की हुई सुरक्षित वापसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे पर्यटक। मुश्किल हालात के बीच भारतीय रेलवे ने संभाला मोर्चा, 106 पर्यटकों के लिए रेलवे ने लगाए अतिरिक्त कोच, रेलवे ने स्पेशल इंतजाम कर भेजा घर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पर्यटकों को नाश्ता पानी भी दिया गया, सरकारी मदद से पर्यटकों की घर वापसी आसान। सकुशल लौटने पर पर्यटकों के परिजनों के चेहरे पर दिखी खुशी, सरकार और रेलवे का किया शुक्रिया अदा, नेपाल से लौटे पर्यटकों ने बयां किया अपना अनुभव। नेपाल की त्रासदी के बीच दिखी मदद की मिसाल, रेलवे की मदद ने बढ़ाया पर्यटकों का हौसला। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी लगातार जारी, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट। रेस्क्यू में 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ सफल रेस्क्यू, कई जगहों पर चल रहा है रेस्क्यू अभियान। नेपाल में मुसीबत के बीच करिश्मा, 8 साल के बच्चे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। एक दिन बाद किया गया एयरलिफ्ट, बच्चे से मिलकर भावुक हुई मां। चीन में फंसे 400 भारतीय सुरक्षित, भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ निकासी में जुटा। भारत से मदद को लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची तीसरी फ्लाइट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी इसकी जानकारी। राहत सामग्री के साथ प्रभावित इलाकों में 11 लोगों की मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम भी मुस्तैद, लोगों को सुरक्षित निकालने की हर संभव कोशिश जारी। जल आपदा से पीड़ित नेपाल को हर संभव सहयोग दे रहा है भारत, नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है सरकार। आपदा प्रभावित नवाल की मदद के लिए यूपी के बस्ती में महिलाओं की पहल, रक्षाबंधन में भाई से मिले, शगुन के पैसों को दान पात्र में किया जमा। मुश्किल वक्त में पड़ोसी देश के साथ मजबूती से खड़े भारतवासी। नेपाल में आई बाढ़ के बाद गोपालगंज में राहत की खबर आई सामने, नहीं बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, घट रहा है गंडक नदी का जलस्तर। नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद बिहार के वाल्मीकि नगर में प्रशासन सख्त। वाराणसी में रुक रुक कर बारिश, लोगों को मिली राहत। भारी बारिश के चलते इलाकों में हुआ जलभराव। देहरादून में भारी बारिश के बाद बड़ा तमसा नदी का जलस्तर। गुवाहाटी में बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का भी बड़ा जलस्तर, प्रशासन सतर्क। यूपी के चित्रकूट में फिर बढ़ने लगा मंदाकिनी नदी का जलस्तर। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर आया पानी। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल में होगी भारी बारिश। फिल्म प्रेम कीटाणु का दूसरा सॉन्ग हुआ रिलीज, सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। 31 अगस्त को नई फिल्म दायरा का ट्रेलर होगा रिलीज। फिल्म में करीना कपूर निभा रही हैं अहम रोल। मिर्जापुर द मूवी की एडवांस बुकिंग 31 अगस्त से होगी शुरू, 4 सितंबर को फिल्म होगी रिलीज। फिल्म रेस 4 को लेके लोगों में काफी उत्सुकता, फिल्म में आमिर खान की हुई एंट्री। सलार 2 में हुई धरा शौर्यांग की एंट्री। चीन में खुला देश का पहला कैट थीम पार्क। स्कारलेट फ्रेंड्स में स्केट ट्रैक्स के लिए बना खास पार्क, बिल्लियों के साथ वक्त बिताने का अनोखा ठिकाना। बिल्ली की विशाल मूर्ति बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, कैट थीम पार्क में कई अनोखे स्पॉट्स बनाए गए। हांगकांग में इविटॉल की पहली टेस्ट फ्लाइट ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट ने भरी सफल उड़ान। इविटॉल ने टेक ऑफ होवरिंग और लैंडिंग की। इविटॉल से सफर मिनटों में पूरा करने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसएस के अंतरिक्ष यात्रियों से की बात, ह्यूस्टन में नासा सेंटर पहुंचकर किया संवाद। ट्रंप का बड़ा ऐलान, बनेगी नई स्पेस एकेडमी, मिलिट्री सर्विस एकेडमी की तर्ज पर होगी इसकी तैयारी। ट्रंप ने अंतरिक्ष यात्री जैक हैथवे के मूंछ की तारीफ की, बोले ट्रंप, मुझे भी चाहिए ऐसी मूंछ। ये सुनकर सभी एस्ट्रोनॉट्स के चेहरों में मुस्कान नजर आई। आर्टेमिस 2 के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को बड़ा सम्मान, ट्रंप ने चंद्र मिशन के लिए दिया कंग्रेशन स्पेस मेडल ऑफ ऑनर। ह्यूमन आइड स्पेस फ्लाइट की ऐतिहासिक उपलब्धि पे मेडल, सम्मान समारोह के बाद हुआ खास पल। ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर नॉरिस का मैकलेरन के साथ नया करार। मैकलेरन में करियर खत्म करना चाहते हैं नॉरिस, करार में 2030 के बाद का मल्टी ईयर ऑप्शन भी है। मैकलेरन से लॉरिस को मिला बेहद खास तोहफा, मैकलेरन ने चैंपियन बनाने वाली MCL 39 कार गिफ्ट की। स्पेन के सबसे प्रतिष्ठित साइकिल रेस वुएल्टा में आंद्रियास लेकनीसोंट का जलवा। करीब 150 किलोमीटर की रेस में बने चैंपियन। अर्जेंटीना में इलाज के बाद 6 पेंगुइन्स को वापस उनके मूल निवास समुद्र में छोड़ा गया, मछली पकड़ने वाले जाल से घायल हुई थी। पेंगुइन के रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन में जुटे फाउंडेशन, अप्रैल महीने में 15 पेंगुइन्स को इलाज के बाद वापस समुद्र में छोड़ा गया। रैली पैराग्वे के शुरुआती दौर में न्यूजीलैंड के हेडन पैडोन ने बढ़त हासिल कर ली है। साल 2018 के बाद पहली बार पैडोन WRC में सबसे आगे पहुंचे हैं। रेस के दौरान जोश दूसरे, जबकि चैंपियनशिप लीडर एल्फिन एवांस तीसरे स्थान पर हैं। डिफेंडिंग चैंपियन सेबेस्टियन ओजियर का टायर पंक्चर हो गया, कार में मरम्मत के बावजूद वो तीसरे स्टेज से आगे नहीं बढ़ सके। चीन के वाइल्ड लाइफ पार्क में माला घुमाता नजर आया चिंपैंजी, लोगों को आ रहा है खूब पसंद। शांजी में माला घुमाते चिंपैंजी को देखने के लिए उमड़े लोगों की भीड़, वाइल्ड लाइफ पार्क में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। पार्क कर्मचारी के मुताबिक चिंपैंजी ने खुद ही सीखा ये हुनर, उसे किसी से नहीं मिली है कोई ट्रेनिंग। चीन के पांडा नेशनल पार्क से सामने आई बच्चों के साथ मां पांडा की प्यारी सी तस्वीरें, जंगल में घूमते हुए कैमरे में हुए कैद। वीडियो में बच्चे का पूरा ख्याल रखते दिखे मां पांडा। केनिया में 16 क्लिनिक की टेस्टिंग। केनिया में डच छात्रों ने सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल क्लिनिक का किया सफल परीक्षण। दूरदराज के लोगों को मिलेगा इलाज सोलर वाहन में, अल्ट्रासाउंड पोर्टेबल एक्सरे और वैक्सीन फ्रिज की भी है सुविधा। स्टेला जुवा ने केनिया में 800 किलोमीटर से ज्यादा का किया सफर, खराब और उबड़ खाबड़ सड़कों पर भी वाहन का हुआ सफल परीक्षण। दुबई में अपसाइक्लिंग से तैयार पुराने कपड़े और सामान खरीदार लोग सस्टेनेबल फैशन को दे रहे बढ़ावा। इन दुकानों की कमाई से जरूरतमंद बच्चों की होती है मदद। थ्रिफ्ट फॉर गुड ने 18 बाल कल्याण परियोजनाओं को 50 लाख दिरहम से ज्यादा का दिया है दान। मॉडर्ना और मार्क की mRNA कैंसर वैक्सीन ने लेट स्टेज ट्रायल में पाई सफलता। मेलानोमा के मरीजों में कैंसर लौटने का खतरा हुआ कम। मरीज के ट्यूमर की एक खास जेनेटिक म्यूटेशन को टारगेट करती है ये वैक्सीन। करीब एक सदी से भी ज्यादा समय से जारी है कैंसर की वैक्सीन बनाने की ये कोशिश है। इस सफलता को माना जा रहा है इलाज के नए दौर की शुरुआत। mRNA वैक्सीन को मर्क की कैंसर दवा केट्रूडा के साथ दिया गया। दोनों मिलकर शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया को कैंसर के खिलाफ मजबूत करते हैं। अमेरिका में वैक्सीन को अगले साल तक मंजूरी मिलने की जताई जा रही है उम्मीद। फ्रांस में ड्रैगन बॉल थीम पार्क को लेकर फैंस में है जबरदस्त उत्साह। पेरिस के पास बनेगा विशाल ड्रैगन बॉल पार्क। मैक्रोबिन सलमान की मौजूदगी में हुआ समझौता। फ्रांस में ड्रैगन बॉल की नई दुनिया बसाने की तैयारी। फ्रांस में बनेगा यूरोप का बड़ा ड्रैगन बॉल आकर्षण। किडिया प्रोजेक्ट बना फ्रांस पार्क की प्रेरणा। सऊदी अरब ड्रैगन बॉल थीम पार्क के निर्माण में करेगा निवेश। 6 अरब यूरो के निवेश से बदले की तस्वीर। युवाओं को जोड़ने पर सऊदी अरब का बड़ा दाव। केडिया से पेरिस तक ड्रैगन बॉल का विस्तार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: विदेश की धरती पर जो भारतीय मंदिर आकार लेते हैं तो ये सिर्फ इमारतें नहीं होती, इनके साथ भारत की आस्था, संस्कृति और संस्कार भी वहां पर पहुंचते हैं। पेरिस के पास बना BAPS स्वामी नारायण मंदिर भी ऐसा ही एक खूबसूरत पहचान का पात्र है। सितंबर में BAPS के इस मंदिर का एक भव्य उत्सव के दौरान उद्घाटन कार्यक्रम है। स्वामी नारायण मंदिर की खूबसूरती जितनी खास है उतनी ही खास है इसकी कहानी। विदेश में बना यह मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की झलक दिखाता है। यहाँ आने वालों को पूजा के साथ भारत की कला, यहाँ की वास्तुकला और संस्कारों का भी एहसास होता है, यानी सात समंदर पार भी भारत की मिट्टी की खुशबू और संस्कृति की रोशनी कायम है।
2: भारतीय मठ मंदिर देश की संस्कृति, परंपराओं का विस्तार और भारतीय विरासत के वैश्विक प्रसार की ही अनमोल संपदा हैं। विदेशों में बने भारतीय मंदिर न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वो भारतीय कला, वास्तुकला, संस्कार और तीज त्योहारों को भी दुनिया भर में पहुंचाने का काम बखूबी निभाते आ रहे हैं। ऐसी ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक संपदा फ्रांस में पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बुसी सेंट जॉर्जेस में खड़ी की गई है, जो BAPS स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के रूप में भारतीय संस्कृति के विस्तार का एक और अध्याय लिखने के लिए तैयार है। BAPS यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसके द्वारा बनाया गया ये मंदिर फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। इसका उद्घाटन अगले महीने यानी सितंबर में होगा। 2 से लेकर 14 सितंबर तक 13 दिन का यहाँ फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित होगा। इस दौरान हिंदू परंपरा, भारतीय कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। 2 से लेकर 13 सितंबर तक खास तौर से यहाँ वैदिक महायज्ञ आयोजित होगा। उद्घाटन और उत्सव कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदू समुदाय और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के शामिल होने की काफी उम्मीद है। समझाया जा रहा है कि इस दौरान आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और साथ ही पेरिस की धरती पर हिंदू मंदिर बनने की कहानी को भी समझने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि फ्रांस में हिंदू मंदिर बनाने का विचार साल 1970 में आया था। इसके करीब 25 साल बाद 1995 में पेरिस में मंदिर बनाने की योजना पर काम आगे बढ़ा। साल 2017 में बुसी सेंट जॉर्जेस में मंदिर के लिए जमीन मिली, जिसके बाद साल 2021 में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और आखिरकार करीब 56 साल बाद अब 2026 में मंदिर बनकर तैयार है। पेरिस के पास बना ये स्वामी नारायण मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होगा, बल्कि यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 50 के दशक से ऊपर का समय लगाते हुए इस मंदिर को बनाने में काफी मेहनत और मेधा का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर को बनाने में भारत से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें भारत में करीब 1000 साल पुरानी नक्काशी की तकनीकों से तैयार किया गया। कई हिस्सों पर तो कारीगरों ने हाथ से बारीक नक्काशी की है। मंदिर निर्माण के काम में भारतीय कारीगरों के साथ फ्रांस के विशेषज्ञ भी शामिल रहे, जिनमें नोट्रे डैम कैथेड्रल की मरम्मत से जुड़े कारीगर भी थे। इस मंदिर में भारतीय शिल्पकला और फ्रांस की आधुनिक निर्माण तकनीक का मेल भी देखने को मिलता है। वहीं मंदिर की संरचना में गुंबद, स्तंभ और शिखर जैसी पारंपरिक हिंदू वास्तुकला भी शामिल है। बता दें कि BAPS के बनाए गए सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर में भी अक्षरधाम परिसर है। दिल्ली का अक्षरधाम पारंपरिक भारतीय शैली में बनाया गया है, जिसे बनाने में हजारों कारीगरों और स्वयं सेवकों ने काम किया था। BAPS के अनुसार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को पारंपरिक वास्तु और शिल्प परंपराओं के अनुसार तैयार किया गया। बेशक एक वैश्विक हिंदू संस्था के रूप में BAPS न सिर्फ धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सेवा भी करता रहा है। इस तरह से भारत के अलावा विदेशी धरती पर भी ये संस्था हिंदू धर्म के मूल्यों और संस्कारों को सींच रही है। BAPS के मंदिर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में हैं, जहां पूजा और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भारतीय संस्कृति, भाषा, संगीत, कला और बच्चों से जुड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। BAPS की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि गुजरात के बोचासन में स्वामी नारायण परंपरा को मानने वाले शास्त्री जी महाराज ने ही साल 1907 में इस संस्था को बनाया। मौजूदा वक्त में संस्था के प्रमुख महंत स्वामी महाराज हैं। BAPS के दुनिया भर में 1300 से ज्यादा मंदिर हैं और इसका नेटवर्क 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और पेरिस के पास बना BAPS स्वामी नारायण मंदिर भी इसी वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। निश्चित तौर पर पेरिस जैसे वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय पारंपरिक वास्तुकला और हिंदू आध्यात्मिक परंपरा का ये नया केंद्र भारतीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। यही वजह है कि सितंबर में होने वाला मंदिर महोत्सव इस लंबे निर्माण सफर के समापन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: क्या शनि आपको लंबी आयु दे सकते हैं? क्या शनि आपकी आयु को घटा और बढ़ा सकते हैं? शनिदेव का आपकी आयु से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
5: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
6: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत ने तकनीकी सामान के साथ भेजी रेस्क्यू टीम। 10 टन राहत सामग्री की तीसरी खेप लेकर विमान काठमांडू पहुंचा। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम। नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों का एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ सफल रेस्क्यू। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित देश के लिए जुटाया फंड। देश की सुख शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। किर्गिस्तान में आयोजित एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री हुए रवाना। पुतिन, शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से होगी अहम मुलाकात। अब पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनियों को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा। FSSAI ने अदालत में दी अपने हलफनामे में दी इसके बारे में जानकारी। खेल दिवस पर युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाली खबर। दरभंगा में 200 करोड़ रुपए की लागत का स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा तैयार। डे नाइट मैचों का भी हो सकेगा आयोजन।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और गुड न्यूज टुडे पर हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्सवों का सीजन चल रहा है। अभी सावन और रक्षाबंधन का बस समापन ही हुआ है और गणेश उत्सव, दशहरे, दीपावली की बारी आने वाली है। उससे पहले कुछ ही दिनों के बाद देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि आ रहे हैं कान्हा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ब्रजमंडल से लेकर देवभूमि द्वारका तक देश के कोने कोने में नंदलाला, गोपाला, बाकी बिहारी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ज्यादा समय अब बाकी नहीं है। चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या द्वारकाधीश मंदिर, या फिर वृंदावन में बाकी बिहारी मंदिर, या फिर देश में जगह जगह फैले इस्कॉन मंदिर, हर जगह लड्डू गोपाल के दिव्य जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां जो है वो चल रही हैं। और क्या क्या खास आयोजन होने वाले हैं इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी ज्यादा खास है, और इसीलिए भी वो खास है क्योंकि इस बार बरसों बाद एक ही साथ अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो द्वापर युग में तब बना था जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। अपने स्पेशल शो में हम आपको दिखाएंगे इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में क्या कुछ तैयारी हो रही है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी क्या है, उनके प्राकट्य का आखिरकार क्या महात्म्य है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। कान्हा आ रहे हैं तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर, नंद किशोर, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नंद के लाल, गोपाल, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम के

के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है, इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय, जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निशित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो करके जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले

0: करे। 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत्व उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है, लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है, तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
1: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पर रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुँचने की संभावना है।
2: 2 तारीख को मिलेगा इनोग्रेशन है, इनोग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोकमेला 2026 का आयोजन सुचारू सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोकमेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक बजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
4: रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना साल भर हर पल चलती रहती है, लेकिन भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है, जब यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
5: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहाँ पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया हुआ लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियाँ की जाती है। बता दें इस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियाँ जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
4: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है।
5: तो जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और काफ़ी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनज़र तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 MM का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज़ प्रोविडेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीज़ें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियां दी गई है।
4: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहां पर सीसीटीवी से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा, ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के आठवें अवतार यानी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं भगवान है। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।

0: कहा जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा, साधु संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामि युगे युगे, यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असब साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है, जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव। कंस का कारागार, हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे। तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
1: देखिए, यह जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देवकी वसुदेव क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? या ज्ञान से हमको दूर होना है।
0: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत, महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छूकर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुंचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिनके बारे में जानकारी आज भी श्रद्धालुओं और भक्तों को भाव विभोर कर देती है। कभी वे अपनी पालनहारी माँ को अपने मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं और दूसरी ओर माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं, जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
1: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना। यो आकर्षते यदि सह कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ये होता है कि दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
0: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आमतौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन है। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
1: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को शीतल निर्मल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग है वह करुणा का समग्र प्रकाश हमारे अंदर देता है। क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं, जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहीं, जन्म कोट यघ नाशहि तबहीं, भगवान उनके करोड़ों जन्म का अघ नाश कर देते हैं।
0: भाद्रपद माह की अंधेरी रात में प्रकट होकर भगवान ने यही संदेश तो दिया कि जीवन में हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के परम पावन संदेश का जो दिव्य प्रकाश फैलाया, उसकी पवित्र रोशनी से आज भी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर
2: खबरें। कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: क्या शनि आपको लंबी आयु दे सकते हैं? क्या शनि आपकी आयु को घटा और बढ़ा सकते हैं? शनिदेव का आपकी आयु से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे 4 और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, जल्द ही काठमांडू पहुंचने वाले हैं चारों भारतीय, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित देश के लिए जुटाया फंड, देश की सुख शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनियों को बतानी होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा, FSSAI ने अदालत में दी अपने हलफनामे में दी इसकी जानकारी। खेल दिवस पर युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाली खबर, दरभंगा में 200 करोड़ रुपए की लागत का स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा तैयार, डे नाइट मैचों का भी हो सकेगा आयोजन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग इसे बिना जांचे हुए, बिना परखे हुए सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन पर सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है, और नतीजा ये होता है कि लोग इसे बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक, जहां हम तमाम खबरों के फैक्ट चेक करने वाले हैं। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए हुए वायरल तस्वीरों की, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद के दृश्य हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की होगी जिसको शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अभी का है और पंजाब की भगवंत मान सरकार में सरकारी स्कूल की बदहाली को दिखाता है। क्या है इस वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से जोड़कर दो तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस कोलाज में नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीर को दिखाया गया है। वायरल हो रही तस्वीरों का सच और झूठ क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
10: नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। अब इसी संदर्भ में तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पहली तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस तस्वीर को तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल, शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। चीन अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, नेपाल त्रासदी का ताजा हाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
9: दरअसल सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों का ये कोलाज बनाकर शेयर किया जा रहा है और इसे नेपाल में आई भीषण बाढ़ की तस्वीर बताया जा रहा है। एक तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल और शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। चाइना अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक की टीम वायरल दावे की जांच में जुट गई। हाँ, ये बात सच है कि नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इसी बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीरें इसी बाढ़ की हैं, ये जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने लगातार सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर एडिटेड तस्वीरों को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? जब हमने जांच की है तो क्या कुछ पाया है, इस रिपोर्ट में देखिए।
10: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी, सर्च के जरिए तस्वीरों को खोजा। इस दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये तस्वीरें नजर नहीं आई। इसके बाद तस्वीरों को गौर से देखने पर हमें इसमें घरों की बनावट और सड़क पर मौजूद वाहनों का स्वरूप भी सामान्य नहीं लगा। इसके बाद हमने तस्वीरों के इस कोलाज को AI डिटेक्शन टूल हाइव डिटेक्ट पर चेक किया। इस दौरान इस टूल ने 90.2% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI जनरेटेड बताया। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के दावे से वायरल हुई तस्वीरों का सच जानने के लिए हमने इसे AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन पर भी जांचा। टूल ने अपने विश्लेषण में कोलाज में मौजूदा तस्वीरों को 99% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। कोलाज में मौजूद तस्वीरों को हमने एक और AI डिटेक्शन टूल जीरो GPT पर भी जांचा। इस टूल ने 85% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI निर्मित बताया। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के नाम पर वायरल कोलाज में मौजूद तस्वीरें AI जनरेटेड हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
9: पंजाब के एक सरकारी स्कूल की खराब स्थिति दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो में लड़कियों के टॉयलेट्स की बदहाली दिखाई गई है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग पंजाब के भगवंत मान सरकार के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के एक सरकारी स्कूल की इस बदहाली को दिखाते हुए शख्स का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाते हुए ये बता रहा है कि लड़कियों के टॉयलेट्स में छत ही नहीं है और न ही पानी की व्यवस्था है। कुछ लोग इस वीडियो को हाल फिलहाल का बताते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पंजाब में बेटियों के लिए नया फॉर्मूला, पंजाब के लोग दिखा रहे हैं कि केजरीवाल के नए शिक्षा मॉडल की असल हकीकत क्या है। पंजाब BJP ने भी वीडियो को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और लिखा कि छात्राओं के लिए बने शौचालयों की दयनीय स्थिति आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल की खामियों को उजागर कर रही है।
11: शर्म आ रही है, चल वीडियो दिखा दे।
9: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाता है। कुछ लोग इसे अभी का बता रहे हैं और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को देखा। इस दौरान हमें वीडियो की शुरुआत में स्कूल की बिल्डिंग पर पंजाबी में कुछ शब्द देखने को मिले। जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो ये जानकारी सामने आई कि ये जल्ला है और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में जल्ला गांव है। मतलब वायरल हो रहा वीडियो पंजाब का ही है। लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? जब फैक्ट चेक की टीम ने जांच पड़ताल की तो क्या कुछ पाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम एक यूट्यूब चैनल पर पहुंचे। यहां इसे 6 अगस्त 2018 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। साल 2018 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो फतेहगढ़ साहिब के जल्ला गांव के एक सरकारी स्कूल का है और ये वीडियो सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड नाम के एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया था। पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने BJP के दावे का खंडन करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें उस स्कूल का दौरा करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, साफ सुथरे शौचालय और छात्राओं के लिए बने टॉयलेट में सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था दिखाई दे रही है। साफ है कि वायरल वीडियो उस वक्त का है जब आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं थी। हालांकि मौजूदा वक्त की बात करें तो ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके मुताबिक सरकारी दावों के उलट आज भी पंजाब में कुछ स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं तक की कमी है। हालांकि पंजाब ने इस साल नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में केरल को पछाड़कर टॉप रैंक हासिल की है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो साल 2018 का है। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए।

0: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुणे में 22 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं की समस्या भी सुनी और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बात की। इसी से जोड़कर ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पुणे में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में बेटियों की गूंज। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग धड़ल्ले से इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूम रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी था, तो फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए टीम ने सबसे पहले इस वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखा। वीडियो किसी स्टेडियम का लग रहा है जहां पर लोग हाथों में झंडा लिए हुए झूम रहे हैं। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो और 22 अगस्त को पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम की वीडियो की तुलना की तो फर्क साफ नजर आया। इससे यह इशारा मिला कि वायरल हो रहा वीडियो कहीं और का हो सकता है और इसके बाद फैक्ट चेक की टीम को वीडियो में एक जगह मेक्सिको लिखा हुआ नजर आया। साथ ही इस वीडियो में लोगों को मेक्सिको का झंडा लिए हुए भी देखा जा सकता है। ऐसे में हमें वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे के गलत होने का संदेह हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और कार्यक्रम से जुड़े हुए वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है? फैक्ट चेक की टीम की जांच में क्या कुछ सामने आया है इस रिपोर्ट में देखिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक थ्रेड्स अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो मैक्सिको के जोकालो सिटी का है जहां फुटबॉल फैंस मैक्सिको टीम के गोल करने पर जश्न मना रहे थे। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक खेल पत्रकार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर करते हुए बताया गया है कि ये मैक्सिको के जोकालो सिटी में फुटबॉल फैंस के जश्न मनाने का है। प्रोफाइल को खंगालने पर हमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते कई वीडियो भी मिले। जांच के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट को 1 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको ने इक्वाडोर को हराकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई थी। मैक्सिको ने इक्वाडोर को इस मैच में 2-0 से हराया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम के नाम पर वायरल वीडियो मैक्सिको का है। जुलाई 2026 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच हुए फुटबॉल मैच का है जिसमें मैक्सिको ने इक्वाडोर को हरा दिया था। फुटबॉल फैंस इस जीत का जश्न मना रहे थे जिसे अब गलत दावे के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
5: इन दिनों ये बच्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अपने घर के कच्चे आंगन में नंगे पैर खड़ा है। ताज्जुब की बात यह है कि बच्चे ने अपने एक हाथ में केले का गुच्छा पकड़ा हुआ है और दोनों हाथों को पीछे बांध रखा है। इसके बावजूद वो अपनी जांघों, पैरों और सिर के संतुलन से फुटबॉल को लगातार हवा में जगल करता रहता है। गांव के एक साधारण माहौल में बना वीडियो ये साबित करता है कि हुनर किसी सुविधाओं का मोहताज नहीं होता। बच्चे के चेहरे पर न तो कोई झिझक है और न ही एकाग्रता की कमी, वो पूरी मग्नता के साथ नंगे पैरों से फुटबॉल पर ऐसा नियंत्रण दिखाता है जैसा पेशेवर खिलाड़ी सालों के अभ्यास के बाद हासिल करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग बच्चे की कला और एकाग्रता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है, इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी से मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। इस वीडियो में पिंक फ्रॉक पहने एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्ची की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

एक पापा ही होते हैं जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में एक बच्ची हाथ में टेलकम पाउडर लेकर अपने भाई के पास जाती है। वो भाई को पाउडर लगाना चाहती है लेकिन भाई मना कर देता है। फिर बच्ची अपनी माँ के पास जाती है, माँ भी मना कर देती है। फिर बच्ची अपने पिता के पास जाती है, पिता लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। बेटी के हाथ में टेलकम पाउडर देखकर पिता मना नहीं करते हैं और आराम से लगा लेते हैं। ये देखकर बेटी खुश हो जाती है और पिता की गोद में बैठकर खूब मस्ती करती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब देख रहे हैं।

0: पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ में आती हैं। चीन में दो शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: क्या शनि आपको लंबी आयु दे सकते हैं? क्या शनि आपकी आयु को घटा और बढ़ा सकते हैं? शनिदेव का आपकी आयु से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
11: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे 4 और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, जल्द ही काठमांडू पहुंचने वाले हैं चारों भारतीय, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। ब्रिटेन में रह रहे नेपाल मूल के लोगों ने बाढ़ प्रभावित देश के लिए जुटाया फंड, देश की सुख शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। अब पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनियों को बताने होगी नमक, चीनी और फैट की मात्रा। FSSAI ने अदालत में दी अपने हलफनामे में दी जानकारी। खेल दिवस पर युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाली खबर आई सामने। दरभंगा में 200 करोड़ की लागत का स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा तैयार। डे नाइट मैचों का भी हो सकेगा आयोजन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। और अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात नेपाल की। देखिए, मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ भारत खड़ा है। नेपाल में सुरंग रेस्क्यू के लिए भारत ने एक्सपर्ट टीम भेजी है। टनल में रेस्क्यू का 4th दिन है, जहां अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। देखिए, नेपाल ने भारत से सहायता मांगी और उसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के विमान से हमारी एक्सपर्ट टीम वहां पहुंची है। ये टीम टनल रेस्क्यू में एक्सपर्ट है। इसके अलावा नेपाल ने बेली पुल बनाने में भी भारत से मदद मांगी है, जहां भारत नेपाल की हर संभव मदद के लिए बिल्कुल तैयार है।

0: काठमांडू के रनवे पर लैंड करता भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान इस बात का प्रमाण है कि जब विपदा आती है तो भारत फर्स्ट रेस्पोंडेंट बनकर आगे आता है। पड़ोसी देश नेपाल सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की चपेट में है, ऐसे में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ते हैं और नेपाल के काठमांडू में जरूरी सामग्रियां पहुंचाकर वापस आ जाते हैं और फिर अगली खेप की तैयारी में जुट जाते हैं। नेपाल में इस समय जरूरी सामानों का संकट है, आपातकालीन दवाएं, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, ऐसे में भारत एक के बाद एक खेप भेजे जा रहा है ताकि नेपाल के आपदा पीड़ितों की सहायता हो सके। इस मुश्किल वक्त में भारत लगातार राहत और बचाव के काम में जुटा है।
1: भारत से किस तरह की और किस किस लेवल पे असिस्टेंस की उम्मीद नेपाली कम्युनिटी इस वक्त लगातार बैठी है?
2: हम भारत सरकार के प्रति, विशेष करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति भी आभारी हैं कि उन्होंने बहुत ही फास्ट जो

0: एक्शन लिया।
1: नेपाल की इस त्रासदी के बीच विदेशों में बसे नेपाली और भारतीय मूल के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि जुटाई। दक्षिण पूर्वी लंदन के प्लमस्टेड स्थित एक मंदिर में रक्षाबंधन कार्यक्रम को नेपाल के बाढ़ पीड़ितों और बचाव अभियान के लिए फंड जुटाने से जोड़ा गया। यानी नेपाल की त्रासदी के खिलाफ मदद की मुहिम देश की सीमाओं से बाहर भी पहुँच चुकी है। नेपाल की सबसे बड़ी दिक्कत रास्तों के तबाह होने और पुलों के बर्बाद होने से और बढ़ गई है। इसका असर न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पर हो रहा है, कई शहरों और गांवों को अपने पैरों पर फिर खड़ा करने में भी लंबे वक्त तक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए नेपाल ने पुल बनाने और सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी है।
2: साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जो भी हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं, हमारे भारतीय नागरिक को सुरक्षित करने के लिए, और वहाँ पर जो भी हो सकता है नेपाल को भी हम लोग जो सहायता प्रदान कर सकते हैं उनके अनुरोध के हिसाब से वो भी हम कर रहे हैं।
1: नेपाल ने सहायता मांगी तो भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर हिंडन से फिर उड़ा और एक्सपर्ट टीम को काठमांडू पहुंचा दिया। इसमें वो टीम शामिल है जो सुरंग में रेस्क्यू करने में माहिर है। ये टीम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इसके अलावा 11 सदस्यीय मेडिकल टीम भी भारत ने नेपाल भेजी है।
3: आखिरकार नेपाल सरकार ने फैसला लिया है कि वो राहत बचाव कार्य में दुनिया भर की दक्ष जो देश हैं, टीम हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनकी मदद लेगी। हालांकि इसके पहले नेपाल सेना ने कहा कि 2015 में हमने सबक लिया था कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी, बहुत सारी एजेंसियां थी, लेकिन अब जब आंतरिक मंत्रियों की बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि उन देशों को जरूर एजेंसियों को यहां आने देना चाहिए जिनकी विशेषज्ञता है। ऐसे में भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे वो देश हैं जिनके पास एनडीआरएफ, जैसे जैसे भारत के पास एनडीआरएफ है उसकी अपनी दक्षता है। इस समय नेपाल को इन विशेषज्ञों की जरूरत इसलिए है कि जिन टनल्स के अंदर जहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जहां नेपाल की सेना ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस किया है, इसके अलावा डीएनए हो, फॉरेंसिक हो, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो, इन सब प्रक्रियाओं के लिए उसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी।
1: इस त्रासदी से उबरने के लिए हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन कुदरत के अपने ही नियम है, कायदे हैं और उसके आगे सब विवश है। कई इलाकों में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे बचाव अभियान रोकना पड़ रहा है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात अमरनाथ यात्रा की। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक के पहुंचने और अंतिम पूजा अर्चना के साथ 57 दिनों से जारी पवित्र यात्रा का सफलतापूर्वक समापन हो गया। हालांकि खराब मौसम के कारण आम यात्रियों के लिए ये जो यात्रा थी वो कुछ हफ्ते पहले ही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद इस साल लगभग 4,80,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। मुख्य पुजारी और समर्पित साधुओं का एक समूह पवित्र छड़ी मुबारक लेकर पारंपरिक पहलगाम मार्ग से 3 दिन की कठिन यात्रा कर पवित्र गुफा तक पहुंचा। वहां पवित्र छड़ी के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में अंतिम भव्य पूजा की गई। अब मुख्य पुजारी पवित्र छड़ी के साथ पहलगाम में लिद्दर नदी के किनारे स्थित शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। वहां पवित्र छड़ी को रस्मी तौर पर स्नान कराया जाएगा और फिर सुरक्षित रूप से दक्षिणी अखाड़ा शिव मंदिर वापस लाया जाएगा, जहां ये अगले साल की यात्रा शुरू होने तक सुरक्षा के बीच रखी जाएगी।
5: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों से गूंजती अनंतनाग की बर्फीली वादियाँ, जहाँ आस्था का समंदर और भक्ति का शिखर एक साथ नजर आता है। यह है श्री अमरनाथ धाम, भगवान शिव का वो परम धाम जहाँ प्रकृति स्वयं देवों के देव महादेव का हिमलिंग स्वरूप में अभिषेक करती है। अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक सफर नहीं बल्कि भावों की, भक्ति और आत्मिक अनुभवों की परंपरा है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का वो पावन मार्ग है जिसकी मुहिम युगों युगों से चली आ रही है। श्रद्धा, भक्ति और अटूट विश्वास के इस भव्य पर्व का इस वर्ष सफलतापूर्वक समापन हो गया है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच इस साल की अमरनाथ यात्रा का समापन हुआ। श्रावण पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर पवित्र छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा में पहुंची। पवित्र गुफा में एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के अंतिम दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

0: अमरनाथ गुफा की पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही अब की बार जो है इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई है। अब की बार अमरनाथ यात्रा में 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा आज अपने अंत तक पहुंच गई। छड़ी मुबारक जो कि एक रीति है, आज रक्षाबंधन के दिन जो है वो अमरनाथ गुफा ली जाती है और वहां पर इस छड़ी मुबारक की पूजा होती है और उसी के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाती है।
1: छड़ी मुबारक का गुफा में आगमन अमरनाथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव होता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार छड़ी मुबारक भगवान शिव के पवित्र त्रिशूल और उनके आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। ये चांदी की एक छड़ी होती है जो श्री दशनामी अखाड़े से यात्रा के मुख्य पुजारी की अगुवाई में पवित्र गुफा तक लाई जाती है। जैसे ही साधु संतों की अगुवाई में छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा में पहुंचती है, तभी शिव भक्तों के प्रेम श्रद्धा और समर्पण की प्रति अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। ऐसी मान्यता है कि जब तक छड़ी मुबारक पवित्र गुफा में नहीं पहुंचती, तब तक अमरनाथ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। ये छड़ी केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि साक्षात शिव भक्ति के समागम का अनुभव कराती है।
0: अब की बार जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए राहत की सबसे बड़ी बात ये थी कि अब की बार यात्रा न सिर्फ सफल रही बल्कि सुरक्षित भी रही। बिना किसी घटना के अब की बार इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है वो संपन्न हो गई है, जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी राहत की सांस ले ली है। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ मानी।
2: दिल्ली के सांस्कृतिक मंच पर एक बार फिर भक्ति प्रेम और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। राजधानी के सबसे फेमस कमानी ऑडिटोरियम में डांस ड्रामा कृष्ण एक बार फिर परफॉर्म किया जा रहा है। 5 दशक का सफर पूरा कर चुके इस चर्चित डांस ड्रामा का मंचन जन्माष्टमी तक यानी कि 4 सितंबर तक किया जाएगा। इस विशेष 50वें वर्ष के संस्करण में कृष्ण के गोकुल और वृंदावन के दिनों से लेकर राधा कंसवत और महाभारत के विराट प्रसंग तक की कथा मंच पर उतारी जाएगी।

0: घुंघरुओं की झंकार, रंगों की फुहार, मंच पर साक्षात उतरते भगवान द्वारकाधीश। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध कमानी ऑडिटोरियम की हैं, जहां रामलीला के तर्ज पर मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का भव्य आगाज हो चुका है। भक्ति और कला के अद्भुत संगम से भरपूर 50 सालों से चला आ रहा मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर से लौट आया है। अपने 50 साल पूरे करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू रहा ये शो कृष्ण जन्माष्टमी यानी 4 सितंबर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है।
1: तो सब जानते हैं भारतीय जनता केंद्र का, ये पहली बार किया हमने करीब 20-25 साल पहले। हम चाहते थे कि लोगों को मालूम हो कृष्ण की जिंदगी के बारे में, तो अब वो चीज ही नहीं है कि जो लोग जाते हमने वो रखे। जो लोग नहीं जाते, उदाहरण के लिए जैसे गांधारी का शाप इत्यादि बहुत सारे, और दायकों और बायकें स्टेज में उसमें इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन है, जिसे अगर लोग हिंदी ना समझ पाए तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद है।
0: इस डांस ड्रामा में दर्शक न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की मनमोहक झलकियां देखेंगे, बल्कि कृष्ण जन्म से लेकर बाल लीला, अलौकिक रास लीला और महाभारत में गीता के सार तक जीवन के हर पहलू का ज्ञान सीख सकेंगे।

0: पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन और शशिधरन नायर की कोरियोग्राफी में तैयार ये शो कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत की गीता सार तक का सफर तय करता है। शास्त्रीय नृत्य, अद्भुत सेट और लाइट इफेक्ट्स, हाथ से बनी भव्य पोशाकें और अनूठे लाइफ स्टेज डिजाइन का एक ऐसा संगम जो दर्शकों को सीधा द्वापर युग में ले जाता है।
1: बैंड जो है ये पूरे श्री कृष्णा की कथा 2 घंटे 15 मिनट में बताती
2: है।
1: पूरा ट्रेडिशनल फॉर्म में है, वो ट्रेडिशनल नहीं जो हम बरसाना में या नौटंकी टाइप का देखते हैं। ये पूरा क्लासिकल डांस नृत्य संरचना है, डांस ड्रामा है। इसमें हम कृष्ण जी के जन्म से उनके विश्व रूप तक दिखाते हैं, तो इसमें हम महाभारत भी दिखाते हैं, क्योंकि महाभारत में जो भगवद गीता का उनका उच्चारण था, जो कृष्ण उन्होंने सिखाया, जो हम आजकल के चाहते हैं कि हम भगवद गीता को आज के दिन में उसको हम अडॉप्ट करें, वो हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं।
0: आज के आधुनिक दौर में युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जीवन के मूल्यों से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। 4 सितंबर तक चलने वाला ये सांस्कृतिक महाकुंभ इस जन्माष्टमी को और भी खास बनाने के लिए तैयार है। अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति, कला और ज्ञान के इस अनूठे अनुभव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम आपका इंतजार कर रहा है। तो देखिए, 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ऐसे में देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। देखिए, सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि द्वारका तक कृष्ण कन्हैया बंशी विजया के जन्म पर बधाइयां जो हैं वो एक दूसरे को दी जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, खास तौर पर मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी बिक्री शुरू हो गई है।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निशित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत्व उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है, लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं, जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए, फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑटम मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हुए आएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहां पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक बजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ अच्छे सच्चे खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
5: क्या शनि आपको लंबी आयु दे सकते हैं? क्या शनि आपकी आयु को घटा और बढ़ा सकते हैं? शनिदेव का आपकी आयु से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
7: नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि शनिदेव का आपकी आयु के साथ, आपके एज के साथ क्या संबंध है, और शनि की पूजा करके, उपासना करके आप अपनी आयु को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:36 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में, और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आपकी आयु के बारे में और शनि के संबंध के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि शनि का आपकी आयु से क्या संबंध है। देखिए, किसी व्यक्ति का जो प्राण है वो सूर्य है और चंद्रमा उसका मन है। शनि इस प्राण को और इस मन को जोड़ कर रखता है, क्योंकि प्राण और मन जुड़ेगा तभी जीवन शुरू होगा, और शनि इस प्राण और मन को जोड़े रखता है। इसीलिए शनि किसी व्यक्ति की आयु को घटा भी सकता है और किसी व्यक्ति की आयु को बढ़ा भी सकता है। शनि ही व्यक्ति की आयु और जीवन के अंत का और शुरुआत का कारण बनता है। दुनिया में किसी का भी जन्म हो, बिना शनि के प्रभाव और बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के किसी का भी जन्म नहीं हो सकता। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, वाद विवाद से सावधान रहें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शुभ समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आपने ये तो समझ लिया कि शनि देव का आपके आयु से क्या संबंध है। अब शनि किस प्रकार से आपके आयु पर और आपके जीवन पर असर डालता है? अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है निगेटिवली, तो ये तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। अगर शनि बुध और चंद्रमा से संबंध रखता है तो लंबी बीमारी का, मानसिक बीमारी का कारण बनता है। केतु और मंगल पर जब शनि आयु के लिए असर डालता है तो दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है। बृहस्पति और शनि जब आयु के लिए असर डालते हैं तब गंभीर बीमारी से मृत्यु होती है। राहु और शनि जब मृत्यु का कारण बनते हैं तो ये सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ, आत्महत्या की तरफ ले जाता है। यानी शनि से अलग अलग ग्रहों का संबंध जीवन में अलग अलग तरीकों से मृत्यु की स्थिति के बारे में बताता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब शनि जीवन में लंबी आयु देता है। अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों फेवरेबल पोजीशन में हो, चर राशियों से इनका संबंध हो, तो आयु लंबी होती है। अगर बृहस्पति केंद्र में मजबूती से बैठा है और शनि पर ज्यादा पाप प्रभाव नहीं है तो भी आयु लंबी होती है। अगर शनि और बृहस्पति दोनों कुंडली में अनुकूल हों, दोनों कुंडली में फेवरेबल हों, तो ये आयु को लंबा कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त हो और सदाचारी हो, सन्मार्ग पर चलता हो, तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर किसी व्यक्ति पर सद्गुरु की कृपा हो, क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं वो विधाता के विधान को बदल सकते हैं, तो अगर व्यक्ति पर किसी सद्गुरु की कृपा हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर आपकी कुंडली में आयु पर संकट हो या कोई खराब दशा चल रही हो जिसमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता हो, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल की वृक्ष की जड़ में जल डालें, सुबह के समय शिव जी या कृष्ण जी के मंत्रों का जप करें और सबसे अच्छा होगा अमृत मृत्युंजय ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का जप करें। शाम के समय शनि देव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। माता पिता के नित्य प्रातः चरण स्पर्श करें, निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करें। मैं आपको फिर बता दूं कि जो व्यक्ति अपना आचरण शुद्ध रखता है, दूसरों की सहायता करता है, भगवान शिव या भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, शनिदेव उसके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पड़ोसियों से समस्या हो सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में शनि की अशुभ दशा चल रही है तो शिव जी या श्री कृष्ण की उपासना आप नियमित रूप से करिएगा, आपको राहत मिलेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल रोली मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा। लोटे के किनारे लगी हुई रोली अपने माथे पर लगा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: शादी हर किसी की जिंदगी का वो खास मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन आगर मालवा की सलोनी जैन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ एक नेक संदेश भी दिया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चों में कटौती कर बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना तैयार करवाया। इस आशियाने में परिंदे रह सकते हैं जो उन्हें धूप, हवा और ठंड से बचाता है। तालाब किनारे बनाई ये अनोखा आशियाना अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सलोनी की ये पहल शादी की खुशियों के साथ प्रकृति प्रेमियों की खूबसूरत मिसाल भी उनके लिए पेश कर रही है।
7: तालाब किनारे खूबसूरत रंगों से सजा ये आशियाना दूर से ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। कुछ फीट ऊंचा ये आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहां परिंदों के लिए एक के ऊपर एक 6 मंजिलों में कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए हैं। इस आशियाने में छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, जबकि बड़े परिंदों के लिए थोड़े बड़े दरवाजे। हर मंजिल पर एक छत भी बनाई गई है।
8: आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग अपने विवाह कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर आगर मालवा की सलोनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उसने अपने विवाह के खर्च से कटौती करके बेजुबान पक्षियों के लिए आगर में स्थित मोती सागर तालाब के किनारे एक आशियाना बनाया है। सलोनी चाहती है कि जो बेजुबान पक्षी हैं, जो परेशान होते हैं, मौसमों की मार झेलते हैं, वो इस आशियाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
7: आगर मालवा की बेटी सलोनी जैन ने अपनी शादी के मौके पर इस अनोखे आशियाने का निर्माण करवाया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चे में कटौती कर ये पहल की ताकि बेजुबान परिंदों को भी अपना घर मिल सके।
9: मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तालाब किनारे रहती हूँ, बहुत सारे पक्षियों को देखती हूँ। ठंड में बहुत परेशान होते हैं वो, बारिश में उनके तेज हवा आंधी तूफान से घोंसले गिर जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। इतने सारे पक्षी हैं, उनके लिए मन में ऐसा लगता है कि ये परेशान हो रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इच्छा मन में जागृत हुई कि हम जो लाखों का खर्चा अपनी शादी में करते हैं सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, उस पैसे से हम वो काम कर सके जो किसी की जिंदगी के लिए थोड़ा सा हितकारी हो सके। मैंने बस वही प्रयास किया।
10: सलोनी की इस पहल के जरिए समाज को प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। यही वजह है कि सलोनी की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना भी हो रही है।
9: ये 6 मंजिला पक्षी घर है जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना आशियाना बना सकते हैं, घोंसले बना सकते हैं, उनका जब मन आए तब वो आके रह सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनको एक सेफ रहने के हिसाब से इस चीज़ को बनाया गया है। ये एक पिंजरा नहीं है, इसमें वो बिल्कुल भी कैद नहीं होंगे।
10: तालाब किनारे की ये जगह पक्षियों के लिए अनुकूल पाई गई और इसी सोच के साथ यहाँ बेजुबान परिंदों के लिए ये खूबसूरत आशियाना तैयार हुआ। राजस्थान और गुजरात से आए कारीगरों ने इस आशियाने को तैयार किया है।
11: जो बनाने का लक्ष्य है उसको पिंजरा नहीं बनाया गया है, पक्षी जब चाहे आएगा, उड़ाएगा, रहेगा और चला जाएगा, वो रात में रुकेगा। ये उसका एक आशियाना है, उसका एक आश्रय स्थल है, निवास रहेगा उसका, किंतु वो पिंजरा नहीं।
10: अपनी इस पहल से सलोनी ने अपनी शादी को खास बना दिया। आगर बालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
12: बस देखते जाइए, इनकी हरकतें पूरी मौज में हैं। इन्हें पता है कि लोग यहाँ उन्हें ही देखने आए हैं, सो पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। फोटो क्लिक करनी है तो करो ना, मैं पोज दे तो रहा हूँ। नन्ना हाथी सैलानियों के सामने जिस तरह से अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, जानवर के हों या इंसान के, ऐसी शरारतें करते क्यूट ही लगते हैं। नन्ने हाथी का ये अंदाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। पेड़ में लगा ये फल इन्हें चाहिए, लेकिन ये है कि हाथी नहीं आ रहा। कोशिश पूरी है, कभी मुंह से कभी हाथ से। ये लोहे का बैरियर न होता तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही कहाँ है। डॉगी जिस तरह से उस फल को खाने के लिए बेसब्र दिखता है और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, वो देखना दिलचस्प है। लगता है स्कूल में कोई फंक्शन है, अब सुंदर तो दिखना पड़ेगा, पर घर में क्रीम लगाना भूल गई शायद। बाइक में लगा आईना देखा तो एकदम से याद आया, या फिर शायद घर में क्रीम लगाने की मनाही हो। मसला चाहे जो भी हो, सड़क पर जिस तरह से हाल हो रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे को नहीं पता था कि उसे आईने के अलावा भी कोई देख रहा है। जैसे ही नजर कैमरे पर पड़ी शर्मा गई। बच्चे के इस नेचुरल मुस्कान पर लोग दिलहार रहे हैं। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन दोनों ही माँ पापा के पैसों पर डिपेंड है तो यही होता है। बहन ने भाई को राखी बांधी, गिफ्ट मांगा तो भाई ने माँ की तरफ देखा। माँ ने पैसे दिए तो सही, लेकिन बहन के हाथ में आते ही फिर लपक लिया। आखिर इस छोटी सी उम्र में पैसों का करोगी क्या, संभाल कर रख देंगे हम, ये तो चीटिंग है ना। बच्चों का चेहरा देखिए जरा, मासूम बेचारे। ये वीडियो लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की,
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
14: नेपाल में हाइड्रो पावर टनल में फंसे चार और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, जल्दी काठमांडू पहुंचने वाले हैं चारों भारतीय, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट, 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CSIR UGC नेट जून 2026 का रिजल्ट कर दिया है जारी, 1.5 लाख छात्रों का इंतजार खत्म, NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं रिजल्ट। अब पैकेज फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनी को बताना होगा नमक, चीनी और फैट की मात्रा के बारे में, FSSAI ने अदालत में दी अपने हलफनामे में दी इसके बारे में जानकारी। खेल दिवस पर युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाली खबर आई सामने, दरभंगा में 200 करोड़ रुपए की लागत का स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा तैयार, डे नाइट मैचों काफी हो सकेगा इससे आगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आज

0: रफेल एक ऐसा नाम जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी परेशान रहता है। रफेल की ताकत और तकनीक ही कुछ ऐसी है कि रण क्षेत्र में दुश्मनों को तबाह करके ही दम लेता है। रफेल की बेमिसाल खूबियां ही सबसे बड़ी वजह है कि दुश्मन रफेल के रण कौशल को डिकोड करने की कोशिश में लगा रहता है। खबर है कि चीन रफेल के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है ताकि रफेल की बारीकियों को समझा जा सके।
1: चीन और मिस्र के बीच ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 का आयोजन किया गया है। ये एक्सरसाइज मिस्र में हो रही है जिसमें चीन के J-16 फाइटर जेट सीधा रफेल के साथ कॉम्बैट ऑपरेशंस कर रहे हैं। क्या इसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि चीन रफेल की क्षमताओं को परखना चाहता है? क्या चीन रफेल के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए ही इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का हिस्सा बना है?
0: 23 अगस्त को चीन मिस्र संयुक्त एयर एक्सरसाइज में J-16 और रफेल आमने सामने आए। इस एक्सरसाइज में चीन के J-16 और मिस्र के रफेल के बीच कॉम्बैट ट्रेनिंग हुई। ये पहली रिपोर्टेड ट्रेनिंग थी जिसमें किसी चीनी फाइटर ने रफेल के साथ सीधे कॉम्बैट ड्रिल में हिस्सा लिया। इस मिलिट्री ड्रिल में पूरा युद्ध जैसा ही सीन था। एक और चाइनीज J-16 गरज रहे थे तो दूसरी तरफ रफेल जेट्स।
1: दरअसल मिस्र में चीन के फाइटर पायलट्स वहां की सेना और रफेल के साथ सीधे तौर पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं जिसमें पहली बार चीन के पायलट्स किसी पश्चिमी देश में बने 4.5 जेनरेशन के रफेल फाइटर जेट के साथ अभ्यास कर रहे हैं और उसकी बारीकियों को जानने समझने की कोशिश की जा रही है।
0: ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे युद्धाभ्यास के जरिए चीन को रफेल की क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हवाई युद्ध की रणनीतियों को समझने का मौका मिल सकता है?
2: जो चाइना और इजिप्ट की एक्सरसाइज हो रही है, एक लंबी एक्सरसाइज, और इसका नाम दिया गया है ईगल ऑफ सिविलाइजेशन 2026। ये दिखाता है कि दो सिविलाइजेशन की एक्सरसाइज, इजिप्ट की भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, सो इज चाइना, तो इसका नाम बड़ा ही एप्ट रखा है। अब दो बड़े प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट, एक राफेल जो 4.5 जनरेशन है और साथ में F-16 वो भी 4.5 जनरेशन, बहुत सिमिलरिटी है दोनों में, जिस तरीके से डीप स्ट्राइक करते हैं, जिस तरीके से बियॉन्ड विजुअल रेंज स्ट्राइक करते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं। तो जब दोनों एक साथ हवा में उड़ेंगे और जब एक्सरसाइज करेंगे तो उससे दोनों देशों को पता लगेगा विच एयरक्राफ्ट इज बेटर। हालांकि दोनों की कैपेबिलिटी अलग अलग है, किस तरीके से आप उसको कॉम्बैट एयर में इस्तेमाल करते हैं ये देखना होगा।
0: भारतीय वायुसेना ने LSC पर रफेल को तैनात कर रखा है जो चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि चीन वॉर एक्सरसाइज के

0: सबसे पहला है रफाल का एरोडायनामिक्स और युद्ध क्षमता जानना, जिसमें रफाल का टर्न रेट यानी कि ये हवा में कितनी तेजी से मुड़ सकता है, क्लाइंब रेट क्या है और ये क्लोज रेंज डॉग फाइट में रफाल कितनी ऊर्जा बरकरार रखता है। दूसरा है रफाल का बेसिक रडार सिग्नेचर पता लगाना। चीन के J-16 के ऐसा रडार मिस्र के रफाल का रडार क्रॉस सेक्शन डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, जिससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि रफाल उनके रडार पर कितनी दूरी से दिखाई दे सकता है। और तीसरा, पश्चिमी युद्ध रणनीति। मिस्र की वायुसेना फ्रांसीसी और अमेरिकी युद्ध शैलियों का पालन करती है। इसके खिलाफ लड़कर चीनी पायलट पश्चिमी वायुसेनाओं की हवाई रणनीतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक चीन के फाइटर जेट्स का मुकाबला केवल ब्रिटिश और रशियन मूल के फाइटर जेट्स के साथ ही हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे खुद चीन एक मौके के तौर पर देख रहा है, जहां पर मिस्र में इस अभ्यास में उसे किसी पश्चिमी देश, खास तौर पर फ्रांस के लड़ाकू विमान रफाल के साथ सीधे एक्सरसाइज करने का मौका मिला। रक्षा जानकारों का मानना है कि एक युद्ध अभ्यास से रफाल की सभी क्षमताओं या कमजोरियों का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन चीन के लिए इसकी अहमियत जरूर है। पहली बार J-16 को रफाल के खिलाफ सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट का प्रत्यक्ष अनुभव मिला है और यही अनुभव भविष्य की ट्रेनिंग और टैक्टिक्स को प्रभावित कर सकता है। चीन रफाल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मेटियोर मिसाइल के रडार सिग्नेचर को बारीकी से ट्रैक कर रहा है। ऐसा करने से चीनी डिफेंस सिस्टम को रफाल में लगी मिसाइलों को जाम करने या फिर उन्हें चकमा देने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।
1: देखिए, चाइना जब किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करता है, जब भी कोई जॉइंट एक्सरसाइज करता है, उसके कई सारे मैनी फोल्ड एम्स होते हैं। सबसे बड़ा एम तो यह है कि विश्व में वो J-16 का मार्केट खोज रहा है। दूसरी तरफ वो जब रफाल के साथ उड़ेगा तो रफाल की कमियों को वो नोटिस करेगा और अपने सिस्टम में वो सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करेगा, और साथ में हिंदुस्तान के पास आज की डेट में रफाल है तो इन सारी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मकसद तो एक यही है कि रफाल के कंपटीशन में J-16 को पिच करके अपने वर्ल्ड में मार्केट पकड़ना, और दूसरा, अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कभी उसको ऑपरेशनली कमिट करना पड़ा J-16, तो वो रफाल को कैसे काउंटर करेगा, ये इसका अल्टीरियर एम है।
0: रफाल विमान का स्पेक्ट्रा यानी सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू काउंटर थ्रेट्स फॉर रफाल एयरक्राफ्ट एक बेहद उन्नत और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो रफाल लड़ाकू विमान को दुश्मन के खतरों के खिलाफ अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करता है। स्पेक्ट्रा कैसे काम करता है और इसकी खासियत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रा से रफाल को 360 डिग्री सुरक्षा और डिटेक्शन मिलती है। मल्टी स्पेक्ट्रल वार्निंग के जरिए ये विमान के चारों तरफ और 360 डिग्री की कवरेज देता है। लंबी दूरी से ही दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेजर और इंफ्रारेड खतरों को समय रहते भापा जा सकता है। दुश्मन का रडार या मिसाइल किसी दिशा से आ रहे हों, यह उसकी सटीक लोकेशन पायलट को बताता है। स्पेक्ट्रा के जरिए आक्रामक और रक्षात्मक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार जैमिंग, स्मार्ट डिकॉय, एक्स गार्ड डिकॉय के जरिए रफाल की सुरक्षा तय होती है। रडार जैमिंग के लिए रफाल में एक्टिव फेज्ड एरे रडार जैमर्स लगे हैं, जो दुश्मन के रडार सिग्नल्स को जाम कर सकते हैं। स्मार्ट डिकॉय में ये सिस्टम इंफ्रारेड फ्लेयर्स और चाफ छोड़ता है, ताकि थर्मल या फिर रडार गाइडेड मिसाइल मिसगाइड होकर रफाल के बजाय नकली मशीनों पर वार कर दें। एक्स गार्ड डिकॉय में एडवांस टोड डिकॉय सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये स्मार्ट बॉडी डबल या छलावे के रूप में काम करता है। उड़ान के दौरान जरूरत पड़ने पर एक्स गार्ड डिकॉय का इस्तेमाल होता है, जिसमें एडवांस टोड डिकॉय को विमान के पीछे 100 मीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए हवा में छोड़ दिया जाता है। एआई की मदद से डिकॉय हूबहू उसी लड़ाकू विमान के रडार क्रॉस सेक्शन, डॉपलर वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की नकल करता है, जिससे दुश्मन के रडार और मिसाइल ट्रैकर भ्रमित हो जाते हैं और वो असली लड़ाकू विमान के बजाय डिकॉय को ही असली विमान मानकर उस पर लॉक कर देते हैं।
1: देखिए, एक्स गार्ड डिकॉय एक ऐसा सिस्टम है जो कि रफाल एयरक्राफ्ट

0: में इनकॉर्पोरेट किया गया। जब एयरक्राफ्ट किसी मिशन में जाता है या बियॉन्ड विजुअल रेंज से किसी मिसाइल को लॉन्च करता है और कहीं हवा में उसको ये महसूस होता है कि दुश्मन के रडार ने उसको लॉक कर लिया या दुश्मन के एयरक्राफ्ट ने, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ने उसके ऊपर मिसाइल डालने के लिए उसको लॉक कर रखा है, ऐसे समय में एक्स गार्ड डिकॉय को वो रिलीज करता है। एक्स गार्ड डिकॉय कुछ नहीं बल्कि 100 मीटर लंबा फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू एक डिकॉय सिस्टम है जिसका कि वजन 30 केजी होता है। वो 100 मीटर दूर एक स्टिंग आप समझ लीजिए उससे जुड़ा हुआ वो हवा में आता है। तो जब वो एयर में इस तरीके से उड़ता है तो जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट की लोकेशन है वो डिकॉय रडार पे दिखाता है, और जो मिसाइल जो लॉकिंग की हुई है आज की डेट में, जब वो हवाई जहाज के नजदीक आती है तो उस डिकॉय को डिस्ट्रॉय करती है।
1: स्पेक्ट्रा में एक सेंट्रल मैनेजमेंट यूनिट होता है यानी कंप्यूटर यूनिट, जो सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में जोड़ता है। खतरा दिखने पर यह सिस्टम बिना किसी देरी के पायलट को सबसे सटीक पैतरेबाजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक जवाबी कार्रवाई करने का सुझाव देता है। आसान भाषा में अगर स्पेक्ट्रा को समझना हो तो सीधे तौर पर यह एक तरीके से राफेल के रक्षा कवच के तौर पर काम करता है। हवा या फिर जमीन से आने वाले किसी भी खतरे को यह भटका सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस ने हाल ही में स्पेक्ट्रा के नए F4 वर्जन को और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश शुरू कर दी है। दुनिया को पता है कि चीन और पाकिस्तान का रक्षा गठजोड़ कितना गहरा है। चीन राफेल के खिलाफ हवाई युद्ध से जो भी डेटा और खुफिया जानकारियां जुटा रहा है उसे वो पाकिस्तानी वायुसेना के साथ साझा भी कर सकता है, और इससे पाकिस्तान को भी भारतीय राफेल से निपटने की रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है। चीन और पाकिस्तान का रक्षा गठजोड़ इतना गहरा है कि दोनों देश इसे आयरन ब्रदर्स और ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहते हैं। ये सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है बल्कि संयुक्त हथियार विकास, खुफिया जानकारी साझा करने, परमाणु सहयोग और रणनीतिक सैन्य अड्डों तक फैल चुका है, जिसका अहम मकसद भारत को घेरना है।
0: आसिम मुनीर कई बार चाइना के विजिट कर चुके हैं और चाइना पाकिस्तान को अपना एक स्ट्रेटजिक पार्टनर मानता है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान को उसने स्लेव बना रखा। सीपैक और बीआरआई के प्रोजेक्ट बहुत ही तेजी से पाकिस्तान में चल रहे हैं और साथ में ये डिफेंस टाई, मकसद एक है कि तमाम चीजों का एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाइना इस एक्सरसाइज से गैदर कर रहा है या अदरवाइज गैदर कर रहा है उसका वो शेयरिंग पाकिस्तान से जरूर करता है, और पाकिस्तान को अपने हथियार बेचता है, J-16 बेचता है, तमाम तरीके के 5th जनरेशन या 6th जनरेशन जो J-सीरीज के एयरक्राफ्ट है वो भी बेचने की बात है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को वो इस फ्रंट पे उलझा के रखना चाहता है।
1: सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का 70% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन से आता है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक J-10CE फाइटर जेट दिए हैं जिन्हें पाकिस्तान भारत के राफेल के मुकाबले तैनात करता है। चीन पाकिस्तानी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसके तहत टाइप 054 AP जियांगकाई 2 क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और हैंगर क्लास टाइप 039B पनडुब्बियां शामिल हैं जो समुद्र में भारत की घेराबंदी के लिए हैं। पाकिस्तानी सेना चीन में बने BT-4 मेन बैटल टैंक और SH-15 होवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर रही है। चीन सिर्फ हथियार बेचता नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलकर उनका निर्माण भी करता है, जिससे पाकिस्तान आत्मनिर्भर दिखने की कोशिश करता है। आधुनिक युद्ध रणनीति में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। चीन अपने सैटेलाइट जैसे ब्यूडो नेविगेशन सिस्टम के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता है। हाल के वर्षों में चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और रडार को चकमा देने वाली तकनीकों जैसे होलोथीरियन एंटी रडार डिकॉय सिस्टम पर एक साथ काम करना तेज कर दिया है। दोनों देशों की सेनाएं साल भर उच्च स्तरीय अभ्यास करती हैं, जिससे दोनों की युद्ध प्रणालियां आपस में पूरी तरह से घुल मिल गई हैं। यानी दो दुश्मनों की सांठगांठ भारत के लिए खतरा पैदा करती है। और अब मिस्र में राफेल के साथ J-16 के एक्सरसाइज से पाकिस्तान की नजरें भी चीन पर ही टिक गई हैं। वैसे देखा जाए तो चीन मिस्र में राफेल के साथ जिस एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है उसमें इसके बुनियादी ढांचे को परखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ये बात भूल रहा है कि वो राफेल के बाहरी ढांचे को तो परख सकता है लेकिन उसकी आत्मा को परखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भारत के पास जो राफेल है वो मिस्र के राफेल से बहुत अलग है। इसीलिए चीन के लिए राफेल को, खास तौर पर भारतीय राफेल को डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। चीन मिस्र के राफेल का डाटा ले रहा है, लेकिन भारतीय राफेल फिर भी सुरक्षित है। भारत ने इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड्स यानी कि भारत ने फ्रांस से जो राफेल खरीदे हैं उनमें 13 विशेष बदलाव करवाए हैं, जिसमें कोल्ड स्टार्ट क्षमता, खतरनाक हथियारों का पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार और ट्रैकिंग समेत कई तकनीकें जोड़ी गई हैं। लद्दाख और अरुणाचल जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज में युद्ध के नियम काफी हद तक बदल जाते हैं। यहाँ पर विमान की एक्चुअल कागजी स्पीड काम नहीं करती है, यहाँ काम करती है विमान की पेलोड क्षमता और कोल्ड कैपेसिटी, यानी कितने भारी मात्रा में विमान हथियारों को ले जा सकता है हाई ऑल्टीट्यूड। राफेल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है, जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट पर भारी पड़ने का मादा रखता है।
0: राफेल एक ऐसा डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो हाई अल्टीट्यूड में भी काम करता है। ये इसका ऑपरेटिंग रेट 50,000 फीट है, और 50,000 फीट से ऊपर से अगर कोई ये उड़ सकता है, अपनी काबिलियत रखता है, तो ये तमाम टारगेट को, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे अरुणाचल हो या हाई अल्टीट्यूड एरिया, उसमें वो स्ट्राइक कर सकता है। और साथ में इसके मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज पर आप लॉन्च करते हैं, साथ में इसका डिकॉय सिस्टम जो इसको इनहेरेंट सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो एक बड़ा ही वर्सटाइल प्लेटफॉर्म है। हमें 4.5 जनरेशन के इस तरीके के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। इसकी संख्या और बढ़ेगी, जैसे कि हम पाकिस्तान और चाइना अगर दो फ्रंट वॉर लड़ना पड़े तो उसके लिए भी हम सक्षम हो।
1: भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए राफेल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है, जो भले ही फिफ्थ जेनरेशन ना हो, लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर फिफ्थ जेनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के राफेल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का राफेल 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है। J-20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं राफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J-20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J-20 हथियार अंदर छिपाता है, जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं राफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9,500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह राफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J-20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है, जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वही राफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ राफेल का पलड़ा भारी है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J-20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। राफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J-20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। राफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है, जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। राफेल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J-20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J-20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J-20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। राफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड, इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J-20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि राफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। राफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J-20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है। यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J-20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J-20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J-20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
2: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रडार से ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: रण क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है।
1: राफेल से चीन की बोलती इसलिए भी बंद है क्योंकि राफेल को हमने ऐसी जगह पर तैनात कर रखा है जहां से चीन को निशाने पर लेना आसान है। भारत के पास 36 राफेल फाइटर प्लेन हैं, एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है जबकि दूसरे की तैनाती पश्चिम बंगाल के हासेमारा बेस पर की गई है। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंबाला एयरबेस रणनीतिक महत्व का स्क्वाड्रन रहा है जो दिल्ली में वेस्टर्न एयर कमांड के अधिकार में आता है। फरवरी 2019 में पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मिराज ने अंबाला एयरबेस से ही टेक ऑफ किया था, ये उड़ान भरी थी। और इसके अलावा करगिल युद्ध में भी हमने देखा कि किस तरीके से अंबाला एयरबेस ने एक बहुत बड़ी और एक अहम भूमिका निभाई थी। और यहीं पर राफेल का स्क्वाड्रन भी है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अंबाला एयरबेस चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, दोनों की दूरी यहां से 200 किलोमीटर है, यानी अंबाला एयरबेस से एक साथ दोनों को एक समय में टारगेट किया जा सकता है।
5: एयरबेस की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा इसलिए बन जाती है, इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि ये हमारे वेस्टर्न और नॉर्दर्न जो एडवर्सरीज है यानी पाकिस्तान और चाइना, उन दोनों के ऊपर मार रखने की यहाँ से हमारे फाइटर जेट जो हैं वो क्षमता रखते हैं। ये तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर है ताकि हमें इतना डिफेंस का टाइम मिल जाए कि इन केस ऑफ एडवर्सरी अटैकिंग अस हम उसकी तैयारी कर सकें। और ये इंडिया का पहला, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एयरबेस है जहाँ इंडियन एयरफोर्स है और हेडक्वार्टर दो कोर आर्मी की वो भी है। ये यहीं से 18 स्क्वाड्रन जो है, जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखों ने जाके श्रीनगर के ऊपर अटैक किया था और उनको पहला परमवीर चक्र जो इंडियन एयरफोर्स में मिला वो उनको मिला था। यहाँ पर मिग, जागुआर और अभी रिसेंटली जैसे सबको पता है कि यहाँ पर हमारे राफाल जो हैं वो भी यहीं पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर शामिल हुए हैं।
1: अम्बाला एयरबेस पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के नजदीक है। अम्बाला एयरबेस पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। वहीं चीन की सीमा से भी इसकी दूरी 200 किलोमीटर है। अम्बाला एयरबेस से 300 किलोमीटर दूर पर लेह के ठीक सामने चीन का गरगुसा एयरबेस है जो राफेल के टारगेट पर आता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो फिर चीन का पछलग्गू रहा पाकिस्तान भी दूसरी तरफ से भारत पर हमला बोलकर मुसीबतें बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को दो अलग मोर्चे बनाने से बेहतर है कि एक बड़ी यूनिट के तौर पर रणनीति बनाई जाए।
5: टू फ्रंट वार की बात काफी देर से चल रही है पर अभी ये एक रियलिटी बन गई है। और लॉन्ग टाइम बैक महान जेआरडी टाटा को जब उनको एक दिया गया सर्वे करने को और एक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने कहा कि इंडिया को टू फ्रंट वार के लिए तकरीबन 66 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है पर भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन जो अप्रूव किए। अभी हमारे पास 33 स्क्वाड्रन हैं जिसमें से दो स्क्वाड्रन जो हैं जैसे आप जानते हैं रफाल के हैं, मिग के हैं, मिग 29 के हैं, सू के हैं, SU-30 के हैं, SU-35 भी है। तो ये टू फ्रंट वार के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल भूमिका अम्बाला एयरबेस की रहेगी।
1: पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती की गई है और ये वो इलाका है जहां से देश की पूर्वी सीमा पर पुख्ता निगरानी का इंतजाम हो सकेगा। साथ ही चीनी सीमा पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। हासीमारा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यहां से एक साथ सेंट्रल और ईस्टर्न तिब्बत में चीन पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही चीन के एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन पर निगाहें रख सकते हैं। वहीं डोकलाम पर नजर रखना भी आसान होगा। डोकलाम में भारत चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद रहा है। सबसे खास बात यह है कि हासीमारा पर राफेल की तैनाती के साथ चीन के शिकात्से एयरबेस के ऑपरेशंस पर भारत 21 साबित हुआ है। शिकात्से एयरबेस को 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद ही खड़ा किया गया था। शिकात्से के नजदीक ही चीन ने गारीगुसा में एक सर्फेस टू एयर फैसिलिटी भी तैयार कर रखी है। ऐसे में चीन की बढ़ती पावर को काउंटर करने के लिए हासीमारा में राफेल के और स्क्वाड्रन की तैनाती अचूक दाव साबित होगा।
5: हासीमारा एयरबेस जो है वो वेस्ट बंगाल में है और ये 1962 की भारत चीन लड़ाई के बाद एस्टेब्लिश किया था। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये चुंबी वैली जो कि इंडिया भूटान और तिब्बत के कोने पर है वहाँ पर ये चाइना को देखने के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वहाँ राफाल के दो स्क्वाड्रन जो हैं वो भारत की शक्ति को बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करेंगे।
1: भारत हमेशा से लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से करता आया है। आज भी भारत की वायुसेना में रूस के बने विमान MiG-27 और Sukhoi-30 जैसे विमान शामिल हैं। रूस से सुखोई खरीदने के 23 साल बाद भारत ने राफेल जैसा कोई बड़ा रक्षा सौदा किया था जो आज कामयाबी की किताब में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने खुद को अपग्रेड करने के लिए साल 2007 में मल्टी रोल फाइटर जेट्स के टेंडर निकाले थे जिसमें तमाम मुल्कों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। अमेरिका की तरफ से F-16 की दावेदारी पेश की गई, F-22 की दावेदारी पेश की गई। रूस की बात करें तो रूस ने अपने MiG-21 की दावेदारी पेश की थी। इसी तरीके से यूरोप ने यूरो फाइटर्स की दावेदारी पेश की, फ्रांस ने राफेल की दावेदारी पेश की, लेकिन आखिरकार 2011 में केवल यूरो फाइटर्स और राफेल ही दौड़ में शामिल रह गए और उसके बाद 2012 में फाइनली ये टेंडर फ्रांस को दिया गया, फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी जो कि राफेल बना रही थी।
6: राफेल खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस लड़ाकू विमान की लागत का करीब 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च किया गया है जिसके कारण इसका पता लगाना और निशाना बनना बेहद मुश्किल है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट करता है। राफेल फाइटर जेट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी कि ऐसा रडार लगा है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार सार भी है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। यानी राफेल की नजर से बचना नामुमकिन है। लीबिया में राफेल ने अपनी जंगी काबिलियत की वजह से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। अप्रैल 2011 को फ्रांसीसी राफेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1973 के समर्थन में ऑपरेशन हरमंजन के दौरान लीबिया पर टोही उड़ान और स्ट्राइक मिशन का आगाज किया। राफेल का शुरुआती टारगेट लीबिया के बेंगाजी के चारों ओर घेराबंदी करना था और वहां की तोपों और टैंकों को काबू में करना था। चौबीस मार्च 2011 को बताया गया कि राफेल ने रनवे पर खड़े लीबियाई वायुसेना के G2 गैलिब लाइट अटैक ट्रेनर विमान को खाक में मिला दिया। अपनी तैनाती के दौरान राफेल ने अपनी जियोलॉजिकल फीचर और अलग अलग तरह के गोला बारूद के जरिए लीबियाई सेना के कई एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया। दूसरे लड़ाकू विमानों के उलट मिशन के दौरान राफेल को किसी अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की जरूरत भी नहीं पड़ी। इन सभी घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान राफेल की ओर खींचा। इसमें कोई दो राय नहीं कि राफेल ने कई मोर्चों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, चाहे वो सीरिया हो, लीबिया हो, कोई भी इलाका हो, हर जगह पर राफेल ने युद्ध क्षेत्र में अपनी ताकत को आजमाया और हमेशा इसमें अव्वल ही रहा। यानी रण क्षेत्र का बाजीगर बनकर राफेल उभरा है। वहीं अगर हम चीनी फाइटर जेट्स की बात करें तो अभी तक रण क्षेत्र में उनका इम्तिहान नहीं हुआ है, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि राफेल 21 साबित हो रहा है। चीन हमेशा से ही तकनीक चुराने में माहिर रहा है। उसके विमान रूसी और अमेरिकी विमानों की सस्ती नकल है। अब नकल है तो जाहिर सी बात है कि चीज वैसी ही होगी।
5: चाइना जो है वो मास्टर है रिवर्स इंजीनियरिंग का। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी वेपन सिस्टम को लेके उसको खोल के उसकी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करके फिर अपनी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक चीप या सस्ता हथियार बना लेना। उन्होंने J-20 के साथ किया और उसके बाद उन्होंने ब्लैक हॉक है एक US का, उसके साथ भी यही टेक्निक अपनाई। और यही कारण है कि शायद टेक्नोलॉजी में चाइना जो है भारत से बहुत आगे है और दूसरे देशों के साथ कंपटीशन है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर चीप किसी हथियार को बनाना है तो बेसिक रिसर्च में पढ़ने की बजाय, और जिसको सालों साल लगते हैं, कई डिकेड लगते हैं बेसिक रिसर्च को डेवलप करके वेपन सिस्टम के फाइनलाइज करने तक, तो इसलिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग पर बहुत जोर देते हैं।
6: राफेल सिंगल और ड्यूअल सीटर दोनों विकल्पों के साथ आता है। भारत ने दोनों ही विकल्प चुने हैं। भारत के पास 28 सिंगल और 8 ड्यूअल सीटर राफेल मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। राफेल DH-2 सीटर फाइटर प्लेन है, वहीं राफेल EH सिंगल सीटर लड़ाकू विमान है। दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ 4.5 जेनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं। एक लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी ताकत है हवा में उसका फुर्तीला होना। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो परमाणु हमला करने की ताकत भी रखता है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में इसका कोई सानी नहीं, क्योंकि राफेल के पास दुनिया की बेहतरीन मिसाइल का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है। राफेल की अधिकतम स्पीड 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। 60 घंटे तक लगातार हवा में उड़ान भरने की सक्षमता है राफेल के पास, और अपने साथ ये 24.5 टन के हथियार भी ले जा सकता है। यही नहीं, राफेल महज एक मिनट में 36,000 फीट से 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन पर इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। यानी अब बालाकोट जैसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सरहद को लांघने की जरूरत नहीं है, सरहद के इस पार से ही आतंकी अड्डों को तबाह किया जा सकता है। राफेल में लगी स्कैल्प और मेट्योर मिसाइलें इसे और विध्वंसक बनाती हैं। राफेल में लगने वाले स्कैल्प मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। ये मूविंग टारगेट को भी आसानी से निशाना बना सकते हैं। स्कैल्प मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। स्कैल्प रात और दिन दोनों समय में काम करने में सक्षम है। INS और GPS से लैस आधुनिक नेविगेशन सिस्टम स्कैल्प मिसाइल को अचूक बनाता है। स्कैल्प मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसे जमीन के अंदर और बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। जमीन के अंदर बने बंकरों को स्कैल्प तबाह कर सकता है।
5: स्कैल्प मिसाइल सिस्टम जो है ये एंग्लो फ्रेंच मिसाइल सिस्टम है। इसको फ्रेंच में तो स्कैल्प बोलते हैं और इंग्लैंड में इसको स्टॉर्म शैडो बोलते हैं। अभी इसका रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर का है और इसका पेलोड भी 400 किलोग्राम है। इसका रोल बेसिक जो है वो डीप स्ट्राइक और एयर डोमिनेंस के लिए किया जाता है।
6: वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल मिट्योर राफेल को बेहद ताकतवर बनाती है, क्योंकि मिट्योर अपनी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल है। इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। राफेल विमान में लगाई जाने वाली मिट्योर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मिट्योर मिसाइल हर मौसम में वार करने में सक्षम है। रैमजेट इंजन मिट्योर को बेहद तेज रफ्तार देता है। मिट्योर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे बेहद घातक बनाते हैं। मिट्योर मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बताने की एक और वजह है, मिट्योर मिसाइल थर्ड पार्टी टारगेट डेटा का इस्तेमाल करती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर फाइटर प्लेन का पायलट किसी टारगेट को मिट्योर से निशाने पर लेता है और जमीन पर बैठा कमांड किसी वजह से उसमें बदलाव चाहता है तो वो दूसरे टारगेट को भी हिट कर सकते हैं। राफेल की खासियतों को जानकर आप समझ गए होंगे कि भारत का राफेल चीन के लिए क्यों सरदर्द बना हुआ है और चीन चाहकर भी राफेल की सीक्रेट जानकारी को डिकोड नहीं कर सकता। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
5: 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक के पहुंचने और अंतिम पूजा अर्चना के साथ 57 दिनों से जारी पवित्र यात्रा का सफलतापूर्वक समापन हो गया। हालांकि खराब मौसम के कारण आम यात्रियों के लिए यात्रा कुछ हफ्ते पहले ही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद इस साल लगभग 4,80,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए।
6: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों से गूंजती अनंतनाग की बर्फीली वादियाँ, जहाँ आस्था का समंदर और भक्ति का शिखर एक साथ नजर आता है। यह है श्री अमरनाथ धाम, भगवान शिव का वो परम धाम जहाँ प्रकृति स्वयं देवों के देव महादेव का हिमलिंग स्वरूप में अभिषेक करती है। अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक सफर नहीं, बल्कि भावों की, भक्ति और आत्मिक अनुभवों की परंपरा है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का वो पावन मार्ग है, जिसकी मुहिम युगों युगों से चली आ रही है। श्रद्धा, भक्ति और अटूट विश्वास के इस भव्य पर्व का इस वर्ष सफलतापूर्वक समापन हो गया है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच इस साल की अमरनाथ यात्रा का समापन हुआ। श्रावण पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर पवित्र छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा में पहुंची। पवित्र गुफा में एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के अंतिम दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
7: अमरनाथ गुफा की पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही अब की बार जो है इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई है। अब की बार अमरनाथ यात्रा में 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा आज अपने अंत तक पहुंच गई। छड़ी मुबारक जो कि एक रीति है, आज रक्षाबंधन के दिन जो है वो अमरनाथ गुफा ली जाती है और वहां पर इस छड़ी मुबारक की पूजा होती है और उसी के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाती है।
6: छड़ी मुबारक का गुफा में आगमन अमरनाथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव होता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार छड़ी मुबारक भगवान शिव के पवित्र त्रिशूल और उनके आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। ये चांदी की एक छड़ी होती है, जो श्री दशनामी अखाड़े से यात्रा के मुख्य पुजारी की अगुवाई में पवित्र गुफा तक लाई जाती है। जैसे ही साधु संतों की अगुवाई में छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा में पहुंचती है, तभी शिव भक्तों के प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की प्रतीक अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। ऐसी मान्यता है कि जब तक छड़ी मुबारक पवित्र गुफा में नहीं पहुंचती, तब तक अमरनाथ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। ये छड़ी केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि साक्षात शिव भक्ति के समागम का अनुभव कराती है।
7: अब की बार जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए राहत की सबसे बड़ी बात ये थी कि अब की बार यात्रा न सिर्फ सफल रही बल्कि सुरक्षित भी रही। बिना किसी घटना के अब की बार इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है वो संपन्न हो गई है, जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी राहत की सांस ले ली है। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ मानी।
5: दिल्ली के सांस्कृतिक मंच पर एक बार फिर भक्ति प्रेम और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए राजधानी के सबसे फेमस कमानी ऑडिटोरियम में डांस ड्रामा कृष्ण एक बार फिर परफॉर्म किया जा रहा है। 5 दशक का सफर पूरा कर चुके इस चर्चित डांस ड्रामा का मंचन जन्माष्टमी तक यानी कि 4 सितंबर तक किया जाएगा। इस विशेष 50वें वर्ष के संस्करण में कृष्ण के गोकुल और वृंदावन के दिनों से लेकर राधा कंसवध और महाभारत के विराट प्रसंग तक की कथा मंच पर उतारी जाएगी।

0: घुंघरुओं की झंकार, रंगों की फुहार, मंच पर साक्षात उतरते भगवान द्वारकाधीश। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध कमानी ऑडिटोरियम की हैं, जहां रामलीला के तर्ज पर मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का भव्य आगाज हो चुका है। भक्ति और कला के अद्भुत संगम से भरपूर 50 सालों से चला आ रहा मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर से लौट आया है। अपने 50 साल पूरे करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू रहा ये शो कृष्ण जन्माष्टमी यानी 4 सितंबर तक भक्ति और कला के अद्भुत संगम से भरपूर 50 सालों से चला आ रहा मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर से लौट आया है। अपने 50 साल पूरे करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू रहा ये शो कृष्ण जन्माष्टमी यानी 4 सितंबर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है।
1: इत्यादि मोटर और बाइकिंग
0: देखेंगे, बल्कि कृष्ण जन्म से लेकर बाल लीला, अलौकिक रास लीला और महाभारत में गीता के सार तक जीवन के हर पहलू का ज्ञान सीख सकेंगे।

0: पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन और शशिधरन नायर की कोरियोग्राफी में तैयार ये शो कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत की गीता सार तक का सफर तय करता है। शास्त्रीय नृत्य, अद्भुत सेट और लाइट इफेक्ट्स, हाथ से बनी भव्य पोशाकें और अनूठे लाइव स्टेज डिजाइन का एक ऐसा संगम जो दर्शकों को सीधा द्वापर युग में ले जाता है।
1: बैंड जो है ये पूरे श्री कृष्णा की कथा 2 घंटे 15 मिनट में बताती
2: है।
1: पूरा ट्रेडिशनल फॉर्म में है, वो ट्रेडिशनल नहीं जो हम बरसाना में या नौटंकी ड्राइव पर देखते हैं। ये पूरा क्लासिकल डांस नृत्य संरचना है, डांस ड्रामा है। इसमें हम कृष्ण जी के जन्म से उनके विश्व रूप तक दिखाते हैं। तो इसमें हम महाभारत भी दिखाते हैं, क्योंकि महाभारत में जो भगवद गीता का उनका उच्चारण था, जो कृष्ण उन्होंने सिखाया, जो हम आजकल की चाहते हैं कि हम भगवद गीता को आज के दिन में उसको हम अडॉप्ट करें, वो हम मैसेज पहुँचा कर जाते हैं।

आज के आधुनिक दौर में युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जीवन के मूल्यों से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। 4 सितंबर तक चलने वाला ये सांस्कृतिक महाकुंभ इस जन्माष्टमी को और भी खास बनाने के लिए तैयार है। अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति, कला और ज्ञान के इस अनूठे अनुभव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात प्लास्टिक के कचरे से जुड़ी क्रिएटिविटी की कर लेते हैं। यानी कि देखिए, जिस प्लास्टिक को प्रकृति और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, उस पर दिल्ली का एक कपल अपने इनोवेटिव आइडिया के जरिए लगातार प्रहार कर रहा है। उनका स्टार्टअप रिसाइकलिंग के जरिए कचरे में फेंके जा रहे प्लास्टिक से सुंदर और इस्तेमाल करने लायक उत्पाद बना रहे हैं, जिसमें कुर्सियां, डस्टबिन, गमले और यहां तक कि पार्क में बैठने वाले बड़े साइज के बेंच भी शामिल है।

0: धरती के लिए अभिशाप सिंगल यूज प्लास्टिक का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंक्रीट, आरसीसी या ग्रेनाइट पत्थर की तरह दिखने वाले ये बेंच और टेबल केवल एक बार इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक से बनाए गए हैं। जल, जमीन और हवा को दूषित करने में प्लास्टिक सबसे आगे है। इसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार ही हो पाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के इस कपल ने प्लास्टिक कचरे को नया स्वरूप दे दिया जो दिखने और इस्तेमाल में अपने मूल आकार और स्वरूप से ज्यादा खूबसूरत है।
1: दिल्ली में प्लास्टिक एक बेहद बहुत ही बड़ी समस्या है और वो प्लास्टिक के कचरे की अगर हम बात करें और अगर उस कचरे का इस्तेमाल दोबारा से किया जाए तो ये कचरा किसी के भी काम आ सकता है। खास तौर पर ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जो है बेहद ही फायदेमंद वाली चीज़ हो सकती है। जिस पर मैं बैठी हूँ ये उसी का एक उदाहरण जो है मैं आपको पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे पीछे भी और जिस पे मैं बैठी हूँ और आसपास भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएगी जो उसी प्लास्टिक के कचरे से जो है बनी है। इसकी जो शुरुआत हुई है उसी प्लास्टिक के कचरे से हुई है जिसको आप और मैं बेकार समझकर जो है फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बेंचेस जो है वो नज़र आ जाएगी, आपको टेबल नज़र आ जाएगी, आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है चीज़ें नज़र आने वाली है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से जो है वो बनाई गई है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको जो है बनाया गया था ताकि इसका इस्तेमाल जो है वापस से किया जा सके। आप इसको किसी भी ओपन स्पेस में रख सकते हो, चाहे इन बेंचेस का, इन टेबल का इस्तेमाल पार्क में किया जा सकता है, स्कूल में किया जा सकता है, किसी भी ओपन स्पेस में जो है इसको लगाया जा सकता है।
0: सड़क, पार्किंग, गार्डन और फर्श को मजबूत बनाने और सुंदर दिखने के लिए कंक्रीट या सीमेंट के छोटे टुकड़े का इस्तेमाल होता है जिसे पेवर ब्लॉक कहा जाता है। इसको बनाने में भी अब प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल होने लगा है।
1: तो आपको यहाँ पे पेवमेंट ब्लॉक्स दिख जाएंगे, आपको ये छोटे छोटे इस तरीके की जो टाइल्स जैसे दिखती है पेवमेंट ब्लॉक्स जो है वो नज़र आ जाएगा। और ये सभी जो है रिसाइकल प्लास्टिक से जो है बनाया गया है, यानी जिस प्लास्टिक को आप और मैं इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं बेकार समझकर, उसी प्लास्टिक को जो है रिसाइकल करके, प्रोसेस करके इस चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों में जो है बदला जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल जो है लंबे समय तक किया जा सके।
0: कंक्रीट की पक्की सड़क के मुकाबले ये लचीली सतह बनाते हैं जिससे जमीन के धंसने पर भी इनमें दरारें नहीं आती हैं। भारी वजन पड़ने पर भी ये आसानी से नहीं टूटते। दिल्ली के रहने वाली सोनल और उनके पति ने प्लास्टिक कचरे के बेहतर इस्तेमाल को अपना लक्ष्य बना लिया। NIT कुरुक्षेत्र से मास्टर्स करने वाले पति पत्नी ने मिलकर एक कॉन्सियस नाम का स्टार्टअप शुरू किया जिसका मकसद प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके ऐसी चीजें तैयार करना है जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों की सुविधा के लिए किया जा सके।
1: इस पहल की शुरुआत की है दिल्ली के इस कपल ने जो इस वक्त मेरे साथ है, सोनल और वैभव मेरे साथ बैठे हैं। सोनल, मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि प्लास्टिक वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन प्लास्टिक कम नहीं होता, बट उसको थोड़ा सा कम करने की शायद आपने एक पहल जो है वो शुरू करी है।
2: डेफिनेटली प्लास्टिक में शुरुआत हमारी एक्चुअली कोइंसिडेंटली हुई थी। सो हम दोनों ने MTech किया है NIT कुरुक्षेत्र से। वैभव का मेजर था एनवायरनमेंट में, तो उसमें ही वॉज स्टडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज जो मेरा एक कॉन्शियस थॉट था टुवर्ड्स डूइंग समथिंग अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी, कोविड के टाइम पे शुरुआत करी स्पेशली, क्योंकि उस टाइम पे हम देख रहे थे कि बहुत सारा सिंगल यूज प्लास्टिक इन द फॉर्म ऑफ PPE किट्स या फिर मास्क कह लीजिए या फिर लोग वैसे भी पैकेजिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो हमने एक कॉन्शियसली थॉट किया कि दिस इज़ आई फील द बेस्ट टाइम कि हमें कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए एंड ऑल्सो कि हम उसको कुछ कन्वर्ट कर पाएँ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हमें हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफाई कर सके। सो ड्यूरिंग कोविड वी स्टार्टेड।
0: शुरुआत में सोनल और वैभव ने प्लास्टिक के कचरे से घर सजावट का सामान बनाना शुरू किया था, लेकिन बाद में पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उसी के इस्तेमाल पर फोकस कर लिया। यही वजह है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन के लिए वो पिकअप सुविधा भी देते हैं।
2: प्लास्टिक का जो हमारा कलेक्शन का सेटअप है वो हम दिल्ली में बेस्ड एक स्टार्टअप है। सो हमारा जो भी कलेक्शन सेटअप है दैट इज़ इन दिल्ली NCR। लोग हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट होकर हमें प्लास्टिक देते हैं। वी प्रोवाइड अ पिकअप सर्विस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ NGO पार्टनर्स हैं जो हमारे बिहाफ में वो कलेक्शन करते हैं और फिर हम उनके थ्रू सोर्सिंग करते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारे वेस्ट वर्कर्स होते हैं, कबाड़ी वाले भैया दीदी लोग होते हैं, सो हम उनसे भी सोर्सिंग करते हैं।
0: पिछले साल महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और गोपनीयता के लिए 1000 से अधिक विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए थे जिनको सोनल और वैभव की स्टार्टअप कंपनी ने एक संस्था के साथ मिलकर तैयार किया था, जिसमें करीब 5,00,000 किलो प्लास्टिक को रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल किया गया।
3: ये महाकुंभ का ये जो प्रयागराज में हुआ था 2025 में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो हमने इस पे एक थॉट दिया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है और महिलाओं को एक स्पेस सेफ स्पेस मिलेगी चेंज करने के लिए उनको स्नान के बाद में। तो हमने चेंजिंग रूम्स बनाए 1,000, वहाँ पे एक चेंजिंग रूम में लगभग 550 किलो प्लास्टिक को हमने इसमें रिसाइकल किया, 550 किलो, तो लगभग 5,00,000 केजी तक हमने प्लास्टिक को इसमें रिसाइकल करके हमने चेंजिंग रूम्स बनाए इससे।
0: प्लास्टिक से होने वाला कचरा दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करने के बाद खुले में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी की प्रोडक्टिविटी यानी उर्वरता भी घट जाती है। फिर भी देश की एक बड़ी आबादी सिंगल यूज प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण के नुकसान को गंभीरता से नहीं लेती, जिनको जागरूक करने का बीड़ा सोनल और वैभव ने अपने कंधों पर उठाया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
14: नेपाल से आई राहत वाली खबर, हाइड्रो पावर टनल में फंसे 4 और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों का किया एयरलिफ्ट, करीब 170 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर उकेरी 20 फीट चौड़ी रेत की भावुक कलाकृति, पुरी के तट पर प्रेस फॉर नेपाल का दिया संदेश, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान का ये युवा संत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका समेत कई देशों में रामकथा की पुण्य सरिता प्रवाहित कर चुका है। अद्भुत बात यह है कि इनकी रामकथा के प्रभाव से विदेशी धरती पर भी वैचारिक बदलाव की बयार महसूस की जा रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लोगों के मन की बात जानकर उनकी पर्ची फाड़ने वाले बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं। बाबा बागेश्वर ने पिछले 3-4 सालों से विदेशी धरती पर सनातन का कालजय संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है और इसी कड़ी में बाबा कुछ दिनों पहले पहुंच गए थे उगते सूरज के देश यानी कि जापान में। उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर ने सूर्यवंशी राम की कथा का वाचन कर लोगों का दिल जीत लिया। माथे पर त्रिपुंड, तन पर राम नामी कुर्ता और पैरों में खड़ाव डालकर बाबा जब जापान की सड़कों पर निकलते तो उन्हें देखकर जापानीज लोग कौतूहल से भर जाते, पर बाबा तो अपनी ही मस्ती में रमे रहने वाले इंसान हैं। जो भी मिला उसे शुद्ध सनातनी अंदाज में आशीर्वाद दिया।

स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का पीड़ा

सनातन चेतना के वैश्विक प्रसार की अपनी मुहिम के तहत बाबा बागेश्वर ने 21 अगस्त को कदम रखा उस जापान में जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है।

सूरज के देश में बाबा बागेश्वर जो कुर्ता पहनकर नमूदार हुए उस पर सूर्यवंशी राम के सुंदर नाम अंकित थे। राम के पतित पावन नाम के बीच में राम भक्त हनुमान की तस्वीर सुदूर पूर्व के देश जापान में सनातन के पौराणिक ज्ञान प्रकाश का प्रसार करती जान पड़ रही।

भारतीय ऋषि मुनियों सन्यासियों की पनही माने जाने वाले खड़ाओं को पैरों में डालकर बाबा बागेश्वर जब उगते सूरज के देश की सड़कों पर निकले तो वहां सनातन का पूरा बिंब सजीव हो उठा।

0: कुछ लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया, इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए और हाँ अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप भूकंप चला गया।
1: बड़ा मत मेरा बजरंग का
2: 21 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे बाबा बागेश्वर ने 22 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो के मंच पर अपनी ओजस्वी वाणी में हनुमंत कथा का वाचन कर विदेशी धरती पर राम भक्ति की जीवन दायिनी धारा प्रवाहित की।
3: ऐसा ही चल रहा और सत्य जीवन में आना, राम जी के जीवन में आए, कृष्ण भगवान के जीवन में आए।
4: हनुमान जी एक मात्र ऐसे पुत्र हुए जो माँ के दूध के ऋण से मुक्त हुए, माँ के दूध के कर्ज से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बेटा ऐसा बेटा नहीं होगा, बेटा अथवा बेटी नहीं होगी जो अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हुई हो या हुआ हो, पर हनुमान जी हैं।
5: ओम पार्वती बदायरे हर हर महादेव।
2: अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर जापान के कई शहरों में गए, वहाँ की अद्भुत व्यवस्था देखी, सड़कों की साफ सफाई देखी, तकनीक का उत्कर्ष देखा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखी, लोगों का अनुशासित जीवन देखा। लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने उसी धरती से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा को उद्घोष करने से कतई परहेज नहीं किया।
0: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव, यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपल सिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
4: हे ठाकुर सुनो, जरा ध्यान से सुनो, पागलो भगवान से कहो, पूछो क्या, अरे जोर से तो पूछो,

कुछ वर्षों से विदेशी धरती पर जाकर लगातार सनातन धर्म के वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का कालजयी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। जापान जाने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगस्त में ही द्वीपों के देश इंडोनेशिया

0: इंडोनेशिया के बाली में उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का अलग जगाते हुए ऊर्जा संचय समागम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीपीय देश में मौजूद सनातन धर्म के अनुयायी या इस धर्म के दार्शनिक विचारों में विश्वास करने वाले लोगों को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा और एकाग्रता के मार्ग में प्रवृत्त करना था।
1: बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है। यहाँ पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
0: अगस्त में अपनी 4 दिवसीय बाली यात्रा से पहले इसी साल जून के 4th हफ्ते में भी बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखकर सनातन धर्म का परचम लहराया था। जून के 4th हफ्ते में बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हनुमंत कथा की पावन सरिता प्रवाहित की थी। जकार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मानव मात्र की एकता को सबसे बड़ा दर्शन और मानवता की निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताकर सबका दिल जीत लिया था।
2: यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो

0: सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ा जाए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत को।
1: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मानवता का पावन संदेश देने से पहले जून 2026 में ही पंडित धीरेन कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में बाबा बागेश्वर ने सनातन और बौद्ध धर्म की तात्विक समरसता का समावेशी संदेश प्रसारित कर सबका दिल जीत लिया था। हनुमान जी के अनन्य उपासक बाबा बागेश्वर श्रीलंका की धरती पर कदम रखने के बाद उस अशोक वाटिका में भी गए जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं।
2: यहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी जिस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी, अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं। ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की झटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने।
1: श्रीलंका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सीता एलिया गांव के अलावा कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर, सनातन और बौद्ध धर्म के अनोखे संगम के रूप में प्रतिष्ठित गंगार माया मंदिर समेत कई दिव्य स्थानों पर गए और हर जगह सनातन के इस युवा संत का प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। यहाँ तक कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया।
3: लोगों का लोगों से मिलन होना
2: हम यही चाहते हैं और उसका यही तो उपाय है कि भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने आए और श्रीलंका के लोग रामलला के दर्शन करने जाए। उसका सर्वोत्तम उपाय ही है रामायण के, दोनों एक दूसरे से जुड़ पाएंगे।
1: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा का विदेशी धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराने का ये सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ था। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलख जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया। दिलचस्प तो ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले आने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
4: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरु जी कब आओगे भारत? उन्होंने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हाँ हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
1: इस यात्रा के ठीक बाद बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका अतिथि सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंग बली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: कर्मचारी शाखा प्रारंभ। इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति होवे, सबका मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: ब्रिटेन के अलावा बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की धरती को भी धन्य कर चुके हैं। 8 से 22 अप्रैल 2026 के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबेरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया। अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। खास बात तो यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा भी कर चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा बागेश्वर विदेशी सरजमी पर सनातन के मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार कर स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों की मुहिम को इस युग में आगे बढ़ा रहे हैं।
2: बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो युग बोध वाले संत हैं। भक्ति के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को लेकर वे हमेशा सजग रहते हैं। यूं तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाहिर नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे गहराई से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बाबा को राजनीति और कूटनीति से लेकर वैश्विक हलचलों तक की बारीक जानकारी है। बागेश्वर बाबा सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखते हैं और युवाओं को उसके दुष्परिणामों से दूर रहने की सलाह देते हैं।

0: सनातन का आध्यात्मिक संदेश और राम कथा की सरिता विदेशी धरती पर प्रसारित प्रवाहित करने वाले बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने के अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। बालाजी यानी बजरंग बली की भक्ति में अपना जीवन होम कर चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खासियत ये है कि उनके भीतर गजब का युग बोध है। सोशल मीडिया आज भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जेन अल्फा और जेन जी से लेकर जेन एक्स और जेन मिलेनियल्स तक आज कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया के प्रभाव से अछूता है। कमाल यह है कि बालाजी के भक्ति भाव से आप्लावित रहने वाले बाबा बागेश्वर को सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से लेकर उसके डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोलर्स तक के बारे में गहराई से जानकारी है।
1: इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एफवी कहां से हैंडल हो रही? अमेरिका से। यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एक्स कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। तो इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली न बन जाएं।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा बागेश्वर की सुबह भजन कीर्तन साधना उपासना से शुरू होती है। राम कथा के वाचन और सद्विचारों के प्रसार के साथ उनका दिन चढ़ता है। धाम पर आए श्रद्धालुओं के साथ संवाद और उनके मार्गदर्शन की कोशिशों के बीच इस युवा संत की संध्या होती है। पर इन सब के साथ ही राष्ट्रहित का चिंतन भी सतत चलता रहता है। भारत के मौजूदा हालात और देश में विदेशी शक्तियों के कुत्सित हस्तक्षेप को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असहज हैं और युवा पीढ़ी को इसे लेकर जागरूक करना चाहते हैं।
1: कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहते, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहते। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन किसी मां बहन की गाली से ना हो।
0: भारत की धरती पर ऐसी कई विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपने युग में आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा का भी संचार किया। महर्षि अरविंद और स्वामी चिन्मयानंद से लेकर स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती तक ने एक ओर जहां वेद पुराण और उपनिषदों की युगीन विवेचना की, तो दूसरी ओर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी प्रबल की। निसंदेह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान की इसी अतुल्य परंपरा का संवोहन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि युवा पीढ़ी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुने और ड्रग या सोशल मीडिया एडिक्ट होने की जगह कथा का एडिक्ट बने, तो इससे युवाओं के भविष्य के साथ ही राष्ट्र का भविष्य भी संवरेगा।
1: संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने। चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़े तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देके जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना चाहिए। गुरु चरण
0: सरोज। साफ है कि बाबा बागेश्वर प्रभु की भक्ति के साथ ही राष्ट्र की भक्ति का संगम संतुलन स्थापित करने के पक्षधर हैं। वैसी भक्ति जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित पर प्रतिकूल असर पड़े, बाबा को स्वीकार नहीं है। इसीलिए बाबा बागेश्वर उन कावड़ियों को भी संदेश देते हैं जो अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान आमजन के लिए परेशानी का सबब बनते हैं या फिर स्वच्छता का आग्रह दरकिनार कर देते हैं।
1: धर्म आस्था को सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विषय, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन के इस युवा संत के भीतर भक्ति की शक्ति तो है, लेकिन धर्म या परंपरा को लेकर कट्टरता या दुराग्रह नहीं है। बागेश्वर बाबा परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम की संजीवनी को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाकर विकास की सरिता प्रवाहित करने के पक्षधर हैं। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, इसी दर्शन को आत्मसात कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम में 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा 13 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सनातन वैदिक गुरुकुलम नाम के एक भव्य दिव्य शैक्षणिक संस्थान का शुभारंभ भी उन्होंने कराया है। इस गुरुकुलम में वैदिक शिक्षा के साथ ही साइंस, मैथ्स और दूसरे रोजगारोन्मुखी विषयों की भी शिक्षा दी जा रही है। बाबा बागेश्वर खुद अविवाहित हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर गरीब असहाय और अनाथ कन्याओं के लिए अपनी छत्र छाया में सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करते हैं। साफ है कि बाबा बागेश्वर को कम उम्र में ही जो बेहिसाब लोकप्रियता मिली है उसके पीछे उनकी त्याग तपस्या के साथ ही मानवीय संवेदना और जनहितकारी कार्यों का बड़ा योगदान है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने बाबा बागेश्वर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: शनि का कौन सा योग व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है? शनि का कौन सा योग विवाह के बाद तरक्की तो देता है लेकिन अपने से बड़ी उम्र का जीवन साथी भी दे सकता है? और शनि का कौन सा शुभ योग विलंब के बावजूद बड़ी सफलताएं देता है? कौन से हैं शनि के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: नेपाल से आई राहत वाली खबर, हाइड्रो पावर टनल में फंसे 4 और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, भारत के विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि।

0: में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम। नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों का किया एयरलिफ्ट। 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी में रुकेरी 30 फीट चौड़ी रेत की भावुक कलाकृति। पुरी के तट पर प्रेयर्स फॉर नेपाल का दिया संदेश। मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CSIR UGC नेट जून 2026 का रिजल्ट कर दिया है जारी। 1.5 लाख छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं रिजल्ट। खेल दिवस पर युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाली खबर आई सामने। दरभंगा में 200 करोड़ रुपए की लागत का स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा तैयार। डे नाइट मैचों का भी हो सकेगा आयोजन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: करगिल की सुरु घाटी में भव्य समर फेस्टिवल। दमसना में संस्कृति और रोमांच का दिखा शानदार संगम। सुरु घाटी में सजा रंगारंग उत्सव। नुनकुन की चोटियों के बीच सजा फेस्टिवल। लोक कलाकारों और गायकों ने बांधा समा। संस्कृति संगीत और रोमांच से गुलजार हुआ पूरा इलाका। युवाओं और बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने किया सभी को मंत्रमुग्ध। विदेशी सैलानियों ने चखा लद्दाख के लोकल फूड का स्वाद। पारंपरिक व्यंजनों ने जीता पर्यटकों का दिल। हाथ से बने प्रोडक्ट्स के स्टॉल पर उमड़ी भीड़। लोकल हस्तशिल्प की खरीदारी में दिखा जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में 50 साल पुराना मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का होगा मंचन। आज से 4 सितंबर तक कमानी ऑडिटोरियम में दिखाई जा रही कृष्ण की लीला। पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन में कृष्ण का भव्य मंचन। शास्त्रीय नृत्य संगीत और शानदार सेट लाइटिंग आकर्षण का केंद्र। कृष्ण में जन्म से लेकर रास लीला और महाभारत की दिखाई जाएगी कहानी। गीता के जरिए जीवन के महत्वपूर्ण संदेश। न्यूयॉर्क के इस्कॉन मंदिर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हुआ भव्य स्वागत। भागवत ने मंदिर का किया दौरा। तेलंगाना के मलकजगिरी में अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन ने श्री भवानी रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। लिंगेश्वर भगवान के लिए आशीर्वाद। शोपियों में राम मंदिर की रखी गई नींव। दशकों बाद कश्मीरी पंडितों ने जताई खुशी। पूजा और हवन के बाद राम मंदिर की रखी गई आधारशिला। सैकड़ों कश्मीरी पंडित समारोह में हुए शामिल। कश्मीरी पंडितों के लिए भावुक पल। शोपिया में लौटी धार्मिक विरासत की उम्मीद। राम मंदिर बना वापसी और उम्मीद का प्रतीक। राम मंदिर के पुनर्निर्माण ने नई शुरुआत का दिया संदेश। वीरभूम में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तारापीठ मंदिर में लगाई अपनी हाजिरी। मां तारा की विधि विधान से की पूजा अर्चना। लिया भगवान का आशीर्वाद। कर्नाटक के हसन में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने की पूजा अर्चना। आस्था और भक्ति में दिखे सराबोर। दरभंगा में बनेगा नेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम। 200 करोड़ रुपए की लागत से होगा इसका निर्माण। खेले जा सकेंगे डे नाइट IPL मैचेस। नए स्टेडियम में हाई मास्ट लाइट्स और बड़ी स्क्रीन्स होंगी। पुराने नेहरू स्टेडियम की जगह बनेगा नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। क्रिकेट के साथ कई इंडोर गेम्स की भी इसमें होगी सुविधा। स्विमिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बैडमिंटन और बास्केटबॉल की होगी व्यवस्था। खिलाड़ियों के लिए बनेगा हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर। देवरिया में 305 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। सड़क पुल से मजबूत होगी देवरिया की कनेक्टिविटी। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिलेगी इससे रफ्तार। UGC नेट के 84 विषयों के नतीजे हुए घोषित। 4,000 से अधिक अभ्यर्थी GRF के लिए चयनित। असिस्टेंट प्रोफेसर PhD के लिए 7.56% हुए पास। GRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0.70% छात्रों को मिली सफलता। कैंसर के खिलाफ जंग में को बड़ी कामयाबी। mRNA कैंसर वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल सफल। कैंसर के दोबारा लौटने के जोखिम को कम करती है ये वैक्सीन। मॉडर्ना और मर्क कंपनी ने टीके को किया है विकसित। उच्च जोखिम वाले त्वचा कैंसर मरीजों पर किया गया सफल ट्रायल। 1,137 मरीजों पर किया गया इसका परीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के सेंट्रल एशिया दौरे पे उज्बेकिस्तान पहुंचे, ताशकंद में हुआ उनका भव्य स्वागत। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने एयरपोर्ट पे की उनकी अगवानी, दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे को लगाया गले। ताशकंद के यांगी उज्बेकिस्तान पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। 2 दिन भारत उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा पर होगी बात। पीएम मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच होगी महत्वपूर्ण बातचीत। उज्बेकिस्तान दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उज्बेकिस्तान के युवाओं ने हिंदी से जीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल, हिंदी में उज्बेक युवाओं ने दिया खास संदेश, पीएम मोदी ने वीडियो शेयर कर जताई खुशी। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 106 पर्यटकों की हुई सुरक्षित वापसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे पर्यटक। मुश्किल हालात के बीच भारतीय रेलवे ने संभाला मोर्चा, 106 पर्यटकों के लिए रेलवे ने लगाया अतिरिक्त कोच, रेलवे ने स्पेशल इंतजाम कर भेजा उन्हें घर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पर्यटकों को नाश्ता पानी भी दिया गया, सरकारी मदद से पर्यटकों की घर वापसी आसान। सकुशल लौटने पे पर्यटकों के परिजनों को हुई काफी खुशी, चेहरे पे दिखी खुशी, सरकार और रेलवे का किया शुक्रिया। नेपाल से लौटे पर्यटकों ने बयां किया अपना अनुभव। नेपाल की त्रासदी के बीच दिखी मदद की मिसाल, रेलवे की मदद ने बढ़ाया पर्यटकों का हौसला। चुनौतियों के बीच नेपाल में मिशन जिंदगी जारी, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों को किया एयरलिफ्ट। रेस्क्यू में 163 विदेशी नागरिकों का भी हुआ सफल रेस्क्यू, कई जगहों पर चल रहा है रेस्क्यू अभियान। नेपाल में मुसीबत के बीच करिश्मा, 8 साल के बच्चे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। 1 दिन बाद किया गया बच्चे को एयरलिफ्ट, मां से मिलकर भावुक हुआ बच्चा। चीन में फंसे 400 भारतीय सुरक्षित, भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ निकासी में जुटा। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर पूरी के तट पर बनाई भावुक कलाकृति, सुदर्शन पटनायक ने बनाया प्रेयर्स फॉर नेपाल का संदेश। सुदर्शन पटनायक ने नेपाल के लिए की प्रार्थना, 20 फीट चौड़ी रेत की कलाकृति ने दिया संदेश, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत। सुदर्शन पटनायक की कला में दिखी संवेदना, सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भी दिया साथ। सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 का रिजल्ट जारी, एनटीए ने परीक्षा के नतीजे की घोषित, स्कोर कार्ड में दिखेंगे नंबर और क्वालिफाइंग स्टेटस। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह हुई साफ, 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा, 17-18 जुलाई को हुई थी जून सेशन की परीक्षा। 1 ही तारीख पर रिलीज होगी किंग नाम से 2 फिल्में, बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान से भिड़ेंगे मेगा स्टार नागार्जुन। मेकर्स ने नागार्जुन के 67वें जन्मदिन पर टाइटल और पहली झलक रिवील की, फिल्म का टाइटल किंग 100 रखा गया है, 24 दिसंबर को फिल्म रिलीज होगी। हिंदी हॉरर कॉमेडी और एडवेंचर वेब सीरीज अली बाबा और 40 भूत ओटीटी पर जल्द देगी दस्तक, 11 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। दृश्यम 3 में फिर विजय सलगांवकर बनेंगे अजय देवगन, ने पोस्टर ने बढ़ाया सस्पेंस, चेहरे पे दिखा तनाव, फिल्म 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। एक्टर डॉक्टर शिवा राजकुमार का दिखेगा नया अवतार, ओरिजिनल मॉन्स्टर का मोशन पोस्टर हुआ आउट, दमदार लुक ने बढ़ाई सभी की एक्साइटमेंट। शिवराज कुमार की बेल टीजर ने मचाया धमाल, पुलिस ऑफिसर की दमदार भूमिका में नजर आ रहे हैं शिवराज कुमार। अपकमिंग फिल्म द पैराडाइज का दूसरा गाना यश नागुला हुआ रिलीज, नानी और कीर्ति सुरेश की जोड़ी ने जीता सभी का दिल। डैलस में हुआ यश नागुला सॉन्ग की शानदार लॉन्चिंग, अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ स्टेज पर नानी की धमाकेदार एंट्री। बांग्ला फिल्म डॉक्टर काकू का ऑफिशियल टीजर हुआ रिलीज, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर फिल्म के द्वारा दिया जा रहा है खास संदेश। एक्टर अनुपम खेर ने शेयर किया भावुक वीडियो, बोले आज में जीना चाहिए से मुहावरा नहीं, हाल के हादसों ने जिंदगी की सच्चाई का एहसास करवाया है। फिल्म प्रेम कीटाणु का दूसरा सॉन्ग हुआ रिलीज, फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। 31 अगस्त को नई फिल्म दायरा का ट्रेलर होगा रिलीज, फिल्म में करीना कपूर मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। मिर्जापुर द मूवी की एडवांस बुकिंग 31 अगस्त से होगी शुरू, 4 सितंबर को फिल्म देगी दस्तक। फिल्म रेस 4 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ की भी हुई एंट्री, फिल्म में आमिर खान अहम रोल में नजर आएंगे। सलार 2 में हुई धरा शौर्यांग की एंट्री, फिल्म में प्रभास के पिता के रोल में नजर आएंगे। चीन में खुला देश का पहला कैट थीम पार्क हेलोंगजियांग में 150 स्ट्रे कैट्स का बना नया घर। स्कारलेट फ्रेंड्स में स्ट्रे कैट्स के लिए बना खास पार्क, बिल्लियों के साथ वक्त बिताने का अनोखा ठिकाना, विजिटर स्ट्रे कैट्स को खिला सकते हैं खाना। दिल्ली की विशाल मूर्ति बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, कैट थीम पार्क में कई अनोखे स्पॉट्स बनाए गए, पंजे के आकार के लॉन ने भी खींचा सभी का दिल। हांगकांग में विटॉल की पहली टेस्ट फ्लाइट, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट ने भरी सफल उड़ान, हवा में उड़ा इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। इविटॉल ने टेक ऑफ, होवरिंग और लैंडिंग की, इविटॉल से सफर मिनटों में पूरा करने की तैयारी, इविटॉल ने पूरी की 1,00,000 से ज्यादा उड़ाने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ISS के अंतरिक्ष यात्रियों से की बात, ह्यूस्टन में नासा सेंटर पहुंचकर किया संवाद, ISS क्रू से बातचीत में दी शुभकामनाएं। ट्रंप का बड़ा ऐलान, बनेगी नई स्पेस एकेडमी, मिलिट्री सर्विस एकेडमी की तर्ज पे होगी इसकी तैयारी, ट्रंप से बातचीत के दौरान अंतरिक्ष यात्री देखे बेहद उत्साहित। ट्रंप ने अंतरिक्ष यात्री जैक हैथवे की मूछ की तारीफ की, बोले ट्रंप मुझे भी चाहिए ऐसी मूछ, सुनकर सभी एस्ट्रोनॉट के चेहरे पे मुस्कान नजर आ गई। आर्टेमिस 2 के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को बड़ा सम्मान, ट्रंप ने चंद्र मिशन के लिए दिया कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की ऐतिहासिक उपलब्धि पर मेडल, सम्मान समारोह के बाद हुआ खास बल, आर्टेमिस 2 क्रू ने ट्रंप को दिया नासा जैकेट। ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर नॉरिस का मैकलेरन के साथ नया करार, F1 चैंपियन ने कॉन्ट्रैक्ट साल 2030 तक बढ़ाया। मैकलेरन में करियर खत्म करना चाहते हैं लॉरिस, करार में साल 2030 के बाद का मल्टी ईयर ऑप्शन भी है। मैकलेरन से लॉरिस को मिला बेहद खास तोहफा, मैकलेरन ने चैंपियन बनाने वाली MCL39 कार गिफ्ट की। स्पेन की सबसे प्रतिष्ठित साइकिल रेस वो एल्टा में आंद्रियास लेख ने सुंड का जलवा, नॉर्वे के राइडर ने जीता स्टेट 7, आंद्रियास की पहली ग्रैंड टूर जीत। करीब 150 किलोमीटर की रेस में बने चैंपियन टोबियास योहानसेन रहे दूसरे नंबर पर, वाउट वान एट को मिला तीसरा स्थान। अर्जेंटीना में इलाज के बाद 6 पेंगुइन्स को वापस उनके मूल निवास समुद्र में छोड़ दिया गया, मछली पकड़ने वाले जाल से घायल हो गई थी। पेंगुइन के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में जुड़े फाउंडेशन वाले, अप्रैल महीने में 15 पेंगुइन्स को इलाज के बाद वापस समंदर में छोड़ा गया। रैली पर आगे के शुरुआती दौर में न्यूजीलैंड के हेडन पार्डोन ने बढ़त हासिल कर ली है, 2018 के बाद पहली बार पार्डोन WRC में सबसे आगे पहुंचे हैं। रेस के दौरान जोश मैक एयरलीन दूसरे, जबकि चैंपियनशिप लीडर एल्फिन एवांस तीसरे स्थान पर है, दोनों के बीच सिर्फ 2.8 सेकंड का अंतर रहा। डिफेंडिंग चैंपियन सेबेस्टियन ओजियर का टायर पंक्चर हो गया, कार में मरम्मत के बावजूद वो तीसरे स्टेट से आगे नहीं बढ़ सके। चीन के वाइल्ड लाइफ पार्क में माला घुमाता नजर आया चिंपैंजी, बेहद आसानी से पूरी माला घुमाता चिंपैंजी बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। शांति में माला घुमाते चिंपैंजी को देखने उमड़े लोग, वाइल्ड लाइफ पार्क में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना अनोखा नजारा। पार्क कर्मचारी के मुताबिक चिंपैंजी ने खुद ही सीखा है हुनर, उसे किसी इंसान ने कभी नहीं दी माला घुमाने की कोई ट्रेनिंग। चीन के पांडा नेशनल पार्क से सामने आई बच्चे के साथ मां पांडा की प्यारी सी तस्वीरें, जंगल में घूमते हुए कैमरे में कैद, वीडियो में बच्चे का पूरा ख्याल रखते दिखी मां पांडा, पीछे चल रहे बच्चे को बार बार रुक रुक कर पीछे देखते हुए नजर आए। मॉडर्ना और मर्क की mRNA कैंसर वैक्सीन ने लेट स्टेज ट्रायल में पाई सफलता, मेलानोमा के मरीजों में कैंसर लौटने का खतरा हुआ कम। मरीज के ट्यूमर के खास जेनेटिक म्यूटेशन को टारगेट करती है वैक्सीन, इससे इम्यून सिस्टम कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर करता है हमला। करीब 1 सदी से जारी है कैंसर की वैक्सीन बनाने की कोशिशें, सफलता को माना जा रहा है इलाज के नए दौर की शुरुआत। mRNA वैक्सीन को मर्क की कैंसर दवा केट्रूडा के साथ दिया गया। दोनों मिलाकर शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया को कैंसर के खिलाफ मजबूत करते हैं। अमेरिका में वैक्सीन को अगले साल तक मंजूरी मिलने की जताई जा रही है उम्मीद। अब फेफड़े, किडनी और अग्नाशय के कैंसर में भी होगा इसका परीक्षण। स्पेन में मार्को मिजेची ने तोड़ा लैप रिकॉर्ड, एरागॉन जीपी में पोल पोजीशन कर कब्जा। एरागॉन जीपी में मिजेची की धमाकेदार रफ्तार, 1:44 में बनाया नया लैप रिकॉर्ड। मार्क मार्करेज दूसरे स्थान पर रहे, एलेक्स मार्करेज ने हासिल की तीसरी पोजीशन। मार्करेज बंधुओं ने फ्रंट रो में बनाई थी जगह। अमेरिका में घरों तक पहुंच रहे भूखे भालू, खाने की तलाश में इंसानी बस्तियों का कर रहे हैं रुख। घर में आमने सामने हुए इंसान और भालू, कुछ देर तक चलता रहा स्टेयरिंग मैच। अमेरिका में भालुओं की बढ़ती दस्तक से प्रशासन सतर्क।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: शनि का कौन सा योग व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है? शनि का कौन सा योग विवाह के बाद तरक्की तो देता है लेकिन अपने से बड़ी उम्र का जीवन साथी भी दे सकता है? और शनि का कौन सा शुभ योग विलंब के बावजूद बड़ी सफलताएं देता है? कौन से हैं शनि के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो पहले तो शायद आपको थोड़ा हैरान कर सकती है लेकिन अगले ही पल आपके चेहरे पे मुस्कान भी ला देगी। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बिल्लियों की कहानी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कोई अपनी अदा से लोगों का दिल जीत रहा है तो कोई अपने कारनामों से इंटरनेट पर छाई हुई है। और देखिए खास बात तो यह है कि इन वायरल बिल्लियों की लिस्ट में एक नाम भारत की बिल्ली का भी है। तो चलिए बिना देर के मिलवाते हैं आपको इन इंटरनेट सेंसेशन बिल्लियों से जिनकी मासूम शक्ल और अनोखी अदाएं लोगों को बना रही हैं अपना फैन।
8: हर पल चौकन्नी पैनी निगाहें, गंभीर जैसी दिखने वाली सूरत, चुस्त और चौकस वितरत, ये वह अनोखी बिल्ली है जिसका जिक्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहने वाली एक जिंजर कैट है। ये बिल्ली अक्सर मुंबई मेट्रो की रेड लाइन यानी लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन के एंट्री गेट पर बैठी रहती है, जो कभी कभार घूमती फिरती भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये मेट्रो स्टेशन पर हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही हो। मेट्रो के एक मुसाफिर संदेश सामंत ने इस बिल्ली की तस्वीर खींची और मजे लेने के लिए MMMOCL यानी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना सैलरी के काम कर रही इस बिल्ली की कर्तव्य निष्ठा देखते हुए इसको कोई सरकारी पद मिलना चाहिए। MMMOCL ने भी इससे कदम आगे बढ़कर मुसाफिर की सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक में ही इस बिल्ली को चीफ फ्लाइंग ऑफिसर यानी CFO का मानद पद देने का ऐलान भी कर दिया। बहरहाल ये बिल्ली अब यात्रियों के बीच खास पहचान बना चुकी है। लोग इसे दुलारते भी हैं और ये अपनी ड्यूटी भी पूरी जिम्मेदारी से करती नजर आती है। वैसे तो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर बिल्लियां, कुत्ते और बंदर अक्सर आराम करते पाए जाते हैं, लेकिन इस बिल्ली की तो बात ही जुदा है। ये वजह है कि अब इसे चीफ फ्लाइंग ऑफिसर का खास सेलिब्रिटी स्टेटमेंट भी मिल गया है। मुंबई मेट्रो के CFO के पास न कोई कार्यालय है, न पहचान पत्र और न ही तय ड्यूटी का समय, लेकिन इतना जरूर है कि गुंडावली स्टेशन इन दिनों उसकी पंजों वाली निगरानी में है। मुंबई के वारा जिंजर कैट जैसी अनोखी बिल्लियां चीन के गासू में भी है। गासू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 बिल्लियों के लिए शानदार कैट शेल्टर बनाया गया है। इसी साल इनके बारे में खबर वायरल हुई तो प्रशासन ने इन्हें चीफ माउसर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पदवी से नवाज दिया। एयरपोर्ट के गेट D58 के नजदीक इसके लिए कैट शेल्टर के रूप में खास ग्लास रूम बनाया गया है, जिसे माउस कैचिंग ऑफिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर इन बिल्लियों के लिए बकायदा बिस्तर और दूसरी सुविधाएं मौजूद है, जहाँ ये आराम फरमाती दिखती है। एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए ये बिल्लियों का ये बसेरा अजूबा तो है, लेकिन यादगार फोटो स्पॉट भी है। सिर्फ भारत और चीन में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में भी एक बिल्ली को वाला सरकारी अफसर का दर्जा दिया गया है। लैरी नाम की ये बिल्ली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तैनात है। इसे चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस की पदवी दी गई है। ये बिल्ली 2011 से यहाँ मौजूद है और अब तक 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी है। सोशल मीडिया पर बकायदा इसके इंस्टा फैन अकाउंट और अनऑफिशियल एक्स अकाउंट भी हैं, जिन पर इसके बारे में जानकारी और तस्वीरें पोस्ट की जाती है। इसी तरह बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पालतू बिल्ली मैक्सिमस भी सोशल मीडिया पर काफी शोहरत बटोर चुकी है। ये बिल्ली अक्सर PM बार्ट डी वेवर के साथ अपनी बॉन्डिंग के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बिल्ली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। बेल्जियम के PM बार्ट डी वेवर को काफी गंभीर और सख्त नेता माना जाता है, लेकिन मैक्सिमस के साथ उनकी तस्वीरें आम जनता के बीच उनकी संवेदनशील और मिलनसार छवि पेश करने में मददगार है। बिल्लियों को अक्सर कुत्तों के ही समान पालतू और वफादार माना जाता है। कुत्ते जहां बाहर गतिविधियों में माहिर माने जाते हैं, वहीं बिल्लियों की पहचान अलहदा है, इसलिए इन्हें भी इंसान का बेहतरीन साथी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: नेपाल से आई राहत वाली खबर, हाइड्रो पावर टनल में फंसे चार और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2465 लोगों का किया एयरलिफ्ट, करीब 170 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर उकेरी 20 फीट चौड़ी रेत की भावुक कलाकृति, पुरी के तट पर प्रेस फॉर नेपाल का दिया संदेश, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास शो में गुड लक टुडे में हम बात करने जा रहे हैं शनि के शुभ योग की। शनि के शुभ योग कब बनते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में।
1: अगर आपको हमेशा नौकरी से संबंधित समस्या लगी रहती हो, नौकरी में हमेशा दिक्कत रहती हो, तो दो काम करें। एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करने लगें तो आपकी नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएंगी।
0: चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 30 अगस्त 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:36 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं हमारे जीवन में शनि की भूमिका के बारे में। पंडित जी, हमारे जीवन में शनि की भूमिका क्या रहती है?
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के शुभ योगों के बारे में और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की भूमिका क्या है। देखिए, शनि को नवग्रहों में सेवक कहा जाता है, नवग्रहों में सेवा का स्वामी है। शनि को न्याय का अधिपति, न्याय का स्वामी भी कहा जाता है। शनि अनुशासन और कठोरता का ग्रह माना जाता है और शनि जीवन में कानून से, नौकरी से, टेक्नोलॉजी से और संघर्ष से संबंध रखता है। अगर आपकी कुंडली में शनि के शुभ योग हैं तो आप जीवन में प्रगति जरूर करेंगे, जीवन में ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचेंगे। हालांकि शनि के शुभ योगों का प्रभाव थोड़ा विलंब से होता है। अगर शनि शुभता देते हैं जीवन में तो शुभ परिणाम भी थोड़े विलंब से आते हैं।
0: और चलिए आगे बढ़ने से पहले अब वक्त हो चला है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में जानने का।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या आपको हो सकती है, वाद विवाद में सावधानी रखें, संतान पक्ष का ध्यान दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा।

0: मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शुभ समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि शश योग क्या होता है और इसका हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है।
0: शनि के शुभ योगों में सबसे पहला शुभ योग है शश योग। क्या होता है ये, क्या प्रभाव है इसका? देखिए, ये शनि का पंच महापुरुष योग है। ज्योतिष में 5 ग्रहों से अलग अलग पंच महापुरुष योग बनते हैं जो व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो शश योग शनि का पंच महापुरुष योग है। शनि अगर कुंडली में मकर, कुंभ या तुला राशि में हो तो ये योग बन जाता है, लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए शनि लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर शनि लग्न से केंद्र में होगा, मकर कुंभ या तुला में होगा, तो शश नामक योग बनेगा। इस योग के होने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति बहुत छोटे स्तर से उठकर, बहुत निम्न स्तर से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ये योग व्यक्ति को धन, संपन्नता, संपत्ति जरूर देता है, लेकिन बड़े संघर्ष के बाद। ये योग धन तो देगा, लेकिन जीवन में मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। अगर कुंडली में ये योग बनता हो तो अपने से छोटों का हमेशा सम्मान करिए। अगर पंच महापुरुष योग शनि का आपकी कुंडली में है तो निर्बलों का, अपने से छोटों का आप जितना सम्मान करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर परिणाम ये योग आपको दे पाएगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में जानने का।
0: कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो

जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी आज का पहला प्रश्न हितेश मेहता जी ने लिखा है, मुंबई से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 27 मई 1999, 3:50 AM मुंबई महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटी का करियर कैसा रहेगा, उसका विवाह कब होगा और कैसा होगा। हितेश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मेष लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। अगर आपकी बेटी कानून के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से आपकी बेटी को लाभ होगा। आपकी बेटी की कुंडली मांगलिक है, इसीलिए विवाह के पहले कुंडली मिला लेनी चाहिए और आपकी बेटी का विवाह उनकी स्वयं की इच्छा से वर्ष 2028 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके बेहतर करियर और जीवन के लिए इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः इनको माणिक्य पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी अगला प्रश्न भावना ने हमें दिल्ली से लिखा है, 13 मई 1982 का जन्म है, 1:05 मध्य रात्रि, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे जीवन में संघर्ष बहुत है, जीवन में सुधार कब तक होगा, भविष्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा होगा। भावना, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य की ज्यादातर दिक्कतें देखो मानसिक हैं। चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, चिंताएं और तनाव बहुत है, जिस वजह से आपकी सेहत बिगड़ रही है। कुंडली के हिसाब से आपका बेहतर समय अप्रैल 2027 के बाद शुरू होगा और उसके बाद जीवन आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सातवें स्थान पर शनि बैठे हुए हैं तो इसका आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है।
0: अगर कुंडली के सातवें भाव में शनि बैठ जाए तो ये भी शनि की एक शुभता है। इसका प्रभाव क्या है? देखिए, कुंडली के सातवें खाने में, सातवें भाव में अगर शनि बैठे तो शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाता है। यहां पर बैठा हुआ शनि सामान्यतः व्यक्ति को धनवान बना देता है, लेकिन ये शनि व्यक्ति के विवाह में विलंब भी करता है और कभी कभी व्यक्ति की शादी अपने से बड़े उम्र की लड़की या लड़के से करवा देता है। सप्तम भाव में अगर शनि हो तो व्यक्ति कर्मठ और अपने परिश्रम से आगे बढ़ने वाला होता है। और सप्तम भाव में अगर शनि हो तो ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद उदित हो जाता है। सप्तम भाव में अगर शनि बैठा हो तो नियमित रूप से शनि देव की पूजा करनी चाहिए। रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और शनिवार को निरंतर दान करना चाहिए। ऐसा करने से सातवें भाव के शनि का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में जान लेने का वक्त है।
0: तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय प्रयास करने से आपका बन जाएगा। नौकरी में कुछ बदलाव होगा। धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। पड़ोसियों के साथ विवाद और समस्या हो सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि और शुक्र का योग है तो इसका आपके जीवन पर किस तरह से असर पड़ने वाला है।
0: देखिए, शनि और शुक्र का जो योग है, शनि और शुक्र का जो संबंध है, ये भी कुछ विशेष स्थितियों में जीवन में शुभता पैदा करता है। शनि स्थिरता का स्वामी है और शुक्र वैभव का स्वामी है। दोनों का अगर संबंध बनता है तो कुंडली में एक शुभ योग आसानी से बन जाता है। ये योग तभी प्रभावशाली होता है जब शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों। शुक्र पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तब ये योग नहीं बनेगा। शुक्र शनि का संबंध अगर तुला लग्न में या वृषभ लग्न में बने तो इसके परिणाम सर्वोत्तम होंगे, इसके परिणाम सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। शनि शुक्र का अगर अनुकूल संबंध हो तो व्यक्ति को राज्य सुख की और अपार वैभव की प्राप्ति होती है। अगर कुंडली में ये योग बना हुआ है तो नियमित रूप से निर्धनों को क्वाइंस का यानी सिक्कों का अगर आप दान करें तो आपको लाभ होगा।
1: और अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, काफी व्यस्तता इस समय आपकी बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

काम बन जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: आएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपका तीसरा सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल करके पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, तीसरा सवाल आज का किसका रहने वाला है?
0: जी, अगला प्रश्न पंकज जी ने हमें लिखा है और पंकज जी हमें इंदौर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 मार्च 1985। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है इंदौर। पंकज कह रहे हैं कि कुछ समय पहले तक मैं नौकरी कर रहा था, अभी मेरी नौकरी चली गई है, तो क्या अब आगे मुझे कोई व्यापार करना चाहिए और किस चीज का मैं व्यापार करूं तो मेरे लिए बेहतर होगा? पंकज, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अब व्यापार में जाना चाहिए और अगर अब आप खाने पीने की चीजों का, कपड़ों का, दवाइयों का ऐसा कोई व्यापार करें तो इसमें आपको सफलता मिलेगी और बिल्कुल सही समय है, आप अपने व्यापार का आरंभ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अकेले व्यापार करिएगा, पार्टनरशिप में मत जाइएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज के चौथे और अंतिम सवाल का, आपका सवाल। पंडित जी, चौथा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, अंतिम प्रश्न आकांक्षा ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिखती हैं। आकांक्षा की जन्म तारीख है 3 सितंबर 1994। जन्म का समय सुबह के 7:55। जन्म स्थान है प्रयागराज। आकांक्षा कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आकांक्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और अब से लेकर के जून 2027 के पहले आपकी शादी होनी चाहिए। प्रयागराज के आसपास में ही आपके विवाह होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपका क्रोध और आपकी वाणी आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती है। एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए आज हमने पंडित जी से जान लिया कि शनि के शुभ योग में क्या कुछ असर पड़ता है। अब जान लेते हैं कि अगर हमारी कुंडली में शनि का कोई अशुभ योग बन रहा है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है।
0: जी देखिए, शनि की अशुभता आपके जीवन में है, इसका सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है, जो प्रभाव है, वो ये है कि आप जीवन में निरंतर संघर्ष करते जाएं और आपको सफलता बिल्कुल ना मिले। शनि की शुभता में भी संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन शनि की शुभता में संघर्ष के बाद के परिणाम बड़े बेहतर होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि का कोई अशुभ योग है जिसकी वजह से आपका संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है, निरंतर चलता चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले या तो भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की खूब उपासना करिए। दूसरा, निर्धनों की सेवा सहायता दान करिए। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करें, अपना खान पान, अपना आचरण शुद्ध और सात्विक रखें, तो शनि के अशुभ योग का बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 30 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 30 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में स्थिरता आएगी, धन और कर्ज की समस्या में सुधार होगा, विवाह और संतान के मामलों में हालांकि विलंब होगा, स्वास्थ्य में आपके थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि जब हम सामान्यतः पंचामृत बनाते हैं तो उसमें तुलसी दल डालते हैं, पंचामृत में तुलसी दल कब नहीं डालना चाहिए? अगर पंचामृत भगवान विष्णु या उनके अवतारों को अर्पित करना है तो उसमें तुलसी दल डालना आवश्यक होता है। लेकिन अगर पंचामृत शिव जी को अर्पित करना है तो इसमें भूल कर भी तुलसी दल नहीं डालना चाहिए। जो पंचामृत शिव जी को अर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि 30 अगस्त 2026 यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 30 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की गुडलक राशि के बारे में जान लेने का।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी किस कमजोरी पर ध्यान दें और क्या जीवन में जरूर करें। आज की गुडलक राशि है धनु। आपको अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आपको हमेशा विनम्र होने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा रहेगा।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या होगा।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य गड़बड़ है, सूर्य के कारण आपको स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। जल अर्पित करने के बाद जरा सा गुड़ का सेवन करिए और हर रविवार हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, आपके लिए बेहतर होगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: दिल्ली के सांस्कृतिक मंच पर एक बार फिर भक्ति प्रेम और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए राजधानी के सबसे फेमस कमानी ऑडिटोरियम में डांस ड्रामा कृष्ण एक बार फिर परफॉर्म किया जा रहा है। 5 दशक का सफर पूरा कर चुके इस चर्चित डांस ड्रामा का मंचन जन्माष्टमी तक यानी कि 4 सितंबर तक किया जाएगा। इस विशेष 50वें वर्ष के संस्करण में कृष्ण के गोकुल और वृंदावन के दिनों से लेकर राधा कंसवध और महाभारत के विराट प्रसंग तक की कथा मंच पर उतारी जाएगी।

0: घुंघरुओं की झंकार, रंगों की फुहार, मंच पर साक्षात उतरते भगवान द्वारकाधीश। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध कमानी ऑडिटोरियम की हैं, जहां रामलीला के तर्ज पर मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का भव्य आगाज हो चुका है। भक्ति और कला के अद्भुत संगम से भरपूर 50 सालों से चला आ रहा मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर से लौट आया है। अपने 50 साल पूरे करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू रहा ये शो कृष्ण जन्माष्टमी यानी 4 सितंबर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है।
1: तो सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का तो ये पहली बार किया हमने, करीब 20-25 साल पहले। हम चाहते थे कि लोगों को मालूम हो कृष्ण की जिंदगी के बारे में, तो अब वो चीज़ ही नहीं है कि जो लोग जाते हमने वो रखे जो लोग नहीं जाते। उदाहरण के लिए जैसे गांधारी का शाप इत्यादि बहुत सारे, और दायकों और बायकिंग स्टेट में उसमें इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन है, जिसे अगर लोग हिंदी ना समझ पाए तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद है।
0: इस डांस ड्रामा में दर्शक न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की मनमोहक झलकियां देखेंगे, बल्कि कृष्ण जन्म से लेकर बाल लीला, अलौकिक रास लीला और महाभारत में गीता के सार तक जीवन के हर पहलू का ज्ञान सीख सकेंगे।

0: पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन और शशिधरन नायर की कोरियोग्राफी में तैयार ये शो कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत की गीता सार तक का सफर तय करता है। शास्त्रीय नृत्य, अद्भुत सेट और लाइट इफेक्ट्स, हाथ से बनी भव्य पोशाकें और अनूठे लाइव स्टेज डिजाइन का एक ऐसा संगम जो दर्शकों को सीधा द्वापर युग में ले जाता है।
1: इवेंट जो है ये पूरे श्री कृष्णा की कथा 2 घंटे 15 मिनट में बताती
2: है।
1: पूरा ट्रेडिशनल फॉर्म में है, वो ट्रेडिशनल नहीं जो हम बरसाना में या नौटंकी टाइप का देखते हैं, ये पूरा क्लासिकल डांस नृत्य संरचना है, डांस ड्रामा है। इसमें हम कृष्ण जी के जन्म से उनके विश्व रूप तक दिखाते हैं, तो इसमें हम महाभारत भी दिखाते हैं क्योंकि महाभारत में जो भगवद गीता का उनका उच्चारण था जो कृष्ण उन्होंने सिखाया, जो हम आजकल की चाहते हैं कि हम भगवद गीता को आज के दिन में उसको हम अडॉप्ट करें, वो हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं।
0: आज के आधुनिक दौर में युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जीवन के मूल्य से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। 4 सितंबर तक चलने वाला ये सांस्कृतिक महाकुंभ इस जन्माष्टमी को और भी खास बनाने के लिए तैयार है। अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति, कला और ज्ञान के इस अनूठे अनुभव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात प्लास्टिक के कचरे से जुड़ी क्रिएटिविटी की कर लेते हैं। यानी कि देखिए, जिस प्लास्टिक को प्रकृति और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, उस पर दिल्ली का एक कपल अपने इनोवेटिव आइडिया के जरिए लगातार प्रहार कर रहा है। उनका स्टार्टअप रिसाइकलिंग के जरिए कचरे में फेंके जा रहे प्लास्टिक से सुंदर और इस्तेमाल करने लायक उत्पाद बना रहे हैं, जिसमें कुर्सियां, डस्टबिन, गमले और यहां तक कि पार्क में बैठने वाले बड़े साइज के बेंच भी शामिल है।

0: धरती के लिए अभिशाप सिंगल यूज प्लास्टिक का, इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंक्रीट, आरसीसी या ग्रेनाइट पत्थर की तरह दिखने वाले ये बेंच और टेबल केवल एक बार इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक से बनाए गए हैं। जल, जमीन और हवा को दूषित करने में प्लास्टिक सबसे आगे है। इसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार ही हो पाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के इस कपल ने प्लास्टिक कचरे को नया स्वरूप दे दिया, जो दिखने और इस्तेमाल में अपने मूल आकार और स्वरूप से ज्यादा खूबसूरत है।
1: दिल्ली में प्लास्टिक एक बेहद बहुत ही बड़ी समस्या है, और वो प्लास्टिक के कचरे की अगर हम बात करें, और अगर उस कचरे का इस्तेमाल दोबारा से किया जाए तो ये कचरा किसी के भी काम आ सकता है। खास तौर पर ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जो है बेहद ही फायदेमंद वाली चीज़ हो सकती है। जिस पर मैं बैठी हूँ ये उसी का एक उदाहरण जो है मैं आपको पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे पीछे भी और जिस पे मैं बैठी हूँ और आसपास भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएगी जो उसी प्लास्टिक के कचरे से जो है बनी है। इसकी जो शुरुआत हुई है उसी प्लास्टिक के कचरे से हुई है जिसको आप और मैं बेकार समझकर जो है फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बेंचेस जो है वो नज़र आ जाएगी, आपको टेबल नज़र आ जाएगी, आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है चीज़ें नज़र आने वाली है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से जो है वो बनाई गई है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको जो है बनाया गया था ताकि इसका इस्तेमाल जो है वापस से किया जा सके। आप इसको किसी भी ओपन स्पेस में रख सकते हो, चाहे इन बेंचेस का, इन टेबल का इस्तेमाल पार्क में किया जा सकता है, स्कूल में किया जा सकता है, किसी भी ओपन स्पेस में जो है इसको लगाया जा सकता है।
0: सड़क, पार्किंग, गार्डन और फर्श को मजबूत बनाने और सुंदर दिखने के लिए कंक्रीट या सीमेंट के छोटे टुकड़े का इस्तेमाल होता है जिसे पेवर ब्लॉक कहा जाता है। इसको बनाने में भी अब प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल होने लगा है।
1: तो आपको यहाँ पे पेमेंट ब्लॉक्स दिख जाएंगे, आपको ये छोटी छोटी इस तरीके की जो टाइल्स जैसे दिखती है पेमेंट ब्लॉक्स जो है वो नजर आ जाएगा। और ये सभी जो है रिसाइकल प्लास्टिक से जो है बनाया गया है, यानी जिस प्लास्टिक को आप और मैं इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं बेकार समझकर, उसी प्लास्टिक को जो है रिसाइकल करके, प्रोसेस करके इस चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों में जो है बदला जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल जो है लंबे समय तक किया जा सके।
0: कंक्रीट की पक्की सड़क के मुकाबले ये लचीली सतह बनाते हैं जिससे जमीन के धंसने पर भी इनमें दरारें नहीं आती हैं। भारी वजन पड़ने पर भी ये आसानी से नहीं टूटते। दिल्ली के रहने वाली सोनल और उनके पति ने प्लास्टिक कचरे के बेहतर इस्तेमाल को अपना लक्ष्य बना लिया। NIT कुरुक्षेत्र से मास्टर्स करने वाले पति पत्नी ने मिलकर एक कॉन्सियस नाम का स्टार्टअप शुरू किया जिसका मकसद प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके ऐसी चीजें तैयार करना है जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों की सुविधा के लिए किया जा सके।
1: इस पहल की शुरुआत की है दिल्ली के इस कपल ने जो इस वक्त मेरे साथ है, सोनल और वैभव मेरे साथ बैठे हैं। सोनल, मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि यह आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि प्लास्टिक वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन प्लास्टिक कम नहीं होता, बट उसको थोड़ा सा कम करने की शायद आपने एक पहल जो है वो शुरू करी है।
2: डेफिनेटली प्लास्टिक में शुरुआत हमारी एक्चुअली कोइंसिडेंटली हुई थी। सो हम दोनों ने एमटेक किया NIT कुरुक्षेत्र से, वैभव का मेजर था एनवायरनमेंट में, तो उसमें ही वॉज स्टडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज जो मेरा एक कॉन्शियस थॉट था टुवर्ड्स डूइंग समथिंग अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी, कोविड के टाइम पर शुरुआत करी स्पेशली, क्योंकि उस टाइम पर हम देख रहे थे कि बहुत सारा सिंगल यूज प्लास्टिक इन द फॉर्म ऑफ PPE किट्स या फिर मास्क कह लीजिए या फिर लोग वैसे भी पैकेजिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो हमने एक कॉन्शियसली थॉट किया कि दिस इज आई फील द बेस्ट टाइम कि हमें कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए एंड ऑल्सो कि हम उसको कुछ कन्वर्ट कर पाएँ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हमें हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटिफाई कर सकें। सो ड्यूरिंग कोविड वी स्टार्टेड।
0: शुरुआत में सोनल और वैभव ने प्लास्टिक के कचरे से घर सजावट का सामान बनाना शुरू किया था, लेकिन बाद में पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उसी के इस्तेमाल पर फोकस कर लिया। यही वजह है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन के लिए वो पिकअप सुविधा भी देते हैं।
2: प्लास्टिक का जो हमारा कलेक्शन का सेटअप है वो हम दिल्ली में बेस्ड एक स्टार्टअप है, सो हमारा जो भी कलेक्शन सेटअप है दैट इज़ इन दिल्ली NCR। लोग हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट होके हमें प्लास्टिक देते हैं, वी प्रोवाइड अ पिकअप सर्विस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ NGO पार्टनर्स हैं जो हमारे बिहाफ में वो कलेक्शन करते हैं और फिर हम उनके थ्रू सोर्सिंग करते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारे वेस्ट वर्कर्स होते हैं, कबाड़ी वाले भैया दीदी लोग होते हैं, सो हम उनसे भी सोर्सिंग करते हैं।
0: पिछले साल महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और गोपनीयता के लिए 1000 से अधिक विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए थे, जिनको सोनल और वैभव की स्टार्टअप कंपनी ने एक संस्था के साथ मिलकर तैयार किया था, जिसमें करीब 5,00,000 किलो प्लास्टिक को रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल किया गया।
3: ये महाकुंभ का ये जो प्रयागराज में हुआ था 2025 में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो हमने इस पे एक थॉट दिया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है और महिलाओं को एक स्पेस सेफ स्पेस मिलेगी चेंज करने के लिए उनको स्नान के बाद में, तो हमने वो चेंजिंग रूम्स बनाए 1,000 वहाँ पे। एक चेंजिंग रूम में लगभग 550 किलो प्लास्टिक को हमने इसमें रिसाइकल किया, 550 किलो, तो लगभग 5,00,000 केजी तक हमने प्लास्टिक को इसमें रिसाइकल करके हमने चेंजिंग रूम्स बनाए इससे।
0: प्लास्टिक से होने वाला कचरा दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करने के बाद खुले में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी की प्रोडक्टिविटी यानी उर्वरता भी घट जाती है। फिर भी देश की एक बड़ी आबादी सिंगल यूज प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण के नुकसान को गंभीरता से नहीं लेती, जिनको जागरूक करने का बीड़ा सोनल और वैभव ने अपने कंधों पर उठाया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए, विदेश की धरती पर जब भारतीय मंदिर आकार लेता है तो ये सिर्फ इमारत नहीं होती, इनके साथ भारत की आस्था, भारत की संस्कृति और संस्कार भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पेरिस के पास बना BAPS स्वामी नारायण मंदिर भी ऐसा ही खूबसूरत पहचान का पात्र है। सितंबर के महीने में BAPS के इस मंदिर का एक भव्य उत्सव के दौरान उद्घाटन कार्यक्रम है। दरअसल स्वामी नारायण मंदिर की खूबसूरती जितनी खास है उतनी ही खास है इसकी कहानी। विदेश में बना ये मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की झलक दिखाता है। यहाँ आने वालों को पूजा के साथ भारत की कला, यहाँ की वास्तुकला और संस्कारों का भी एहसास होता है। यानी 7 समंदर पार भी भारत की मिट्टी की खुशबू और संस्कृति की रोशनी कायम है। तो आइए अब आपको कराते हैं इस भव्य मंदिर के दर्शन।
5: भारतीय मठ मंदिर देश की संस्कृति, परंपराओं का विस्तार और भारतीय विरासत के वैश्विक प्रसार की ही अनमोल संपदा हैं। विदेशों में बने भारतीय मंदिर न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वो भारतीय कला, वास्तुकला, संस्कार और तीज त्योहारों को भी दुनिया भर में पहुंचाने का काम बखूबी निभाते आ रहे हैं। ऐसी ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक संपदा फ्रांस में पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बुसी सेंट जॉर्जेस में खड़ी की गई है, जो BAPS स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के रूप में भारतीय संस्कृति के विस्तार का एक और अध्याय लिखने के लिए तैयार है। BAPS यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसके द्वारा बनाया गया ये मंदिर फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। इसका उद्घाटन अगले महीने यानी सितंबर में होगा। 2 से लेकर 14 सितंबर तक 13 दिन का यहाँ फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित होगा। इस दौरान हिंदू परंपरा, भारतीय कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। 2 से लेकर 13 सितंबर तक खास तौर से यहाँ वैदिक महायज्ञ आयोजित होगा। उद्घाटन और उत्सव कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदू समुदाय और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के शामिल होने की काफी उम्मीद है। समझाया जा रहा है कि इस दौरान आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और साथ ही पेरिस की धरती पर हिंदू मंदिर बनने की कहानी को भी समझने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि फ्रांस में हिंदू मंदिर बनाने का विचार साल 1970 में आया था। इसके करीब 25 साल बाद 1995 में पेरिस में मंदिर बनाने की योजना पर काम आगे बढ़ा। साल 2017 में बुसी सेंट जॉर्जेस में मंदिर के लिए जमीन मिली, जिसके बाद साल 2021 में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और आखिरकार करीब 56 साल बाद अब 2026 में मंदिर बनकर तैयार है। पेरिस के पास बना ये स्वामी नारायण मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होगा, बल्कि यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 50 के दशक से ऊपर का समय लगाते हुए इस मंदिर को बनाने में काफी मेहनत और मेधा का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर को बनाने में भारत से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें भारत में करीब 1000 साल पुरानी नक्काशी की तकनीकों से तैयार किया गया। कई हिस्सों पर तो कारीगरों ने हाथ से बारीक नक्काशी की है। मंदिर निर्माण के काम में भारतीय कारीगरों के साथ फ्रांस के विशेषज्ञ भी शामिल रहे, जिनमें नोट्रे डैम कैथेड्रल की मरम्मत से जुड़े कारीगर भी थे। इस मंदिर में भारतीय शिल्पकला और फ्रांस की आधुनिक निर्माण तकनीक का मेल भी देखने को मिलता है। वहीं मंदिर की संरचना में गुंबद, स्तंभ और शिखर जैसी पारंपरिक हिंदू वास्तुकला भी शामिल है। बता दें कि बैप्स के बनाए गए सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर में भी अक्षरधाम परिसर है। दिल्ली का अक्षरधाम पारंपरिक भारतीय शैली में बनाया गया है, जिसे बनाने में हजारों कारीगरों और स्वयंसेवकों ने काम किया था। बैप्स के अनुसार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को पारंपरिक वास्तु और शिल्प परंपराओं के अनुसार तैयार किया गया। बेशक एक वैश्विक हिंदू संस्था के रूप में बैप्स न सिर्फ धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सेवा भी करता रहा है। इस तरह से भारत के अलावा विदेशी धरती पर भी ये संस्था हिंदू धर्म के मूल्यों और संस्कारों को सींच रही है। बैप्स के मंदिर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में हैं, जहां पूजा और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भारतीय संस्कृति, भाषा, संगीत, कला और बच्चों से जुड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। बैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि गुजरात के बोचासन में स्वामी नारायण परंपरा को मानने वाले शास्त्री जी महाराज ने ही साल 1907 में इस संस्था को बनाया। मौजूदा वक्त में संस्था के प्रमुख महंत स्वामी महाराज हैं। बैप्स के दुनिया भर में 1300 से ज्यादा मंदिर हैं और इसका नेटवर्क 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, और पेरिस के पास बना बैप्स स्वामी नारायण मंदिर भी इसी वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। निश्चित तौर पर पेरिस जैसे वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय पारंपरिक वास्तुकला और हिंदू आध्यात्मिक परंपरा का ये नया केंद्र भारतीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। यही वजह है कि सितंबर में होने वाला मंदिर महोत्सव इस लंबे निर्माण सफर के समापन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

कान्हा आ रहे हैं तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर, नंद किशोर, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नंद के लाल गोपाल, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। आज से बस कुछ ही दिनों के बाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर उनकी कर्म भूमि यानी कि द्वारका तक कृष्ण कन्हैया वंशी बजैया के जन्म पर बधाइयां और आने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है। इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है, तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रज मंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है। लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है, तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में

0: छह मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।
1: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोकमेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोकमेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है, वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक मजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
3: रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना साल भर हर पल चलती रहती है, लेकिन भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है, जब यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
4: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहाँ पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया हुआ लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियाँ की जाती है। बताते हैं इस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियाँ जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
3: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है।
4: तो जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और काफ़ी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनज़र तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है, वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें

0: सितंबर 4 AM टू 12 मिडनाइट का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज़ प्रोविडेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीज़ें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियाँ दी गई है।
1: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहां पर CCTV से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा, ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है, और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियां देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं भगवान है। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।
3: कहा जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा, साधु संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामी युगे युगे, यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असब साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है, जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव। कंस का कारागार, हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे। तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
4: देखिए, यह जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की बस देव क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? कि अज्ञान से हमको दूर होना है।
3: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत, महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छूकर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुंचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिनके बारे में जानकारी आज भी श्रद्धालुओं और भक्तों को भाव विभोर कर देती है। कभी वे अपनी पालनहारी माँ को अपने मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं और दूसरी ओर माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं, जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
4: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही होता है दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
3: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आमतौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन है। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
4: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को शीतल निर्मल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग है वह करुणा का समग्र प्रकाश हमारे अंदर देता है। क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहीं, जन्म कोट यघनाशहि तबहीं, भगवान उनके करोड़ों जन्म का अघनाश कर देते हैं।
3: भाद्रपद माह की अंधेरी रात में प्रकट होकर भगवान ने यही संदेश तो दिया कि जीवन में हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के परम पावन संदेश का जो दिव्य प्रकाश फैलाया, उसकी पवित्र रोशनी से आज भी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: नेपाल से आई राहत वाली खबर, हाइड्रो पावर टनल में फंसे 4 और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों का किया एयरलिफ्ट, करीब 170 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर उकेरी 20 फीट चौड़ी रेत की भावुक कलाकृति। पुरी के तट पर प्रेस फॉर नेपाल का दिया संदेश, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग इसे बिना जांचे हुए बिना परखे हुए सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन पर सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। और नतीजा ये होता है कि लोग इसे बिना सोचे बिना समझे बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक, जहां हम तमाम खबरों के फैक्ट चेक करने वाले हैं। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए हुए वायरल तस्वीरों की, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद के दृश्य हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की होगी जिसको शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अभी का है और पंजाब की भगवंत मान सरकार में सरकारी स्कूल की बदहाली को दिखाता है। क्या है इस वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से जोड़कर दो तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस कोलाज में नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीर को दिखाया गया है। वायरल हो रही तस्वीरों का सच और झूठ क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
6: नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। अब इसी संदर्भ में तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पहली तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है, तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस तस्वीर को तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल, शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। चीन अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, नेपाल त्रासदी का ताजा हाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों का ये कोलाज बनाकर शेयर किया जा रहा है और इसे नेपाल में आई भीषण बाढ़ की तस्वीर बताया जा रहा है। एक तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है, तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल और शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। चाइना अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम वायरल दावे की जांच में जुट गई। हाँ, ये बात सच है कि नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इसी बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीरें इसी बाढ़ की हैं, ये जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने लगातार सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर एडिटेड तस्वीरों को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? जब हमने जांच की है तो क्या कुछ पाया है, इस रिपोर्ट में देखिए।
6: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी, सर्च के जरिए तस्वीरों को खोजा। इस दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये तस्वीरें नजर नहीं आईं। इसके बाद तस्वीरों को गौर से देखने पर हमें इसमें घरों की बनावट और सड़क पर मौजूद वाहनों का स्वरूप भी सामान्य नहीं लगा। इसके बाद हमने तस्वीरों के इस कोलाज को AI डिटेक्शन टूल हाइव डिटेक्ट पर चेक किया। इस दौरान इस टूल ने 90.2% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI जनरेटेड बताया। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के दावे से वायरल हुई तस्वीरों का सच जानने के लिए हमने इसे AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन पर भी जांचा। टूल ने अपने विश्लेषण में कोलाज में मौजूदा तस्वीरों को 99% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। कोलाज में मौजूद तस्वीरों को हमने एक और AI डिटेक्शन टूल 0GPT पर भी जांचा। इस टूल ने 85% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI निर्मित बताया। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के नाम पर वायरल कोलाज में मौजूद तस्वीरें AI जनरेटेड हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: पंजाब के एक सरकारी स्कूल की खराब स्थिति दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो में लड़कियों के टॉयलेट्स की बदहाली दिखाई गई है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग पंजाब के भगवंत मान सरकार के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
7: We'll be right back. ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਫਲੱਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
5: पंजाब के एक सरकारी स्कूल की इस बदहाली को दिखाते हुए शख्स का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाते हुए ये बता रहा है कि लड़कियों के टॉयलेट्स में छत ही नहीं है और न ही पानी की व्यवस्था है। कुछ लोग इस वीडियो को हाल फिलहाल का बताते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी के नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पंजाब में बेटियों के लिए नया फॉर्मूला, पंजाब के लोग दिखा रहे हैं कि केजरीवाल के नए शिक्षा मॉडल की असल हकीकत क्या है। पंजाब बीजेपी ने भी वीडियो को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और लिखा कि छात्राओं के लिए बने शौचालयों की दयनीय स्थिति आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल की खामियों को उजागर कर रही है।
7: शर्म आ रही है, चल वीडियो दिखा दे।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाता है। कुछ लोग इसे अभी का बता रहे हैं और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुट दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को देखा। इस दौरान हमें वीडियो की शुरुआत में स्कूल की बिल्डिंग पर पंजाबी में कुछ शब्द देखने को मिले। जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो ये जानकारी सामने आई कि ये जल्ला है और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में जल्ला गांव है, मतलब वायरल हो रहा वीडियो पंजाब का ही है। लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? जब फैक्ट चेक की टीम ने जांच पड़ताल की तो क्या कुछ पाया है इस रिपोर्ट में देखिए। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम एक YouTube चैनल पर पहुंचे। यहां इसे 6 अगस्त 2018 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। साल 2018 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो फतेहगढ़ साहिब के जल्ला गांव के एक सरकारी स्कूल का है और ये वीडियो सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड नाम के एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया था। पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बीजेपी के दावे का खंडन करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें उस स्कूल का दौरा करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, साफ सुथरे शौचालय और छात्राओं के लिए बने टॉयलेट में सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था दिखाई दे रही है। साफ है कि वायरल वीडियो उस वक्त का है जब आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं थी। हालांकि मौजूदा वक्त की बात करें तो ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जिनके मुताबिक सरकारी दावों के उलट आज भी पंजाब में कुछ स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं तक की कमी है। हालांकि पंजाब ने इस साल नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में केरल को पछाड़कर टॉप रैंक हासिल की है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो साल 2018 का है। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए।

0: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुणे में 22 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं की समस्या भी सुनी और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बात की। इसी से जोड़कर ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पुणे में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में बेटियों की गूंज। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग धड़ल्ले से इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूम रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी था, तो फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए टीम ने सबसे पहले इस वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखा। वीडियो किसी स्टेडियम का लग रहा है जहां पर लोग हाथों में झंडा लिए हुए झूम रहे हैं। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो और 22 अगस्त को पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम की वीडियो की तुलना की तो फर्क साफ नजर आया। इससे यह इशारा मिला कि वायरल हो रहा वीडियो कहीं और का हो सकता है और इसके बाद फैक्ट चेक की टीम को वीडियो में एक जगह मेक्सिको लिखा हुआ नजर आया। साथ ही इस वीडियो में लोगों को मेक्सिको का झंडा लिए हुए भी देखा जा सकता है। ऐसे में हमें वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे के गलत होने का संदेह हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और कार्यक्रम से जुड़े हुए वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है? फैक्ट चेक की टीम की जांच में क्या कुछ सामने आया है इस रिपोर्ट में देखिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक थ्रेड्स अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो मैक्सिको के जोकालो सिटी का है जहां फुटबॉल फैंस मैक्सिको टीम के गोल करने पर जश्न मना रहे थे। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक खेल पत्रकार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर करते हुए बताया गया है कि ये मैक्सिको के जोकालो सिटी में फुटबॉल फैंस के जश्न मनाने का है। प्रोफाइल को खंगालने पर हमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते कई वीडियो भी मिले। जांच के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट को 1 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको ने इक्वाडोर को हराकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई थी। मैक्सिको ने इक्वाडोर को इस मैच में 2-0 से हराया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम के नाम पर वायरल वीडियो मैक्सिको का है। जुलाई 2026 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच हुए फुटबॉल मैच का है जिसमें मैक्सिको ने इक्वाडोर को हरा दिया था। फुटबॉल फैंस इस जीत का जश्न मना रहे थे जिसे अब गलत दावे के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
2: इन दिनों ये बच्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अपने घर के कच्चे आंगन में नंगे पैर खड़ा है। ताज्जुब की बात यह है कि बच्चे ने अपने एक हाथ में केले का गुच्छा पकड़ा हुआ है और दोनों हाथों को पीछे बांध रखा है। इसके बावजूद वो अपनी जांघों, पैरों और सिर के संतुलन से फुटबॉल को लगातार हवा में जगल करता रहता है। गांव के एक साधारण माहौल में बना वीडियो ये साबित करता है कि हुनर किसी सुविधाओं का मोहताज नहीं होता। बच्चे के चेहरे पर न तो कोई झिझक है और न ही एकाग्रता की कमी। वो पूरी मग्नता के साथ नंगे पैरों से फुटबॉल पर ऐसा नियंत्रण दिखाता है जैसा पेशेवर खिलाड़ी सालों के अभ्यास के बाद हासिल करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग बच्चे की कला और एकाग्रता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी से मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। इस वीडियो में पिंक फ्रॉक पहने एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्ची की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

एक पापा ही होते हैं जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में एक बच्ची हाथ में टेलकम पाउडर लेकर अपने भाई के पास जाती है। वो भाई को पाउडर लगाना चाहती है लेकिन भाई मना कर देता है। फिर बच्ची अपनी माँ के पास जाती है, माँ भी मना कर देती है। फिर बच्ची अपने पिता के पास जाती है, पिता लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। बेटी के हाथ में टेलकम पाउडर देखकर पिता मना नहीं करते हैं और आराम से लगा लेते हैं। ये देखकर बेटी खुश हो जाती है और पिता की गोद में बैठकर खूब मस्ती करती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब देख रहे हैं।

0: पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ में आती हैं। चीन में दो शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दिल्ली के सांस्कृतिक मंच पर एक बार फिर भक्ति प्रेम और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए, राजधानी के सबसे फेमस कमानी ऑडिटोरियम में डांस ड्रामा कृष्ण एक बार फिर परफॉर्म किया जा रहा है। 5 दशक का सफर पूरा कर चुके इस चर्चित डांस ड्रामा का मंचन जन्माष्टमी तक यानी कि 4 सितंबर तक किया जाएगा। इस विशेष 50वें वर्ष के संस्करण में कृष्ण के गोकुल और वृंदावन के दिनों से लेकर राधा कंसवध और महाभारत के विराट प्रसंग तक की कथा मंच पर उतारी जाएगी।

0: घुंघरुओं की झंकार, रंगों की फुहार, मंच पर साक्षात उतरते भगवान द्वारकाधीश। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध कमानी ऑडिटोरियम की हैं, जहां रामलीला के तर्ज पर मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का भव्य आगाज हो चुका है। भक्ति और कला के अद्भुत संगम से भरपूर 50 सालों से चला आ रहा मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर से लौट आया है। अपने 50 साल पूरे करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू रहा ये शो कृष्ण जन्माष्टमी यानी 4 सितंबर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है।
1: तो सब जानते हैं ये पहली बार किया हमने करीब 20-25 साल पहले। हम चाहते थे कि लोगों को मालूम हो कृष्ण की जिंदगी के बारे में, तो वो चीज़ ही नहीं है कि जो लोग जाते हमने वो रखे जो लोग नहीं जाते। उदाहरण के लिए जैसे गांधारी का शाप इत्यादि मौसम और दाए को और बाय के स्टेट में उसमें इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन है, जिसे अगर लोग हिंदी ना समझ पाए तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद है।
0: इस डांस ड्रामा में दर्शक न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की मनमोहक झलकियां देखेंगे, बल्कि कृष्ण जन्म से लेकर बाल लीला, अलौकिक रास लीला और महाभारत में गीता के सार तक जीवन के हर पहलू का ज्ञान सीख सकेंगे।

0: पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन और शशिधरन नायर की कोरियोग्राफी में तैयार ये शो कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत की गीता सार तक का सफर तय करता है। शास्त्रीय नृत्य, अद्भुत सेट और लाइट इफेक्ट्स, हाथ से बनी भव्य पोशाकें और अनूठे लाइफ स्टेज डिजाइन का एक ऐसा संगम जो दर्शकों को सीधा द्वापर युग में ले जाता है।
1: जो है ये पूरे श्री कृष्णा की कथा 215 मिनट में बता
2: दी,
1: पूरा ट्रेडिशनल फॉर्म में है। वो ट्रेडिशनल नहीं है जो हम बरसाना में या नौटंकी टाइप का देखते हैं, ये पूरा क्लासिकल डांस नृत्य संरचना है, डांस ड्रामा है। इसमें हम कृष्ण जी के जन्म से उनके विश्व रूप तक दिखाते हैं, तो इसमें हम महाभारत भी दिखाते हैं, क्योंकि महाभारत में जो भगवद गीता का उनका उच्चारण था, जो कृष्ण उन्होंने सिखाया, जो हम आजकल के चाहते हैं कि हम भगवद गीता को आज के दिन में उसको हम अडॉप्ट करें, वो हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं।
0: आज के आधुनिक दौर में युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जीवन के मूल्यों से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। 4 सितंबर तक चलने वाला ये सांस्कृतिक महाकुंभ इस जन्माष्टमी को और भी खास बनाने के लिए तैयार है। अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति, कला और ज्ञान के इस अनूठे अनुभव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम आपका इंतजार कर रहा है।

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: नेपाल से आई राहत वाली खबर, हाइड्रो पावर टनल में फंसे 4 और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना, तलाशती रेस्क्यू टीम। नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों का किया एयरलिफ्ट, करीब 170 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर उकेरी 20 फीट चौड़ी रेत की भावुक कलाकृति। पुरी के तट पर प्रेस फॉर नेपाल का दिया संदेश, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत।

कान्हा आ रहे हैं, तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर, नंद किशोर, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नंद के लाल गोपाल, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। आज से बस कुछ ही दिनों के बाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर उनकी कर्म भूमि यानी कि द्वारका तक कृष्ण कन्हैया वंशी बजैया के जन्म पर बधाइयां और आने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है। इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निशित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है, तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो करके जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य

0: और दिव्य तैयारियां चल रही है। वही वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है, लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है, तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं, साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
1: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पर रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहां पर लोग 34 बड़ी

निकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।

0: 2 तारीख को मिले का इनोग्रेशन है। इनोग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोकमेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोकमेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है, वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
1: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक मजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
3: रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना साल भर हर पल चलती रहती है, लेकिन भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है, जब यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
4: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहाँ पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया हुआ और लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियाँ की जाती है। बताते हैं इस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियाँ जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
3: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है।
4: तो जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और काफ़ी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनज़र तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 MM का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज़ प्रोविडेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीज़ें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियाँ दी गई है।

0: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहाँ पर सीसीटीवी से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। वेदव्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं भगवान है। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।
2: कहा जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा, साधु संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामी युगे युगे यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असब साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है। जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव, कंस का कारागार, हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे, तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
3: देखिए, यह जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की वसुदेव क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? कि अज्ञान से हमको दूर होना है।
2: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छूकर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुंचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिनके बारे में जानकारी आज भी श्रद्धालुओं और भक्तों को भाव विभोर कर देती है। कभी वे अपनी पालनहारी माँ को अपने मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं, और दूसरी ओर माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं, जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
3: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही होता है दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
2: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आमतौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
3: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को शीतल निर्मल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग है वह करुणा का समग्र प्रकाश हमारे अंदर देता है। क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं, जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यघ नाशहि तबहि, भगवानों के करोड़ों जन्म का अघ नाश कर देते हैं।
2: भाद्रपद माह की अंधेरी रात में प्रकट होकर भगवान ने यही संदेश तो दिया कि जीवन में हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के परम पावन संदेश का जो दिव्य प्रकाश फैलाया, उसकी पवित्र रोशनी से आज भी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: नेपाल से आई राहत वाली खबर, हाइड्रो पावर टनल में फंसे 4 और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों का किया एयरलिफ्ट, करीब 170 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर उकेरी 20 फीट चौड़ी रेत की भावुक कलाकृति, पुरी के तट पर प्रेस फॉर नेपाल का दिया संदेश, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग इसे बिना जांचे हुए बिना परखे हुए सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन पर सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है, और नतीजा ये होता है कि लोग इसे बिना सोचे बिना समझे बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक, जहां हम तमाम खबरों के फैक्ट चेक करने वाले हैं। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए हुए वायरल तस्वीरों की। जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद के दृश्य हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की होगी जिसको शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अभी का है और पंजाब की भगवंत मान सरकार में सरकारी स्कूल की बदहाली को दिखाता है। क्या है इस वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से जोड़कर दो तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस कोलाज में नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीर को दिखाया गया है। वायरल हो रही तस्वीरों का सच और झूठ क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
5: नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई है जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। अब इसी संदर्भ में तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पहली तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस तस्वीर को तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल, शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। चीन अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, नेपाल त्रासदी का ताजा हाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
8: दरअसल सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों का ये कोलाज बनाकर शेयर किया जा रहा है और इसे नेपाल में आई भीषण बाढ़ की तस्वीर बताया जा रहा है। एक तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल और शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। चाइना अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक की टीम वायरल दावे की जांच में जुट गई। हाँ, ये बात सच है कि नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इसी बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीरें इसी बाढ़ की हैं, ये जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने लगातार सर्च किया लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर एडिटेड तस्वीरों को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। जब हमने जांच की है तो क्या कुछ पाया है इस रिपोर्ट में देखिए।
5: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी, सर्च के जरिए तस्वीरों को खोजा। इस दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये तस्वीरें नजर नहीं आई। इसके बाद तस्वीरों को गौर से देखने पर हमें इसमें घरों की बनावट और सड़क पर मौजूद वाहनों का स्वरूप भी सामान्य नहीं लगा। इसके बाद हमने तस्वीरों के इस कोलाज को AI डिटेक्शन टूल हाइव डिटेक्ट पर चेक किया। इस दौरान इस टूल ने 90.2% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI जनरेटेड बताया। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के दावे से वायरल हुई तस्वीरों का सच जानने के लिए हमने इसे AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन पर भी जांचा। टूल ने अपने विश्लेषण में कोलाज में मौजूदा तस्वीरों को 99% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। कोलाज में मौजूद तस्वीरों को हमने एक और AI डिटेक्शन टूल जीरो GPT पर भी जांचा। इस टूल ने 85% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI निर्मित बताया। हमारी जाँच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के नाम पर वायरल कोलाज में मौजूद तस्वीरें AI जनरेटेड हैं। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
8: पंजाब के एक सरकारी स्कूल की खराब स्थिति दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें इस वीडियो में लड़कियों के टॉयलेट्स की बदहाली दिखाई गई है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग पंजाब के भगवंत मान सरकार के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के एक सरकारी स्कूल की इस बदहाली को दिखाते हुए शख्स का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाते हुए ये बता रहा है कि लड़कियों के टॉयलेट्स में छत ही नहीं है और न ही पानी की व्यवस्था है। कुछ लोग इस वीडियो को हाल फिलहाल का बताते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पंजाब में बेटियों के लिए नया फॉर्मूला, पंजाब के लोग दिखा रहे हैं कि केजरीवाल के नए शिक्षा मॉडल की असल हकीकत क्या है। पंजाब बीजेपी ने भी वीडियो को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और लिखा कि छात्राओं के लिए बने शौचालयों की दयनीय स्थिति आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल की खामियों को उजागर कर रही है।
9: शर्म आ रही है, चल वीडियो दिखा दे।
8: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
9: तानू देख के लग रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट है।
8: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाता है। कुछ लोग इसे अभी का बता रहे हैं और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को देखा। इस दौरान हमें वीडियो की शुरुआत में स्कूल की बिल्डिंग पर पंजाबी में कुछ शब्द देखने को मिले। जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो यह जानकारी सामने आई कि यह जल्ला है और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में जल्ला गांव है। मतलब वायरल हो रहा वीडियो पंजाब का ही है। लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? जब फैक्ट चेक की टीम ने जांच पड़ताल की तो क्या कुछ पाया है इस रिपोर्ट में देखिए।
10: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम एक YouTube चैनल पर पहुंचे। यहां इसे 6 अगस्त 2018 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। साल 2018 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो फतेहगढ़ साहिब के जल्ला गांव के एक सरकारी स्कूल का है और ये वीडियो सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड नाम के एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया था। पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बीजेपी के दावे का खंडन करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें उस स्कूल का दौरा करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, साफ सुथरे शौचालय और छात्राओं के लिए बने टॉयलेट में सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था दिखाई दे रही है। साफ है कि वायरल वीडियो उस वक्त का है जब आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं थी। हालांकि मौजूदा वक्त की बात करें तो ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जिनके मुताबिक सरकारी दावों के उलट आज भी पंजाब में कुछ स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं तक की कमी है। हालांकि पंजाब ने इस साल नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में केरल को पछाड़कर टॉप रैंक हासिल की है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो साल 2018 का है। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
8: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए।

0: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुणे में 22 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं की समस्या भी सुनी और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बात की। इसी से जोड़कर ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पुणे में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में बेटियों की गूंज। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग धड़ल्ले से इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूम रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी था, तो फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए टीम ने सबसे पहले इस वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखा। वीडियो किसी स्टेडियम का लग रहा है जहां पर लोग हाथों में झंडा लिए हुए झूम रहे हैं। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो और 22 अगस्त को पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम की वीडियो की तुलना की तो फर्क साफ नजर आया। इससे यह इशारा मिला कि वायरल हो रहा वीडियो कहीं और का हो सकता है और इसके बाद फैक्ट चेक की टीम को वीडियो में एक जगह मेक्सिको लिखा हुआ नजर आया। साथ ही इस वीडियो में लोगों को मेक्सिको का झंडा लिए हुए भी देखा जा सकता है। ऐसे में हमें वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे के गलत होने का संदेह हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और कार्यक्रम से जुड़े हुए वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है? फैक्ट चेक की टीम की जांच में क्या कुछ सामने आया है इस रिपोर्ट में देखिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक थ्रेड्स अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो मैक्सिको के जोकालो सिटी का है जहां फुटबॉल फैंस मैक्सिको टीम के गोल करने पर जश्न मना रहे थे। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक खेल पत्रकार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर करते हुए बताया गया है कि ये मैक्सिको के जोकालो सिटी में फुटबॉल फैंस के जश्न मनाने का है। प्रोफाइल को खंगालने पर हमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते कई वीडियो भी मिले। जांच के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट को 1 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको ने इक्वाडोर को हराकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई थी। मैक्सिको ने इक्वाडोर को इस मैच में 2-0 से हराया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम के नाम पर वायरल वीडियो मैक्सिको का है। जुलाई 2026 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच हुए फुटबॉल मैच का है जिसमें मैक्सिको ने इक्वाडोर को हरा दिया था। फुटबॉल फैंस इस जीत का जश्न मना रहे थे जिसे अब गलत दावे के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
5: इन दिनों ये बच्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अपने घर के कच्चे आंगन में नंगे पैर खड़ा है। ताज्जुब की बात यह है कि बच्चे ने अपने एक हाथ में केले का गुच्छा पकड़ा हुआ है और दोनों हाथों को पीछे बांध रखा है। इसके बावजूद वो अपनी जांघों, पैरों और सिर के संतुलन से फुटबॉल को लगातार हवा में जगल करता रहता है। गांव के एक साधारण माहौल में बना वीडियो ये साबित करता है कि हुनर किसी सुविधाओं का मोहताज नहीं होता। बच्चे के चेहरे पर न तो कोई झिझक है और न ही एकाग्रता की कमी, वो पूरी मग्नता के साथ नंगे पैरों से फुटबॉल पर ऐसा नियंत्रण दिखाता है जैसा पेशेवर खिलाड़ी सालों के अभ्यास के बाद हासिल करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग बच्चे की कला और एकाग्रता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी से मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। इस वीडियो में पिंक फ्रॉक पहने एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्चे की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

एक पापा ही होते हैं जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में एक बच्ची हाथ में टेलकम पाउडर लेकर अपने भाई के पास जाती है। वो भाई को पाउडर लगाना चाहती है लेकिन भाई मना कर देता है। फिर बच्ची अपनी माँ के पास जाती है, माँ भी मना कर देती है। फिर बच्ची अपने पिता के पास जाती है, पिता लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। बेटी के हाथ में टेलकम पाउडर देखकर पिता मना नहीं करते हैं और आराम से लगा लेते हैं। ये देखकर बेटी खुश हो जाती है और पिता की गोद में बैठकर खूब मस्ती करती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब देख रहे हैं।

0: पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ में आती हैं। चीन में दो शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: दिल्ली के सांस्कृतिक मंच पर एक बार फिर भक्ति प्रेम और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए राजधानी के सबसे फेमस कमानी ऑडिटोरियम में डांस ड्रामा कृष्ण एक बार फिर परफॉर्म किया जा रहा है। 5 दशक का सफर पूरा कर चुके इस चर्चित डांस ड्रामा का मंचन जन्माष्टमी तक यानी कि 4 सितंबर तक किया जाएगा। इस विशेष 50वें वर्ष के संस्करण में कृष्ण के गोकुल और वृंदावन के दिनों से लेकर राधा कंसवध और महाभारत के विराट प्रसंग तक की कथा मंच पर उतारी जाएगी।

0: घुंघरुओं की झंकार, रंगों की फुहार, मंच पर साक्षात उतरते भगवान द्वारकाधीश। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध कमानी ऑडिटोरियम की हैं, जहां रामलीला की तर्ज पर मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का भव्य आगाज हो चुका है। भक्ति और कला के अद्भुत संगम से भरपूर 50 सालों से चला आ रहा मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर से लौट आया है। अपने 50 साल पूरे करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू रहा ये शो कृष्ण जन्माष्टमी यानी 4 सितंबर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है।
1: तो सब जानते हैं ये पहली बार किया हमने करीब 20-25 साल पहले। हम चाहते थे कि लोगों को मालूम हो कृष्ण की जिंदगी के बारे में, तो अब वो चीज ही नहीं है कि जो लोग जाते हमने वो रखे जो लोग नहीं जाते। उदाहरण के लिए जैसे गांधारी का शाप इत्यादि बहुत सारे, और दाएं को और बाएं के स्टेज में उसमें इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन है, जिसे अगर लोग हिंदी ना समझ पाए तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद है।
0: इस डांस ड्रामा में दर्शक न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की मनमोहक झलकियां देखेंगे, बल्कि कृष्ण जन्म से लेकर बाल लीला, अलौकिक रास लीला और महाभारत में गीता के सार तक जीवन के हर पहलू का ज्ञान सीख सकेंगे।

0: पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन और शशिधरन नायर की कोरियोग्राफी में तैयार ये शो कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत की गीता सार तक का सफर तय करता है। शास्त्रीय नृत्य, अद्भुत सेट और लाइट इफेक्ट्स, हाथ से बनी भव्य पोशाकें और अनूठे लाइव स्टेज डिजाइन का एक ऐसा संगम जो दर्शकों को सीधा द्वापर युग में ले जाता है।
1: जो है ये पूरे श्री कृष्णा की कथा 2 घंटे 15 मिनट में बता
2: दी,
1: पूरा ट्रेडिशनल फॉर्म में है। वो ट्रेडिशनल नहीं जो हम बरसाना में या नौटंकी टाइप का देखते हैं, ये पूरा क्लासिकल डांस नृत्य संरचना है, डांस ड्रामा है। इसमें हम कृष्ण जी के जन्म से उनके विश्व रूप तक दिखाते हैं, तो इसमें हम महाभारत भी दिखाते हैं क्योंकि महाभारत में जो भगवद गीता का उनका उच्चारण था, जो कृष्ण उन्होंने सिखाया, जो हम आजकल की चाहते हैं कि हम भगवद गीता को आज के दिन में उसको हम अडॉप्ट करें, वो हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं।
0: आज के आधुनिक दौर में युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जीवन के मूल्य से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। 4 सितंबर तक चलने वाला ये सांस्कृतिक महाकुंभ इस जन्माष्टमी को और भी खास बनाने के लिए तैयार है। अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति, कला और ज्ञान के इस अनूठे अनुभव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम आपका इंतजार कर रहा है।

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: नेपाल से आई राहत वाली खबर, हाइड्रो पावर टनल में फंसे 4 और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों का किया एयरलिफ्ट, करीब 170 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर उकेरी 20 फीट चौड़ी रेत की भावुक कलाकृति। पुरी के तट पर प्रेस फॉर नेपाल का दिया संदेश, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत।

कान्हा आ रहे हैं, तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर नंद किशोर, कृष्ण मुरारी गिरधारी नंद किशोर जाने वाला है। कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया के जन्म पर बधाइयां और आने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है। इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय, जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है, तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो करके जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महा उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है। लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है, तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे है। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हुए आएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुँचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर लें।

0: रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक बजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
0: रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना साल भर हर पल चलती रहती है, लेकिन भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है, जब यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
2: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहाँ पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियाँ की जाती है। बताते हैं इस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियाँ जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है।
2: तो जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और काफ़ी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनज़र तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 MM का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज़ प्रोविडेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीज़ें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियां दी गई है।
0: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहां पर CCTV से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी

0: मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियां देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के आठवें अवतार यानी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं भगवान है। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।
2: कहा जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा, साधु संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामि युगे युगे, यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असब साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है। जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव, कंस का कारागार हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे। तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
3: देखिए, यह जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की बसदियों क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? या ज्ञान से हमको दूर होना है।
2: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छू कर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुंचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिनके बारे में जानकारी आज भी श्रद्धालुओं और भक्तों को भाव विभोर कर देती है। कभी वे अपनी पालनहारी माँ को अपने मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं, और दूसरी ओर माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं, जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
3: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही होता है दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
2: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आमतौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन है। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
3: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को शीतल निर्मल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग है वह करुणा का समग्र प्रकाश हमारे अंदर देता है। क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं, जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहीं, जन्म कोट यघनाशहि तबहीं, भगवान उनके करोड़ों जन्म का अघनाश कर देते हैं।
2: भाद्रपद माह की अंधेरी रात में प्रकट होकर भगवान ने यही संदेश तो दिया कि जीवन में हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के परम पावन संदेश का जो दिव्य प्रकाश फैलाया, उसकी पवित्र रोशनी से आज भी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: नेपाल से आई राहत वाली खबर, हाइड्रो पावर टनल में फंसे 4 और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों का किया एयरलिफ्ट, करीब 170 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर उकेरी 20 फीट चौड़ी रेत की भावुक कलाकृति, पुरी के तट पर प्रेस फॉर नेपाल का दिया संदेश, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है, और लोग इसे बिना जांचे हुए बिना परखे हुए सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन पर सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है, और नतीजा ये होता है कि लोग इसे बिना सोचे बिना समझे बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक, जहां हम तमाम खबरों के फैक्ट चेक करने वाले हैं। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए हुए वायरल तस्वीरों की, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद के दृश्य हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की होगी जिसको शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अभी का है और पंजाब की भगवंत मान सरकार में सरकारी स्कूल की बदहाली को दिखाता है। क्या है इस वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से जोड़कर दो तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस कोलाज में नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीर को दिखाया गया है। वायरल हो रही तस्वीरों का सच और झूठ क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
9: नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई है जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। अब इसी संदर्भ में तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पहली तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस तस्वीर को तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल, शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। चीन अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, नेपाल त्रासदी का ताजा हाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
8: दरअसल सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों का ये कोलाज बनाकर शेयर किया जा रहा है और इसे नेपाल में आई भीषण बाढ़ की तस्वीर बताया जा रहा है। एक तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल और शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। चाइना अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक की टीम वायरल दावे की जांच में जुट गई। हाँ, ये बात सच है कि नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इसी बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीरें इसी बाढ़ की हैं, ये जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने लगातार सर्च किया लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर एडिटेड तस्वीरों को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? जब हमने जांच की है तो क्या कुछ पाया है इस रिपोर्ट में देखिए।
9: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी, सर्च के जरिए तस्वीरों को खोजा। इस दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये तस्वीरें नजर नहीं आई। इसके बाद तस्वीरों को गौर से देखने पर हमें इसमें घरों की बनावट और सड़क पर मौजूद वाहनों का स्वरूप भी सामान्य नहीं लगा। इसके बाद हमने तस्वीरों के इस कोलाज को AI डिटेक्शन टूल हाइव डिटेक्ट पर चेक किया। इस दौरान इस टूल ने 90.2% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI जनरेटेड बताया। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के दावे से वायरल हुई तस्वीरों का सच जानने के लिए हमने इसे AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन पर भी जांचा। टूल ने अपने विश्लेषण में कोलाज में मौजूदा तस्वीरों को 99% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। कोलाज में मौजूद तस्वीरों को हमने एक और AI डिटेक्शन टूल जीरो GPT पर भी जांचा। इस टूल ने 85% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI निर्मित बताया। हमारी जाँच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के नाम पर वायरल कोलाज में मौजूद तस्वीरें AI जनरेटेड हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
8: पंजाब के एक सरकारी स्कूल की खराब स्थिति दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें इस वीडियो में लड़कियों के टॉयलेट्स की बदहाली दिखाई गई है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग पंजाब के भगवंत मान सरकार के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के एक सरकारी स्कूल की इस बदहाली को दिखाते हुए शख्स का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाते हुए ये बता रहा है कि लड़कियों के टॉयलेट्स में छत ही नहीं है और न ही पानी की व्यवस्था है। कुछ लोग इस वीडियो को हाल फिलहाल का बताते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पंजाब में बेटियों के लिए नया फॉर्मूला, पंजाब के लोग दिखा रहे हैं कि केजरीवाल के नए शिक्षा मॉडल की असल हकीकत क्या है। पंजाब बीजेपी ने भी वीडियो को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और लिखा कि छात्राओं के लिए बने शौचालयों की दयनीय स्थिति आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल की खामियों को उजागर कर रही है।
10: शर्म आ रही है, चल वीडियो दिखा दे।
8: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाता है। कुछ लोग इसे अभी का बता रहे हैं और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को देखा। इस दौरान हमें वीडियो की शुरुआत में स्कूल की बिल्डिंग पर पंजाबी में कुछ शब्द देखने को मिले। जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो ये जानकारी सामने आई कि ये जल्ला है और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में जल्ला गांव है, मतलब वायरल हो रहा वीडियो पंजाब का ही है। लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के उस सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? जब फैक्ट चेक की टीम ने जांच पड़ताल की तो क्या कुछ पाया है इस रिपोर्ट में देखिए।
11: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम एक यूट्यूब चैनल पर पहुंचे। यहां इसे 6 अगस्त 2018 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। साल 2018 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो फतेहगढ़ साहिब के जल्ला गांव के एक सरकारी स्कूल का है और ये वीडियो सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड नाम के एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया था। पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बीजेपी के दावे का खंडन करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें उस स्कूल का दौरा करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, साफ सुथरे शौचालय और छात्राओं के लिए बने टॉयलेट में सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था दिखाई दे रही है। साफ है कि वायरल वीडियो उस वक्त का है जब आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं थी। हालांकि मौजूदा वक्त की बात करें तो ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जिनके मुताबिक सरकारी दावों के उलट आज भी पंजाब में कुछ स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं तक की कमी है। हालांकि पंजाब ने इस साल नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में केरल को पछाड़कर टॉप रैंक हासिल की है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो साल 2018 का है। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
12: और दूसरा
8: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए।

0: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुणे में 22 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं की समस्या भी सुनी और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बात की। इसी से जोड़कर ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पुणे में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में बेटियों की गूंज। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग धड़ल्ले से इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूम रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी था, तो फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए टीम ने सबसे पहले इस वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखा। वीडियो किसी स्टेडियम का लग रहा है जहां पर लोग हाथों में झंडा लिए हुए झूम रहे हैं। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो और 22 अगस्त को पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम की वीडियो की तुलना की तो फर्क साफ नजर आया। इससे यह इशारा मिला कि वायरल हो रहा वीडियो कहीं और का हो सकता है और इसके बाद फैक्ट चेक की टीम को वीडियो में एक जगह मेक्सिको लिखा हुआ नजर आया। साथ ही इस वीडियो में लोगों को मेक्सिको का झंडा लिए हुए भी देखा जा सकता है। ऐसे में हमें वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे के गलत होने का संदेह हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और कार्यक्रम से जुड़े हुए वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है? फैक्ट चेक की टीम की जांच में क्या कुछ सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक थ्रेड्स अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो मैक्सिको के जोकालो सिटी का है जहां फुटबॉल फैंस मैक्सिको टीम के गोल करने पर जश्न मना रहे थे। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक खेल पत्रकार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर करते हुए बताया गया है कि ये मैक्सिको के जोकालो सिटी में फुटबॉल फैंस के जश्न मनाने का है। प्रोफाइल को खंगालने पर हमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते कई वीडियो भी मिले। जांच के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट को 1 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको ने इक्वाडोर को हराकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई थी। मैक्सिको ने इक्वाडोर को इस मैच में 2-0 से हराया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम के नाम पर वायरल वीडियो मैक्सिको का है। जुलाई 2026 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच हुए फुटबॉल मैच का है जिसमें मैक्सिको ने इक्वाडोर को हरा दिया था। फुटबॉल फैंस इस जीत का जश्न मना रहे थे जिसे अब गलत दावे के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
7: इन दिनों ये बच्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अपने घर के कच्चे आंगन में नंगे पैर खड़ा है। ताज्जुब की बात यह है कि बच्चे ने अपने एक हाथ में केले का गुच्छा पकड़ा हुआ है और दोनों हाथों को पीछे बांध रखा है। इसके बावजूद वो अपनी जांघों, पैरों और सिर के संतुलन से फुटबॉल को लगातार हवा में जगल करता रहता है। गांव के एक साधारण माहौल में बना वीडियो ये साबित करता है कि हुनर किसी सुविधाओं का मोहताज नहीं होता। बच्चे के चेहरे पर न तो कोई झिझक है और न ही एकाग्रता की कमी। वो पूरी मग्नता के साथ नंगे पैरों से फुटबॉल पर ऐसा नियंत्रण दिखाता है जैसा पेशेवर खिलाड़ी सालों के अभ्यास के बाद हासिल करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग बच्चे की कला और एकाग्रता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी से मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। इस वीडियो में पिंक फ्रॉक पहने एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्चे की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

एक पापा ही होते हैं जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में एक बच्ची हाथ में टेलकम पाउडर लेकर अपने भाई के पास जाती है। वो भाई को पाउडर लगाना चाहती है लेकिन भाई मना कर देता है। फिर बच्ची अपनी माँ के पास जाती है, माँ भी मना कर देती है। फिर बच्ची अपने पिता के पास जाती है, पिता लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। बेटी के हाथ में टेलकम पाउडर देखकर पिता मना नहीं करते हैं और आराम से लगा लेते हैं। ये देखकर बेटी खुश हो जाती है और पिता की गोद में बैठकर खूब मस्ती करती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब देख रहे हैं।

0: पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ में आती हैं। चीन में दो शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दिल्ली के सांस्कृतिक मंच पर एक बार फिर भक्ति, प्रेम और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए, राजधानी के सबसे फेमस कमानी ऑडिटोरियम में डांस ड्रामा कृष्ण एक बार फिर परफॉर्म किया जा रहा है। 5 दशक का सफर पूरा कर चुके इस चर्चित डांस ड्रामा का मंचन जन्माष्टमी तक यानी कि 4 सितंबर तक किया जाएगा। इस विशेष 50वें वर्ष के संस्करण में कृष्ण के गोकुल और वृंदावन के दिनों से लेकर राधा, कंसवध और महाभारत के विराट प्रसंग तक की कथा मंच पर उतारी जाएगी।

0: घुंघरुओं की झंकार, रंगों की फुहार, मंच पर साक्षात उतरते भगवान द्वारकाधीश। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध कमानी ऑडिटोरियम की हैं, जहां रामलीला के तर्ज पर मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का भव्य आगाज हो चुका है। भक्ति और कला के अद्भुत संगम से भरपूर 50 सालों से चला आ रहा मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर से लौट आया है। अपने 50 साल पूरे करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू रहा ये शो कृष्ण जन्माष्टमी यानी 4 सितंबर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है।
1: तो चल जान दे रहे बात करा की देखा तो ये पहली बार किया हमने करीब 20-25 साल पहले। हम चाहते थे कि लोगों को मालूम हो कृष्ण की जिंदगी के बारे में, तो अब चीज ही नहीं है कि जो लोग जाते हमने वो रखे जो लोग नहीं जानते। उदाहरण के लिए जैसे गांधारी का शाप इत्यादि मोचन और दाएं को और बाएं के स्टेज में उसमें इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन है, जिसे अगर लोग हिंदी ना समझ पाए तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद है।
0: इस डांस ड्रामा में दर्शक न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की मनमोहक झलकियां देखेंगे, बल्कि कृष्ण जन्म से लेकर बाल लीला, अलौकिक रास लीला और महाभारत में गीता के सार तक जीवन के हर पहलू का ज्ञान सीख सकेंगे।

0: पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन और शशिधरन नायर की कोरियोग्राफी में तैयार ये शो कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत की गीता सार तक का सफर तय करता है। शास्त्रीय नृत्य, अद्भुत सेट और लाइट इफेक्ट्स, हाथ से बनी भव्य पोशाकें और अनूठे लाइफ स्टेज डिजाइन का एक ऐसा संगम जो दर्शकों को सीधा द्वापर युग में ले जाता है।
1: जो है ये पूरे श्री कृष्णा की कथा 2 घंटे 15 मिनट में बताती
2: है।
1: पूरा ट्रेडिशनल फॉर्म में है, वो ट्रेडिशनल नहीं जो हम बरसाना में या नौटंकी टाइप का देखते हैं। ये पूरा क्लासिकल डांस नृत्य संरचना है, डांस ड्रामा है। इसमें हम कृष्ण जी के जन्म से उनके विश्व रूप तक दिखाते हैं। तो इसमें हम महाभारत भी दिखाते हैं, क्योंकि महाभारत में जो भगवद गीता का उनका उच्चारण था, जो कृष्ण उन्होंने सिखाया, जो हम आजकल की चाहते हैं कि हम भगवद गीता को आज के दिन में उसको हम अडॉप्ट करें, वो हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं।
0: आज के आधुनिक दौर में युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जीवन के मूल्यों से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। 4 सितंबर तक चलने वाला ये सांस्कृतिक महाकुंभ इस जन्माष्टमी को और भी खास बनाने के लिए तैयार है। अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति, कला और ज्ञान के इस अनूठे अनुभव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम आपका इंतजार कर रहा है।

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: इसीलिए खबर के
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: नेपाल से आई राहत वाली खबर, हाइड्रो पावर टनल में फंसे 4 और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों का किया एयरलिफ्ट, करीब 170 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर उकेरी 20 फीट चौड़ी रेत की भावुक कलाकृति। पुरी के तट पर प्रेस फॉर नेपाल का दिया संदेश, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत।

कान्हा आ रहे हैं, तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर, नंद किशोर, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नंद के लाल गोपाल, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। आज से बस कुछ ही दिनों के बाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर उनकी कर्म भूमि यानी कि द्वारका तक कृष्ण कन्हैया वंशी वजैया के जन्म पर बधाइयां और आने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है। इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय, जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो करके जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है। लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है तो पूरे ब्रज मंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया। फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहाँ 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुँचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनोग्रेशन है। इनोग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो इसके लिए सारे विभाग सारे डिपार्टमेंट्स लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है सबकी कामगिरी जो है वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है। तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक मजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं?

0: रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना साल भर हर पल चलती रहती है, लेकिन भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है, जब यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
1: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहाँ पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियां की जाती है। बताते हैं इस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियां जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है।
1: तो जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और काफी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 MM का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज़ प्रोविडेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीज़ें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियाँ दी गई है।
0: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहाँ पर CCTV से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियां देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी स्वयं

0: ब्रह्म परमेश्वर। वेदव्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं भगवान है। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।
1: कहा जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा, साधु संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामी युगे युगे, यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असब साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है। जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव, कंस का कारागार, हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे, तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
2: देखिए, यह जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की वसुदेव क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? कि अज्ञान से हमको दूर होना है।
1: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छूकर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुँचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिनके बारे में जानकारी आज भी श्रद्धालुओं और भक्तों को भाव विभोर कर देती है। कभी वे अपनी पालनहारी माँ को अपने मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं और दूसरी ओर माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं। जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
2: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही होता है दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
1: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आमतौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन है। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
2: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को शीतल निर्मल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग है वह करुणा का समग्र प्रकाश हमारे अंदर देता है। क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं, जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यघ नाशहि तबहि, भगवानों के करोड़ों जन्म का अघ नाश कर देते हैं।
1: भाद्रपद माह की अंधेरी रात में प्रकट होकर भगवान ने यही संदेश तो दिया कि जीवन में हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के परम पावन संदेश का जो दिव्य प्रकाश फैलाया, उसकी पवित्र रोशनी से आज भी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को।
1: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: नेपाल से आई राहत वाली खबर, हाइड्रो पावर टनल में फंसे चार और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2465 लोगों का किया एयरलिफ्ट, करीब 170 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर उकेरी 20 फीट चौड़ी रेत की भावुक कलाकृति, पुरी के तट पर प्रेस फॉर नेपाल का दिया संदेश, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी को बदल दिया जाता है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग इसे बिना जांचे हुए, बिना परखे हुए सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन पर सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। और नतीजा ये होता है कि लोग इसे बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक, जहां हम तमाम खबरों के फैक्ट चेक करने वाले हैं। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए हुए वायरल तस्वीरों की, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद के दृश्य हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की होगी जिसको शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अभी का है और पंजाब की भगवंत मान सरकार में सरकारी स्कूल की बदहाली को दिखाता है। क्या है इस वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से जोड़कर दो तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस कोलाज में नेपाल में आई बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीर को दिखाया गया है। वायरल हो रही तस्वीरों का सच और झूठ क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
3: नेपाल में आई बाढ़ ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इसे हालिया वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। अब इसी संदर्भ में तस्वीरों का एक कोलाज सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पहली तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है, तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस तस्वीर को तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल, शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। चीन अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, नेपाल त्रासदी का ताजा हाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों का ये कोलाज बनाकर शेयर किया जा रहा है और इसे नेपाल में आई भीषण बाढ़ की तस्वीर बताया जा रहा है। एक तस्वीर में खूबसूरत कस्बा दिख रहा है तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ की विभीषिका को दिखाया गया है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सुबह का नेपाल और शाम का नेपाल, त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। चाइना अधिकृत तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को पल भर में तबाह कर गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक की टीम वायरल दावे की जांच में जुट गई। हां, ये बात सच है कि नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इसी बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीरें इसी बाढ़ की हैं, यह जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने लगातार सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सही है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर एडिटेड तस्वीरों को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? जब हमने जांच की है तो क्या कुछ पाया है इस रिपोर्ट में देखिए।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी, सर्च के जरिए तस्वीरों को खोजा। इस दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये तस्वीरें नजर नहीं आईं। इसके बाद तस्वीरों को गौर से देखने पर हमें इसमें घरों की बनावट और सड़क पर मौजूद वाहनों का स्वरूप भी सामान्य नहीं लगा। इसके बाद हमने तस्वीरों के इस कोलाज को AI डिटेक्शन टूल हाइव डिटेक्ट पर चेक किया। इस दौरान इस टूल ने 90.2% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI जनरेटेड बताया। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के दावे से वायरल हुई तस्वीरों का सच जानने के लिए हमने इसे AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन पर भी जांचा। टूल ने अपने विश्लेषण में कोलाज में मौजूदा तस्वीरों को 99% संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। कोलाज में मौजूद तस्वीरों को हमने एक और AI डिटेक्शन टूल 0GPT पर भी जांचा। इस टूल ने 85% संभावना के साथ कोलाज में मौजूद तस्वीरों को AI निर्मित बताया। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के नाम पर वायरल कोलाज में मौजूद तस्वीरें AI जनरेटेड हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: पंजाब के एक सरकारी स्कूल की खराब स्थिति दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो में लड़कियों के टॉयलेट्स की बदहाली दिखाई गई है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग पंजाब के भगवंत मान सरकार के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के एक सरकारी स्कूल की इस बदहाली को दिखाते हुए शख्स का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाते हुए ये बता रहा है कि लड़कियों के टॉयलेट्स में छत ही नहीं है और न ही पानी की व्यवस्था है। कुछ लोग इस वीडियो को हाल फिलहाल का बताते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी के नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पंजाब में बेटियों के लिए नया फॉर्मूला, पंजाब के लोग दिखा रहे हैं कि केजरीवाल के नए शिक्षा मॉडल की असल हकीकत क्या है। पंजाब बीजेपी ने भी वीडियो को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और लिखा कि छात्राओं के लिए बने शौचालयों की दयनीय स्थिति आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल की खामियों को उजागर कर रही है।
4: शर्म आ रही है, चल वीडियो दिखा दे।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
4: तानू देख के लग रहा होगा कि ये जेंट्स टॉयलेट है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां के टॉयलेट्स, खासकर लड़कियों के टॉयलेट्स के खराब हालात को दिखाता है। कुछ लोग इसे अभी का बता रहे हैं और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को देखा। इस दौरान हमें वीडियो की शुरुआत में स्कूल की बिल्डिंग पर पंजाबी में कुछ शब्द देखने को मिले। जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो ये जानकारी सामने आई कि ये जल्ला है और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में जल्ला गांव है, मतलब वायरल हो रहा वीडियो पंजाब का ही है। लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? जब फैक्ट चेक की टीम ने जांच पड़ताल की तो क्या कुछ पाया है इस रिपोर्ट में देखिए।
5: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हम एक YouTube चैनल पर पहुंचे। यहां इसे 6 अगस्त 2018 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। साल 2018 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो फतेहगढ़ साहिब के जल्ला गांव के एक सरकारी स्कूल का है और ये वीडियो सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड नाम के एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया था। पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बीजेपी के दावे का खंडन करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें उस स्कूल का दौरा करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, साफ सुथरे शौचालय और छात्राओं के लिए बने टॉयलेट में सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था दिखाई दे रही है। साफ है कि वायरल वीडियो उस वक्त का है जब आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं थी। हालांकि मौजूदा वक्त की बात करें तो ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जिनके मुताबिक सरकारी दावों के उलट आज भी पंजाब में कुछ स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं तक की कमी है। हालांकि पंजाब ने इस साल नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में केरल को पछाड़कर टॉप रैंक हासिल की है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो साल 2018 का है। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए।

0: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुणे में 22 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं की समस्या भी सुनी और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बात की। इसी से जोड़कर ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पुणे में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में बेटियों की गूंज। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग धड़ल्ले से इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूम रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी था, तो फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए टीम ने सबसे पहले इस वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखा। वीडियो किसी स्टेडियम का लग रहा है जहां पर लोग हाथों में झंडा लिए हुए झूम रहे हैं। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो और 22 अगस्त को पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम की वीडियो की तुलना की तो फर्क साफ नजर आया। इससे यह इशारा मिला कि वायरल हो रहा वीडियो कहीं और का हो सकता है और इसके बाद फैक्ट चेक की टीम को वीडियो में एक जगह मेक्सिको लिखा हुआ नजर आया। साथ ही इस वीडियो में लोगों को मेक्सिको का झंडा लिए हुए भी देखा जा सकता है। ऐसे में हमें वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे के गलत होने का संदेह हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और कार्यक्रम से जुड़े हुए वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है? फैक्ट चेक की टीम की जांच में क्या कुछ सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक थ्रेड्स अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो मेक्सिको के जोकालो सिटी का है जहां फुटबॉल फैंस मेक्सिको टीम के गोल करने पर जश्न मना रहे थे। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक खेल पत्रकार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर करते हुए बताया गया है कि ये मेक्सिको के जोकालो सिटी में फुटबॉल फैंस के जश्न मनाने का है। प्रोफाइल को खंगालने पर हमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते कई वीडियो भी मिले। जांच के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट को 1 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मेक्सिको ने इक्वाडोर को हराकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई थी। मेक्सिको ने इक्वाडोर को इस मैच में 2-0 से हराया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम के नाम पर वायरल वीडियो मेक्सिको का है। जुलाई 2026 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच हुए फुटबॉल मैच का है जिसमें मेक्सिको ने इक्वाडोर को हरा दिया था। फुटबॉल फैंस इस जीत का जश्न मना रहे थे जिसे अब गलत दावे के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
7: इन दिनों ये बच्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अपने घर के कच्चे आंगन में नंगे पैर खड़ा है। ताज्जुब की बात यह है कि बच्चे ने अपने एक हाथ में केले का गुच्छा पकड़ा हुआ है और दोनों हाथों को पीछे बांध रखा है। इसके बावजूद वो अपनी जांघों, पैरों और सिर के संतुलन से फुटबॉल को लगातार हवा में जगल करता रहता है। गांव के एक साधारण माहौल में बना वीडियो ये साबित करता है कि हुनर किसी सुविधाओं का मोहताज नहीं होता। बच्चे के चेहरे पर न तो कोई झिझक है और न ही एकाग्रता की कमी। वो पूरी मग्नता के साथ नंगे पैरों से फुटबॉल पर ऐसा नियंत्रण दिखाता है जैसा पेशेवर खिलाड़ी सालों के अभ्यास के बाद हासिल करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग बच्चे की कला और एकाग्रता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी से मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। इस वीडियो में पिंक फ्रॉक पहने एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्चे की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

एक पापा ही होते हैं जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में एक बच्ची हाथ में टेलकम पाउडर लेकर अपने भाई के पास जाती है। वो भाई को पाउडर लगाना चाहती है लेकिन भाई मना कर देता है। फिर बच्ची अपनी माँ के पास जाती है, माँ भी मना कर देती है। फिर बच्ची अपने पिता के पास जाती है, पिता लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। बेटी के हाथ में टेलकम पाउडर देखकर पिता मना नहीं करते हैं और आराम से लगा लेते हैं। ये देखकर बेटी खुश हो जाती है और पिता की गोद में बैठकर खूब मस्ती करती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब देख रहे हैं।

0: पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ में आती हैं। चीन में दो शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: दिल्ली के सांस्कृतिक मंच पर एक बार फिर भक्ति प्रेम और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए, राजधानी के सबसे फेमस कमानी ऑडिटोरियम में डांस ड्रामा कृष्ण एक बार फिर परफॉर्म किया जा रहा है। 5 दशक का सफर पूरा कर चुके इस चर्चित डांस ड्रामा का मंचन जन्माष्टमी तक यानी कि 4 सितंबर तक किया जाएगा। इस विशेष 50वें वर्ष के संस्करण में कृष्ण के गोकुल और वृंदावन के दिनों से लेकर राधा कंसवध और महाभारत के विराट प्रसंग तक की कथा मंच पर उतारी जाएगी।

0: घुंघरुओं की झंकार, रंगों की फुहार, मंच पर साक्षात उतरते भगवान द्वारकाधीश। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध कमानी ऑडिटोरियम की हैं, जहां रामलीला की तर्ज पर मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का भव्य आगाज हो चुका है। भक्ति और कला के अद्भुत संगम से भरपूर 50 सालों से चला आ रहा मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर से लौट आया है। अपने 50 साल पूरे करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू रहा ये शो कृष्ण जन्माष्टमी यानी 4 सितंबर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है।
1: तो सब जानते हैं ये पहली बार किया हमने करीब 20-25 साल पहले। अब जाके देख कि लोगों को मालूम हो कृष्ण की जिंदगी के बारे में, तो अब वो चीज ही नहीं है कि जो लोग जाते हमने वो रखे जो लोग नहीं जाते। उदाहरण के लिए जैसे गांधारी का शाप इत्यादि बहुत सारे, और दाएं को और बाएं के स्टेट में उसमें इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन है, जिसे अगर लोग हिंदी ना समझ पाए तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद है।
0: इस डांस ड्रामा में दर्शक न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की मनमोहक झलकियां देखेंगे, बल्कि कृष्ण जन्म से लेकर बाल लीला, अलौकिक रास लीला और महाभारत में गीता के सार तक जीवन के हर पहलू का ज्ञान सीख सकेंगे।

0: पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन और शशिधरन नायर की कोरियोग्राफी में तैयार ये शो कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत की गीता सार तक का सफर तय करता है। शास्त्रीय नृत्य, अद्भुत सेट और लाइट इफेक्ट्स, हाथ से बनी भव्य पोशाकें और अनूठे लाइफ स्टेज डिजाइन का एक ऐसा संगम जो दर्शकों को सीधा द्वापर युग में ले जाता है।
1: जो है ये पूरे श्री कृष्णा की कथा 2 घंटे 15 मिनट में बताती
2: है।
1: पूरा ट्रेडिशनल फॉर्म में है, वो ट्रेडिशनल नहीं जो हम बरसाना में या नौटंकी टाइप का देखते हैं। ये पूरा क्लासिकल डांस नृत्य संरचना है, डांस ड्रामा है। इसमें हम कृष्ण जी के जन्म से उनके विश्व रूप तक दिखाते हैं। तो इसमें हम महाभारत भी दिखाते हैं, क्योंकि महाभारत में जो भगवद गीता का उनका उच्चारण था, जो कृष्ण उन्होंने सिखाया, जो हम आजकल की चाहते हैं कि हम भगवद गीता को आज के दिन में उसको हम अडॉप्ट करें, वो हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं।
0: आज के आधुनिक दौर में युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जीवन के मूल्य से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। 4 सितंबर तक चलने वाला ये सांस्कृतिक महाकुंभ इस जन्माष्टमी को और भी खास बनाने के लिए तैयार है। अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति, कला और ज्ञान के इस अनूठे अनुभव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम आपका इंतजार कर रहा है।

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: देखिए मेरे यानी
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: नेपाल से आई राहत वाली खबर, हाइड्रो पावर टनल में फंसे 4 और भारतीय नागरिकों का सफल रेस्क्यू, भारत के विदेश मंत्रालय ने की इसकी पुष्टि। टनल में ड्रोन भेजकर जीवित लोगों के होने की संभावना तलाशती रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना ने अब तक 2,465 लोगों का किया एयरलिफ्ट, करीब 170 विदेशी नागरिकों का भी हुआ रेस्क्यू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर उकेरी 20 फीट चौड़ी रेत की भावुक कलाकृति। पुरी के तट पर प्रेस फॉर नेपाल का दिया संदेश, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत।

कान्हा आ रहे हैं तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर नंद किशोर कृष्ण मुरारी गिरधारी नंद के लाल गोपाल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। आज से बस कुछ ही दिनों के बाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर उनकी कर्म भूमि यानी कि द्वारका तक कृष्ण कन्हैया वंशी वजैया के जन्म पर बधाइयां और आने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है, इसकी काफी डिमांड है। क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्यरात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है। लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है, तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पर रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हुए आएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है, वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक मजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
5: रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना

0: ये उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
1: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित आइस्कॉन मंदिर में हैं और यहां पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहां पर तैयारियां की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियां की जाती है। बताते हैं आइस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियां जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है।
1: तो जन्माष्टमी के मौके पर आइस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और काफी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 MM का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज़ प्रोविडेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीज़ें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियाँ दी गई है।
0: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहां पर CCTV से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियां देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं, वो स्वयं भगवान हैं। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।
3: जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा साधु

0: संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामी युगे युगे, यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असब साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है, जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव। कंस का कारागार, हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे। तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
1: देखिए, यह जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की वसुदेव क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? कि अज्ञान से हमको दूर होना है।
0: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छूकर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुंचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिनके बारे में जानकारी आज भी श्रद्धालुओं और भक्तों को भाव विभोर कर देती है। कभी वे अपनी पालनहारी माँ को अपने मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं और दूसरी ओर माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं, जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
1: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना। यो आकर्षते यदि सह कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही होता है दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
0: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आमतौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन है। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
1: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को शीतल निर्मल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग है वह करुणा का समग्र प्रकाश हमारे अंदर देता है। क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोट यघ नाशहि तबहि, भगवान उनके करोड़ों जन्म का अघ नाश कर देते हैं।
0: भाद्रपद माह की अंधेरी रात में प्रकट होकर भगवान ने यही संदेश तो दिया कि जीवन में हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के परम पावन संदेश का जो दिव्य प्रकाश फैलाया, उसकी पवित्र रोशनी से आज भी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार, दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार, अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर